0: सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के AIMS हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे CRPF के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
1: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, SPF पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
0: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
2: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
3: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए, वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो यहाँ के कानून की नज़र में या सबकी नज़र में गलत है, तो हमने फिर उससे राबता छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है, और वो 2019 के केस बेच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
0: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम यूएपीए की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी यूएपीए की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से वीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है, जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया, तो वहीं टीएमसी के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है। सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे, बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान, जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था, और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सैन।
6: जहांगीर खान, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था, तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना, वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया, तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं, अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आया और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा।
10: उन्हें निजे के सिंघम मने करे सिनेमा आर्टिस्ट है, हमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची, ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई, लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं, और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
6: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
12: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
13: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
6: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
14: और इसी बॉर्डर फिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कूचबिहार जिला का दिनहाटा दो ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को।
6: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
13: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही, जेखने राज्य सरकार चाहले বিএসএফ কে জমি দিতে পারত, কিন্তু রাজ্য সরকার, বিগত রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কারণে ভোট ব্যাংকের জন্য এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট, তুষ্টিকরণ, তোষণের এজেন্ডা ছিল, সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
6: লেকিন বঙ্গাল মে বিজেপি অফ সরকার বনতে শুভেন্দু অধিকারী ইস মামলে মে অ্যাকশন মে দিখ রহে হ্যায়, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
11: फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
15: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिन होता है, कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समस्या होगा।
13: सीए ते बोला आछे सातटा कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्टर आवताय आसबेन, एवं तादेर के जरा 31/12/2024 पर्यंत एसेछेन তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
6: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়েঙ্গে, শরণার্থী ও ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়েগা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উন্হে বিএসএফ কে হাওয়ালে কিয়া যায়েগা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উন্হে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
13: সিএএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
6: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া, উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার কি তরফ সে চিকেন নেক কি 120 একর জমিন সৌঁপনে সে দেশ কি সুরক্ষা মজবুত হোগি। চিকেন নেক মে আনে ওয়ালে 7 হাইওয়ে কি দেখরেখ কেন্দ্র কর পায়েগা, জো মমতা সরকার মে পিডব্লিউডি কে পাস থা, লেকিন বঙ্গাল মে সরকার বদলনে কে বাদ বর্ডার পর হালাত আব বদল জায়েঙ্গে।
4: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
16: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुई है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
17: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
16: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
18: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी यह कर रहे थे।
16: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
19: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
16: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
0: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से 100% सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
20: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को

0: अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ट्रूप्स की तैयारी, भारी सुरक्षा इंतजाम, फ्लैग मार्च, ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी, हाईटेक। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बंगाल में बकरी ईद पर नहीं होगी गायों की कुर्बानी, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कोलकाता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला।

2 रुपए महंगा। दही और पनीर के दाम भी बढ़े, मारुति की कार 30,000 रुपए महंगी। प्रचंड गर्मी से दहला उत्तर भारत, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। लखनऊ में सभी स्कूल बंद, दिल्ली में पावर डिमांड 8,000 मेगावाट। मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जल्द राहत की उम्मीद।

आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से के धार से आ रही है। भूतशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने धार भूतशाला पर फैसला सुनाते हुए इसे देवी सरस्वती यानी कि वाग देवी का मंदिर बताया था। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय का जुमे की नमाज को भी रद्द करने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला पुरातात्विक साक्ष्यों और उपासना स्थल अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने भूतशाला को माना था वागदेवी मंदिर। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के धार से भूतशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने धार भूतशाला पर फैसला सुनाते हुए इसे देवी सरस्वती यानी वागदेवी का मंदिर बताया था। तो मुस्लिम समुदाय का जुमे की नमाज को भी रद्द करने का फैसला सुनाया गया था। और वही तो आज भोजशाला में अखंड पूजा का आयोजन होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।

0: तो पूरा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है वो आपको समझा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है भोजशाला विवाद। भोजशाला विवाद में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आप समझिए। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना था वाग देवी मंदिर, उसके बाद इस फैसले को चुनौती दी गई। आज भोजशाला में अखंड पूजा का आयोजन होने वाला है, महाआरती जुलूस निकालने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। वही 721 साल में पहला भव्य आयोजन किया जाएगा हिंदू पक्ष ने कहा है, और अब तक सिर्फ मंगलवार को थी पूजा का अनुमति, मंगलवार को दी गई थी। तो आपको बता दें कि भोजशाला में हर शुक्रवार नमाज होती थी और अब पूजा का आयोजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचा है इस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया। आतंकी हमजा को पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई है। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए आप देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं। जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है, और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है, और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था, और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमे वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान और अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए, वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा वोटिंग हुई और यहां पर मतदाताओं में उत्साह काफी दिखा। तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद दिखे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं है।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए, तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा, भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है, चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो पलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था, क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर, कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते,
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मने करे सिनेमार आर्टिस्ट आमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा, जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: तो वही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
6: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
12: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
13: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
6: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
14: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
6: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में यह काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
13: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही जेखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो एवं तादेर जे हाई अपीजमेंट तुष्टिकरण तोषणेर एजेंडा छिलो सेई कारणे तारा हयतो देयनी।
6: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
15: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
16: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिन होता है, कि कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, वो समस्या समस्या में होगा।
13: সিএতে বলা আছে সাতটা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
6: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী ও ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উন্হে বিএসএফ কে হওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উন্হে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
13: সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
6: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার কি তরফ সে চিকেন নেক কি 120 একর জমিন সৌঁপনে সে দেশ কি সুরক্ষা মজবুত হোগি, চিকেন নেক মে আনে ওয়ালে 7 হাইওয়ে কি দেখরেখ কেন্দ্র কর পায়েগা জো মমতা সরকার মে পিডব্লিউডি কে পাস থা, লেকিন বঙ্গাল মে সরকার বদলনে কে বাদ বর্ডার পর হালাত আব বদল জায়েঙ্গে।
0: यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
18: समर्स अ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ डेज दैट लास्ट अ लिटिल लॉन्गर, अ ब्राइटर स्टेट ऑफ माइंड। सो गिफ्ट योरसेल्फ अ न्यू किया एट द किया समर स्टिकर सेल्स इवेंट, with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires.
19: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2016. Dealer for warranty details.

0: क्या हर व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या चरण स्पर्श करने से भी नुकसान हो सकता है? चरण स्पर्श करके कैसे ग्रहों को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या है चरण स्पर्श के नियम और क्या है चरण स्पर्श के चमत्कार, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। पेट्रोलियम वाणिज्य वित्त मंत्रालय के काम की समीक्षा। पीएम ने इज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर दिया जोर। धार भोजशाला में आज अखंड पूजा और महाआरती जुलूस की तैयारी। भारी सुरक्षा इंतजाम, फ्लैग मार्च और ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बंगाल में बकरीद पर नहीं होगी गाय की कुर्बानी। शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कोलकाता हाईकोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला। महंगाई की नई किश्त जारी। राजस्थान और बिहार में सरस और सुधा का दूध 2 रुपये महंगा। दही और पनीर के दाम भी बढ़े। मारुति की कार 30,000 रुपये महंगी। प्रचंड गर्मी से दहला उत्तर भारत। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। लखनऊ में सभी स्कूल बंद। दिल्ली में पावर डिमांड 8,000 मेगावाट। मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जल्द राहत की उम्मीद।

0: मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बैठक में पीएम मोदी ने 2047 के विजन, इज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा से लौटते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार जीत के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में वाणिज्य, पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रियों द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों और उनके प्रभाव का भी आकलन किया गया। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा उन्हें काम में सुधार लाने और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए सुधारों की सूची भी मांगी गई। प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति का आकलन किया और मंत्रियों को युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों जैसे ऊर्जा और कृषि विभागों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जून में मंत्रिमंडल में फिर बदल की अटकलें तेज हैं। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% ज्यादा वोटिंग हुई। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह दिखा तो वहीं टीएमसी के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद दिखे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन बाद फलता में अभिषेक बैनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता ही नहीं है।
2: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है। सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
3: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
4: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
5: हाँ, उनका उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
3: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी ने जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
4: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
2: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
5: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
3: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
6: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत।
3: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
7: हूँ। सिंघम मन सिनेमा पुष्पा छुपेगा नहीं।
3: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
8: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रस्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
3: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
8: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं। और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: तो वहीं जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
9: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भी है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
10: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
9: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
11: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
9: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
12: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
9: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: तो वही ईरान पर हमले की डेडलाइन अब करीब आ रही है। इसके साथ ही ईरान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 2 दिन से तेहरान में है और अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि आसिम मुनीर ट्रंप की फाइनल शर्तों के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान पर इस बार जो हमला होगा वो ऐतिहासिक होगा। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज पर टोल वसूली को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है।
13: How do you want things to end up with Estrella and Port Luis, though? Would you like them to
14: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And

0: ईरान पर हमले की डेडलाइन करीब आ रही है। ईरान अमेरिका महायुद्ध को लेकर जितनी तेजी से घड़ी की सुई घूम रही है, उतनी ही पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले दो दिनों से ईरान को मनाने में जुटे हैं और अब पाक आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर बातचीत की कमान संभालने जा रहे हैं। समस्या ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान ने अपने प्रस्ताव में युद्ध पूरी तरह खत्म करने की मांग की है और फ्रीज किए गए पैसे वापस मांगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की शर्त भी रखी है, लेकिन बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटकी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तबा खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसकी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर वो ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा तो पाबंदियां हटने के बाद ईरान कर्ज निपटाने में उसकी मदद करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये एक थ्री वे डील है जिसमें शांति, पैसा और पाइपलाइन तीनों शामिल हैं। लेकिन ये सपना पाकिस्तान के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: बाद अमेरिका और ईरान युद्ध की। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सिथ ने लिखा है कि लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है।
2: डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, क्या महायुद्ध की घड़ी आ गई? क्या ट्रंप के सामने झुकेगा ईरान? ईरान के पास क्या विकल्प है? हॉर्मुज में ईरान की अकड़ जारी, परमाणु प्रोग्राम पर भी अड़ा ईरान। अमेरिका ने क्यों कहा लॉक एंड लोडेड, मतलब क्या है? अब ईरान के जवाब का इंतजार, क्या 48 घंटे बाद होगा भीषण वॉर? 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर दो दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
3: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
2: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा? दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सिथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेग्सिथ ने लिखा है लॉक एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
2: और तो और ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी ईरान को ऐसी सजा भुगतने की चेतावनी दी है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में नहीं मिलेगी। स्टीफन मिलर ने कहा कि ईरान के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर राजी हो जाए या अमेरिकी सेना के हाथों दंड भुगतने को तैयार रहे। ये दंड ऐसा होगा जो आधुनिक इतिहास में किसी ने देखा नहीं होगा।
5: They can either agree to a piece of paper that is satisfactory to the United States, or they can face a punishment from our military, the likes of which has not been seen in modern history. That's the choice that they face.
2: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थयात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही चर्चाओं से परिचित एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके अपने ही अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि इस समय अमेरिका इजराइल युद्ध को फिर से शुरू करने से ट्रंप की साख को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थयात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्रू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और चार दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: हर व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्या चरण स्पर्श करने से भी नुकसान हो सकता है? चरण स्पर्श करके कैसे ग्रहों को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या है चरण स्पर्श के नियम और क्या है चरण स्पर्श के चमत्कार, जानिए मेरे साथ सिर्फ
8: Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles, conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
9: Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: Presented by
6: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। पेट्रोलियम वाणिज्य वित्त मंत्रालय के काम की समीक्षा। पीएम ने इज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर दिया जोर। धार भोजशाला में आज अखंड पूजा और महाआरती जुलूस की तैयारी। भारी सुरक्षा इंतजाम, फ्लैग मार्च और ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बंगाल में बकरीद पर नहीं होगी गाय की कुर्बानी। शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कोलकाता हाईकोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला। महंगाई की नई किश्त जारी। राजस्थान और बिहार में सरस और सुधा का दूध 2 रुपये महंगा। दही और पनीर के दाम भी बढ़े। मारुति की कार 30,000 रुपये महंगी। प्रचंड गर्मी से दहला उत्तर भारत। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। लखनऊ में सभी स्कूल बंद। दिल्ली में पावर डिमांड 8,000 मेगावाट। मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जल्द राहत की उम्मीद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभिवादन करने के लिए, सम्मान देने के लिए हम अपने से बड़ों का, अपने से ज्यादा गुणवान लोगों का और जिनके प्रति श्रद्धा है उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने से भी भाग्य में सुधार होता है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं और चरण स्पर्श करने के लाभ क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरण स्पर्श के बारे में, पैर छूने के बारे में। भारतीय परंपरा में चरण स्पर्श

देखिए हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है और कई तरीके से अभिवादन किया जाता है, जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, ये दोनों ही अभिवादन है। चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है और सामान्यतः आप देखिए कि लोग हाथ जोड़कर नमस्कार तो करते हैं लेकिन चरण स्पर्श सामान्यतः नहीं करते। चरण स्पर्श विशेष स्थितियों में विशेष लोगों को किया जाता है। सही तरीके से अगर चरण स्पर्श किया जाए तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। किसका चरण स्पर्श कर रहे हैं और कैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चरण स्पर्श करने से भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट आपके जीवन के मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। दो बातें इसमें समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसके चरण स्पर्श कर रहे हैं और आप किस तरीके से चरण स्पर्श कर रहे हैं, इन दोनों बातों को समझना आवश्यक है। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने से लाभ क्यों होते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा हो, बुरा हो, सामान्य हो, विशेष हो, उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा पाई जाती है।

के हाथ और पैर की अंगुलियों से निकलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। और जब आप किसी को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों से पैरों को स्पर्श करते हैं, तो जिसके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को आप खींच लेंगे। इसी प्रकार से जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। संत महात्मा, गुरुजन, जो लोग आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपको प्रेम करते हैं, गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं, जब आप उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी शुभ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस शुभ ऊर्जा से आपका कल्याण होता है, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, रोग और बीमारियां शरीर से दूर होने लगती हैं। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

अपराधों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। 16 सितंबर 1994 का जन्म है, जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। नीलम जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें मेरे साथ बनी रहती हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। नीलम जी, आपकी कुंडली में केवल देखिए डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बाकी जो समस्या आप बताती हैं वो ज्यादातर मानसिक है, ज्यादातर तनाव की वजह से पैदा हो रही है। कोई इतनी बड़ी बीमारी या कोई इतनी गंभीर स्थिति आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है, बेवजह की चिंता करना बंद कर दीजिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना आप पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये उपाय करना शुरू करिए। ये उपाय करने के साथ 1 से 2 महीने में जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चरण स्पर्श कितना महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये बात आपने जान ली। अब ये जानिए कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श करने के 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके व्यक्ति के पैरों को छूना, झुक करके चरण स्पर्श करना। दूसरा, घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना। और तीसरा, लेट जाना किसी व्यक्ति के सामने, दोनों हाथ मिला के लेटे हुए नमस्कार करना, यानी साष्टांग प्रणाम करना। इन 3 ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है। और जब आप जीवन में झुकना जान जाते हैं, जब आप जीवन में झुकते हैं तो आपके अहंकार का नाश होता है। देखिए, नमस्कार करने पर, प्रणाम करने पर झुकना चाहिए। जब आप झुक करके नमस्कार करेंगे, झुक करके चरण स्पर्श करेंगे तो इससे आपको झुकने की आदत पड़ेगी, आपके अंदर विनम्रता आएगी और आपका अहंकार दूर होगा। अब आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं।
देखिए, चरण उसी के छूने चाहिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो, जिसको आप अच्छा नहीं समझते हो, उसके चरण मत छूइए, हाथ जोड़कर केवल नमस्कार करिए। जो श्रद्धा के योग्य हो, यानी कोई संत महात्मा हो, कोई ज्ञानी जन हो, उनके चरण भी आप छू सकते हैं। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से दूसरे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छूइएगा। अगर घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखिएगा। अगर आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तो साष्टांग प्रणाम हर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, केवल अपने गुरु या अपने ईष्ट देव को या देवी को साष्टांग प्रणाम करें। इसके अलावा कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, अपने गुरु और ईष्ट के अलावा किसी और को साष्टांग प्रणाम ना करें। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घुटने पर बैठकर अपना सर नीचे करके प्रणाम कर सकती हैं। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, ईमानदारी से आपके चरण स्पर्श कर रहा है तो उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दीजिएगा। मान्यता ये कहती है, परंपरा ये कहती है कि माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब बेटी का विवाह करते हैं तो कन्यादान के समय बेटी के चरण छूकर माता पिता उसके चरण धुलाते हैं, तो भविष्य में जिसके चरण छूने हैं, जिसके चरण धुलाने हैं, उससे चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, चरण स्पर्श करने से आशीर्वाद तो मिलता ही है, भाग्य बेहतर तो होता ही है, लेकिन आप अलग अलग लोगों के चरण स्पर्श करके अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। कैसे? अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी। सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो सूर्य की मुश्किल कम होगी। अगर माता के चरण स्पर्श करेंगे तो चंद्रमा आपका अनुकूल होगा, मानसिक तनाव मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अपने से बड़ी स्त्री के बालिका के महिला के जिसके प्रति आपके मन में सम्मान है, अगर उनका चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र आपके मजबूत होंगे। आपके बड़े भाई हैं बड़ी बहन हैं, उनके प्रति आदर रखें और अगर उनके चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी, वाद विवाद मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। जो आपके परिवार में मोहल्ले में समाज में वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सम्मानित वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर उनके चरण स्पर्श करेंगे तो बृहस्पति मजबूत होगा। जो व्यक्ति सात्विक है सदाचारी है ईमानदार है, उनके चरण स्पर्श अगर नियमित रूप से करें तो शनि राहु और केतु नियंत्रित होंगे। संत महात्माओं के गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। अगर कोई संत महात्मा मिले गुरुजन मिले, पूरा प्रयास करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध होगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। किसी भी ग्रह की कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या शांत हो जाएगी। देखिए, चरण स्पर्श करना बहुत मूल्यवान बात है, इसलिए आपको फिर से बता दें कि जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है या जो वास्तव में संत है महात्मा है श्रद्धा का पात्र है, जो आपके माता पिता हैं बड़े लोग हैं, उनका ही चरण स्पर्श करिए। जबरदस्ती दबाव में आकर चरण स्पर्श मत करिए, उससे नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बड़ा जादुई तरीका है, जो भी आपसे मिले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू करिए। सबके चरण तो छू नहीं सकते, तो जो भी आपसे मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है छोटा मिल रहा है महिला मिल रही है पुरुष मिल रहा है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम या नमस्कार करना शुरू करिए। इस तरह से अगर आप अभिवादन निरंतर करते जाएंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी और आपकी कुंडली में बृहस्पति के परिणाम अनुकूल होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए। अगर आप कुछ काट नहीं रहे हैं, कागज नहीं काट रहे, कपड़ा नहीं काट रहे, तो हवा में कैंची मत चलाइए। क्यों कहा जाता है ऐसा? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि हवा में कैंची चलाने से घर में झगड़ा होता है, अशुभता आती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कैंची में धार होती है, ब्लेड होती है, और कैंची अगर हवा में चलाएंगे, जरा भी लापरवाही करेंगे, शरीर पर लग जाए, उंगली में लग जाए, तो हाथ कट सकता है, शरीर कट सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, या किसी को लगने से नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को देखते हुए कहा गया कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है,
सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

कर्क राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

धारभोशाला में आज हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, अखंड पूजा का आयोजन, प्रशासन अलर्ट मोड पर, परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोशाला में पहला शुक्रवार, हाईकोर्ट ने परिसर को मां वागदेवी का मंदिर माना, हिंदू संगठनों में उत्साह। भोशाला फैसले के बाद बढ़ी हलचल, परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शुक्रवार को अखंड पूजा कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। भोशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भोशाला मामले में मुस्लिम पक्ष के काजी ने हाईकोर्ट के नमाज रोकने वाले फैसले को चुनौती दी। पीएम मोदी की 4.5 घंटे मैराथन बैठक, मंत्रियों को दिया रिफॉर्म एजेंडा, मंत्रिपरिषद बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन और योजनाओं की समीक्षा हुई। पीएम मोदी, विकसित भारत 2047 सिर्फ नारा नहीं, हमारी प्रतिबद्धता। पीएम ने मंत्रालय से तेज डिलीवरी और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। पीएम मोदी ने की मंत्रालयों के कामकाज की मिड टर्म समीक्षा, कन्फर्म कॉमर्स और गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय समेत कई विभागों की प्रगति पर चर्चा। वेस्ट एशिया संकट पर केंद्र सरकार अलर्ट, पीएम मोदी ने दिए निर्देश, ऊर्जा, कृषि, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर खास फोकस रखा गया। पीएम मोदी बोले 2047 के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करें। मंत्रिपरिषद बैठक में पीएम ने इज ऑफ लिविंग और बड़े रिफॉर्म्स पर जोर दिया। मारुति ने बढ़ाए कार के दाम, जून से महंगी होगी गाड़ियां। कंपनी ने अलग अलग मॉडल्स की कीमतों में 30,000 रुपए तक का इजाफा किया। दूध फिर से महंगा हुआ, सुधा और सरस ने बढ़ाए दाम। बिहार और राजस्थान में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई। नीट पेपर लीक मामला, एनटीए प्रमुख का बयान, पेपर लीक नहीं हुआ, संसदीय समिति को दिया बयान। एनटीए प्रमुख ने कहा कि केवल कुछ प्रश्न ही लीक हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तो 23 मई से भारत दौरे पर, दौरे में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मार्को रूबियो भारत का ऊर्जा निर्यात बढ़ाना चाहता है अमेरिका। भारत दौरे से पहले रूबियो ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को अहम बताया। रूबियो के भारत दौरे से पहले अमेरिका ने दिए बड़े संकेत, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में नई साझेदारी पर हो सकती है चर्चा। ट्रंप का बयान, कहा होर्मुज पर टोल मुझे पसंद नहीं। ट्रंप के बयान से खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक हलचल तेज हुई। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर 22 मई को तेहरान जा सकते हैं। ईरान दौरे के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत संभव। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट निचली अदालत के जमानत से इनकार वाले आदेश को चुनौती पर सुनवाई करेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली की अदालत आज आरोप तय करने पर अहम फैसला सुना सकती है। हावड़ा स्टेशन पर संदिग्ध पैकेट में लगी आग, जांच तेज। मिथिला एक्सप्रेस घटना से पहले सीसीटीवी में दिखे युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मिथिला एक्सप्रेस घटना से पहले संदिग्ध युवक कैमरे में कैद। हावड़ा स्टेशन मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच एजेंसियां अलर्ट पर। बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में कलाकारों पर एफआईआर की मांग की गई। परमव्रता चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी को टिप्पणी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर। ऋषा शर्मा डेथ केस में हाईकोर्ट पहुंची दोनों फैमिली। फरार पति पर लुकआउट नोटिस जारी, समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तलाश में जुटी। पूर्व मिस पुणे ऋषा शर्मा की मौत पर कानूनी जंग तेज। फरार पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी। शादी के वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। ऋषा और समर्थ की शादी का वीडियो वायरल, मौत के बाद रिश्ते पर उठे नए सवाल। ऋषा डेथ मिस्ट्री में बढ़े सवाल। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड जांच के घेरे में परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार से इनकार कर एम्स मर्चुरी में रखा शव। ऋषा केस में आरोप प्रत्यारोप तेज। ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही। मायके वालों ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। बंगाल में बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर रोक जारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए रोक को बरकरार रखी। बंगाल में कुर्बानी पर सियासत तेज। हुमायूं कबीर बोले कुर्बानी जारी रहेगी। एजेयूपी प्रमुख ने कहा 1400 साल पुरानी परंपरा में सरकार दखल नहीं दे सकती। अरशद मदनी ने लिया अलग रुख, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। एआईएमपीएलबी उपाध्यक्ष बोले धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो, स्थायी समाधान निकले। बकरीद से पहले बंगाल सरकार के फैसले पर मुस्लिम संगठनों का विरोध। जमीयत उलेमाए हिंद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को असंवैधानिक बताया। कुर्बानी पर रोक लेकिन स्लॉटर हाउस पर नहीं। फुरफुरा शरीफ के मौलाना का सवाल तो है। तोहा सिद्दीकी ने कहा कि कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो यूनियन की 3 दिन की हड़ताल। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से ड्राइवर यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग की। इंदौर में नगर निगम का अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क चौड़ीकरण के लिए कई निर्माण किए गए ध्वस्त। प्रयागराज के अस्पताल में अधिवक्ता और डॉक्टर्स के बीच झड़प के बाद तनाव। सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। ओपीडी चालू और इमरजेंसी सेवाएं बंद।
प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा, कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी, 600 रुपये बढ़कर 1,65,500 रुपये पर गोल्ड पहुंचा। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपये बढ़कर 2,71,000 रुपये पहुंची। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर महादेव के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, धूमधाम से खुले बाबा मध्यमहेश्वर के कपाट। चमोली में हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारी पूरी, 23 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादलों ने बर्फ को काट कर रास्ता किया साफ, गुरुद्वारे के आसपास से ही हटाई गई बर्फ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 24 मई तक जारी किया गंभीर हीटवेव का अलर्ट, दिन में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लोगों को गर्मी से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रचंड गर्मी में लगातार बढ़ रहा है तापमान, मौसम विभाग ने जारी की हीट स्ट्रोक की चेतावनी। जयपुर में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान, प्रशासन अलर्ट मोड में। यूपी के बांदा में 5वें दिन 48 डिग्री रहा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। यूपी में भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, कहा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे रहे तैयार। सीएम योगी ने सभी जिले के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, नागपुर में 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 47 डिग्री पहुंचा। अमरावती में 46.4 डिग्री, चंद्रपुर में 46.2 डिग्री रिकॉर्ड, गढ़चिरौली में 45.6, अकोला और यवतमाल में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अधिक पानी पीने और बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील। नोएडा के कबाड़ गोदाम में लगी भयंकर आग, इससे हड़कंप मचा, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में किराना गोदाम में लगी विकराल आग, ऊंची लपटों से मची अफरा तफरी, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। अकोला के सिटी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से एसी में ब्लास्ट और जोरदार धमाके के बाद आईसीयू में लगी आग, सभी 18 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में लगी भयंकर आग, फायरमैन समेत 2 की मौत हुई, 2 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में संदिग्ध साजिश का खुलासा, भीड़ में दहशत फैलाने की कोशिश में शख्स ने लगाई आग। बागेश्वर के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है, आग के धुएं से लोगों का जनजीवन प्रभावित। नैनीताल के भवाली में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। ऋषिकेश में महिला से छेड़छाड़ के आरोप का बवाल हुआ, गुस्साई भीड़ ने हरियाणा से आए 2 पर्यटकों को जमकर पीटा, मचा हड़कंप। वाराणसी पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे युवक को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान सूटकेस से भारी मात्रा में शराब, बियर की बोतल बरामद। वाराणसी में मामूली कहासुनी के बाद दरोगा ने महिला के साथ की बर्बरता, वीडियो संज्ञान में आते ही एसपी ने किया निलंबित। बिहार के मुंगेर में हथियार के बल पर नाबालिग से गैंगरेप, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने झील पर बुलाकर दोस्तों संख्या दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में बेतवा नदी में कचरा डंपिंग को लेकर हंगामा, इलाके की नगर पालिका पर पवित्र नदी को प्रदूषित करने के आरोप, जांच की मांग। मणिपुर में उग्रवादी संगठनों के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। वहीं लखनऊ ऑनक लिंक केस पर सनसनीखेज खुलासा, युवती की हत्या का शव के टुकड़े ट्रेन में रखे, पिता समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के वर्सोवा जू लिंक रोड पर तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे के बाद मची अफरा तफरी और लगा लंबा ट्रैफिक जाम। अमेठी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों में मारपीट, जमकर चले लात घूसे और एक दूसरे पर फेंके गए बैग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 साल के इंजीनियर ने की खुदकुशी, सोसाइटी के अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदा शख्स। लातूर में आवारा कुत्तों के हमले से 22 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हुई, परिजनों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। जामनगर में पेट्रोल पंप पर किसानों का हंगामा, डीजल न मिलने से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा गैलन। गुजरात के पाटन जिले में नीलगाय के अवैध शिकार का मामला सामने आया, जांच में जुटा वन विभाग, मौके से एक कार और नीलगायों के शव बरामद। क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार, फिल्म 5 जून को होगी रिलीज। स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का दमदार ट्रेलर आउट हुआ, रामचरण, जानवी कपूर, देवेंद्र शर्मा समेत कई कलाकार इसमें नजर आएंगे। ओटीटी पर दिखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का। फिल्म मां बहन के स्टारकास्ट का पोस्टर रिलीज, रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा के किरदार आएंगे सामने। आज मां बहन का ट्रेलर होगा आउट, दिखेगा धक धक गर्ल का नया अंदाज, 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार, मुन्ना भैया की वापसी की मांग अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियों के डिलीवरी खर्च में इजाफा। इस बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालकर डिलीवरी चार्ज बढ़ा सकती है कंपनियां। सोने की महंगी कीमतों की वजह से लोन टू वैल्यू रेशियो में हुए इजाफे ने गोल्ड लोन की डिमांड 50% बढ़ाई। दक्षिण भारत के 5 राज्यों के कुल गोल्ड लोन में 75% की हिस्सेदारी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए चीन से पार्ट्स लाना हुआ मुश्किल। सप्लाई चेन पर चीन की सख्ती के बाद भारतीय कंपनियों ने सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई। बीते 12 साल में भारत से टॉफी निर्यात 166% बढ़कर 132 करोड़ रुपए पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि 2013-14 में देश से टॉफी का कुल एक्सपोर्ट 49.68 करोड़ रुपए था। लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक ग्राहकों के मोबाइल फोन ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक केवल बैंक लोन से खरीदे गए फोन को ही बंद करने का होगा अधिकार। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर तीखी बहस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ समझौता चाहता है। हज यात्रा के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से रोका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज और बकरीद के दौरान सैन्य कार्रवाई से मुस्लिम दुनिया में बड़ा गुस्सा भड़क सकता है। ताइवान को अमेरिकी हथियारों के सप्लाई पर भड़का चीन, कहा हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीन अमेरिका में बढ़ेगा तनाव।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Lion O's family, super action family.
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
4: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
4: बड़े आराम से।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
11: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते।
12: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
15: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
14: आप कैसे कर लेते हो?
16: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
15: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
19: बस 2000
20: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा,
21: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
22: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
23: Director, the taste of success.
24: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
25: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
26: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
27: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई, तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार के बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है।
1: पहले घाटा का राजू नस्कर 18 पोपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: सुशासन का पहला मंत्र है कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। शुभेंदु के बुलडोजर उस बड़े वर्ग में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बंगाल में बीजेपी को महाविजय दिलाई और पहली सरकार बनवाई।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही बीजेपी को वहां सियासी जमीन बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हत्याएं हुई, एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन की मजबूरी भी सामने आई। अब शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी के पार्टी कैडर को उनकी सुरक्षा की गारंटी का मैसेज है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
4: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
4: बड़े आराम से।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
10: जेके वॉल मैक्स।
11: बेस्ट पेंट?
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
14: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
13: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
14: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
15: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
16: नहीं,
14: और म्यूचुअल फंड्स है
16: सही।
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
18: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
20: गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा, पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
21: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
22: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
21: गोमाता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा। और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद TMC के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया, जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई, जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके, और TMC विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है। स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले कुरकुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दें। लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है।
6: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे है और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। वो 8 सबसे बड़ी खबरें जो देश और दुनिया की सुर्खियों में है, तो इन सुपर 8 खबरों की झलकियों से सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में आज जुमे के दिन अखंड पूजा का कार्यक्रम कैसे बना प्रशासन के लिए चुनौती। वहीं बंगाल में बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर कैसे घमासान मचा है। साथ ही बात नीट पेपर लीक पर भी होगी, जिसमें एनटीए ने क्यों अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं भोपाल की टुषा डेथ मिस्ट्री में नया कानूनी दाव पेच क्या है। हॉर्मूज के टोल पर क्या धमकी दी है ट्रंप ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात गर्मी की भी करेंगे, भीषण गर्मी से राहत की वो खबर भी होगी जिसका पूरे उत्तर भारत को इंतजार है। और महंगाई की नई किश्त जो दूध को लेकर बिहार राजस्थान से आई है, ये खबर भी आपको बताएंगे। सुपर एट में सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी के हिस्से में आई महंगाई की नई किश्त की खबर की। राजस्थान और बिहार में महंगाई का एक और झटका लगा है। बिहार की सुधा डेयरी और राजस्थान की सरस डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, जयपुर में सरस दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। वहीं सरस टोन दूध अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। सरस गोल्ड दूध अब 68 रुपए के बजाय 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध अब 65 रुपए की जगह 67 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और सुधा शक्ति दूध 57 रुपए प्रति लीटर की जगह अब 59 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो दूध के दाम बढ़ गए हैं। तो दूध की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं वो अब आपको बता देते हैं। लगातार महंगाई की मार आम लोग झेल रहे हैं और अभी और महंगाई बढ़ेगी। अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, आपको समझाते हैं। पहले सरस टोन दूध का दाम 54 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब 56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और आप इसे समझिए कि कितने दूध कितना महंगा हो गया है। सरस गोल्ड जो कि 68 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, वो 70 रुपए प्रति लीटर अब मिल रहा है। वही राजस्थान का हाल जान लेते हैं, बिहार का जान लेते हैं। पहले आपने राजस्थान का समझा। बिहार में सुधा गोल्ड अब 65 रुपए प्रति लीटर जो कि था, वो अब 67 रुपए प्रति लीटर में आपको मिलेगा। वही सुधा शक्ति जो दूध है, वो 57 रुपए प्रति लीटर की जगह अब 59 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। यानी 2 रुपए अब दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बिहार में दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उबाल सिर्फ दूध में ही नहीं आया है, अगले महीने से अब कार खरीदना भी महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़े हुए दाम से लोग उभर नहीं पाए हैं कि देश में सबसे आम आदमी की कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से वो कार के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। ऐसे में आप अगर इन दिनों मारुति सुजुकी की डिजायर, सेडान, अर्टिगा और साथ ही एमपीवी, ब्रेजा, एसयूवी या फिर बिलेनो हैचबैक जैसी कोई अन्य कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अगले महीने आपकी जेब पर बोझ जरूर पड़ेगा। 1 जून के बाद खरीद पर लागू होंगी नई दर। तो अब कार के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कार के दाम में 30,000 का इजाफा हो गया है, महंगी हो जाएंगी अब मारुति की कार। आप समझिए, 1 जून से कार खरीदना काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। 1 जून से ये दाम लागू हो जाएंगे। कार के दाम में अब 30,000 रुपए का इजाफा हो गया है। मारुति सुजुकी जो लोग कई

0: खरीदते थे वो अब महंगी हो जाएंगी। 1 जून से कार खरीदना महंगा हो जाएगा, लगभग 30,000 का इजाफा हुआ है। और मारुति का इस पर क्या बयान आया है सुनिए। तो बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाने की मजबूरी है, ये बयान मारुति की तरफ से आया है। इस बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में दाम तो बढ़ा दिए गए हैं जो कि आम आदमी पर असर पड़ेगा। वहीं महंगाई बढ़ने से खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ा है, इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाने की मजबूरी है, ये मारुति का बयान आया है जब 30,000 रुपए का इजाफा इसमें हुआ है। इस बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है, इमारती की तरफ से बयान सामने आया है बढ़ती महंगाई को लेकर। इधर महंगाई की आग भड़क रही है तो उधर प्रचंड गर्मी से पूरा उत्तर भारत धधक रहा है। आसमान से बरस रही आग लोगों को झुलसा रही है। यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक तपती गर्मी का कहर जारी है। यूपी के बांदा सहित कई जो शहर है वहां पर पारा 47 डिग्री के पास पहुंच गया है। तो वही झुलसा देने वाली इस गर्मी में पावर डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो ये बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आग की भट्टी बने बांदा में तो गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन 1,000 के ऊपर जा रही है।
1: तकरीबन पूरा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुके बांदा में गर्मी से बेहाल लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। आग की भट्टी की तरह तप रहे बांदा में गर्मी की वजह से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1,000 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा, झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को गर्मी से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक पावर डिमांड 8,231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। SLDC के मुताबिक इस सीजन में बिजली की खपत 9,000 मेगावाट पार जाने का अनुमान है। दिल्ली में पावर डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस बार 76% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा अभी और चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की उम्मीद है, लेकिन इससे गर्मी में झुलस रहे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो गर्मी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कहां पर कितना तापमान है वो आपको समझाते हैं। भीषण गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं और अभी गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी पारा अभी और बढ़ेगा। कहां कितना तापमान है वो आप समझिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 46.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। कानपुर में 44.5, सुल्तानपुर में 45.2, तो वही वाराणसी का हाल भी 45.6 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 45 से ऊपर पारा पहुंच गया है। वही रिज में दिल्ली की बात की जाए, रिज लोधी रोड 43.3 डिग्री सेल्सियस, 44.3 डिग्री सेल्सियस। आयानगर और सफदरजन में भी 40 के पार पारा पहुंच गया है। तो गर्मी काफी बढ़ रही है, पूरे दिल्ली NCR में भी हाल बेहाल है। वहीं हरियाणा की बात करें तो सिरसा में 45.8 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 44.3, गुरुग्राम 42 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 44.2 डिग्री सेल्सियस। तो हरियाणा में भी 40 के ऊपर पारा पहुंच गया है और अभी माना जा रहा है कि 50 भी ये हो सकता है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के पटियाला में 44.9 डिग्री सेल्सियस पारा है, फिरोजपुर में 45.9 डिग्री सेल्सियस, भटिंडा में 45.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में भी 41.5 डिग्री सेल्सियस पारा है। अभी और ज्यादा ये पारा बढ़ने वाला है। राजस्थान का हाल आप समझिए, चित्तौड़गढ़ में 43.8 डिग्री सेल्सियस पारा है, वही फालौदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार ये चुभती गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। परेशान करने वाली खबरों के बीच एक राहत की उम्मीद देने वाली खबर आपको बता दें, भीषण लू और गर्म रातों से झुलस रहे उत्तर भारत की ओर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से बढ़ रहा है। इस मौसमी बदलाव से उन करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो कि पिछले कई हफ्तों से चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली रातों के कारण बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जल्द ही दिल्ली और आसपास के इलाकों को कवर कर सकता है। और अब बात दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के दौरान आईजीआई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी भी लगाई गई थी। सूत्रों की माने तो एयर इंडिया के पायलट ने विमान के इंजन में आग लगने का अलर्ट दिया था, जिसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई है। हालांकि जांच में विमान के इंजन में आग नहीं पाई गई। आपको बता दें कि बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट की कल यानी 21 मई को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, जिसके बाद एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। बात कर लेते हैं भोजशाला की, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से हिंदूवादी संगठनों ने अखंड पूजा का आह्वान किया है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि भोजशाला में ये पूजा 721 साल बाद आयोजित होगी और आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज को लेकर तनाव की आशंका है। लिहाजा हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद भोजशाला और उसके आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 1500 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है, साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है।
2: अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
1: लहजा सख्त है, चेतावनी साफ है। भोजशाला को लेकर किसी भी तरह का तनाव हुआ तो एक्शन भी तगड़ा होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज से धार में अखंड पूजा की तैयारी है। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है, पुलिस बल का मार्च हो रहा है। शुक्रवार को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत सड़कों पर झोंक दी है। एक दिन पहले कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसएसपी सचिन शर्मा की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। खास बात ये थी कि फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल के हाथों में तिरंगा था और डीजे पर भाईचारे के गीत बज रहे थे, यानी संकेत और संदेश साफ है कि भोजशाला को लेकर अदालत के बाद किसी तरह का विवाद स्वीकार नहीं। अगर किसी ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। धार से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो धर्म पर तनातनी बंगाल में भी है, जहां पर बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म हो चुकी है। शुभेंदु सरकार की सख्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय की कुर्बानी ईद का हिस्सा नहीं है।
1: अगले हफ्ते बकरीद है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी तक सियासी गदर मचा हुआ है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका लगाने वालों को झटका दे दिया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 1975 में मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। यानी वो दलील खारिज हो गई जो बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर दी जा रही थी। यहाँ तक कि टीएमसी नेता ने भी इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई।
3: 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: दरअसल शुभेंदु सरकार ने गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश दिया तो भारी हंगामा मचा। अब हाईकोर्ट ने भी गाय की कुर्बानी को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है और सरकार के फैसले को सही ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ एक्शन और धनाधन लेते फैसलों की वजह से सुर्खियों में है। कल रात सीएम शुभेंदु दिल्ली पहुंचे और गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की गई। बंगाल की ताजा स्थिति और अपनी सरकार के कदमों पर भी शुभेंदु ने गृहमंत्री को जानकारी दी है और इस चर्चा में कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा की खबर है, क्योंकि अभी सीएम शुभेंदु के पास 42 विभाग हैं और उनके मंत्रिमंडल में अभी सिर्फ 5 मंत्रियों की ही शपथ हुई है। तो करते एक और बड़ी खबर का, नीट पेपर लीक से जुड़ी, जिसे लेकर कल एजुकेशन कमेटी के सामने एनटीए अधिकारियों की पेशी हुई। परीक्षा को लेकर सवाल हुआ तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जिस पर नए सवालों की जंग छिड़ गई है।
1: एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ, ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। एक दिन पहले संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया, पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी। इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बैठक में पीएम मोदी ने 2047 के विजन, इज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने आज पोस्ट कर कहा है कि कल मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई, हमने जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने से संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया और विकसित भारत के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार करने के तरीकों पर भी चर्चा की है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा से लौटते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार जीत के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में वाणिज्य, पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रियों द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों और उनके प्रभाव का भी आकलन किया गया। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा उन्हें काम में सुधार लाने और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए सुधारों की सूची भी मांगी गई। प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति का आकलन किया और मंत्रियों को युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों जैसे ऊर्जा और कृषि विभागों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जून में मंत्रिमंडल में फिर बदल की अटकलें तेज हैं, ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: वही भोपाल की तुषार शर्मा की मौत के मामले में कानूनी लड़ाई अब और ज्यादा तेज हो गई है। गुरुवार को मामले में दोनों पक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए। एक ओर तुषार के फरार पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की मांग की है, तो वहीं तुषार के परिवार ने उनकी सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। तुषार के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, अब दोनों ही परिवार कोर्ट पहुंच चुके हैं। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत की चुनौती मिली। तुषार के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया है, गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। वहीं समर्थ सिंह अभी भी फरार है और लगातार उसकी तलाश की जा रही। और अब आगाह करने वाली खबर, पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ट्रेनों की आग की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला हावड़ा का था, जहां पर मिथिला एक्सप्रेस में धुआं उठा। हालांकि समय रहते हुए यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हुए एक शख्स कुछ सामान गिराता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है थैले में आग लग जाती है। ये घटना 19 मई की है और हावड़ा में मिथिला एक्सप्रेस की घटना भी 19 मई को हुई थी। खबर खेल जगत से जुड़ी। अब क्रिकेट के सबसे रोमांचक मुकाबले आईपीएल का अपडेट आपको देते हैं। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया है। जी हां, गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 140 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। उनके लिए शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली और इस हार के साथ चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदें अब खत्म हो गई। तो सबसे ऊपर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 अंक पर पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर। वहीं सबसे नीचे लखनऊ सुपर जायंट्स है, 8 अंक नीचे लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल का पॉइंट्स टेबल आप समझिए। तो वही अब आपको दिखाते हैं सुपर 8 में फटाफट न्यूज। पहली खबर न्यूयॉर्क से। यहां पर भारी बारिश के बाद सड़कें डूब गई, गली मोहल्लों में भरा पानी, कई जगहों पर जहां फंसे रहे यात्री। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन वायु अस्त्र का सफल परीक्षण, 10 किलो बारूद के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटी का हमला, भारतीय सेना को मिलेगी मजबूती। तेलंगाना के मेदक में कंटेनर लॉरी में भीषण आग, 10 कारें जलकर खाक, हाईवे पर लगी आग से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के वलसाड में टैंकर पलटा, सड़क पर फैला ज्वलनशील तेल, हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक रुका रहा। सूरत में रेलवे पुलिस ने शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, है एसी कोच में यात्रा करने वाली महिलाओं को बनाता था निशाना, 21 लाख का माल बरामद, कैश भी जब्त। पटना में जमीन विवाद में युवक के अपहरण की कोशिश, एक आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल के बल पर उठाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में चाय स्टॉल संचालक की दबंगों ने पिटाई की नकाबपोश, हमलावरों की हरकत सीसीटीवी में कैद। वहीं गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ कोर्स में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत, बच्चों की उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है। रुक करते एक बड़ी खबर का, आपको बता दें कि जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री 2 दिन से तेहरान में है और अब पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आसिम मुनीर ट्रंप की फाइनल शर्तों के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान पर इस बार जो हमला होगा वो ऐतिहासिक होगा। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज पर टोल वसूली को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान आसिम मुनीर अब पहुंच गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी ईरान को साफ तौर पर दे दी है, कुछ दिन का अल्टीमेटम और ईरान में कुछ बहुत बड़ा ट्रंप करने वाले हैं। और इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
10: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
11: विक्रम, एक हिंट तो देते।
12: विक्रम!
11: हिंट
12: बड़े आराम से
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
11: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
12: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
15: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
16: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
14: मतलब
16: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
14: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
16: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB मेरा अपना बैंक।
17: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
18: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
17: आप कैसे कर लेते हो?
18: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
19: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
20: Character, the taste of success.
21: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
22: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
23: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
10: फ्रेंड्स, इंडिया एंड द US शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्टनरशिप। We are both friends, we are both consequential and important trading partners. We have a strategic partnership on critical minerals. We are working together on new technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning. We have finalized an interim phase one of a bilateral trade agreement with which India will get preferential access compared to our competitors to the large, nearly $30 trillion US market. The visit of Mr. Marco Rubio, the US Secretary of State, is extremely timely. Aap kalpana kariye, 6 lakh crore ke kareeb nivesh hal mein, pichle kuch mahinon mein, data centers mein, nayi factories mein, semiconductor plants mein, अलग अलग चीजों में भारत में यूनाइटेड स्टेट्स अकेले ने घोषित किया। यह है भारत का आज आकर्षण। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।
11: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: गौशाला में आज हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, अखंड पूजा का आयोजन, प्रशासन अलर्ट मोड पर, परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहला शुक्रवार, हाईकोर्ट ने परिसर को मां वाग्देवी का मंदिर माना, हिंदू संगठनों में उत्साह। भोजशाला फैसले के बाद बड़ी हलचल, परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शुक्रवार को अखंड पूजा कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। भोजशाला मामलों में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष के काजी ने हाईकोर्ट के नमाज रोकने वाले फैसले को चुनौती दी। पीएम मोदी की 4.5 घंटे मैराथन बैठक, मंत्रियों को दिया गया रिफॉर्म एजेंडा, मंत्रिपरिषद बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन और योजनाओं की हुई समीक्षा। पीएम मोदी, विकसित भारत 2047 सिर्फ नारा नहीं, हमारी प्रतिबद्धता। पीएम ने मंत्रालय से तेज डिलीवरी और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। पीएम मोदी ने की मंत्रालय के कामकाज की मिड टर्म समीक्षा, कॉमर्स, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय समेत कई विभागों की प्रगति पर चर्चा। वेस्ट एशिया संकट पर केंद्र सरकार अलर्ट, पीएम मोदी ने दिए दिशा निर्देश, ऊर्जा, कृषि, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर खास फोकस रखा गया। पीएम मोदी बोले, 2047 के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करें, मंत्रिपरिषद बैठक में पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और बड़े रिफॉर्म्स पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत दौरे पर, दौरे में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मार्को रूबियो भारत का ऊर्जा निर्यात बढ़ाना चाहता है अमेरिका। भारत दौरे से पहले रूबियो ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को अहम बताया। रूबियो ने भारत दौरे से पहले अमेरिका ने दिए बड़े संकेत, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में नई साझेदारी पर हो सकती है चर्चा। ट्रंप का बयान, कहा होर्मूज पर टोल मुझे पसंद नहीं। ट्रंप के बयान से खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक हलचल तेज हुई। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर 22 मई को तेहरान जा सकते हैं। ईरान दौरे के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत संभव। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट निचली अदालत के जमानत से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती पर सुनवाई करेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली की अदालत आज आरोप तय करने पर अहम फैसला सुना सकती है। हावड़ा स्टेशन पर संदिग्ध पैकेट में लगी आग, जांच तेज हुई। मिथिला एक्सप्रेस घटना से पहले सीसीटीवी में दिखे युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मिथिला एक्सप्रेस घटना से पहले संदिग्ध युवक कैमरे में कैद, हावड़ा स्टेशन मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच एजेंसी अलर्ट पर। बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में कलाकारों पर एफआईआर की मांग, परमव्रता चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की टिप्पणी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर। तुषार शर्मा डेथ केस में हाईकोर्ट पहुंची दोनों फैमिली, फरार पति पर लुकआउट नोटिस जारी। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तलाश में जुटी। पूर्व मिस पुणे तुषार शर्मा की मौत पर कानूनी जंग तेज, फरार पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी। शादी के वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय, तुषार और समर्थ की शादी का वीडियो वायरल हुआ। मौत के बाद रिश्ते पर उठे नए सवाल। तुषार डेथ मिस्ट्री में बढ़े सवाल, सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग जांच के घेरे में। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, अंतिम संस्कार से इनकार कर एम्स मोर्चरी में रखा गया शव। तुषार केस में आरोप प्रत्यारोप तेज, ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही। मायके वालों ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। बंगाल में बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी पर रोक जारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए रोक बरकरार रखी। बंगाल में कुर्बानी पर सियासत तेज, हुमायूं कबीर बोले कुर्बानी जारी रहेगी। एजेयूपी प्रमुख ने कहा कि 1400 साल पुरानी परंपरा में सरकार दखल नहीं दे सकती। अरशद मदनी ने लिया अलग रुख, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। एआईएमपीएलबी उपाध्यक्ष बोले धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो, स्थायी समाधान निकले। बकरीद से पहले बंगाल सरकार के फैसले पर मुस्लिम संगठनों का विरोध। जमीयत उलेमाए हिंद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को असंवैधानिक बताया। कुर्बानी पर रोक लेकिन स्लॉटर हाउस पर नहीं, फुरफुरा शरीफ के मौलाना का सवाल। तोहा सिद्दीकी ने कहा कि कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो यूनियंस की 3 दिन की हड़ताल। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से ड्राइवर यूनियंस ने किराया बढ़ाने की मांग की। इंदौर में नगर निगम का अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क चौड़ीकरण के लिए कई निर्माण किए गए ध्वस्त। प्रयागराज के अस्पताल में अधिवक्ता और डॉक्टर्स के बीच झड़प के बाद तनाव। सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा। कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। सोने और चांदी की कीमत में फिर से बढ़ोतरी। 600 रूपये बढ़कर 1,65,500 रूपये पर गोल्ड पहुंचा। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रूपये बढ़कर 2,71,000 रूपये पर पहुंची। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से ज्यादा अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। उत्तराखंड के द्वितीय केदारधाम पर महादेव के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, धूमधाम से खुले बाबा मध्य महेश्वर दिख बाबा के कपाट। चमोली में हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारी पूरी, 23 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काट कर रास्ता साफ किया, गुरुद्वारे के आसपास से ही हटाई गई बर्फ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 24 मई तक जारी किया गंभीर हीटवेव का अलर्ट, दिन में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट, पंजाब यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार में लोगों को गर्मी से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रचंड गर्मी से लगातार बढ़ रहा है तापमान, मौसम विभाग ने जारी की हीट स्ट्रोक की चेतावनी। जयपुर में हीटवेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान, प्रशासन अलर्ट मोड में। यूपी के बांदा में पांचवें दिन 48 डिग्री रहा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरत। यूपी में भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे रहे तैयार। सीएम योगी ने सभी जिले के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, नागपुर में 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 47 डिग्री पर पहुंचा। अमरावती में 46.4 डिग्री, चंद्रपुर में 46.2 डिग्री रिकॉर्ड, गढ़चिरौली में 45.6 डिग्री और अकोला और यवतमाल में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अधिक पानी पीने और बिना वजह घर से बाहर निकलने की अपील। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ की गला घोटकर हत्या, आरोपियों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश, फरार आरोपी धर्म परिवर्तन पर बना रहा था दबाव। राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई, एक युवक ने मौके पर दम तोड़ा, दूसरे की इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के बगहा में एएनएम कॉलेज छात्रावास में खराब भोजन और पेयजल संकट को लेकर जमकर हंगामा किया, जीविका समूह के इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने जीविका समूह की इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाया, आंदोलन के दौरान कुछ छात्राएं हुई बेहोश। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स तालाब में 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौके पर मौत हुई, रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। झारखंड के पाकुड़ में शराबी पति बना हैवान, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या, पत्नी के शव को पास में ही निर्माणाधीन घर में दफनाया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीच सड़क पर फायरिंग, गोलीबारी में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर रूप से घायल, पुरानी गैंगवार के चलते फायरिंग की आशंका। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम का अभियान लगातार दूसरे दिन जारी, कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों की निगम की टीम के साथ तीखी नोकझोंक। लखनऊ में डॉक्टर्स ने 12वीं की छात्रा के साथ की दरिंदगी, हॉस्पिटल के ओटी में इंजेक्शन देकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। बिहार के वैशाली में दहेज के लिए नवविवाहित की हत्या, बुलेट बाइक नहीं मिलने पर पीट पीट कर और जहर देकर मारने का आरोप। नासिक में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला जुर्म। दानापुर रेलवे स्टेशन से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक बुजुर्ग को पैरों में बेड़ियों और तालों के साथ देखा गया, बेटों ने मानसिक बीमारी का कारण लगाया था। बिहार के सासाराम में वार्ड परिषद का पूजा सामग्री की आड़ में शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद किया भारी मात्रा में शराब। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अर्के नागरिक अस्पताल में एक महिला की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही के गंभीर आरोप। बिहार के बेगूसराय में नशा करने से मना करने पर एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार में मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत के स्टूडेंट का हंगामा, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति की लालच में भाई ने भाई की हत्या की, घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को किया गिरफ्तार। मधुबनी में लोको पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, ट्रेन का रेलवे ट्रैक पर बाइक फंसने से मची अफरा तफरी। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेन में चोरी करने वाला छात्र चोर गिरफ्तार, एसी कोच में सफर करने वाली महिला यात्रियों को बनाता था निशाना। गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार को भी जब्त। भागलपुर से लापता 5 बेटियां पटना जंक्शन से सकुशल बरामद हुई, बच्चियों ने खुलासा किया कि 1 साल से घूमने का प्लानिंग कर रही। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान, भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार। एमपी के सतना में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का प्रयास, पुलिस की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। तेलंगाना के मेरठ में नई मारुति कार को ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी, 10 नई कार जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार। स्पोर्ट्स ड्रामा पेटी का दमदार ट्रेलर आउट, रामचरण, जानवी कपूर, देवेंद्र शर्मा समेत कई कलाकार आएंगे नजर। ओटीटी पर दिखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का, फिल्म मां बहन के स्टार कास्ट का पोस्टर रिलीज, रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा के किरदार आए हैं सामने। आज मां बहन का ट्रेलर होगा आउट, दिखेगा धक धक गर्ल का नया अंदाज, फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार, मुन्ना भैया की वापसी की मांग अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा

राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

लोग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा लेकिन आज जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: इन एसोसिएशन विद
7: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
8: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
9: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेर आर यू?
10: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
11: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
12: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही।
11: आप कैसे कर लेते हो?
13: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
13: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
12: नहीं और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
1: सरकार बनी तो शुभेंदु अधिकारी किस राह पर जाएंगे, इसका ट्रेलर खुद शुभेंदु ने उसी दिन दिखा दिया था जब वो भवानीपुर में ममता के मुकाबले खड़े हुए और खुलकर कहा कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया। भवानीपुर में शुभेंदु ने चंद झलकियां दिखाई थी, अब वो पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं। शुभेंदु की इस नई पिक्चर में कई सीन ऐसे हैं जो भविष्य के बंगाल का चेहरा दिखा रहे हैं। सीन नंबर एक, बंगाल में लाउड स्पीकर से अजान बंद।
0: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है।
1: सीन नंबर दो, बंगाल में इमाम मुअज्जिन का भत्ता बंद।
0: सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भत्ता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिन को भत्ता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भत्ता बंद कर दिया।
1: सीन नंबर तीन, बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम डिलीट तो डिपोर्ट।
0: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
1: इस नई पिक्चर में शुभेंदु सरकार के कुछ ताजा फैसलों पर भी गौर कीजिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इस नई पिक्चर को देखने के बाद फुरफुरा शरीफ दरगाह ने मुसलमानों से अपील की है इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें।
2: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না, অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
1: বঙ্গাল মে আব জো কুছ ভি হো রাহা হ্যায় উসকে বাদ ইসমে কোই দো রায় নাহি বচতি কি বিজেপি কি কাহাঁ নিগাহে হ্যায় অর কাহাঁ নিশানা হ্যায়। অনুপম মিশ্র, কলকাতা, আজ তক।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अखंड पूजा का क्या है 721 साल पुराना कनेक्शन? बोध समिति क्यों कह रही है कि 721 साल बाद ये शुक्रवार आया है? आज की लीड स्टोरी यही। क्या से क्या हो गया, त्विशा शर्मा मौत मामले में कानूनी जंग के बीच सामने आया त्विशा की शादी का वीडियो, दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। सूरज ने बरसाए अंगारे, जल उठी है धरती, आपके शहर में क्या है तापमान, ये खबर भी आज के बुलेटिन में शामिल होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार भोजशाला की, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज हिंदूवादी संगठनों ने अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन रखा है। और भोज उत्सव समिति का दावा है कि भोजशाला में पूजा 721 साल बाद आयोजित की जा रही है। आज शुक्रवार का दिन है, चूंकि कोर्ट के फैसले से पहले यहां जुमे की नमाज की मंजूरी थी, ऐसी आशंका है कि जुमे पर असामाजिक तत्व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करें। एहतियातन भोजशाला और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 1,500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर कि कोई गड़बड़ी यहां ना हो।
1: पंद्रह मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला आया और भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा के आगे हिंदू समाज के लोगों ने पूजा और भजन शुरू कर दिया। वाग्देवी की इस भक्ति के बीच आज आया है शुक्रवार यानी जुम्मा। कोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है, लिहाजा भक्ति के साथ तनाव भी इसमें शामिल हो गया है। तस्वीरें देखिए, पुलिस और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। लोगों को सख्त चेतावनी दी गई कि वो कानून का पालन करें।
2: तो आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ, अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था, अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
1: लहजा सख्त है, चेतावनी साफ है, भोजशाला को लेकर किसी भी तरह का तनाव हुआ तो एक्शन भी तगड़ा होगा। दरअसल धार में तनाव की ये स्थिति पैदा हुई है भोजशाला में सामूहिक अखंड पूजा और महाआरती के ऐलान से। भोज उत्सव समिति का कहना है कि 721 साल बाद भोजशाला में ये शुक्रवार आया है।
3: शुक्रवार के दिन हिंदू समाज ने डंडे खाए हैं, जब भी बसंत पंचमी है शुक्रवार के दिन संघर्ष हुआ है और इसलिए ये शुक्रवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार न्याय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि 365 दिन हम पूजा अर्चना करेंगे, इसलिए शुक्रवार के दिन हमने चुना है कि ये शुक्रवार हमारा स्वाभिमान का है। 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार आ रहा है, इसलिए हमको पूजा अर्चना करना है।
1: भोज उत्सव समिति के मुताबिक हिंदू समाज के लोग आज दोपहर 12 बजे धान मंडी में एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस की शक्ल में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला पहुंचकर 1 बजे महाआरती करेंगे। भोज उत्सव समिति इसे स्वाभिमान का शुक्रवार बता रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को अपने फैसले में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से पहले हिंदू समुदाय को सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति थी, मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को यहां नमाज पढ़ते थे। अदालत के फैसले के बाद सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या मुस्लिम समाज के लोग आज भी यहां नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे।
4: मस्जिद रही है और मस्जिद रहेगी और वापस से जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसको चैलेंज करते हुए बदलने की कोशिश करें। मुस्लिम समाज को पढ़ना है अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में और अपने घरों पर, अपने निजी स्थानों पर वो बेखुद पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कोर्ट ने हमें मनाही की है, अगर कोर्ट ने कोई नियम बनाए हैं तो उसका पालन हमें करना पड़ेगा और कर रहे हैं, और आगे भी हम वही नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हम हमेशा से संविधान को दायरे में रख करके काम करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है।
1: सौहार्द कायम रखने के लिए ऐसी ही समझदारी जरूरी है, लेकिन किसी ने जानबूझकर नासमझी दिखाई तो तस्वीर आपके सामने है। पुलिस और प्रशासन इससे निपटने को पूरी तरह तैयार है। छोटू शास्त्री के साथ रवीश पाल सिंह, धार आज तक।

0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, जिस तरह की तैयारी है पुलिस और प्रशासन की, 1,500 से ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, ऐसा लग रहा है कि इस बात की आशंका है कि वहां कोई गड़बड़ी हो सकती है। बेहद संवेदनशील ये मामला है, पहली बार वहां पर पूजा अर्चना इतने साल बाद की जाएगी।
1: बिल्कुल नेहा, आशंका है, पुलिस को अलर्ट भी इसलिए रखा गया है, लेकिन इन सब के बीच आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, वो तस्वीर जो 750 साल, करीब 721 साल के बाद देखने को मिलेगी। शुक्रवार के दिन गर्भगृह में मां सरस्वती का पूजन, ये मौका 721 सालों के बाद आया है और ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आरती की शुरुआत हो चुकी है और ये गर्भगृह है, वही गर्भगृह जहां पे एक जमाने में मां सरस्वती की प्रतिमा होती थी, जो फिलहाल लंदन में है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से तस्वीर सामने रख करके आज इसी को गर्भगृह मान करके यहां पे पूजा शुरू हुई है। और शुक्रवार को 721 सालों के बाद पहली बार ये मौका आया है जब इस गर्भगृह में मां सरस्वती स्थापित हुई है और उनका पूजन हो रहा है, और इसलिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हो जाती है। पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है, मां सरस्वती को पीले वस्त्र, पीला फूल, अक्षत पीले, ये तमाम सामग्री जो है वो यहाँ पे समर्पित की गई, और उसके साथ ही शुरुआत हो गई है उस सूखे को खत्म करने की जो यहाँ पे 721 सालों से बना हुआ था। हिंदू पक्ष के मुताबिक पूजा नहीं कर पाते थे वो लोग यहाँ पे शुक्रवार को, लेकिन अब वो तस्वीरें नहीं है तो हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण आप लोगों
2: का दिन? हिंदू समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 52 वर्षों का जो 1952 से जो हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था, आज हमको कोर्ट द्वारा यहाँ पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण पूजा का अधिकार मिला है। सारे हिंदू समाज यहाँ पर पूजन के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक ही हमारा हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है और गर्व का दिन है।
1: और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं, क्योंकि तो उनसे बताइए कि आज तो क्या आप लोग सोच के आए थे आज के लिए?
3: आज हम लोग बस यही सोच के आए थे कि माता रानी के अच्छे से दर्शन करेंगे, और दर्शन तो हम लोग हमेशा हर बार की तरह हमेशा आते थे, वैसे ही दर्शन हो रहे, लेकिन आज बिल्कुल कहते ना कि बिल्कुल एक्साइटमेंट ऐसा वाला है कि भैया हमारे हक में मंदिर आया है, अब हम हर दिन जा सकते हैं, चाहे शुक्रवार हो चाहे कोई और अनिवार्य हो, हम अपने मंदिर हक से दर्शन करने आ सकते हैं। और धीरे धीरे देखिएगा आप हमारी पूरी धार, धीरे धीरे हमारा पूरा हिंदू समाज दर्शन करने आएगा और हर दिन दर्शन करने आएगा, क्योंकि अब हमारा मंदिर है, हमारा सब कुछ है। थैंक यू।
1: आप देखिए कि आप जो आप बात कर रही थी, और ये देखिए ये सुबह से लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे पूजन करने के लिए, शीश नवाने के लिए माँ सरस्वती के चरणों में, तो ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको आज तक दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ जो बात आपने यहाँ कर रही थी कि कितना संवेदनशील ये मामला है, देखिए मामला संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है इसमें, लेकिन ये जो इलाका है ये बेहद ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पे पुलिस ने भी बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था की है। 1,500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ साथ हम आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ अगर आप देखें तो मेटल डिटेक्टर के साथ भी पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद है, और वो लगातार चप्पे चप्पे पर जाकर के इस भोजशाला में जो यहाँ पे किसी भी तरीके की अप्रिय वस्तु हो सकती है उसकी जाँच की जा रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं कि कैसे प्रशासन के सामने ये एक बड़ी चुनौती होता है जब जब शुक्रवार आता है और भोजशाला का नाम जुड़ जाता है शुक्रवार के साथ, तो फिर धार प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत संवेदनशील मौका बन जाता है। और इसलिए अगर आप देखें तो एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए शुक्रवार को, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी सुबह से यहां पर मुस्तैद है, अपनी तैयारी कर रहा है, डॉग स्क्वाड के जरिए, मेटल डिटेक्टर के जरिए भोजशाला परिसर के चप्पे चप्पे को फिलहाल खंगाला जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको आज तक पे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही वो भोजशाला भी जो 104 खंभों पे टिकी हुई, वो भोजशाला जो पिछले शुक्रवार तक जहां पे जुमे की नमाज होती थी उसी भोजशाला में इस शुक्रवार को अब मां सरस्वती का पूजन हो रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच भोजशाला में प्रवेश को लेकर ASI के टिकट पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल भोजशाला में प्रवेश के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब 1 रुपए का प्रवेश टिकट ले रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मंदिर घोषित करने के बाद भी टिकट लेने पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही टिकट पर छपे नाम भोजशाला / कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी हिंदू समाज को आपत्ति है। हालांकि विरोध में टिकट के नाम से कमाल मौला मस्जिद शब्द को पेन से काटकर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले के कांडी शहर में शांतनु सिन्हा विश्वास के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का छापा पड़ा है। शांतनु सिन्हा कोलकाता के कालीघाट थाने के पूर्व इंस्पेक्टर इंचार्ज और डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। फिलहाल जमीन से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ईडी की हिरासत में है। शांतनु सिन्हा विश्वास का कांडी में एक आलिशान घर है। उनका पुश्तैनी घर कांडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में स्थित है। हालांकि पिछले 7 दिन में यह घर बंद पड़ा हुआ है। चूंकि घर बंद था इसलिए ईडी के अधिकारियों ने घर के बाहर से अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लोगों से बातचीत की, इसके बाद ताला तोड़कर घर में दाखिल हो गए। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, किस तरीके से सुबह से ईडी की कार्रवाई इनके घर पर चल रही है, क्योंकि अब बात ताला तोड़ने तक आई है, घर बंद था क्योंकि?
4: बिल्कुल, शांतनु सिन्हा विश्वास कोलकाता पुलिस के टॉप कॉप माने जाते हैं और तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप खासकर पूर्वी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास माने जाते थे, जो उनके घर के क्षेत्र है कालीघाट पुलिस स्टेशन, उसके ओसी रहा करते थे बहुत दिनों के लिए। कुछ दिन पहले ईडी ने उनको हिरासत में लिया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने की आरोप इस वक्त लगाई गई है और एक सिंडिकेट चलाने की आरोप भी उनके खिलाफ है, और इसी को लेके छानबीन इस वक्त ईडी कर रही है। उनके घर पे इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपने जैसे विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद के कांदी में उनका एक आलिशान घर है जहां पे आज ईडी की टीम पहुंच गई है और फिर ताला तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश ईडी की टीम ने की है, और वहां से किस तरह के दस्तावेज मिलते हैं ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शांतनु सिन्हा विश्वास के साथ साथ सोना पप्पू करके एक तृणमूल का स्ट्रॉन्ग मैन है, जिनका तृणमूल के साथ लिंक है ये कहा जाता है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनकी भी अरेस्ट हुई है, बिजनेसमैन। और कोलकाता में भी छापेमारी चल रही है, एक पुलिस ऑफिसर के घर में छापेमारी हो रही है, एक बिजनेसमैन के घर में छापेमारी हो रही है। तो कुल मिला के ये जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश में अभी लगी हुई है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 की विजन, ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट कर कहा, कल मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई, हमने जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया और विकसित भारत के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार करने के तरीकों पर चर्चा की है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, 4.5 घंटे ये बैठक चली है, रिपोर्ट कार्ड तमाम मंत्रियों का लिया गया है, किस तरह की गतिविधियां कल इस मीटिंग में हुई, क्या कुछ ठोस निकलकर सामने आया या फिर से एक विजन की बात हुई है?
5: देखिए, बिल्कुल विजन की तो बात हुई है, 2047 में कैसे भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाया जाए, रिफॉर्म्स पर कैसे जोर दिया जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि फाइलों को जल्द से जल्द जो है उनका निपटारा करना चाहिए, और ऐसे 5 मंत्रालयों के भी नाम बताएं जो जल्दी से जल्दी अपनी सारी फाइलों को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ये भी कह दिया कि काम को जो है किसी भी फाइल को लंबित ना रखा जाए। 10 मंत्रालयों की जो है रिप्रेजेंटेशन हुई है, माफ कीजिएगा, प्रेजेंटेशन हुई है, जिसके अंदर जो है वित्त मंत्री मंत्रालय है, कॉमर्स मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, ये तमाम जो मंत्रालय हैं इनकी जो है प्रेजेंटेशन दी गई, किस तरीके से वहां काम किया गया है, किस तरीके से आगे क्या रोड मैप जो है वो तैयार किया गया, जिनमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, एटॉमिक एनर्जी भी है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 2 साल के अंदर उनकी क्या अचीवमेंट रही है, किन पॉलिसीज और किन परियोजनाओं को लेकर वो आगे बढ़े हैं। और एक चीज को देखना होगा, क्योंकि जो है नीति आयोग और कैबिनेट सचिव की तरफ से भी जो है प्रेजेंटेशन दी गई थी कि किस तरीके से जो है मंत्रालय के कामकाज और परियोजनाओं को जो है वो जमीन पर लाया जा सकता है। तो ये 4.5 घंटे का एक बड़ा मैराथन बैठक रही, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि रिफॉर्म करिए, 2047 को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है इस पर ध्यान दीजिए, फाइलों को जल्द से जल्द अपनी टेबल से जो है क्लियर कीजिए और किसी भी फाइल को लंबित ना रखिए, जिससे जो है किसी काम के अंदर जो है वो लंबा समय लग सके।
0: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बात नीट पेपर लीक मामले की करेंगे, जिसे लेकर कल एजुकेशन कमेटी के सामने एनटीए अधिकारियों की पेशी हुई। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ है, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ है। एनटीए चीफ ने कहा कि नीट पेपर एनटीए से लीक नहीं हुआ है, कहीं और से लीक हुआ है। सीबीआई जब कहेगी तभी मानेंगे पेपर लीक।

0: एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ, ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। एक दिन पहले संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया, पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी।
1: जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी, और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाए।
0: इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये बात तो सर्वव्यापी है कि एनटीए के किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत के बिना ये पेपर लीक संभव नहीं था। अब एनटीए के चीफ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि सीबीआई उन्हें साक्ष्य के साथ ये बताए कि जी हाँ, आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एनटीए के कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, एनटीए को पेपर लीक के बारे में जानकारी थी, क्या चाह रहे हैं? उसके बाद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो।
3: देखिए बिल्कुल, क्योंकि एनटीए के चीफ ने कल एजुकेशन कमेटी के सामने जिस तरीके से अपने वक्तव्य को रखा, उन्होंने कहा कि जो नीट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, उनके एंड से नहीं हुआ। तो जिस एंड यानी जो मैकेनिज्म वो देखते हैं, जो उनके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिस पूरे पेपर को देख रही है या उसके कुछ पार्ट में, उनका ये भी कहना हो सकता है जिस पार्ट के अंडर उनकी एजेंसी देखती है वो उनके यहां से नहीं हुआ, उनके एंड से नहीं हुआ। तो कहां से हुआ है ये सीबीआई की जांच का विषय है और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इतना जरूर है पेपर लीक हुआ है और इसीलिए पेपर को जो है वो पोस्टपोन भी किया गया और 21 जून को पेपर रखा गया। लेकिन अब सवाल ये है कि सीबीआई की जांच में क्या निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने राजस्थान से महाराष्ट्र तक के अंदर जो है छापेमारी की और लगातार पता लगाने की ये कोशिश की कि ये कौन सा एक गिरोह काम कर रहा था जो नीट पेपर एग्जाम लीक करा रहा था, और इस तरीके की घटना ये पहली बार नहीं हुई। पिछली बार भी 4 या 5 सेंटर्स पे जो है इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, तब नीट का पेपर जो है वो कैंसिल नहीं किया गया था। इस बार जो है जिस तरीके से व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पर ये पेपर्स मिले उसके बाद तो ये साफ जाहिर हो गया कि पेपर लीक हुआ, लेकिन कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इसका इंक्वायरी और जो है वो सीबीआई कर रही है। एनटीए के जो डीजी है आलोक सिंह, उनका ये कहना है कि या पेपर लीक जो है उनके एंड से नहीं हुआ, तो उनके एंड से नहीं हुआ तो किसका हुआ है और किसकी जिम्मेदारी है कि पेपर लीक जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एनटीए लेगा, एजुकेशन सेक्रेटरी लेंगे या किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कल एनटीए के जो डीजी आलोक सिंह उन्होंने।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की कुर्बानी को लेकर, एक गाइडलाइन जारी की है और कुर्बानी पर रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दरअसल शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोग कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे, मांग की गई थी गाय भैंस की कुर्बानी की इजाजत दे दी जाए। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। तो कुर्बानी के नियमों में नहीं मिलेगी छूट, तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई थी वो खारिज कर दी गई हैं। शुभेंदु सरकार की सख्ती जारी रहेगी, हाईकोर्ट का ये अहम फैसला जिसमें गाइडलाइंस में आया है कि गायों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। हुमायूं कबीर ने इस बारे में कल क्या कुछ कहा था, सुनिए।
4: 1500 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
5: मुस्लिम समाज की तरफ से इस प्रकार आह्वान आना चाहिए, गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहां से आई वहां तो गाय है ही नहीं, जानबूझकर के हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहां गो हत्या होता था। 80 करोड़ जनता, 100 करोड़ हिंदू समाज अगर बिना गौ हत्या की जी सकती आराम से, बाकी लोग भी कर सकते हैं। जो संख्यागुरु समाज है उनकी भावनाओं को देखते हुए और कानून को मानते हुए अपना त्यौहार को मनाना चाहिए, इसमें सबकी भलाई है, खुद मिलजुल करके खुशी से मनाएं सब।
2: और अब बात त्रिशा शर्मा मौत मामले की, जिसमें अब कानूनी लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। गुरुवार को मामले में दोनों पक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए। एक और त्रिशा के फरार पति समर सिंह ने अग्रिम जमानत की मांग कर दी है। वहीं त्रिशा के परिवार ने उनकी सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। वहीं इस बीच त्रिशा की शादी का एक वीडियो सामने आया।
0: ज्यादा दिन नहीं बीते, 5 महीने पहले की ही बात है, लाल लहंगे में कितनी खुश नजर आ रही है त्रिशा। त्रिशा और समर्थ की जोड़ी तस्वीरों में बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है।
6: She came across समर्थ जीजू's profile and बोले भाई ये बंदा बहुत सही है यार, देख he's well spoken and photos videos ये सब देखे थे।
0: आमतौर पर शादी को लेकर दुल्हा दुल्हन और घर परिवार में जो उत्साह होता है वो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में।
7: पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं।
0: दूल्हा दुल्हन की खुशी, परिवार वालों की मस्ती, सब कुछ है इस शादी के वीडियो में। त्रिशा के परिवार के आरोपों के बाद विवादों में घिरी त्रिशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला भी वीडियो में नजर आ रही है। लेकिन शादी के 5 महीने के बाद ही त्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और त्रिशा को धूम धूम से ब्याह कर लाने वाला समर्थ गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, उस पर इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 की जा चुकी है, लेकिन अब तक समर्थ तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस बीच त्रिशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब आज या फिर सोमवार को अर्जी पर सुनवाई हो सकती है।
8: जो पति हैं समर्थ सिंह, उनकी ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था भोपाल न्यायालय के समक्ष, परंतु उनका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है 18 मई 2026 को। उससे व्यथित होकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पति समर्थ सिंह की ओर से प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई 22 मई अथवा सोमवार 25 मई को संभावित।
0: दरअसल 12 मई को भोपाल के कटरा हिल्स स्थित समर्थ के इसी घर की छत पर फंदे से लटका त्रिशा का शव मिला था। ससुराल पक्ष के मुताबिक त्रिशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसने खुदकुशी की थी, जबकि त्रिशा के परिवार वाले इसे दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं। समर्थ सिंह पर त्रिशा शर्मा को प्रताड़ित करने का आरोप है। इस बीच त्रिशा के परिवार ने सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। दो तस्वीरें देखिए, 5 महीने में क्या से क्या हो गया, एक तरफ शादी की खुशियां और दूसरी तरफ इंसाफ के लिए आंदोलन। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: और अब आपको आगाह करने वाली खबर दिखाते हैं, क्या ट्रेनों में आग की घटनाएं हादसा होती है या फिर साजिश, क्योंकि पिछले कुछ दिन में एक के बाद एक ट्रेन में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और सबसे नई घटना हावड़ा की है, जहां मिथिला एक्सप्रेस में धुआं उठा, हालांकि समय रहते यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हुए एक शख्स कुछ सामान गिराता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है थैले में आग लग जाती है। ये घटना 19 मई की है और हावड़ा में मिथिला एक्सप्रेस की घटना भी 19 मई को ही हुई थी।
9: बिफोर 1 आवर ऑफ दैट इंसिडेंट, एक घंटे के पहले उसी सस्पेक्ट ने इस तरीके से व्यवहार किया है, जिसमें वो एक प्लास्टिक कवर को कैब रूट का बगल में रखे हैं और कुछ समय के बाद उसमें छोटा सा आग लग जाती है। और जब उसको ट्रैक कर रहे थे तो वो एक 30-40 मीटर दूर चले जाता है, उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है क्या हो रहा करके। तो उसी सस्पेक्ट के पीछे हम पड़े हैं, वी आर वर्किंग ऑन आइडेंटिफाइंग हिम।
2: वहीं पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद साजिश की आशंका गहरा गई है। 17 मई को रतलाम में निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी में आग लगी, वहीं 18 मई को बिहार के सासाराम में पटना पैसेंजर में आग लगने की घटना हुई, 19 मई को हावड़ा में मिथिला एक्सप्रेस में धुआं उठा और 19 मई को ही हावड़ा में ही ये संदिग्ध दिखा। क्या आगजनी की घटनाओं के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? रेलवे अब इसकी जांच कर रहा है। वहीं ट्रेनों में आग की घटनाओं के बाद रेल मंत्रालय सतर्क है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की, जिसके बाद रेलवे ने यात्रियों से कहा कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत रेलवे को सूचना दें। सतर्क रहें, अराजक तत्वों पर नजर रखें, खुफिया इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें दबोचा जाएगा।

0: और अब बात मौसम में लगी आग की करेंगे, क्योंकि प्रचंड गर्मी से पूरा उत्तर भारत इस वक्त धधक रहा है। आसमान से बरस रही आग लोगों को झुलसा रही है। यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक तपती गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के बांदा सहित कई शहरों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। झुलसा देने वाली इस गर्मी से हर कोई परेशान है। तो हम आपको टेम्परेचर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों का। सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है बांदा का 47.6 डिग्री, वाराणसी का 45.6, यहां दिल्ली की अगर बात करें आया नगर 44.5, सफदरजंग 43, वहीं रिज एरिया 43। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात कर लें तो रोहतक और सिरसा का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 45 डिग्री के आसपास। अंबाला और हिसार लगभग 44 डिग्री पर और गुरुग्राम 42 डिग्री पर है। वहीं पंजाब में फिरोजपुर 45 डिग्री, भटिंडा लगभग 45 डिग्री, पटियाला 44.9 और अमृतसर 41.5 डिग्री पर है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये गर्मी कब तक परेशान करने वाली है? आरएनडी क्या कह रहा है?
1: नेहा देखिए, अगर आप दिल्ली और एनसीआर के इलाके में रह रहे हैं तो अगले 4 दिन बहुत सचेत होकर चलना है। इस बात को स्पष्ट कर दिया आईएमडी के एडवाइजरी ने। अगर आप 7 दिनों का आंकड़ा देखेंगे आज से लेकर अगले 7 दिन तक, तो हीट वेव कंडीशंस तो है ही, लेकिन जब मैं 4 दिन कह रहा हूं उसमें सचेत रहने की जरूरत, इसलिए पारा 44-46 डिग्री तक रहने की संभावना जताई जा रही है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान भी 30-32 डिग्री के आसपास है। तो रात में भी आपको राहत मिलने वाली नहीं है। और सबसे ज्यादा सचेत होने वाली बात यह है कि अगले 4 दिन तक दिन में बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, लगभग 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तो जब पारा 44 के पार होगा और हवा 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो लू के थपेड़े आपको लग सकते हैं। इस वजह से पानी पीते रहें, कॉटन के कपड़े पहने और संभव हो तो धूप से बचे, यथासंभव जिसके लिए भी संभव हो। नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

अखंड पूजा और महाआरती जुलूस की तैयारी, पुलिस ने किया भारी सुरक्षा इंतजाम, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट पर दी चुनौती। बंगाल में बकरीद पर नहीं होगी गाय की कुर्बानी, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने की खारिज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। पीएम के सामने मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, पेट्रोलियम वाणिज्य वित्त मंत्रालय के काम की समीक्षा, पीएम मोदी का पोस्ट, कहा बैठक में विकसित भारत के विजन पर चर्चा हुई। आम आदमी को महंगाई की नई किश्त का करंट, राजस्थान में सरस दूध और बिहार में सुधा डेयरी, 2 रुपए महंगा दही पनीर के दाम में इजाफा, मारुति कार भी 30,000 रुपए तक महंगी। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप का सख्त रुख, बोले हमें नहीं चाहिए होर्मुज़ पर टोल, लेकिन ईरान को नहीं रखने देंगे यूरेनियम, सुप्रीम लीडर का बयान, देश में ही रहेगा यूरेनियम।

सोना पप्पू और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड। रॉय स्ट्रीट पे एक होटल के साथ साथ एक कारोबारी के घर छापेमारी। कोलकाता पुलिस ने एक अन्य सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी रेड डाली। ईडी की टीम मुर्शिदाबाद से शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पहुंची। छापेमारी आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का आज पहला दिल्ली दौरा। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और बीजेपी नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी, बिना अनुमति पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों पर, गली सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई। कुर्बानी के बाद सीवर, नाली, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े को डालना प्रतिबंधित। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से पहले अदालत के लिए आरोपी का पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। धार गौशाला में आज हिंदू संतों का बड़ा प्रदर्शन। अखंड पूजा का आयोजन, प्रशासन अलर्ट मोड पर, परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद गौशाला में पहला शुक्रवार। हाईकोर्ट ने परिसर को मां वाघ देवी का मंदिर माना। हिंदू संतों में उत्साह। गौशाला पर फैसले के बाद बड़ी हलचल। परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शुक्रवार को अखंड पूजा कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। गौशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गौशाला मामले में मुस्लिम पक्ष के काजी मोइनुद्दीन ने हाईकोर्ट के नमाज रोकने वाले फैसले को चुनौती दी। पीएम मोदी की 4.5 घंटे मैराथन बैठक में मंत्रियों ने दिया रिफॉर्म एजेंडा। मंत्रिपरिषद बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन और योजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत 2047 सिर्फ नारा नहीं, हमारी प्रतिबद्धता। पीएम ने मंत्रालयों की तेज डिलीवरी और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। पीएम ने मंत्रालयों के कामकाज की मिड टर्म समीक्षा, कॉमर्स, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय समेत कई विभागों की प्रगति पर चर्चा की। वेस्ट एशिया संकट पर केंद्र सरकार अलर्ट, पीएम ने दिए निर्देश। ऊर्जा, कृषि, शिपिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर पर खास फोकस रखा गया। पीएम ने कहा 2047 के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करें। मंत्रिपरिषद बैठक में पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और बड़े रिफॉर्म्स पर जोर दिया। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट निचली अदालत के जमानत से इनकार वाले आदेश को चुनौती पर सुनवाई करेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली की अदालत आज आरोप तय करने का अहम फैसला सुना सकती है। हावड़ा स्टेशन पर संदिग्ध पैकेट में लगी आग, जांच तेज। मिथिला एक्सप्रेस घटना से पहले संदिग्ध युवक कैमरे में कैद। हावड़ा स्टेशन मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच एजेंसियां अलर्ट पर। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलाकारों पर एफआईआर की मांग। परमव्रता चैटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की टिप्पणी को लेकर कोर्ट में याचिका। त्रिशा मौत मामले में हाईकोर्ट पहुंची दोनों फैमिलीज। फरार पति पर लुकआउट नोटिस जारी। समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तलाश में जुट गई। पूर्व मिस पुणे त्रिशा शर्मा की मौत पर कानूनी जंग तेज। फरार पति समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी है। शादी की वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। त्रिशा और समर्थ का शादी का वीडियो वायरल। मौत के बाद रिश्तों पर उठे नए सवाल। त्रिशा डेथ मिस्ट्री में बड़े सवाल। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड जांच के घेरे में। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। अंतिम संस्कार से इनकार कर एम्स मोर्चुरी में रखा शव। त्रिशा केस में आरोप प्रत्यारोप तेज। ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही। बंगाल में बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर रोक जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए रोक बरकरार रखी। बंगाल में कुर्बानी पर सियासत तेज। हुमायूं कबीर बोले कुर्बानी जारी रहेगी। एजेयूपी प्रमुख ने कहा 1400 साल पुरानी परंपरा में सरकार दखल नहीं दे सकती। अरशद मद्दी ने लिया अलग रुख। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग। AIMPLB उपाध्यक्ष बोले धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो। बकरीद से पहले बंगाल सरकार के फैसले पर मुस्लिम संगठनों का विरोध। जमीयत उलेमाए हिंद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को असंवैधानिक बताया। कुर्बानी पर रोक लेकिन स्लॉटर हाउस पर नहीं। फुरफुरा शरीफ के मौलाना का सवाल। तोहा सिद्दीकी ने कहा कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो यूनियन की 3 दिन की हड़ताल। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से ड्राइवर यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग की। इंदौर में नगर निगम का अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क चौड़ीकरण के लिए कई निर्माण ध्वस्त किए। प्रयागराज के अस्पताल में अधिवक्ता और डॉक्टर्स के बीच झड़प के बाद तनाव। सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा। कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा।
सोने चांदी की कीमतें फिर बढ़ी, 600 रुपए बढ़कर 1,65,500 रुपए पर पहुंचा गोल्ड। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,71,000 पर पहुंची। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में लगा भक्तों का तांता, 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्पर फाड़ हो रही है कमाई। 32 दिन में यमुनोत्री मंदिर समिति को कुल 23.5 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ आय में लगातार इजाफा। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली में 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात रहा बुधवार। दिल्ली एनसीआर में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू रहने के आसार। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, 25 मई तक तपिश भरी गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। बांदा लगातार चौथे दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा 48 डिग्री के पार। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट, कई जिलों में 45 के पार पारा। बिहार और औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद, जहानाबाद में स्कूल का समय बदला। बिहार का कैमूर रहा गर्म शहर, 44 डिग्री के पार पहुंचा कैमूर का तापमान। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ की गला घोटकर हत्या, आरोपियों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की, फरार आरोपी धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे का इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के बगहा में A&M कॉलेज छात्रावास में खराब भोजन और पेयजल संकट को लेकर जमकर हंगामा। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने जीविका समूह की इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाया, आंदोलन के दौरान कुछ छात्राएं बेहोश हुई। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स तालाब में बच्चे डूबे, दोनों की मौत, रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। झारखंड के पाकुड़ में शराब पी पति बना हैवान, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या, पत्नी के शव को पास के निर्माणाधीन घर में दफनाया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 20 सड़क पर फायरिंग, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम का अभियान लगातार दूसरे दिन जारी, कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार की निगम की टीम के साथ तीखी नोकझोंक। लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा के साथ दर्दगी की, हॉस्पिटल में OT में इंजेक्शन देकर रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत लेकर पूछताछ शुरू की। बिहार के वैशाली में दहेज की नवविवाहिता की हत्या, बुलेट बाइक नहीं मिलने पर पीट पीट कर और जहर देकर मारने का आरोप। नासिक में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पंजाब से किया गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला जुर्म। दानापुर रेलवे स्टेशन से आए दलाने वाली तस्वीर, एक बुजुर्ग के पैरों में बेड़ियों और तालों के साथ देखा गया, बेटों ने मानसिक बीमारी का के कारण लगाया था। बिहार के सासाराम में वार्ड परिषद की पूजा सामग्री के आड़ में शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल। हिमाचल के सोलन में अर्की नागरिक अस्पताल में एक महिला की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन लगाया आप लापरवाही का आरोप। बिहार के बेगूसराय में नशा करने से मना करने पर एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी गला रेतकर बेरहमी से हत्या की, ग्रामीण की मदद से पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद स्टूडेंट का हंगामा, छात्रों से कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही भरे रवैये का आरोप। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति के लालच में भाई ने भाई की हत्या की, घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को किया गिरफ्तार। मधुबनी में लोको पायलट की सूझबूझ से फैला बड़ा ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पर बाइक फंसने से मची अफरा तफरी। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेन में चोरी करने वाला छात्र चोर गिरफ्तार, AC कोच में सफर करने वाली महिलाओं को बनाता था निशाना। गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई। भागलपुर से लापता 5 बच्चियां पटना जंक्शन से सकुशल बरामद, बच्चों ने खुलासा किया 1 साल से घूमने का प्लानिंग कर रही थी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान, भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मांग। MP के सतना में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का प्रयास, पुलिस की तत्परता से आरोपी पकड़ा गया। तेलंगाना के मेडक में नई मारुति कारों को ले जा रहे कंटेनर ट्रक में आग, 10 नई कारें जलकर खाक। धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च, एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार। स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का दमदार ट्रेलर आउट, रामचरण, जानवी कपूर, देवेंदु शर्मा समेत कई कलाकार। OTT पर दिखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का, फिल्म मां बहन के स्टारकास्ट का पोस्टर लॉन्च, रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा के किरदार में आएंगी सामने। आज मां बहन का ट्रेलर होगा आउट, दिखेगा धक धक गर्ल का नया अंदाज, 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।
विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार मुन्ना भैया की वापसी की मांग पर अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड में। आईपीएल के 66वें मैच में गुजरात टाइटन की शानदार जीत, 89 रन से चेन्नई को दी मात। इस करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सफर समाप्त, रनों के लिहाज से आईपीएल के इतिहास में सीएसके का सबसे खराब प्रदर्शन। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 229 रन, इसके जवाब में 140 रन पर सिमट गई चेन्नई की टीम। कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने खेली अर्धशतक की पारी, सुदर्शन ने बनाए सबसे ज्यादा 84 रन। इस जीत के साथ गुजरात के कुल 18 अंक टॉप टू में जगह बनाने के लिए जीटी ने पेश की प्रबल दावेदारी। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों टीम्स के लिए आखिरी लीग मैच, शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमें खेलेंगी। इस अहम टक्कर के बाद हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों ही टीमों का जोश हाई, अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रही दोनों टीम। सनराइजर्स के खिलाफ मैच के पहले आरसीबी को मिली राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित। केकेआर के खिलाफ मैच में रजत के सिर में लगी थी चोट। दोनों टीम्स ने हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी, अब तक 27 मुकाबलों में 14 मैच जीते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत दौरे पर, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मार्को रूबियो भारत का ऊर्जा निर्यात बढ़ाना चाहता है अमेरिका। भारत दौरे से पहले रूबियो ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को अहम बताया। रूबियो के भारत दौरे से पहले अमेरिका ने दिए बड़े संकेत, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्र में नई साझेदारी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हॉर्मुज पर टोल मुझे पसंद नहीं, ट्रंप के बयान से खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक हलचल तेज। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनी 22 मई को तेहरान जा सकते हैं, ईरान के दौरे के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत संभव।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट?
6: बड़े आराम से।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
9: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
10: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट पेंट,
21: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
23: JK Max Paints, खुशियों के रंग।
24: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
25: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
26: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
27: Like I said before, we better hold this in.
28: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
29: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
30: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
31: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
32: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
33: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
34: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
35: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
33: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
36: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
34: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
33: जहां खबर वहां खबरदार।
37: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
38: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

बीमारी का डर जितना नहीं डराता उससे ज्यादा डराता है अस्पताल का बिल, और उससे भी ज्यादा वो पल जब इंश्योरेंस होने के बावजूद जेब खाली हो जाए। इसी बढ़ते बोझ के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमाने बिलिंग पर लगाम लगेगी। इसमें मेडिकल डिवाइस पर ट्रेड मार्जिन कैप करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सिरिंज, ग्लव्स से लेकर पेसमेकर और हार्ट वाल्व तक शामिल रहेंगे। इसी वजह से ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जिसमें तय लिमिट से ज्यादा बिलिंग नहीं हो पाएगी। अस्पताल के इस बढ़ते बिल का असर इंश्योरेंस सेक्टर पर भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 12 से 18 महीनों में प्रीमियम 10 से 15% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी 15,000 से बढ़कर 22,000 रुपए से ज्यादा की हो सकती है, यानी इलाज महंगा और उससे बचाने वाला कवर भी महंगा हो जाएगा। इसी बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है जो दिखा रहा है कि युवा इंश्योरेंस से दूरी बना रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 34% को लगता है हेल्थ ठीक है और बीमा की जरूरत नहीं है, जबकि 31% लोग ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं जहां रिटर्न मिले, वहीं 17% लोग कवरेज और सर्विस से संतुष्ट नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कवरेज बढ़ा जरूर है और 2025 में ग्रामीण इलाकों में 47% और शहरी क्षेत्रों में 44% लोगों के पास हेल्थ कवर है, जबकि 2017-18 में ये आंकड़ा 14% और 19% था। लेकिन इस बीमा कवर के बावजूद जेब पर इलाज का खर्च काफी भारी है, क्योंकि एक हॉस्पिटलाइजेशन पर औसत खर्च 34,066 रुपए हो रहा है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में महज 6,631 रुपए खर्च होते हैं। यानी आम आदमी के लिए इलाज एक बड़ा फाइनेंशियल झटका है। यही वजह है कि अस्पताल बिलिंग पर कंट्रोल की ये तैयारी लोगों के इलाज पर हो रहे भारी खर्च कम करने में मदद कर सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
11: गाय को माने या ना माने लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा, पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
7: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
12: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
7: गो माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा। और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके, और टीएमसी विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है। स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दे। लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है।
13: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। सुबह से ही खबरों की भारी हलचल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज सुबह में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। आगे बात होगी धार की, जहां मंदिर वाले फैसले के बाद पहले शुक्रवार को भारी तनाव है। बोधशाला में 721 साल बाद अखंड पूजा का दावा किया जा रहा है, तो शहर में जबरदस्त किलाबंदी है। रुक करेंगे बंगाल का, जहां बकरीद पर गाय कुर्बानी को लेकर फैसले के बाद भारी उबाल है। मुस्लिम पक्ष इसे धार्मिक आजादी से जोड़ रहा है। हाईकोर्ट ने शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि गाय की कुर्बानी धार्मिक नहीं है। और बताएंगे कि द बर्निंग ट्रेन वाली कैसे साजिश चल रही है, क्यों रेल मंत्री को ऐसा बोलना पड़ा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के धार से, जहां बोधशाला मंदिर में 721 साल बाद हिंदू संगठनों ने अखंड पाठ महाआरती का आयोजन किया। बोधशाला परिसर में वाग देवी की सुबह की आरती की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर मौजूद थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है और पहली बार बोधशाला ऐसा दिख रहा है जहां हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पहले शुक्रवार को नमाज का दिन होता था और इस बार पूजा हो रही है। हिंदू संगठन वहां पर मौजूद है, श्रद्धालु मौजूद है। धार में आज जबरदस्त पहरा भी इसीलिए है। 1500 से ज्यादा पुलिस वाले भी तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कुछ अनहोनी ना हो। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो आज भोजशाला में पूजा हुई है। दावा यह है कि 721 साल बाद हुई है। उसी पूजा के दृश्य तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन इसको लेकर कुछ अनहोनी ना हो, इस वजह से पहरा भी वहां पे बहुत ज्यादा सख्त है। तो किस तरह का पहरा है वो भी आपने देखा। और ये तस्वीरें उस पूजा की जो आज हुई है, वाग देवी की पूजा आरती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गर्भगृह जो है उसमें एक प्रतीकात्मक मूर्ति रखी गई है और वाग देवी की वो प्रतीकात्मक मूर्ति है और उसकी आज पूजा की गई है। ये हिंदू श्रद्धालु हैं जो वहां पहुंचे हैं। और इस वक्त धार भोजशाला से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह, जो कि लगातार वहां से रिपोर्ट करते आए। गर्भगृह तक गए थे पूरा। आपने रवीश आज सुबह से ही नजारा वहां का दिखाया है, आरती हुई है, कैसा वहां माहौल रहा आज?
1: देखिए, माहौल बहुत ज्यादा उत्साहपूर्वक है जो यहाँ पे हिंदू पक्ष है उनके लिए। और आप तस्वीरों में देखिए, सुबह से लगातार जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और हिंदू जो है वो लगातार यहाँ पे एक अखंड ज्योत जला करके बैठे हुए हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये इन हिंदुओं के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करीब 721 साल के बाद ये मौका आया है जब इस जगह पे, ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये गर्भगृह में 721 साल के बाद शुक्रवार के दिन मां सरस्वती की प्रतीकात्मक तस्वीर रख करके यहाँ पे पहली बार पूजा हो पाई है। और इसीलिए यहाँ पे ये उत्साह देखते ही बन रहा है। हिंदू पक्ष के लोग जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये आप तस्वीरों में पहले देख सकते हैं, ये हिंदू पक्ष के लोग हैं जो आपको दिख जाएंगे आज नारे लगाते हुए। और ये आज जो तस्वीर है ये शुक्रवार की तस्वीर है, वो शुक्रवार जब यहाँ पे आमतौर पर इन हिंदुओं के प्रवेश पे निषेध रहता था। यहाँ पर ये लोग जो है नहीं आ सकते थे फ्राइडे को, और उसके बाद

0: मौजूद यहाँ पे जब आज शुक्रवार को यहाँ पे शुरू हुई है आरती, तो इनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरे चारों तरफ अगर आप देखें अंजलि, तो ये वो 104 खंभों पे टिकी हुई भोजशाला है जिसमें आमतौर पर मंगलवार को सिर्फ हिंदू आ सकते थे, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष आकर के नमाज अदा करता था। और आज जब यहाँ पे पिछले शुक्रवार तक इसी जगह पे नमाज अदा होती थी, आज यहाँ पे आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, तो इसीलिए स्वाभाविक सी बात है इन हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता
1: जी
0: है।
1: रवीश,
0: उसकी खुशी इनके चेहरे
1: बिल्कुल भोजशाला से ये सीधी तस्वीर आप हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। आप रुके रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, हिंदू पक्ष वहां पर पूजा अर्चना कर रहा है, और इस सब के बीच जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। देखिए क्या कह रहे हैं ये सब।
2: शुक्रवार के दिन हिंदू समाज ने डंडे खाए हैं, जब भी बसंत पंचमी है शुक्रवार के दिन संघर्ष हुआ है, और इसलिए यह शुक्रवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार न्याय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि 365 दिन हम पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए शुक्रवार के दिन हमने चुना है कि यह शुक्रवार हमारा स्वाभिमान का है, 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार आ रहा है, इसलिए हमको पूजा अर्चना करना है।
3: समाज जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज को पढ़ना है अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में, अपने घरों पर, अपने निजी स्थानों पर वो बेखुद पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कोर्ट ने हमें मनाई की है, अगर कोर्ट ने कोई नियम बनाए हैं, तो उसका पालन हमें करना पड़ेगा और कर रहे हैं, और आगे भी हम वही नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हम हमेशा से संविधान को दायरे में रख करके काम करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है।
4: आखिरी बार समझाइश देने आया हूं, अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था, अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा, जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
1: और आइए अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां गाय की कुर्बानी को लेकर फैसले पर भारी उबाल है, अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कल कोलकाता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए गाय की कुर्बानी को धर्म से अलग किया। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी ईद उल जुहा त्योहार का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया इस मामले में। हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। मायू कबीर ने यहां तक कह दिया है कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, ऊंट की भी होगी, सारे पशु जो कुर्बानी के जायज हैं उन्हें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता है।
5: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
6: सियासी तवा पर गरम रोटी सेकने की कोशिश मत करें, ये दुख की बात है। ये पता चला है कि उनके अंदर कुछ है नहीं सलाहियत, ये गरम करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हम सियासत में नहीं जाएंगे, ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। बंगाल के गाय में इकोनॉमी डेवलप होता है और यूपी के गोरु में इकोनॉमी नीचे गिरता है, यूपी की स्थिति अलग, नागालैंड में लोग खाते हैं, मणिपुर में खाते हैं, मिजोरम में खाते हैं, त्रिपुरा में खाते हैं।
1: और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू कोलकाता से। इंद्रजीत, आपसे यह जानना चाहेंगे कि अब आदेश तो आ चुका है, मुहर भी लग गई है कोर्ट की, तो ऐसे में जो वहां धार्मिक संगठन है, खास तौर पर जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है, उनका रवैया अब क्या है, वो क्या कह रहे हैं?
7: देखिए इस पर राजनीतिक जंग तो छिड़ी हुई है, जैसे आपने सुनवाया अभी हुमायूं कबीर वो कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है या मुस्लिम उलेमा हैं, इमाम्स हैं, उनसे जब बात हो रही है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस तरह का एक निर्देश जारी किया है, अगर अदालत का इस तरह का फैसला आया है तो वो उसका स्वागत करते हैं और उसको मानेंगे। अगर इस तरह का फैसला आया है तो इस बार गाय की कुर्बानी नहीं होगी, यही मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आर्थिक सवाल भी इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पशुपालन करते हैं और हिंदू समाज से आते हैं, उनका ये मानना है कि जब गाय की वो दूध देना बंद कर देती है तब वो क्या करें, इस पे एक खर्चा भी आता है अगर गाय को रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाय को बेच देते हैं उसके बाद जब उसको ज्यादा उम्र हो जाती है, और उससे कुछ पैसा उनको मिलता है, जो गरीब परिवार है, जो एकदम पिछड़े तबके के हैं, तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो गाय का जो देखभाल है वो कर पाए जब गाय की उम्र हो जाए, नहीं तो किस तरह से वो चलाएंगे। तो इस तरह का एक बातचीत भी इस वक्त चल रही है। तो मुस्लिम संप्रदाय की ओर से ये कहा गया है कि वो लोग इस बार गाय की जो बकरी इतने वो होता है वो नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति अलग तरीके से चल रही है पश्चिम बंगाल में, हुमायूं कबीर हो या दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी के धार्मिक आस्था पर इस तरह का फैसला सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि गाय के कुर्बानी के साथ
1: जी बिल्कुल कोर्ट का फैसला साफ है, लेकिन जैसा कि इंद्रजीत कह रहे हैं राजनीति भी साफ है, और यही राजनीति कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ गाय की कुर्बानी को लेकर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं कुर्बानी का मामला दिल्ली तक अब पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी न करने की अब अपील कर दी है।
8: बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है, और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: और आइए एक बार फिर से लौटते हैं बंगाल, बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ के साथ मीटिंग के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन केंद्र सरकार को देनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद सेना ने बॉर्डर पर सुरक्षा को और मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम अब उठाया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बीएसएफ ने सीमा क्षेत्र में पिलर मार्किंग और सर्वे का काम अब शुरू कर दिया है, यानी कि बॉर्डर पर फेंसिंग अब इसका काम चालू हो चुका है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू का। इंद्रजीत, बॉर्डर फेंसिंग एक ऐसा मुद्दा था जो इस चुनाव में लगातार उठता आया था, और हर कोई ये सवाल पूछता था कि आखिर मामला अटका कहां है। अब जो स्थिति है उसमें हम क्या मानकर चल सकते हैं कि कितनी जल्दी इस बड़े बॉर्डर का, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, उसको सिक्योर कर लिया जाएगा।
7: जी हाँ, देखिए जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश हो रही है, और वो जल्द से जल्द करने की कोशिश इस वक्त जुटी हुई है। जब हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं तब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में है, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ उनका कुछ देर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाला है, और ये मीटिंग तब हो रही है जब उन्होंने कोलकाता में साफ कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि बीएसएफ को जमीन दी जाए। उसके साथ साथ बीएसएफ के साथ चीफ सेक्रेटरी का बातचीत भी हो चुकी है दो दिन पहले, और फाइल्स भी हस्तांतरित किए हैं। बीएसएफ ने ऑन ग्राउंड काम शुरू कर दिया है, अभी मैपिंग का और मेजरमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ बॉर्डर एरियाज हैं उत्तरी बंगाल में, कुछ बिहार में, उत्तरी दिनाजपुर में, मुर्शिदाबाद में, जहां पे फेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इतने सालों से वहां पे फेंसिंग नहीं था कुछ इलाकों में। पोरस बॉर्डर है, रिवराइन बॉर्डर है, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बॉर्डर वो काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सब जगह पे फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि ऐसे कुछ जगह है जहां पे अभी तक फेंसिंग पॉसिबल है, लेकिन नहीं किया गया था क्योंकि जमीन के वजह से वो अटका हुआ था। अब उस पूरी चीज की प्रकरण को स्पीड अप किया गया है
1: जी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रजीत। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पहले सुवेंदु अधिकारी ने आखिर क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं।
9: एंड ए ट्रू पेट्रियोटिक गवर्नमेंट स्टार्टेड देयर जर्नी विद इन 2 weeks वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड एलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
1: और अब देखिए बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर से फेंसिंग एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट।
10: हम दिखा रहे हैं आपका तस्वीर कैसे जो सरकार थे, पिछले सरकार थे, वो बीएसएफ को जमीन नहीं देने से बजाय से फेंसिंग हो नहीं पाया। आप देख रहे हैं 983 बॉर्डर पिलर है और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है। लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे लेकिन जमीन मिला नहीं। बंगाल में सत्ता का बदल हुआ है, अभी बंगाल का सत्ता में आया है बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री बनके शुभेंदु अधिकारी पोस्ट लेने के बाद पहला जो कैबिनेट मीटिंग है उसी बैठक में डिसीजन लिया गया 45 डेज का अंदर में जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को। और इसीलिए जो लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिशियल से वो आए हैं और जमीन का माप जो हो रहा है, लोकल बताया है इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को। इसीलिए जो काम चल रहे इसी सिलसिले में जो लैंड डिपार्टमेंट ऑफिशियल से वो बीएसएफ के साथ में काम कर रहे हैं। हम आज तक के साथ मैं मंसूर कुछ बिहार हन्नान कैमरा पर्सन हन्नान के साथ।
1: और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। इटली से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक हुई। बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के विजन, ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज पोस्ट कर कहा है कि कल मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई। हमने जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के से संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया और विकसित भारत के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार करने के तरीकों पर चर्चा भी की।

0: तो आइए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मंत्र दिए, सक्सेस मंत्र। सबसे पहले आपको बताते थे विजन जो है वो 2047 का है, यानी कि विकसित भारत का है, और इसकी वजह से कहा गया कि जितने भी पेंडिंग काम है, लंबित काम है, उन्हें जल्दी से जल्दी सारे मंत्री पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, कोई फाइल आपके आई है तो शाम तक निपट जानी चाहिए, समय आगे देखने का है और पीछे मुड़कर सोचने का नहीं है, नजर को आगे ही रखे। साथ में कहा अनावश्यक विवादों में ना उलझे, अगर उठते भी हैं तो उनसे दूर रहे। साथ में मोदी मंत्र ये भी रहा कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, मंत्री इधर उधर के विवादों में ना उलझे, ईज ऑफ लिविंग जिसकी बात वो करते आए हैं, और रिफॉर्म्स पर ही जोर दें। 2047 विकसित विजन के साथ आगे चलना है। इस पूरी बैठक की बात करें तो 9 मंत्रालयों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड दिया था, और कहा था कि हमने क्या क्या किया है। तो ये प्रेजेंटेशन जो थे, इसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने विदेश यात्रा के बारे में भी अपनी जानकारी दी कि किससे मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे में सारे मंत्रियों का मार्गदर्शन भी किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता देते हैं, बांद्रा में पत्थरबाजी, मुंबई में आपको बता दें जो इस वक्त एक्शन चल रहा था वहां पर, अनाधिकृत कॉलोनियों पर और इलीगल इंक्रोचमेंट पर, वहां पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि वहां तनाव तो पहले से ही था, पिछले 2 दिन से जो कार्रवाई चल रही थी उसके बाद बांद्रा में अब पत्थरबाजी को लेकर पुलिस का एक्शन है, माफ कीजिएगा, एक्शन जो पुलिस का है उसको लेकर खबर है, और पुलिस ने इस मामले में अब तक 18 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, बांद्रा में जो तनाव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था उसके बाद वो गुस्सा फूटा भी था, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस अब किस तरह से एक्शन मोड में आ गई है?
1: जी देखिए, एक बहुत सारे जो 19 लोग हैं तकरीबन, उनको गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को आज पेश किया जाएगा, वहीं तकरीबन जो 15 लोग हैं उनको कल पेश किया गया था, उनकी 26 मई तक की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल गई है। एक जो आरोपी उसमें से है वो माइनर है, जिसकी वजह से उसे कल अदालत में पेश नहीं किया गया था, उसे जुवेनाइल होम में भेज दिया गया है, वहां पर उसकी उसका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो अलग होगा। लेकिन मैं आप ग्राउंड पे दिखा लूं, यहाँ पे इस वक्त आप देख लीजिए जो डिमोलिशन है वो काम अभी भी चल रहा है, बहुत सारा मलबा इस पूरे इलाके से निकालना पड़ेगा तभी जाके रेलवे का जो प्रोजेक्ट, जो यहाँ इंटीग्रेटेड रेलवे प्रोजेक्ट जो बनाना चाहती है वो रेलवे बना पाएगी। लेकिन उसके आगे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी तैनात है, कोशिश
0: उनकी ब्रीफिंग पूरे मामले पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, in association with भारत।
3: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
7: It's college football time. College basketball feels
6: Pardon
7: like
6: my
7: it's
6: take.
8: The Rams catching the Commanders.
6: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
10: बस 2000
11: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा.
12: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो.
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स.
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
16: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट
16: जेके मैक्स.
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से
4: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: Director, the taste of success.
7: Like I said before, we better hold this in.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
13: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: 1 lakh तक जीतेगा
16: ऐसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग। क्रेडिट स्कोर देखो और 1 lakh तक जीतो।
17: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
20: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
22: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
23: सोच बदलो और बैंक भी।
1: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से
4: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: Like I said before, we better hold this in.
6: Like I said before, we better hold this in.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
23: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
24: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
25: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
23: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
26: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
24: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
23: जहां खबर वहां खबरदार।
27: इन एसोसिएशन विद
28: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
29: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
30: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
31: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सेगमेंट पे अब बात मौसम में लगी आग की। प्रचंड गर्मी से पूरा उत्तर भारत धधक रहा है। आसमान से बरस रही आग लोगों को झुलसा रही है। यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक तपती गर्मी का कहर जारी है। यूपी के बांदा सहित कई शहरों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। झुलसा देने वाली इस गर्मी से हर कोई परेशान है। और इस वक्त आप जैसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कई राज्यों के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा में भी यही हाल दिख रहा है, दिल्ली में भी दिखा है। कई ऐसे इलाके हैं, आप देख सकते हैं पंजाब तक के कई इलाके हैं जहां पर 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। लोग अब परेशान है। यहां तक कि पहाड़ी इलाके जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान मैदानी इलाकों में, हालांकि पहाड़ी इलाकों में भी 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफी ज्यादा होता है। और आइए अब कुछ शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसी वहां स्थिति है, लोग कैसे निपट रहे हैं। चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या नागपुर, लोग अपना रोजमर्रा का काम तो कर ही रहे हैं, यहां तक कि पशुओं को भी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से गर्मी से निपटने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहे ठंडा पानी पीना हो, चाहे किसी तरीके से पर्यटक स्थलों में जाके जलाशयों के करीब जाना हो, किसी न किसी तरीके से वो गर्मी से निजात पाना चाहते हैं। अगर हम पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दें तो पूरा उत्तर भारत धधक रहा है। यूपी सबसे गर्म राज्य है, राजस्थान के रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी यूपी में पड़ रही है। लेकिन सिर्फ यूपी में भभक रहा है, यूपी ही भभक रहा है ऐसा नहीं है, पड़ोसी राज्यों का भी यही हाल है इस वक्त।

0: अभी ये गर्मी और कितना झुलसाएगी, कब तक लू इतना रुलाएगी। 48 डिग्री तक तो पारा पहुंच गया, क्या 50 भी पार करेगा। अब की बार गर्मी का क्यों इतना अत्याचार। भीषण गर्मी और लू से कहीं कोई राहत की खबर नहीं है, हालात वही हैं और लोगों के हाल भी वैसे ही हैं। गर्मी से तरबतर, पसीने से लथपथ, लू से पस्त। मौसम विभाग के पास भी कुछ नया बताने को नहीं है, उसने तो पहले ही बता दिया था कि अगले 7 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और ओडिशा सहित कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये भी चेतावनी है कि इन राज्यों में हीट स्ट्रोक का खतरा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत अधिक है। राजस्थान में बुरा हाल है, यहाँ श्री गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में करीब 15 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल विदर्भ इलाके का है, यहाँ वर्धा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ में 11 जिले हैं, सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। पंजाब और हरियाणा में लू से बुरा हाल है, यहाँ रोहतक और भटिंडा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46 डिग्री सेल्सियस। आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा चला गया है, सबसे ज्यादा तापमान पालनाडु जिले में दर्ज किया गया, 47.6 डिग्री।
1: अब ये देखेंगे, अगर ये मैप देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वार्निंग जो है वो रेड अलर्ट जो है, रेड वार्निंग जो है वो दी गई है। वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड की जो कंडीशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन आज से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा पहाड़ी राज्यों में, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यों में जो है वो देखने को मिल सकता है। वहां थोड़े से तापमान जो है कम हो सकते हैं क्योंकि बारिश जो है वहां देखी जाएगी। लेकिन अगर मैदानी राज्यों की अगर हम बात करें तो आने वाले 7 दिन तक किसी तरीके से तापमान कम नहीं होंगे, 45 डिग्री के ऊपर जो है तापमान जा सकते हैं। गर्मी अभी लोगों को परेशान करने वाली है, किसी तरीके की राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है।
0: और ऐसे हालात में बस राहत की एक ही खबर है कि 26 मई को मॉनसून केरल पहुंच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत में आते आते आधा जून बीत जाएगा, यानी अभी उत्तर और मध्य भारत को लगभग एक महीने तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही।
2: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो जो वो लाइन्स है जो हाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है, तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था, 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये बियो बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। और स्टार्टिंग अगर आप इधर की करते हैं तो जब 26 मई या जब आगे केरला में ऑनसेट मानसून होता है तो उसके बाद हम फर्दर बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा।
3: तो मैदानी इलाके तो तप रहे हैं, लेकिन पहाड़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ठंड भी है, बर्फ गिर रही है। राजस्थान से द्रास कारगिल तक क्या है हाल, आपको दिखाते हैं।
0: गर्मी और लू के थपेड़े पंजाब और हरियाणा को भी बहुत बुरी तरह से झुलसा रहे हैं। पंजाब के बहुत से जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग खुद बता रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन यही हालात रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बार पंजाब हरियाणा में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं।
4: बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट है और हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कई जिलों में पंजाब हरियाणा में है, और ये पूरा आपका पंजाब हरियाणा ट्राई सिटी पूरे जो है भीषण गर्मी की चपेट में है। और 2 से 3 दिन अब ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें एक अच्छी खबर ये है कि आज जो है, आज कल और परसों कुछ नॉर्थ पंजाब में या एडजॉइनिंग नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट पंजाब में कुछ है एक्टिविटी के चांसेस, जैसे बीच में क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ हवाएं चल सकती हैं, तो उससे जो बेसिकली नॉर्थ का जो पंजाब का एरिया है जिसमें गुरदासपुर, हुशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, फिर इधर अम्बाला, हाँ ये जो पॉकेट्स है इसमें कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बाकी जिले हैं पंजाब और हरियाणा पे, वहां पे जो है हीट वेव कंडीशन और लू की स्थिति कंटिन्यू।
0: यही हाल राजस्थान का भी है, यहाँ तो दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी गर्मी है, सूरज ढलने के बाद भी जमीन ठंडी नहीं हो रही। राजस्थान के भी ज्यादातर जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है।
5: राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है, पूरे राजस्थान में 14 से 15 शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। श्रीगंगानगर में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग गर्मी का इंतजाम करके चलते हैं, गमछा और चश्मा लगाए हुए, बहुत तो साफा पहन के भी चलते हैं, साफा से बचाव हो जाता है राजस्थान में।
6: साफा हमारी राजस्थान की शान है, मान है, और हमारे राजस्थान में जो गर्मी है अभी बहुत भयंकर गर्मी है, मौसम है, और इस टाइम गर्मी पड़ने से फसल और जो भी माहौल है उससे गर्मी से अच्छा होता है, और इस गर्मी से बचाव के लिए गवर्नमेंट से करते हैं कि अच्छा सिटी में ध्यान रखें, कोई पानी लगाए, व्यवस्था करें, और साफे से पूरा बचाव होता है कि धूप में डायरेक्ट वो सर पे नहीं आती।
0: मैदानी राज्यों में गर्मी और लू चल रही है तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। देखिए कुदरत के इस निराले खेल को, पंजाब से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पूरा हिंदुस्तान भीषण गर्मी की चपेट में है, आसमान से आग बरस रही है, शहर शहर तंदूर की भट्टी बने हुए हैं, और उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं जहां भीषण बर्फबारी हुई है। मई के महीने में बर्फ गिरना सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ ये आम बात है। द्रास, करगिल और गुरेज वैली में भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर ले हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई, और इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में भी तापमान में कमी आ गई है। श्रीनगर में तापमान 30 डिग्री से घटकर 19 डिग्री हो गया। देश भर के पर्यटक श्रीनगर पहुंच रहे हैं।
7: पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मची हुई है, तापमान जो है नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, झुलसती गर्मी है, और वहीं आपको एक अलग नजारा दिखाते हैं। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है धरती पे बिना वजह नहीं। क्यों कहा जाता है ये? इस वजह से क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि जहां पारा जो है आसमान छू रहा है देश के बाकी हिस्सों में, बहुत ज्यादा गर्मी है, कश्मीर जो है प्लेजेंट है, बहुत ठंडा इस वक्त वातावरण है, बादल, और हालात ये हैं कि सोनमर्ग से ऊपर जब आप द्रास की तरफ जाते हैं या फिर जोजिला को क्रॉस करते हैं तो उस पूरे रास्ते पे जो है कल शाम से बर्फबारी हुई है, और उसका इम्पैक्ट जो है एक एसी इम्पैक्ट हुआ है, जहां जो प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा अभी तापमान गिरा है, तकरीबन 10 से 12 डिग्री तापमान गिरा है। नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त कश्मीर का 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी 16 से 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर।
0: आज तक ब्यूरो।
3: तो गर्मी की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ गई है, बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही, देश में बिजली की खपत के सारे रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं। चलिए बड़ी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हाल रहा। 21 मई का दिन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला दिन रहा, 270 गीगावाट तक डिमांड पहुंच गई थी। बाकी दिन देखें तो जो 20 मई यानी कि बुधवार का दिन था, उस दिन 265.44 गीगावाट की डिमांड थी। 19 मई यानी कि मंगलवार को 260.45 गीगावाट, 18 मई यानी कि सोमवार को 257.37 गीगावाट की डिमांड थी। अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो आप देखिए कि दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 21 मई 2026 को दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग 8,231 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस गर्मी के सीजन का सबसे उच्चतम स्तर है। बुधवार को इस साल पहली बार दिल्ली की मांग ने 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया था।
0: तकरीबन पूरा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुके बांदा में
8: गर्मी से बेहाल लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। आग की भट्टी की तरह तप रहे बांदा में गर्मी की वजह से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा, झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गर्मी से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक पावर डिमांड 8231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। SLDC के मुताबिक इस सीजन में बिजली की खपत 9000 मेगावाट पार जाने का अनुमान है। दिल्ली में पावर डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस बार 76% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा अभी और चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की उम्मीद है, लेकिन इससे गर्मी में झुलस रहे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: और इन परेशान करने वाली खबरों के बीच एक राहत की उम्मीद देने वाली खबर, भीषण लू और गर्म रातों से झुलस रहे उत्तर भारत की ओर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से बढ़ रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस मौसमी बदलाव से उन करोड़ों लोगों में उम्मीद की नई किरण जागी है जो पिछले कई हफ्तों से चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली रातों की वजह से बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही दिल्ली और आसपास के इलाकों को भी कवर कर सकता है। तो सूरज की तपिश किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राकृतिक जल स्रोत भी अब सूखने लगे हैं। कुएं, बावड़ियों, इन सब का पानी सूख गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तक कई शहरों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये चार तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के सातारा की, मध्य प्रदेश इंदौर, और साथ ही में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी की कमी हो गई है झारखंड में भी और मध्य प्रदेश के रतलाम में भी। लोगों के लिए दिक्कत भारी है क्योंकि इस वक्त भीषण गर्मी और ऊपर से पानी की कमी, एक ही राहत की चीज वो भी नहीं मिल रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of
12: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
13: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
16: Jack, come home. It's supper time.
15: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
17: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
15: Jack FM, playing what we want.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: Sanitary Solutions.
20: बस दो हजार
21: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो
14: एक लाख तक जीतेगा।
20: ऐसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
21: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
22: उसने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
21: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
23: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: 721 साल बाद आज जुमे के दिन धार बोचारा में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
1: 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा, यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका।
0: आम आदमी को महंगाई की नई किश्त का करण, राजस्थान में सरस दूध और बिहार में सुधा डेयरी 2 रुपए महंगा, दही पनीर के दाम में इजाफा, मारुति कार में 30,000 तक इजाफा।
1: सूरज से बरसती आग ने उत्तर भारत को जलाया, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा, लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की कटौती, कई शहरों में पानी की किल्लत।
0: ईरान में तेजी से बढ़ रहा है ड्रोन और मिसाइल की क्षमता, मीडिया रिपोर्ट से खुलासा, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप का सख्त रुख, बोले नहीं रखने देंगे यूरेनियम।

गौशाला परिसर में सुबह की आरती, कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने की पूजा। ये आरती देवी सरस्वती को समर्पित भोजशाला मंदिर में की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। अदालत के आदेश के बाद परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति नहीं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 721 साल बाद पहला ऐसा शुक्रवार है जब परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई और महाआरती

0: रोकने के लिए धार शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और एसएएफ के जवान तैनात। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 18 जून को होने वाले चुनाव के सभी सीटों के निर्विरोध होने की पूरी संभावना। राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होंगे। महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु में सीवी षणमुगम की सीट पर उपचुनाव होंगे। इन चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। नामांकन 8 जून तक होंगे। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के कुराज में सिर्फ दाम और मांग बढ़ रही है, सप्लाई आपूर्ति नहीं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून में होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री होंगे शामिल।
1: सोना पप्पू और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी के कई जगहों पर छापेमारी की। रॉय स्ट्रीट के एक होटल के साथ साथ एक कारोबारी के घर पर छापेमारी की जा रही है। कोलकाता पुलिस के एक अन्य सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी रेड। ईडी की टीम मुर्शिदाबाद स्थित शांतनु सिन्हा विश्वास के घर भी पहुंची। ये सभी छापेमारी आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला दिल्ली दौरा। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी, बिना अनुमति पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों, गलियों, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश। कुर्बानी के बाद सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े को डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब किसी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से पहले अदालत के लिए आरोपी का पक्ष सुनना अनिवार्य होगा।
0: विशा शर्मा डेथ केस में हाईकोर्ट पहुंची दोनों फैमिलीज। फरार पति का लुकआउट नोटिस जारी। समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तलाश में जुटी। पूर्व मिस पुणे त्विशा शर्मा की मौत पर कानूनी जंग तेज। फरार पति समर सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी। शादी के वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। त्विशा और समर्थ की शादी का वीडियो वायरल। मौत के बाद रिश्ते पर उठ रहे हैं सवाल। त्विशा डेथ मिस्ट्री में बड़े सवाल। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स जांच के घेरे में परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार से इनकार कर एम्स मोर्चुरी में रखा है शव। त्विशा केस में आरोप प्रत्यारोप तेज। ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही। मायके वालों ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। बंगाल में बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर रोक जारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका ममता बनर्जी की तरफ से की गई याचिका खारिज करते हुए रोक बरकरार रखी। बंगाल में कुर्बानी पर सियासत तेज। हुमायूं कबीर बोले, कुर्बानी जारी रहेगी। एजी यूपी प्रमुख ने कहा, 1400 साल पुरानी परंपरा में सरकार दखल नहीं दे सकती। अरशद मन्नी ने लिया अगला रुख। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। AIMPLB उपाध्यक्ष बोले, धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो, स्थायी समाधान निकले। बकरीद से पहले बंगाल सरकार के फैसले पर मुस्लिम संगठनों का विरोध। जमीयत उलेमाए हिंद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को असंवैधानिक बताया। कुर्बानी पर रोक लेकिन स्लॉटर हाउस पर नहीं। फुरफुरा शरीफ के मौलाना का सवाल। तोहा सिद्दीकी ने कहा, कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए।
1: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन। बद्रीनाथ में लगा भक्तों का मेला। अब तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना। मंदिर समिति की छप्पर फाड़ हो रही है कमाई। 32 दिन में यमुनोत्री धाम समिति की कुल 23.5 लाख रूपए आय हुई है प्राप्त। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ आय में इजाफा। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है हिंदुस्तान। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। दिल्ली में भी हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में 14 साल बाद मई का सबसे गर्म रात रहा बुधवार। दिल्ली NCR में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू रहने की संभावना। बिजली की बढ़ी मांग। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। 25 मई तक तपिश भरी गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। बांदा में लगातार 4th दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर। 48 के पार पहुंचा पारा।

0: बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट, कई जिलों में 45 के पार पहुंचा तापमान। बिहार औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद, गया जहानाबाद में भी स्कूल का समय बदला। बिहार का कैमूर रहा सबसे गर्म शहर, 44 डिग्री के पार पहुंचा कैमूर का तापमान। प्रशासन ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ की गला घोंट कर हत्या, आरोपियों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की। फरार आरोपी धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे की इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के बगहा में एएनएम कॉलेज छात्रावास में खराब भोजन और पेयजल संकट को लेकर जमकर हंगामा, जीविका समूह की इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने जीविका समूह की इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाया, आंदोलन के दौरान कुछ छात्राएं हुई बेहोश। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स तालाब में 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौत, रेस्क्यू कर शव बाहर निकाले। एम्बियंस आइलैंड के तालाब में हुई यह घटना।
1: झारखंड के पाकुड़ में शराबी पति बना हैवान, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या, पत्नी के शव को पास में निर्माणाधीन घर में दफनाया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में बीच सड़क पर फायरिंग, गोलीबारी में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुरानी गैंग वॉर के चलते फायरिंग की आशंका। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम का अभियान जारी, कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों की निगम टीम से तीखी नोकझोंक। लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्र के साथ किया दुष्कर्म, ओटी में इंजेक्शन देकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के वैशाली में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, बुलेट बाइक नहीं मिलने पर पीट पीट कर और जहर देकर मारने का आरोप। नासिक में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों ने पुलिस ने पंजाब में किया गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला जुर्म। दानापुर रेलवे स्टेशन में आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, एक बुजुर्ग के पैरों में बेड़ियों और तालों के साथ देखा गया, बेटों ने मानसिक बीमारी का दिया हवाला। बिहार के सासाराम में वार्ड परिषद का पूजा सामग्री की आड़ में शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद किया शराब का जखीरा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अर्की नागरिक अस्पताल में एक महिला की पत्नी के ऑपरेशन के बाद मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन में लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में नशा करने पर मना करने पर शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी गला रेतकर बेरहमी से की हत्या।
0: बिहार में मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत के वजह से स्टूडेंट्स का हंगामा, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति की लालच में भाई ने भाई की हत्या की, घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को किया गिरफ्तार। मधुबनी में लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पर बाइक फंसने से मची अफरा तफरी। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला छात्र चोर गिरफ्तार, एसी कोच में सफर करने वाली महिला यात्रियों को बनाता था निशाना। गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार को भी किया जब्त। भागलपुर में लापता 5 बच्चियां पटना जंक्शन से सकुशल बरामद, बच्चियों ने खुलासा किया 1 साल से घूमने का प्लानिंग कर रही थी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान, भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार। एमपी के सतना में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का प्रयास, पुलिस की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। तेलंगाना के मेंढक में नई मारुति कारों को ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, 10 नई कारें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की।
1: क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च, एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार, फिल्म 5 जून को होगी रिलीज। स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी का दमदार ट्रेलर आउट, रामचरण, जानवी कपूर, दिवेंदु शर्मा समेत कई कलाकार इस फिल्म में शामिल। ओटीटी पर देखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का, फिल्म मां बहन के स्टारकास्ट का पोस्टर लॉन्च, रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार आएंगे सामने। आज मां बहन का ट्रेलर होगा आउट, दिखेगा धक धक गर्ल का नया जलवा, 4 जून को फिल्म हो रही है लॉन्च। विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर धमाका मचाने को तैयार, मुन्ना भैया की वापसी की मांग के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड। आईपीएल के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, चेन्नई को दी मात। इस करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सफर हुआ समाप्त। रनों के लिहाज से आईपीएल के इतिहास में सीएसके की सबसे बड़ी हार। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 229 रन, इसके जवाब में 140 रन पर सिमट गई चेन्नई की टीम। कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने खेली अर्धशतक की पारी। गुजरात के हुए कुल 18 अंक, टॉप टू में जगह बनाने के लिए जीटी ने पेश की प्रबल दावेदारी।
0: आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा महत्वपूर्ण मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों टीमों के लिए आखिरी लीग मैच, शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने पर टिकी है दोनों टीमों की निगाहें। इस अहम टक्कर के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों ही टीमों का जोश हाई, अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है दोनों टीमें। सनराइजर्स के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी को मिली राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित। केकेआर के खिलाफ मैच में रजत को सिर में लग गई थी चोट। दोनों टीम में हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से हैदराबाद ने 14 और बेंगलुरु ने जीते हैं 12 मैच। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को भारत के दौरे पर, दौरे में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मार्को रूबियो भारत का ऊर्जा निर्यात बढ़ाना चाहते हैं और भारत अमेरिका दौरे से पहले रूबियो ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को अहम बताया। रूबियो के भारत दौरे से पहले अमेरिका ने दिए बड़े संकेत, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में नई साझेदारी पर हो सकती है चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हॉर्मूज पर टोल मुझे पसंद नहीं। ट्रंप के बयान से खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 22 मई को तेहरान जा सकते हैं। ईरान दौरे के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत संभव है।
1: मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरास में पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों की हत्या। उत्तरी हॉन्डुरास में कम से कम 10 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 14 की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे और 3 महिलाएं। गुरुवार को गाजा पर इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 4 लोग। दक्षिणी गाजा के राफा और खान यूनस के साथ साथ उत्तरी बेत लहिया पर हमले। यूएन ने इजरायली सेटलर्स पर वेस्ट बैंक में हफ्ते में 49 हमले किए। इजरायलियों ने घरों, खेतों, गाड़ियों और एक मस्जिद में लगाई आग। आज सुबह इटली के 15 फ्लोटिला कार्यकर्ताओं का दल पहुंचा रोम। इजरायल की हिरासत में दुर्व्यवहार के लगाए गए आरोप। हज यात्रा से पहले सऊदी अरब के मक्का में सैन्य परेड का आयोजन। सुरक्षा बलों ने भीड़ से निपटने के लिए कौशल और तैयारियों का किया प्रदर्शन। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्स ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो पर भड़काने के लगाए आरोप। क्यूबा पर आतंकवाद समर्थक होने का गलत आरोप की कही बात। ग्रीनलैंड में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास खोले जाने का विरोध। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रभाव बढ़ाने का महत्वाकांक्षा का लोगों का ने किया विरोध। कनाडा में अल्बर्टा प्रांत की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने अक्टूबर में जमानत संग्रह कराए जाने का किया ऐलान। तुर्की में मुख्य विपक्षी नेता की पार्टी मुख्यालय के बाहर रैली। सत्ता से बाहर करने के कोर्ट के फैसले के बाद समर्थकों का जमावड़ा। और सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की। कोर्ट ने यूपी के बाहुबलियों को मिले शस्त्र लाइसेंस का ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह समेत 19 बाहुबलियों को जारी लाइसेंस की रिपोर्ट मांगी है। शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी करने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर राज्य सरकार और सभी जिलों के पुलिस अफसर से विस्तृत जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट को बताया था सूबे में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है, जिसमें 6062 लाइसेंसी दागी। बाहुबलियों की सरकारी सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगी गई।
0: और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा। संतोष, ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में बताएं।
2: देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जस्टिस राजेश दिवाकर की कोर्ट में, और उस पिटीशन में यूपी सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें ये खुलासा हुआ कि प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए गए और उसमें से 6062 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और वहीं 2000 ऐसे लोग हैं जिनको एक से ज्यादा लाइसेंस है, एक ही परिवार में उनको कई लाइसेंस दिए गए हैं। तो इसी पर रिपोर्ट दी गई है कि आखिर जो लोग दागी हैं, खास करके 19 लोगों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, खान मुबारक, अजय सिपाही, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके दागी हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे। कोर्ट का कहना है कि इनके ऊपर जब छवि इनकी खराब है, बाहुबली है, तो इनको कैसे लाइसेंस दिए गए, क्या ऐसा थ्रेट परसेप्शन था, इस पर ऐसी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और ये एक पिटीशन दायर की गई थी, उस पिटीशन में जो होम डिपार्टमेंट है उसने जो हलफनामा दिया उसमें खुलासा हुआ कि 6062 ऐसे दागी लोग हैं जिनको ये लाइसेंस दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार का। और चूंकि हाईकोर्ट लंबे समय से सख्त रहा है कि लाइसेंस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लाइसेंस का उसी को निर्गत किया जाना चाहिए जिसको लाइफ थ्रेट हो, जिसकी जिंदगी पर खतरा, जो खुद दूसरों की जिंदगी पर खतरा हो, जिनसे लोग डरते हो, उनको लाइसेंस देने के दुरुपयोग का, ये लाइसेंस के शर्तों का दुरुपयोग है, इसी को लेकर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां ऊर्जा संकट को देखते हुए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जज और न्यायिक अधिकारियों ने बड़ा कदम उठाया है। सभी लोगों ने साइकिल से कोर्ट जाने का फैसला किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री की अपील के बाद ये फैसला लिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है, इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है और यह अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम को हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इसे आप एक सशक्त पहल कहें या फिर फोटो अपॉर्चुनिटी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज फिलहाल ये सांकेतिक तौर पर जज और तमाम जो वकील हैं वो साइकिल से कोर्ट पहुंचे हैं। न्यायिक अधिकारियों का भी साइकिल से जाने का फैसला है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान पर आज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम जजेस साइकिल पर जा रहे हैं, और देखिए जो तमाम डिस्ट्रिक्ट में तैनात अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, चाहे वो महिला अधिकारी हों चाहे वो पुरुष अधिकारी हों, तमाम जजेस हैं, वो साइकिल से जाएंगे। उद्देश्य प्रधानमंत्री के आह्वान पर सेफ फ्यूल, ईंधन बचाने के लिए। ऐसे मौसम में मतलब साइकिल, आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं
3: भाई? जब आम जनता ये काम कर सकती है, वो लोग भी साइकिल से आते जाते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, और देश के लिए अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सकते हैं तो जरूर देंगे, और वही हम लोग आज कर रहे हैं। थैंक यू।
2: ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसी के तहत तमाम जो जजेस हैं वो साइकिल से चल रहा। हमारे साथ जनन जी हैं। सर, साइकिल चलाएंगे आज से सिंबॉलिक है या इसको हर सैटरडे चलाने वाले?
4: हफ्ते में, हर वीक में एक दिन निश्चित रूप से जाना सभी को, हर सैटरडे को।
2: क्या संदेश दे रहे हैं?
4: संदेश ये है कि वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन की बचत की जाए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया जाए।
2: पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ा
5: ईंधन बचाने की मुहिम है, और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि वीक में कम से कम एक दिन जाया करें।
2: तो सप्ताह में एक दिन ये तमाम जजेस ऐसे ही साइकिल से जाएंगे, अपने अपने घरों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। न्यायिक अधिकारी, करीब 74 ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं जो इसी तरीके से साइकिल से अब अपने कोर्ट जाएंगे, एक मैसेज देंगे कि जब संकट हो तो पूरा देश कैसे खड़ा होना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: तो एक संदेश देने की कोशिश, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates. Oh, yeah. Steely Dan. Loggins and Messina. Even though it ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
8: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
9: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
14: बस 2000
15: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
17: Like I said before, we better hold the sins.

तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है वो नजर आती है, जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं।

0: आज जुम्मे के दिन धारबोध शाला में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
1: 2027 में गठबंधन की विसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका, कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका।
0: बाहुबलियों को मिले गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूछा दागियों को किस आधार पर मिला लाइसेंस, लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और धनंजय सिंह का नाम।
1: आम आदमी को महंगाई की नई किश्त का करंट, राजस्थान में सरस दूध और बिहार में सुधा डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा, दही पनीर के दाम में भी इजाफा, मारुति कार भी 30,000 रुपए तक महंगी।
0: सूरत से बरसती आग में तप रहा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा, लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली का संकट, कई शहरों में पानी की किल्लत।

0: ब्रेक के बाद बात मध्य प्रदेश के धार की करेंगे, जहां भोजशाला मंदिर में 721 साल बाद हिंदू संगठनों ने अखंड पाठ महाआरती का आयोजन किया। भोजशाला परिसर में वाघदेवी की सुबह आरती की गई, इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही।
1: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहला शुक्रवार है और पहली बार भोजशाला ऐसा दिख रहा है। पहले शुक्रवार को नमाज का दिन होता था, इस बार पूजा है, हिंदू संगठन मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। धार में आज जबरदस्त पहरा भी है, 1500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर भी नजर रखी जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूजा की जो आज हुई, साथ ही ये कैसे कि वहां पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि वहां कुछ अनहोनी ना हो।
0: तो भोजशाला की तस्वीरें आज बिल्कुल बदली हुई दिखाई दी। दरअसल 15 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों के पक्ष में फैसला सुनाया और भोजशाला में पूजा की इजाजत दे दी।
1: हाईकोर्ट ने एएसआई के आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें जुमे पर मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत थी। उस आदेश के बाद आज पहला जुमा है और भोजशाला में इस वक्त जबरदस्त एक्शन है।
2: तस्वीरों पर यकीन करना जरा मुश्किल हो जाता है। आज शुक्रवार है और यहाँ हिंदुओं की भीड़ जुटी है। जुमे की नमाज की जगह वाघदेवी की पूजा अर्चना भजन आरती हो रही है। पिछले हफ्ते तक जुमा पर यहाँ का नजारा कुछ और होता था। हाईकोर्ट के फैसले से धार की सूरत बदल गई। भोजशाला हिंदू आस्था की शाला में पूरी तरह परिवर्तित हो गया।
3: आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है वो तस्वीर जो 750 साल करीब 721 साल के बाद देखने को मिलेगी। शुक्रवार के दिन गर्भगृह में माँ सरस्वती का पूजन, ये मौका 721 सालों के बाद आया है और ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आरती की शुरुआत हो चुकी है और ये गर्भगृह है, वही गर्भगृह जहाँ पे एक जमाने में माँ सरस्वती की प्रतिमा होती थी जो फिलहाल लंदन में है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से तस्वीर सामने रख करके आज इसी को गर्भगृह मान करके यहाँ पे पूजा शुरू हुई है। और शुक्रवार को 721 सालों के बाद पहली बार ये मौका आया है जब इस गर्भगृह में माँ सरस्वती स्थापित हुई हैं और उनका पूजन हो रहा है और इसलिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हो जाती है। पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है, माँ सरस्वती को पीले वस्त्र, पीला फूल, अक्षत पीले, ये तमाम सामग्री जो है वो यहाँ पे समर्पित की गई और उसके साथ ही शुरुआत हो गई है उस सूखे को खत्म करने की जो यहाँ पे 721 सालों से बना हुआ था।
2: भोजशाला में आज के सुरक्षा इंतजाम को देखकर आप समझ सकते हैं कि जुमा होने से आज यहाँ कितना तनाव है। धार प्रशासन ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ जुमे की नमाज नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को अपने फैसले में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाघदेवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से पहले हिंदू समुदाय को सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति थी। मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ते थे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट के आदेश को मानेगा? क्या मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज से परहेज करेगा?
4: समाज जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज को पढ़ना है अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में और अपने घरों पर अपने निजी स्थानों पर वो बेखुद पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कोर्ट ने हमें मनाही की है, अगर कोर्ट ने कोई नियम बनाया है तो उसका पालन हमें करना पड़ेगा और कर रहे हैं और आगे भी हम वही नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हम हमेशा से संविधान को दायरे में रख करके काम करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही
2: है। तो भोजशाला में आज भी अंदेशे का माहौल है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन का तनाव चरम पर है। पुलिस और आरएफ के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड ने भोजशाला के अंदर जाकर मुआयना किया। मेटल डिटेक्टर के जरिए भी खंभों और दीवारों की जांच हो रही है।
3: ये जो इलाका है ये बेहद ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पे पुलिस ने भी बकायदा चाक चौबंद व्यवस्था की है। 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ साथ हम आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ अगर आप देखें तो मेटल डिटेक्टर के साथ भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और वो लगातार चप्पे चप्पे पर जाकर के इस भोजशाला में जो यहाँ पे किसी भी तरीके की अप्रिय वस्तु हो सकती है उसकी जांच की जा रही है। धार प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत संवेदनशील मौका बन जाता है और इसलिए अगर आप देखें तो एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए शुक्रवार को, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी सुबह से यहां पर मुस्तैद है।
2: भोजशाला के मोर्चे पर तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी खुद जुटे हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। लोगों को सख्त चेतावनी दी गई कि वो कानून का पालन करें।
5: तो आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ, अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था, अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा।

0: की हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
1: पुलिस के सुरक्षा इंतजाम से साफ है कि प्रशासन अदालत के आदेश का पालन कराने पर आमादा है, लेकिन भोजशाला में आज का दिन शांति से गुजरे इसकी बड़ी जिम्मेदारी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों पर है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: रविश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रविश, सुबह से ही आप इस मंदिर परिसर में मौजूद हैं, तब से लेकर अब तक कोई तब्दीली किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती है उसमें कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लोग भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे होंगे दर्शन पूजन के लिए?
3: जी बिल्कुल, जैसे जैसे एक बजे का समय नजदीक आ रहा है महाआरती का, वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं गर्भगृह में, जहां हमने सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी बहुत कम लोग थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो यहां लोग बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब गर्भगृह पे माँ सरस्वती की उस प्रतीकात्मक तस्वीर का पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में लोग पहुंच करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं माँ सरस्वती का, और ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एक बजे महाआरती होनी है। शुक्रवार को आमतौर पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था पिछले कई सौ सालों से, लेकिन अब जब ये प्रवेश शुरू हुआ है तो हिंदू बड़ी संख्या में पहुंचे हैं यहाँ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने, उनसे मिलने के लिए। खूब यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। ये बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हिंदू समाज के लिए, धार भोजशाला में शुक्रवार को आप लोगों को प्रवेश मिलना?
4: बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवी का दिन हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शुक्रवार के दिन ही पूजा होती है, तो इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगलवार को जो पूजा हमारे को दी गई थी वो एक प्रशासनिक सिस्टम के तहत दी गई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पूजा का मुख्य दिन जो है वो शुक्रवार ही है, क्योंकि माताओं की पूजा, देवी की पूजा हमारे धर्म में शुक्रवार के दिन ही होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छा पहला शुक्रवार है, 700-750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहाँ पूजा कर पा रहा है निरंतर।
3: तो पुलिस प्रशासन की सख्ती भी बहुत है, लेकिन आज को लेकर के तो आपको लगता है कि प्रवेश ठीक से मिल पा रहा है?
5: जी, आज हमें जो उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके बाद वहाँ वापदे देवी की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जा रही थी, सुबह महाआरती होती थी शाम को, आज जैसे कि शुक्रवार था, शुक्रवार के बाद भी हम यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी संख्या में सभी भक्तगण पधार रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहाँ बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी भाग्य की बात।
3: देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, तो हम कोशिश करेंगे महिलाओं से भी बात करें। माँ सरस्वती का पूजन होना है यहाँ पे लगातार हो रहा है, तो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अम्मा जी, आज आप कितने दिनों बाद या कितने सालों बाद ये मौका मिल पाया आप लोगों को?
6: पहले तो सबसे पहले माँ सरस्वती की जय बोलूंगी। सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है वो मुक्त हो गई है, और इतनी खुशी की बात है कि आज के दिन यहाँ पे हमारे मंदिर में नमाज नहीं होगी। नमाज ये कहीं भी करे, हमको कोई एतराज नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं तो कहाँ भाई भाई है, जीत पे अड़े कि हम नमाज करेंगे तो ये गलत है। आप देखेंगे कि कई वर्षों से लोग ने देखा, संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, माता बहने जेल गई, कितना संघर्ष किया।
3: क्योंकि संघर्ष की बात करें तो हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। ये जो आप सामने शख्स को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये 95 साल के विमल गोधा हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। आज जब शुक्रवार को यहाँ पे अनुमति मिली है हिंदुओं को प्रवेश की, तो यहाँ खुद आए हैं, ठीक से चल नहीं सकते हैं तो छड़ी के सहारे पहुंचे हैं विमल गोधा। और ये जो संघर्ष समिति है उसमें ये पिछले कई सालों से जुटे हुए थे, और यही वो विमल लोधा है जिन्होंने साल 2003 में तत्कालीन गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनको भोजशाला का परिचय करवाया था। वो 2003 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पहुंचे थे, तो विमल गोधा ही वो शख्स है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजशाला परिसर के भीतर ले जाकर के उन्हें पूरे परिसर का दौरा करवाया था। क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में जब आपने उनको घुमाया था यहाँ पे? नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था उस वक्त जब 2003 में आए थे, आपने घुमाया था?
7: मोदी जी जब आए थे उनने माँ के दर्शन करे, दर्शन करने के बाद तुरंत उनने ये कहा था कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ, मैं लंदन नहीं जा सकता हूँ, इसके बाद मेरे को माँ दिल्ली कुर्सी बैठा देगी, तो मैं तुरंत लंदन जाऊँगा और मुझे लेके आऊँगा।
3: आप देख सकते हैं, ये है
8: जी, यहां का संघर्ष जो

0: तौर पर वहाँ उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच, हम आपके पास आते रहेंगे, शुक्रिया। तो अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां अगले साल चुनाव है। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं। पहले कांग्रेस ने दो नेताओं को मायावती के पास भेजा था, मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया था।
1: और अब अखिलेश का दांव सामने आ चुका है। पार्टी की बैठक में अखिलेश का ऐलान सामने आया, जिसमें अखिलेश ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। तो क्या ये कांग्रेस के लिए चेतावनी भरा संदेश है?
2: दो हजार सत्ताईस में यूपी में होगा एसपी कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है बात सीट की नहीं जीत की है।
3: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
2: तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं? हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे।
4: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
5: निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी का कोई निर्णय पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने अपने अपने निर्णय से वो गए थे।
3: मतलब कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के
5: व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए।
3: मतलब यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था?
5: जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं।
2: कांग्रेस लाख इनकार करे लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रह रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: तो अखिलेश के दांव पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
6: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
7: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: तो आइए सीधा रुक करते हैं समर्थ श्रीवास्तव का लखनऊ में। समर्थ, राष्ट्रीय स्तर पर तो इंडिया गठबंधन का नाम लेकर दोनों हाथ साथ में लेकर हाथ में हाथ साथ नजर आते हैं, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं अखिलेश?
8: देखिए, कुल मिलाकर ये माइंड गेम्स की बात कही जा सकती है, क्योंकि दो दिन पहले आपने जो तस्वीरें देखी कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता, जिसमें एक सांसद भी थे तनुज पुनिया, और उन वो पहुंचते हैं मायावती के आवास पर, हालांकि मायावती उनसे नहीं मिलती हैं, फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके नेताओं के द्वारा ही डाली जाती हैं। फिर जब आज तक संपर्क करता है यूपी कांग्रेस से तो उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया था, वो उनकी निजी मुलाकात थी। तनुज पुनिया भी आज तक में बताते हैं कि हम उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे, लेकिन आप भी जानती हैं कि सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, और खासकर सियासत अगर उत्तर प्रदेश की हो। उसके दो दिन बाद अखिलेश यादव कल कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पार्टी कार्यालय में एक मैसेज देते हैं और ये कह देते हैं कि हमारी तैयारी 403 विधानसभा सीटों पर है, हमारे कार्यकर्ता 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और यहां बात सीट की नहीं कैंडिडेट की होगी। लेकिन अखिलेश ये भी साफ करते हैं कि हमारी इस तैयारी से हमारे जो आने वाले वक्त में अलायंस पार्टनर्स
1: हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका समर्थ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में अब नेता और मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री का मंत्रियों को भी संदेश है कि तेल को कैसे बचाया जाए, इस पर उनका फोकस होना चाहिए। जनता को बताएं कि तेल की कीमत बढ़ने की वजह क्या है, यानी कि जो खाड़ी में युद्ध जारी है उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि तेल का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आवाजाही में दिक्कत आ रही है। जो जहाज पहले समय लेते थे उससे कहीं ज्यादा समय जलडमरू मध्य में लग रहा है, और ऐसे में जनता को बताना चाहिए कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं।
0: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdown, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
15: The
13: biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा, पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
1: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
2: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
1: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा। और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशुवध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया, जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई, जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके, और टीएमसी विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है। स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दें। लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है।

की पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश यादव की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा उसका फायदा। उत्तर प्रदेश के 19 बाहुबलियों को मिली गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। पूछा दागियों को किस आधार पर मिला लाइसेंस, लिस्ट में ब्रिजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और धनंजय सिंह का नाम शामिल। आम आदमी को महंगाई की नई किस्त का करंट। राजस्थान में सरस दूध और बिहार में सुधा डेयरी में दूध 2 रुपए महंगा। दही पनीर के दाम में भी इजाफा, मारुति कार की कीमत में भी 30,000 रुपए तक का इजाफा। सूरज से बरसती आग से तप रहा है देश। कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की कटौती। कई शहरों में पानी की भी किल्लत।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, खबरों की दुनिया में हलचल तेज होती जा रही है और हर हलचल हर खबर की खबर देने के लिए तैयार है हमारे 12 रिपोर्टर। शुरू करते हैं एक बड़ी खबर से जो मध्य प्रदेश से आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर 721 साल बाद शुक्रवार को गौशाला में सामूहिक अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया। अब से थोड़ी देर में धार में धान मंडी चौराहे से हिंदू समाज के लोग गौशाला प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1 बजे महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। अखंड पूजा का आयोजन भोज उत्सव समिति ने किया है। 15 मई को हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पहला शुक्रवार है, क्योंकि कोर्ट के फैसले से पहले यहां जुम्मे की नमाज की मंजूरी थी। ऐसे में आशंका थी कि जुम्मे पर असामाजिक तत्व गड़बड़ी फैला सकते हैं और इसी के तौर पर एहतियात के तौर पर भोजशाला और उसके आसपास के इलाकों पर सुरक्षा को भी पुख्ता किया गया है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है।
1: बस।

0: और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ धार से जुड़ गए। रवीश, सबसे पहले क्योंकि आप इससे पहले भी लगातार जब हाईकोर्ट का फैसला आया था वहां से आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, अभी यहाँ के हालात कैसे हैं, सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए?
1: देखिए, आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो महज एक दिन नहीं है धार के लोगों के लिए। ये 721 साल लंबा इंतजार है जो आज खत्म हुआ है। आज से पहले 721 साल तक मध्य प्रदेश के धार में ये जो भोजशाला है यहाँ शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद ये मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए, गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और भोजशाला के गर्भगृह से ये जो एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक तस्वीर रखी है, क्योंकि असली जो प्रतिमा है वो तो लंदन के म्यूजियम में इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आज के उस दिन की तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक दिन की, जो 721 साल बाद इन तमाम हिंदू पक्ष के लोगों के लिए आया है जो यहाँ पे इंतजार करते थे कि माता के पूजन का जो दिन होता है शुक्रवार, वहां पे माँ सरस्वती को पूजने के लिए उन्हें अब तक आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज जब अनुमति मिली है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए, गर्भगृह में बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे अब भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सालों तक जो भोज उत्सव संघर्ष समिति के लोग थे वो भी मौजूद है। धार के बाकी हिस्से में, भोजशाला के बाकी हिस्से में भी हम आपको दिखाएं तो आपको तस्वीरें दिख जाएंगी कि कैसे यहाँ पर अब लगातार लोगों का पहुंचना शुरू हो रहा है। और जो सुबह तक ये हिस्सा खाली दिख रहा था अब ये धीरे धीरे भरने लगा है। हालांकि धूप बहुत है तो लोग छांव में है, लेकिन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग भोजशाला के भीतर पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं।
0: और रवीश, लगातार 12 बजे कहा जा रहा था कि देखिए कुछ लोग जो है आरती के लिए पहुंचेंगे, वहां इकट्ठा होंगे, क्या भी क्या वो लोग पहुंच चुके हैं या धीरे धीरे लोगों का आना बदस्तूर जिस तरीके से आप दिखा रहे थे जारी है?
1: देखिए, पहले ये कहा गया था कि मंडी चौराहे पे इकट्ठे होंगे सब और फिर वहां से शोभा यात्रा के जरिए भोजशाला तक पहुंचेंगे, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने उस पैदल मार्च को, जो शोभा यात्रा को, मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो सीधे मंदिर ही पहुंचेंगे और मंदिर में आकर के वो सीधे 1 बजे से होने वाली महाआरती में शामिल हो सकेंगे। और इसीलिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीमें थी, पुलिस की अलग अलग टीमें पहुंची थी मेटल डिटेक्टर से, और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरीके से यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है, वो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भोजशाला का जो मेन गेट है वहां पे आपको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको दोनों तरफ पुलिसकर्मी दिखेंगे, और ये इसीलिए किया गया है ताकि आज का दिन बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कानून व्यवस्था के संपन्न हो जाए और निर्विघ्न तरीके से 721 साल के बाद ये जो मौका आया है शुक्रवार को सरस्वती पूजन का भोजशाला के भीतर, उसमें किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, कोई हिंसा ना हो और शांति से ये शुक्रवार का दिन संपन्न हो जाए।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी। देखिए, बता रहे थे 721 साल बाद शुक्रवार के दिन जयकारों की गूंज लगातार भोजशाला में सुनाई दे रही है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक में बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। इस बयान को कांग्रेस को अखिलेश के सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर दांव पेश शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस ने दो नेताओं को बीएसपी प्रमुख मायावती के पास भेजा। मायावती से भले ही इन नेताओं की मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस की इस पहल से सूबे की सियासत गर्मा गई और अब अखिलेश का ये बयान आप कह सकते हैं सियासत को और ज्यादा गर्म कर रहा है।
2: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल

0: को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। देखना यह है कि कांग्रेस का ये दांव कहीं यूपी चुनाव से पहले उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने ये मुलाकात की जो कोशिश है इसे निजी बताया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का इस मामले में कड़ा रुख नजर आता है और अखिलेश यादव ये बात कहते हैं पार्टी मीटिंग में कि हमारे कार्यकर्ता 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर बैठे हैं। हालांकि पार्टी ये भी साफ करती नजर आती है कि ये तैयारी गठबंधन साथियों को भी चुनाव में मदद करने वाली है।
1: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है। इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
2: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
3: जंग के मैदान में हम अक्सर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं, अब राजनीतिक मैदान में भी इसी तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में मंत्रियों ने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के विजन, ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज पोस्ट कर कहा कि कल मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई है, हमने जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं प्रथाओं को आदान प्रदान को किया है और विकसित भारत के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर अपने मंत्रियों को मंत्र दिया कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो समय बीत गया है उसकी तरफ मत देखिए, हम 2014 से सरकार में हैं और अब 2026 है, हमें भविष्य की तरफ देखना है और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए क्या काम कर सकते हैं उसके रोड मैप को तैयार कीजिए। किसी भी फाइल को लंबे समय तक जो है वो लंबित मत रखिए और हर फाइल को जल्द से जल्द निपटाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के अंदर ये भी साफ कर दिया कि कौन से ऐसे 5 मंत्रालय हैं जो अपनी फाइल को लंबे समय तक अपनी टेबल पर नहीं रखते हैं। साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मंत्रिपरिषद के लोगों को कहना था कि आपको जो है परफॉर्म करना होगा, रिफॉर्म पे सोचना होगा और ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि 2047 में भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना होगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी साफ साफ कहा अपने मंत्रियों को कि बिना वजह किसी विवाद में ना पड़े, विवादों से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा जो है वो हम सब के लिए रहेगा।
4: अब अगली खबर नीट पेपर लीक को लेकर है, जिसे लेकर कल एजुकेशन कमेटी के सामने एनटीए अधिकारियों की पेशी हुई। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ है, यानी एनटीए ने माना है कि कोई पेपर उनकी तरफ से लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में साफ हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ है तभी वो मानेंगे। इस पर जब विपक्ष के सांसदों ने उनसे सवाल किया तो पेपर लीक नहीं हुआ तो नीट की दोबारा परीक्षा क्यों की जा रही है, तो एनटीए चीफ ने कहा कि क्योंकि गड़बड़ी की शिकायतें आई थी तो विश्वास बहाली के लिए ऐसा किया गया है।
5: नीट परीक्षा 2026 में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सूत्रों की माने तो इस बात का दावा एनटीए चीफ अभिषेक सिंह ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने किया। असल में बृहस्पतिवार को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने एनटीए चीफ अभिषेक सिंह के साथ साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन विनीत जोशी को तलब किया था, समन किया था राधा कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस को जानने के लिए और नीट यूजी परीक्षा 2026 में पेपर लीक के दावों पर सवाल करने के लिए। इन सवालों के बीच में एनटीए के चीफ अभिषेक सिंह ने सूत्रों के हिसाब से कमेटी के सामने ये बात कह दी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हालांकि कुछ सवाल जरूर अलग अलग माध्यम से चैनल से परीक्षा के पहले बाहर आए थे, कुछ माल प्रैक्टिसेस एनटीए के सामने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सामने आए थे जिस वजह से परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। कमेटी के कुछ मेंबर्स खासतौर पे विपक्ष के मेंबर्स ने सूत्रों के हिसाब से इस बात पर सवाल उठाया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत ही क्या थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सत्ता दल के कुछ मेंबर्स ने कमेटी के मीटिंग के दौरान इस बात को कहा क्योंकि पूरे मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले से कर रही है, इसलिए इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं होगा।
4: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में रुक करते हैं अगली खबर जो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कथित रंगदारी रैकेट की जांच के बीच ईडी ने आज सुबह बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में कोलकाता पुलिस ने पूर्व डिप्टी कमिश्नर और कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व इंस्पेक्टर इंचार्ज शांतनु सिन्हा के पैतृक आवास पर ईडी ने छापेमारी की और ताला तोड़कर टीम उनके घर में घुस गई। शांतनु सिन्हा फिलहाल जमीन से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ईडी की हिरासत में है।
6: कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास जो तृणमूल कांग्रेस के आला कमान के काफी करीबी माने जाते थे, कुछ दिन पहले उनको ईडी ने हिरासत में ले लिया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उन्हीं के एक प्रॉपर्टी मुर्शिदाबाद जिले में छापेमारी चल रही है। ईडी के कर्ता वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे छापेमारी इस वक्त चल रही है। उनके खिलाफ ये आरोप है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का और एक्सटॉर्शन का। वो पैसा उठाते थे लोगों से, फॉल्स केस डालते थे, यही आरोप उनके खिलाफ है और यही कारण है कि सिर्फ कोलकाता में उनके घर में नहीं, अब मुर्शिदाबाद जिले में उनका जो आलीशान मकान है उस पर भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ इसी केस में दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जय कामदार जो बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ सोना पप्पू जिसे कोलकाता में टीएमसी का स्ट्रांग मैन माना जाता था, वो भी अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में एक सिंडिकेट चलता था जिससे लोगों से पैसा वसूली का एक बिजनेस वो चलाते थे, उसके साथ साथ फॉल्स केस देने का उनके भी खिलाफ भी आरोप है। तो इन सब के जो जांच इस वक्त ईडी कर रही है उसी के जांच के संदर्भ में आज शांतनु सिन्हा बिस्वास कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के घर पे मुर्शिदाबाद जिले में ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है।
4: और कोलकाता के बाद रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई में पत्थरबाजी के मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल 15 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था जिसमें से एक नाबालिग भी पाया गया। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन 15 आरोपियों को 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कल रात कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें इस मामले का एक ऐसा आरोपी भी शामिल है जिसे पत्थरबाजी करने वालों में से एक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसका नाम है सद्दाम अंसारी।
7: बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में जो डिमोलिशन का काम वेस्टर्न रेलवे ने शुरू किया था 19 तारीख को, वो अब चौथे दिन पे पहुंच चुका है। अब इस कार्रवाई के दौरान आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मलबा निकाला जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक के बगल में जो 100 घर हैं सिर्फ उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने जो लोग रह रहे थे उन्होंने 4 या 5 मंजिले का घर बना लिया था, तो ऊपर के मंजिले तोड़े जा रहे हैं और खास तौर से दूसरे जो मलबे हैं उन सबको अब निकालने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये सारा मलबा ले जाके रेलवे डिस्पोज ऑफ करेगी और उसके बाद यहाँ पर शुरू होगी एक कार्रवाई जिसके तहत जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो रेलवे का बनना है ताकि लोगों को सुविधा वो बेहतर दे सके, उसके लिए अब काम शुरू करेगी। वहीं जो इस तोड़क कार्रवाई के बीच में जो पथराव हुआ था उसको लेकर मुंबई पुलिस ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। अब तक इस पूरे मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, खास तौर से उनकी जिन्होंने पथराव किया था। इस मामले में एक जो एक्यूज्ड है वो माइनर है, इसके अलावा बाकी सबको अदालत में पेश करके उनकी आगे की रिमांड ली जा रही है।
4: और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि त्विशा सुसाइड मामले में सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर कर दिया है। यानी अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी त्विशा मौत के मामले में जांच, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने उस सिफारिश को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, अब इस मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया गया, यानी अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। परिवार की मांग के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मांग को माना, सिफारिश को अब सिफारिश के आप कह सकते हैं अप्रूव कर दिया है और अब इस मामले की जांच के लिए ये मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह एक बार फिर से जुड़ गए। रवीश पाल सिंह का रुख करते हैं। रवीश, मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार इस मामले को लेकर पहले भी दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि देखिए कई लैप्सेस हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसको सीबीआई को ही रेफर कर दिया गया है।
8: बिल्कुल, सरकार ने सिफारिश कर दी है। आज गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है केंद्र में, और गृह विभाग जो मध्य प्रदेश का है, जो कि सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव के अंतर्गत आता है, उसके चिट्ठी लिखी है और सिफारिश की है कि इसकी जांच, त्विशा मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे। देखिए, दो दिन पहले ही त्विशा का परिवार जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला था और मांग की थी कि सीबीआई से जांच की जाए। उसी दिन मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए थे कि इस मामले की जांच अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई से करवाई जाएगी, और दो दिनों के बाद ही ये आदेश आ गया है जिसमें त्विशा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात हुई। अच्छा, सीबीआई की एंट्री क्यों हो रही है? देखिए, सीबीआई की एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि शुरू से इस जांच को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, क्योंकि जिस इलास्टिक बेल्ट से फंदा लगाया था त्विशा ने कथित रूप से, वो इलास्टिक बेल्ट पोस्टमार्टम के समय वहां मौजूद होना चाहिए था एम्स में, लेकिन वो मौजूद नहीं था, वो पोस्टमार्टम के बाद भेजा गया, और इसे लेकर के भी सवाल खड़े हुए। वो बात अलग है कि बाद में लिगेटर की रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम से मैच कर गई, लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो गंभीर खामी पाई गई थी।
4: बिल्कुल, और रवीश, शायद इन्हीं खामियों के चलते परिवार लगातार मांग कर रहा था कि देखिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश पाल सिंह, हमारे संवाददाता का। अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपकी जेब पर झटके से जुड़ी हुई है। दिल्ली और दूसरे राज्यों की तरह अब बिहार और राजस्थान में भी दूध महंगा हो गया। जयपुर में सरस दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं, वहीं बिहार में सुधा दूध में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। उबाल सिर्फ दूध की कीमतों में ही नहीं बल्कि अगले महीने से अब कार खरीदना भी और महंगा हो जाएगा। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से वो कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है।
9: मारुति सुजुकी ने महंगाई के इस दौर में कार बायर्स को और झटका दिया है। कंपनी ने जून से गाड़ियों की प्राइसेस में लगभग 30,000 रुपए तक का हाइक अनाउंस किया है। कंपनी का कहना है कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही है। एग्जैक्ट मॉडल वाइज हालांकि कंपनी ने अभी तक जो ब्रेकअप होता है अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इम्पैक्ट हैचबैक से लेकर एसयूवी तक का सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। ऑल्टो वैगनर से लेकर इनविक्टो तक देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉल कार बायर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी प्रेशर पहले से ही बना हुआ है। हालांकि सिर्फ मारुति ही नहीं है जिसने 2026 में प्राइस हाइक अनाउंस किया है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ह्यूंडई भी प्राइसेस बढ़ा चुके हैं। स्टील, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने का सीधा सीधा असर अब इंडिया के अफोर्डेबल कार मार्केट पर भी दिख रहा है।
4: महंगाई की मार के बाद बात करते हैं गर्मी की मार की। गर्मी दिल्ली वालों को खूब सता रही है। गर्मी से बचने के लिए घरों से दफ्तरों तक एसी का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जिससे राजधानी में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। कल दिल्ली में बिजली की मांग 8,231 मेगावाट तक पहुंची, जो इस गर्मी के सीजन में सबसे उच्चतम स्तर था। इससे पहले बुधवार को पहली बार दिल्ली में बिजली की मांग ने 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया था। देश की बात करें तो कल भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला दिन रहा। दिल्ली में बिजली की मांग 270 गीगावाट के पार पहुंच गई।
7: दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है तो दूसरी तरफ बिजली की खपत भी नए कीर्तिमान गढ़ रही है। 21 मई को दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड खपत दर्ज की गई और इस दौरान लगभग 3:30 बजे 8,200 मेगावाट तक की बिजली की खपत दर्ज की गई। स्टेट लोड डिस्पैच एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ रही है।
10: कोशिश की जा रही है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाए, लेकिन लगातार बढ़ने वाली गर्मी की वजह से ये अब तक का सबसे बड़ा लोड है जो दर्ज किया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ये मांग 9000 मेगावाट तक भी पहुंच सकती है। यानी इस गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड खपत दिल्ली में दर्ज की जा रही है।
4: 12:12 रिपोर्टर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म delicious breakfast right before it ends.
14: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
21: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं।
6: ये भाई साहब सब पचा देते,
7: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
8: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
14: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
15: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
13: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत उसकी मां की सर्जरी के दौरान अस्पताल में उससे मिलने के लिए दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि खालिद को इसी पते पर रहना होगा और वह केवल अस्पताल में ही मां से मिल सकता है, किसी अन्य संस्थान पर वो नहीं जा सकता। खालिद को 1,00,000 रुपए का जमानत राशि भी जमा करानी होगी। खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही रहना होगा और अपने पते पर ही रहना होगा। खालिद को अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके पास केवल 1 मोबाइल नंबर होगा और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि ओझा हमारे साथ जुड़ गई है। उनका रुख कर लेते हैं। सृष्टि, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है?
1: अभी बिल्कुल काफी बड़ी राहत है उमर खालिद के लिए, जो दिल्ली रायट लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के मुख्य आरोपी हैं और अभी भी जेल में हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार किया था। जबकि उनके साथ जो आरोपी हैं इस मामले में, काफी आरोपियों को बेल दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल इस मामले में देने से इनकार किया था, उसके बाद उमर खालिद हाई कोर्ट तक पहुंचे और हाई कोर्ट ने 3 दिन के लिए उन्हें अंतरिम जमानत से बाहर आने की अनुमति दी है, ताकि वो अपनी मां जिनकी सर्जरी है उसे उन्हें हॉस्पिटल में विजिट कर सके। कुछ कंडीशंस हैं काफी जो लगाई गई हैं उमर खालिद पे, जो उन्हें फॉलो करनी होगी ये 3 दिन जब वो बाहर होंगे। 1,00,000 की श्योरिटी के साथ साथ ये कंडीशन लगाई गई है कि दिल्ली जो NCR एरिया है उसी में उन्हें रहना होगा। एक नंबर जो है, उन्हें एक ही मोबाइल फोन नंबर रखना होगा और कोई लोकेशन पे वो नहीं जा सकते हॉस्पिटल के अलावा अपनी माँ से मिलने के लिए। दिल्ली पुलिस ने उनकी इस मांग को अपोज किया था, ये बोलते हुए कि इस कारण से उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक ऑपोजिशन के बावजूद उनको जमानत को ये राहत दी है।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। चलिए अब वक्त है हमारी खास पेशकश अमेरिका और ईरान पर लगातार दोबारा से जंगी तैयारियों को लेकर स्पेशल रिपोर्ट का।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम दे चुके हैं। इसके बावजूद दोनों देशों में डील का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा पेच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज रूट को लेकर है, जिस पर दोनों आमने सामने रुख पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान के पास बहुत कम समय बचा हुआ है और किसी भी वक्त तनाव फिर से महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों से बर्बाद हुई अपनी सैन्य क्षमताओं को ईरान फिर से तैयार करने में जुटा हुआ है, वो भी अनुमान से कहीं ज्यादा अधिक तेजी के साथ। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ड्रोन का उत्पादन भी फिर से शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन मौजूदा जंग में उसका सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है और ईरान की 50% ड्रोन क्षमता अब भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक ईरान जंग में क्षतिग्रस्त हुई मिसाइल ठिकानों, लॉन्च आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और आवश्यक हथियार सिस्टम के उत्पादन लाइनों की मरम्मत और रिप्लेस करने की अपनी खोई हुई सैन्य शक्ति को फिर से रिवाइव करने, फिर से तैयार करने में जुटा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर युद्ध फिर से होता है तो ईरान क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए फिर से बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और अमेरिका और ईरान के बीच डील के तमाम कोशिशें हुई हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर मतभेद इसी के चलते अब भी बरकरार है और अब तक इस पर मोहर नहीं लग सकी है। अब दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नए जंग के लिए तैयारियां भी शुरू की। वहीं इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने वेपन ग्रेड यूरेनियम देश में बाहर जाने से साफ इंकार कर दिया है।

0: क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी बवंडर उठने वाला है? क्या एक बार फिर ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला होने वाला है? क्या ट्रंप जल्द ही ईरान में तबाही वाले प्लान पर अमल करेंगे? क्या फिर भीषण हमले मध्यपूर्व को युद्ध की आग में झोंकेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताजा चेतावनी के बीच अब ये महज सवाल नहीं है, बल्कि उस तनाव का विध्वंसक अंजाम दिख रहा है जो सीजफायर के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। अमेरिका ईरान में डील अब तक नहीं हो सकी है। सबसे ज्यादा स्थिति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इसी जंग के माहौल के बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपने रुख पर अड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ने साफ आदेश दिया है कि यूरेनियम को किसी भी सूरत में देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ईरान अपनी इस बात पर कायम है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंधों के आगे झुककर अपने परमाणु संवर्धन अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। ईरान का यही रुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिर से महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।
1: I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि

0: अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत अंतिम चरण में है। डील की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अगर बातचीत टूट जाती है तो ट्रंप फिर सख्त रुख अपनाते हुए सैन्य हमले की ओर जा सकते हैं। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है।
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: दरअसल अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान ट्रंप की इन धमकियों से बेपरवाह है। सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से कहा, हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ईरान का ये रवैया ट्रंप के गुस्से को भड़का रहा है। ट्रंप के सब्र का बांध टूट रहा है। खतरनाक युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कहा गया है कि अगर उनकी जमीन पर अटैक होता है तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसे सीमित करना मुश्किल होगा। ये लड़ाई क्षेत्र की सीमाओं को पार करके और आगे तक फैल जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये स्थिति फिर से महायुद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो,
2: ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डेडलॉक है सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही है। हॉर्मूज पर भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर हॉर्मूज रूट पर ईरान के टोल वसूलने के प्लान को लेकर ट्रंप का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर फिर से ईरान को चेतावनी दी है कि इस समुद्री रास्ते को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से कहीं जंग की स्थिति ना बन जाए।
0: वो समुद्री रास्ता जो अमेरिका इसराइल से युद्ध छिड़ने के बाद ईरान का सबसे मजबूत हथियार बना, जिस रास्ते के दम पर ईरान ने दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई का रास्ता रोक दिया, वही हॉर्मुज रूट एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की वजह बन सकता है। क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिस पर ट्रंप तिलमिला उठे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बताया कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे हॉर्मुज के ट्रैफिक से टोल वसूली को व्यवस्थित किया जा सके। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार विवाद के केंद्र में है। ऐसे में ईरान के टोल वसूली के प्लान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर टोल उन्हें कतई पसंद नहीं है और ईरान इस वसूली को फौरन बंद करे।
3: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job.
0: अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान की अहम ताकत बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ओर से अपनी शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, कुछ दिन पहले पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में

0: अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करने को किसी भी सूरत में राजी नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की धमकी का ईरान पर क्या असर होगा, और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या दोनों देशों के बीच और भी विनाशकारी युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच किसी डील को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि बैक चैनल किसी भी तरीके से युद्ध टालने के प्रयास में लगातार काम कर रहे। इस बीच अमेरिका की ओर से इस डील को लेकर एक और कोशिश की गई है।
2: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक चार शर्तें भिजवाई हैं। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी तो इस बार ऐसा हमला होगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहली शर्त, ईरान को न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से खुला रहेगा, ईरान का नियंत्रण नहीं होगा। तीसरी शर्त, समझौते पर दस्तखत होने तक ईरान पर लगे प्रतिबंध नहीं हटेंगे। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में खबर है कि वो शर्तों का आखिरी प्रस्ताव लेकर बातचीत करने तेहरान पहुंच रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अगर हमला होता है तो ईरान की सेना जवाबी वार के लिए तैयार है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में युद्ध विराम की शुरुआत के साथ ही ईरान ने ड्रोन बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया था। सूत्रों के हवाले से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में भी ये संकेत मिलते हैं कि ईरानी सेना अनुमान से कहीं अधिक तेजी से पुनर्निर्माण कर रही है। फिलहाल तो तेहरान से जो संकेत मिल रहे हैं वो तनाव को और बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री दो दिन से तेहरान में ही है, और अब पाकिस्तान के सेना के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी तेहरान पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आसिफ मुनीर ट्रंप की फाइनल शर्तों के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं, और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उसकी अब ये शर्तें नहीं मानी तो ईरान पर इस बार सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक हमला होगा।

0: ईरान पर हमले की डेडलाइन करीब आ रही है। ईरान अमेरिका महायुद्ध को लेकर जितनी तेजी से घड़ी की सुई घूम रही है, उतनी ही पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले दो दिनों से ईरान को मनाने में जुटे हैं और अब पाक आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर बातचीत की कमान संभालने जा रहे हैं। समस्या ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान ने अपने प्रस्ताव में युद्ध पूरी तरह खत्म करने की मांग की है और फ्रीज किए गए पैसे वापस मांगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की शर्त भी रखी है, लेकिन बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटकी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसकी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर वो ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा तो पाबंदियां हटने के बाद ईरान कर्ज निपटाने में उसकी मदद करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये एक थ्री वे डील है जिसमें शांति, पैसा और पाइपलाइन तीनों शामिल हैं। लेकिन ये सपना पाकिस्तान के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites. New discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: इन एसोसिएशन विद
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
14: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
15: हिंड बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
16: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेर आर यू? समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा से लौटते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार जीत के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में वाणिज्य, पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रियों द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों और उनके प्रभाव का भी आकलन किया गया। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन्हें काम में सुधार लाने और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए सुधारों की सूची भी मांगी गई। प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति का आकलन किया और मंत्रियों को युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों जैसे ऊर्जा और कृषि विभागों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जून में मंत्रिमंडल में फिर बदल की अटकलें तेज, ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
1: उसने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
0: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

धार बहुचाला में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकते राजधानी के बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल। भोपाल की तुषार डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई, मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश, सास की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पति समर्थ भी पहुंचा अदालत। सूरत से बरसती आग में तपरा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पर पहुंचा, लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की किल्लत, कई शहरों में पानी की किल्लत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: सुसाइड मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की। परिवार की याचिका पर एमपी हाई कोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई। त्रिशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट। पति समर सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध करेगा परिवार। सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को खारिज करने की मांग। एंटीसिपेटरी बेल पर त्रिशा के परिवार के वकील ने उठाए सवाल। वकील ने कहा आनंद फानंद में अग्रिम जमानत मिलने से जाहिर होता है गिरिबाला सिंह ने किया है पद का दुरुपयोग। दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कराने की तैयारी। त्रिशा शर्मा और सास गिरिबाला सिंह के व्हाट्सएप चैट्स के हवाले से वकील का बड़ा दावा। कहा त्रिशा को दी जा रही थी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। त्रिशा शर्मा डेथ केस में हाईकोर्ट पहुंची दोनों फैमिलीज। फरार पति पर लुकआउट नोटिस जारी। समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तलाश में जुटी। पूर्व मिस पुणे त्रिशा शर्मा की मौत पर कानूनी जंग तेज। फरार पति समर सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल की। शादी की वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। त्रिशा और समर की शादी का वीडियो वायरल। मौत के बाद रिश्तों पर उठे सवाल। त्रिशा डेथ मामले में बड़े सवाल। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड जांच के घेरे में। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। अंतिम संस्कार से इनकार कर एम्स मॉर्चरी में रखा शव। त्रिशा केस में आरोप प्रत्यारोप तेज। ससुराल पक्ष ने मानसिक तनाव और नशे की बात कही। मायके वालों ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। यूपी के 19 बाहुबलियों को मिले गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। मांगा बाहुबलियों को मिले शस्त्र लाइसेंस का ब्यौरा। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के सभी लाइसेंसधारी के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस और सुरक्षा जुड़ी जानकारी मांगी। आरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिलहाल चली। अब 9 जून को होगी सुनवाई। 19 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। 2007 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन जलाने के मामले में आरोप तय।

18 जून को महाराष्ट्र के सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु में सीवी शणमुखम की सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी, नामांकन 8 जून तक होंगे। अखिलेश यादव में बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार पर सारा निशाना, कहा बीजेपी के कुराज में सिर्फ दाम और मांग बढ़ रही है, सप्लाई आपूर्ति नहीं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून में होने की संभावना, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, सीएम होंगे शामिल। सोना पप्पू और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट की जांच के लिए सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी ने कई जगह छापेमारी की। रॉय स्ट्रीट में एक होटल में 7 कारोबारी के घर पर छापेमारी जारी, कोलकाता पुलिस ने एक अन्य सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी रेड डाली। ईडी की एक टीम मुर्शिदाबाद से शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पहुंची। ये सभी छापेमारी आज सुबह तड़के 6 बजे शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला दिल्ली दौरा, शाम 5:30 बजे पीएम से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलने का है कार्यक्रम। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी, बिना अनुमति पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों, गलियों, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े को डालना अनिवार्य प्रतिबंधित है। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से पहले अदालत के लिए आरोपी पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। चुनावी रैली के दौरान बंगाल में झालमुड़ी वाले के पीएम मोदी ने जिस झालमुड़ी वाले से झालमुड़ी खाई, उसे मिल रही है धमकियां। आरोपों के अनुसार पिछले कुछ दिन से उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल आ रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी का असर, त्रिलोकपुरी के संजय झील में पानी कम होने से कई मछलियां मरी। मेरठ में बिजली कटौती से नाराज जनता ने मेयर का घर घेरा, मेयर के बाहर आकर सुनी लोगों की समस्या, दिया मदद का भरोसा। कानपुर देहात में बिजली न आने से परेशान मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हंगामा, मुख्य गेट पर धरने पर बैठे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत दी। हाईकोर्ट ने खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत उनकी मां की सर्जरी के दौरान अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि खालिद को इसी पते पर रहना होगा और वो केवल अस्पताल में अपनी मां से मिल सकता है, किसी अन्य स्थान पर नहीं। खालिद को 1,00,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। खालिद को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में रहना होगा, अपने पते पर ही रहना होगा। खालिद को अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है, उसके पास केवल 1 मोबाइल नंबर है। मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ की गला घोट कर हत्या। आरोपियों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की, फरार आरोपी धर्म परिवर्तन का बना रहा है दबाव। राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे की इलाज के दौरान मौत। बिहार के बगहा में A&M कॉलेज छात्रावास में खराब भोजन और पेयजल संकट को लेकर हंगामा, जीविका समूह के इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन करी छात्राओं ने जीविका समूह के इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप, आंदोलन के दौरान कुछ छात्राएं बेहोश। गुरुग्राम में गोल्फ को तालाब में 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौत, रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। एम्बेंस आइलैंड के तालाब की घटना। झारखंड के पाकुड़ में शराबी पति बना हैवान, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या, पत्नी के शव को पास के निर्माणाधीन घर में दफनाया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीच सड़क पर फायरिंग, गोलीबारी में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम का अभियान लगातार दूसरे दिन जारी, कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों की निगम की टीम के साथ तीखी नोकझोंक। लखनऊ के डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा के साथ की दरिंदगी, हॉस्पिटल के ओटी में इंजेक्शन देकर रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत लेकर पूछताछ शुरू की। बिहार के वैशाली में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, बुलेट बाइक नहीं मिलने पर पीट पीट कर और जहर देने का आरोप। नासिक में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पंजाब पुलिस से किया गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला जुर्म। दानापुर रेलवे स्टेशन से आई दिल दिलाने वाली तस्वीर, एक बुजुर्ग के पैरों में बेड़ियों और तालों के साथ देखा गया, बेटों ने मानसिक बीमारी का आरोप लगाया। बिहार के सासाराम में वार्ड परिषद का पूजा सामग्री के आड़ में शराब बेचने का वीडियो वायरल, पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अर्की नागरिक अस्पताल में एक महिला की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। बिहार के बेगूसराय में नशा करने से मना करने पर एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी गला रेतकर हत्या की, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार में मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत से स्टूडेंट्स का हंगामा, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति की लालच में भाई ने की भाई की हत्या, 7 दिन के बाद पुलिस ने हत्याकांड खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को किया गिरफ्तार।
मधुबनी में लोको पायलट की सूझ

ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पर बाइक फंसने से अफरा तफरी। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। एसी कोच में सफर करने वाली महिला यात्रियों को बनाता था निशाना। गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर से लापता 5 बच्चियां, पटना जंक्शन से बरामद। बच्चों ने खुलासा किया कि 1 साल से घूमने की प्लानिंग कर रही थी। धनबाद के सबसे सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान। भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार। एमपी के सत्ता में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का प्रयास, पुलिस की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। तेलंगाना के मेरठ में नई मारुति कारों को ले जा रहे कंटेनर ट्रक में अचानक लगी आग, 10 नई कारें झुलसकर खाक। धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के किए दर्शन। बद्रीनाथ में लगा भक्तों का तांता, 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्पर फाड़ हो रही कमाई। 32 दिन में यमुनोत्री मंदिर समिति ने कुल 23.5 लाख रुपए की आय की, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ आय में हो रहा इजाफा। बिहार के 14 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी, कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। बिहार के औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद, गया जहानाबाद में स्कूल का समय बदला गया। बिहार का कैमूर रहा सबसे गर्म शहर, 44 डिग्री के पार पहुंचा कैमूर का तापमान। प्रशासन लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा महत्वपूर्ण मैच। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों टीम्स के लिए आखिरी लीग मैच, शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। एम टक्कर के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों टीमों का जोश आए, अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रही है दोनों टीम्स। सनराइजर्स खिलाफ मैच से पहले आरसीबी को मिली राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित। केकेआर खिलाफ मैच में रजत को सिर में लगी थी चोट। दोनों टीम्स में हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से 14 में जीत हासिल की है। आर माधवन की नई फिल्म जीडीएन का ऐलान, धांसू पोस्टर रिलीज, जीडी नायडू की कहानी से उठेगा पर्दा। नेटफ्लिक्स पर आसू धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूम, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी फिल्म, ताबड़तोड़ दिखेगा एक्शन। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में लॉन्च, फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे का अहम रोल है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फिल्म सिस्टम रिलीज, फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का लोक अभियोजक का रोल, जबकि ज्योतिका का स्टेनोग्राफर का रोल है। जी प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज सतरंगी बदले का खेल, फिल्म में अनुमान पुष्कर, कुमार मिश्रा और महविश की भूमिका है। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरास में पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों की हत्या, उत्तरी हॉन्डुरास में कम से कम 10 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 14 के मरने की खबर, मरने वालों में 5 बच्चे 3 महिलाएं शामिल। गुरुवार को गाजा पर इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 4 लोग, दक्षिणी गाजा के राफा और खान यूनिट के साथ साथ उत्तरी बेत लेहिया में हुए हमले। यूएन ने इजरायली सेटल्स पर वेस्ट बैंक में 1 हफ्ते में 49 हमलों के लगाए आरोप। इजरायल ने घर खेत गाड़ियों और एक मस्जिद में लगाई आग। आज सुबह इटली के 15 फ्लोटिला कार्यकर्ताओं का दल पहुंचा रोम, इजरायल की हिरासत में दुर्व्यवहार के लगाए आरोप।

और अब बात लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की, जहां पर राजा कंस पासी के किले में नमाज को लेकर विवाद है। एहतियातन पुलिस सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई है। राजा कंस पासी किला परिसर में पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये किला नहीं है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यहां मजार पर सालों से नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन पासी समाज इसे राजा कंस का किला बता रहा है। आज जुमा है, कहीं माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस एहतियातन वहां पर बैरिकेडिंग कर चुकी है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज जुमा है, वहां पर नमाज अदायगी ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। कसमंडी का ये किला है और मुस्लिम समाज ने इसे किला दरअसल मानने से इनकार कर दिया है।

0: और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। देवकरिया में विकास योजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार में हर जिले में एक माफिया हुआ करता था, हर पर्व पर उपद्रव होता था, गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देकर योजनाएं बांटी जाती थी।
1: आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू यावानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है जहां पर चुनाव के दौरान झारग्राम में जिस झालमुड़ी वाले से प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी उसे धमकियां मिल रही है। झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साहू के मुताबिक पिछले कुछ दिन से उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। विक्रम ने दावा किया कि उन्हें इन कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना ने विक्रम साहू और उनके परिवार को गहरे डर और चिंता में डाल दिया है। इस मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने घटना की जांच की। 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा से लौटते समय सड़क किनारे एक झालमुड़ी की दुकान पर रुके थे और झालमुड़ी खाई थी।
2: अभी बहुत तरह की दिक्कत हो रहा है, ये जो धमकी आ रहा है, कल से हमको ज्यादा धमकी आया, रविवार से मैंने पाकिस्तान से जो फोन आया ज्यादा धमकी आ रहा है, माँ बाप खाना भी नहीं खा रहे, हम भी टेंशन में है, मेरा जान के खतरा है, उन लोग उल्टा पुल्टा धमकी दे रहा है, मैसेज कर रहा है हर तरफ की, उन लोग धमकी ज्यादा दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग है, व्हाट्सएप पे है, हाँ वीडियो कॉल किया था, अलैकुम सलाम ऐसा कुछ बोल रहा था, उन लोग ग्रुप में दिखा रहा था बहुत तरह की,
3: क्या दिखा रहा था,
2: बहुत लोग थे मैंने वहाँ पर, हथियार वगैरह था, चौक लाल करके दिखा रहा था हमें कि हम तुम्हारा दुकान टारगेट में है, बम से उड़ा देंगे।
3: आपको क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आए तो बोल के,
2: हाँ प्रधानमंत्री आए तो ऐसा ही तो उन लोग सोच के बोल रहे हैं ना, मुझे जानकारी नहीं।
3: कितना फोन आ रहा है आपको धमकी भरा,
2: बहुत ऑडियो कॉल तो बहुत आ रहा है, वीडियो कॉल में यही एक दो फोन कर रहा है, अब बहुत लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहा है, उतना चेक नहीं।
3: मैसेज में वो लोग क्या लिख के भेजा है आपको,
2: वो बोला 1300 टारगेट में है, बम से उड़ा देंगे।
3: अभी आपका डरे हुए हैं,
2: हाँ बहुत डरे हुए।
0: फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
8: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
9: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
14: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
0: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
18: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
0: आप कैसे कर लेते हो?
18: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड्स है
19: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
21: टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते,
22: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
23: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
24: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
25: जीके मैक्स।
26: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
25: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
26: जेके वॉल मैक्स
25: बेस्ट पेंट,
26: जेके मैक्स।
25: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
27: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने।
28: Money, money, money, money, every month.
29: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
2: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
3: Like I said before, we better hold the sins.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: और एक बार फिर आपको मलियाबाद लिए चलेंगे, जहां पर किले और मजार पर चल रहे विवाद की खबर पर इस वक्त वहां पर माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
3: लखनऊ के मलियाबाद एरिए में सबसे बड़ी बात है कि कंसा पासी का जो बुर्ज बताया जाता है, जो किला बताया जाता है, वो मेरे पीछे मौजूद है, जहां पर नमाज होने की बात है, क्योंकि आज जुम्मा है और यहां पर नमाज भी होनी है, हर बार होती है। इसका विरोध जो पासी समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं, और ये आप तस्वीरें अगर देख रहे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ये कंसा पासी का बुर्ज है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बुर्ज के अंदर इस तरीके की मजार जो है वो बनाई गई है। ये दावा किया गया है यहाँ के जो समाज है, कम्युनिटी है उसका, क्योंकि ये माना गया कि ये जो बुर्ज है, ये जो किला नुमा है, ये कंसा पासी का था और यहाँ पर इस तरीके से पूरी नमाजें अदा की जाने लगी हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा किला था और अब इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति से बचाया जा सके। अब अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये बुर्ज नुमा किला है, ये अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ से ये पूरी तरीके से बताया गया कि ये कंसापासी का किला रहा। और उस समय जब जिस तरीके से बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बसने की कोशिश की, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा मजार यहाँ पर आप देखेंगे, जो पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, और ये पूरा ये जो आप नक्काशी देख रहे होंगे, ये भी दावा किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मानना है कि यहाँ पर उनका ये दरगाह है। लेकिन जो कांसी समाज का लोग है, उनका मानना है जो नक्काशी है ये नाग की बनी हुई है, जो आप देख रहे होंगे नाग की फन टाइप बना हुआ है। ये पूरा एक पीछे गांव का एरिया है और यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए, चूँकि फ्राइडे की जुम्मा की नमाज है और उससे पहले एहतियातन इसको पूरी तरीके से पुलिस से नाकाबंदी कर दिया गया है। लखनऊ के मलियाबाद से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
2: इसी के साथ रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा उसका होगा फायदा। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकते राजधानी से बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल। भोपाल की त्रिशा डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई। मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश, सास की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पति समर्थ भी पहुंचा अदालत।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम। 1:30 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की दो बेटियों की करेंगे। दोनों की मौत पर रहस्य बरकरार है और एक मामला भोपाल का है तो दूसरा ग्वालियर का है। हैरानी की बात यह है कि दोनों बेटियां ट्विशा और पलक की मौत 12 मई को ससुराल में हो गई। पुलिस दोनों मामले को सुसाइड बता रही है, लेकिन दोनों परिवारों को इस थ्योरी पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। दोनों परिवारों ने ससुराल वालों पर बेटी को मारने का इल्जाम लगाया है। पहले बात करेंगे ट्विशा मौत मामले की।
1: ड्रग्स मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है, तो उसको ये मान रही है। हाँ, 2 साल मेरा बेटा डिटेन हुआ है कॉलेज में इसी को लेकर के। वो
2: सन शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है।
3: वहीं से तो शुरू हुआ, हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।

0: और इस बीच ट्विशा मौत मामले एक बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 10 दिन पहले ट्विशा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वाले ने सुसाइड बताया, लेकिन ट्विशा के पिता ने सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठाते हुए ससुराल वालों को ही मौत का जिम्मेदार बता दिया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों परिवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। ट्विशा के पिता ने दोबारा दिल्ली एम्स पोस्टमार्टम की मांग की। वहीं सास गिरीवाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की गुहार लगाई गई। दूसरी ओर फरार चल रहे ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। तो भोपाल की बहुचर्चित ट्विशा मौत मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सीबीआई जांच की सिफारिश मध्यप्रदेश सरकार ने कर दी है। ट्विशा के परिवार ने शुरू से ही भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे और अब कॉल रिकॉर्ड्स, वायरल ऑडियो, फरार पति, पूर्व जज सास के रसूख को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के बीच मामला और गंभीर हो गया है।
1: दस दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब यह मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। आज हाईकोर्ट में दोनों परिवार की अर्जी पर सुनवाई हुई और इसी बीच मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ट्विशा का परिवार लगातार निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहा है। परिवार को ना तो भोपाल पुलिस पर भरोसा है, ना ही पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर। वो तो दोबारा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम की मांग भी कर रहा है।
2: ट्विशा की मौत मामले की जांच अब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को देने की सिफारिश कर दी है। जाहिर सी बात है, प्रदेश सरकार को भी अब एहसास हो रहा है कि ट्विशा की मौत की जांच के मामले में पुलिस ने कई गंभीर लापरवाहियां बरती हैं और शायद यही वजह है कि खुद गृह विभाग जिस मुख्यमंत्री के पास में मौजूद है, अब उन्हीं की सरकार ने ट्विशा की मौत के मामले की जांच अपनी पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है।
1: ट्विशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से खफा है। ट्विशा के पिता का सीधा आरोप है कि ट्विशा की सास, जो कि पूर्व जज गिरीबाला रही है, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरीबाला ने ट्विशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जज और बड़े अधिकारियों को किए गए।
3: नहीं है, ये उन्हीं के वकील द्वारा अपनी बहस में कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए गया था ये दिखाने के लिए कि हमने उनको कॉल नहीं किया था, पर ये बात लगी कि हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे। पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं। जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, एसीजीएम के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
1: मामले को और गंभीर बना दिया एक वायरल ऑडियो ने। दावा किया गया कि ये बातचीत अप्रैल महीने की है, जब ट्विशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था। ऑडियो में कथित तौर पर गिरीबाला सिंह अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती सुनाई दे रही हैं। आज तक वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बहुत बड़ा सबूत बता रहा है।
3: मैं कहा ऑडियो की, जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है।
1: परिवार का आरोप फरार पति समर्थ को लेकर भी है। 10 दिन बाद भी पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई। परिवार का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण समर्थ सलाखों से बाहर है। पुलिस के नाम बढ़ाने को भी वो सिर्फ नाटक बता रहे हैं।
4: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरीबाला जी को। और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरीबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
1: ट्यूषा का शव अब भी भोपाल एम्स के मुर्दा घर में रखा हुआ है। परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि सच सामने आने तक शव सुरक्षित रखा जाए। वहीं परिवार जबलपुर हाईकोर्ट में इंसाफ का इंतजार कर रहा है। परिवार को उम्मीद है कि दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला भी आएगा और गिरवाला की अग्रिम जमानत भी रद्द होगी। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो ट्विशा की मौत कैसे मिस्ट्री बन गई, ये कई सवालों से जाहिर है। ट्विशा के पिता ने सीसीटीवी एफआईआर से लेकर रसूखदार सास की अग्रिम जमानत के साथ भोपाल पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए।
5: ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है, सिंपल इंजरी है। हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है।
1: ट्विशा मौत मिस्ट्री खुदकुशी और मर्डर के बीच झूल रही है। धुंध इसलिए गहरा है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो आत्महत्या थ्योरी पर शक पैदा करते हैं। मसलन सेलेक्टिव सीसीटीवी कैसे जारी हुई, सुसाइड वाले बेल्ट की जांच क्यों नहीं हुई, 12 को मौत 3 दिन बाद एफआईआर क्यों, ट्विशा की चोट पर पुलिस गोलमोल क्यों, विसरा रिपोर्ट से पहले सुसाइड थ्योरी क्यों, सामान्य मौत तो पति समर्थ फरार क्यों, सास को अग्रिम जमानत की जल्दी क्यों थी, सवालों की पूरी फहरिस्त है। लेकिन भोपाल पुलिस से लेकर सारे महकमे ट्विशा केस को सुसाइड बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब पुलिस कमिश्नर को ही लीजिए, संजय कुमार सिंह ने पूरी जांच से पहले ही फैसला सुना दिया कि आत्महत्या है। इन्हें तो जैसे विसरा रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं।
5: नहीं, अभी तक की जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमार्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है।
6: तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें।
5: नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है।
6: परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के।
5: नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमार्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसके अलग से।
1: ट्विशा के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा भी पुलिस की थ्योरी पर सवालों की बौछार कर रही है। उन्हें एफआईआर से लेकर पूरी जांच तक पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि कदम कदम पर ट्विशा की सास का दखल काम कर रहा है।
7: संदिग्ध हालतों में मौत होने के बाद जहां उसको सहानुभूति तो छोड़िए, किस तरीके की मीडिया में आके वो बातें कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आज एम्स में, 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे सेकंड पोस्टमार्टम की, शासन प्रशासन सबसे करा, वो नहीं मिली। लेकिन एफआईआर हमें 3 दिन से मिली लेकिन जमानत 2 दिन में हो गई। ऐसा कानून सही नहीं है, ऐसे सिद्धांत भी सही नहीं है। जो
1: ट्विशा के पति समर्थ को भोपाल पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ दूसरी आरोपी यानी ट्विशा की सास जो कभी जज थी, वो पहले ही अग्रिम जमानत का सर्टिफिकेट लिए पुलिस को खुद से दूर कर चुकी है। अब ऐसे में ट्विशा की मौत के पीछे का असली सच कैसे सामने आए, ये सवाल छूट गया कि जब एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के तौर पर पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह का नाम दर्ज है और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही अग्रिम जमानत ले ली है, तो भोपाल पुलिस ने उन्हें अग्रिम जमानत देने वाले उस कोर्ट के फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी। लगता है भोपाल पुलिस को पूर्व जज साहिबा को गिरफ्तार करने या उनसे पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं।
2: ट्विशा की मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्विशा के परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची जारी की है और दावा किया है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को सास गिरिबाला सिंह ने इन मोबाइल नंबरों पर कई कई बार बात की। ट्विशा का परिवार शुरू से ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल होने का आरोप लगाता आया है। परिवार का दावा है कि इसी ताकत की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर पुलिस की जांच तक में उसका असर देखा गया। अब देखना यह है कि ट्विशा के परिवार ने जो मोबाइल नंबर जारी किए हैं वो जांच की दिशा में कितनी अहम कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि त्रिशा के परिवार के वकील ने दावा किया है कि वो इसे लेकर भोपाल की अदालत में याचिका लगाने वाले हैं कि इन नंबरों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जाए।
8: हैरानी तो यह है कि मौत के बाद अपनी बहू पर ही गिरीबाला आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर बताती नहीं थी। सवाल यह है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत आपने कभी त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
6: निकले मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा।
9: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी। ठीक,
8: जाहिर तौर पर पुलिस केस को जितना सीधा बता रही है वो इतना ही उलझा हुआ है। ऐसे में परिवार का शक दूर होना चाहिए, मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: और इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी, आपको बता दें त्रिशा की सास गिरीबाला सिंह से जब मीडिया ने सवाल किए इस मामले को लेकर तो वो बौखला गई। उनके वकील ने भी किसी तरह का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने चुप्पी साध ली है, पहले लंबे लंबे इंटरव्यू दिए, मीडिया के सामने आई और अब सवालों से बौखला गई।
10: बहुत गलत है ये, इंसान को उसकी इंसानियत दोगे कि नहीं दोगे? अरे क्या तरीका है ये?
11: सर आपका भी तरीका ठीक
10: है, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे खेलते ही किसी को? वो एक महिला है
11: सर, आप बदतमीजी कर रहे हैं सर।
10: हम क्यों बदतमीजी करेंगे?
11: बदतमीजी कर रहे हैं
10: आप, क्या कर रहे हैं?
11: आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे बयान,
10: अरे भाई मत करो यार।
11: सर एक लड़की मर गई है, आपसे सवाल भी ना पूछे हम।
10: अरे कोई कानून है क्या आपको सब बताए?
11: कानून है ऐसा? तीन नोटिस जारी हो चुके हैं अभी तक। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
10: पीड़ित परिवार पूछिए,
12: पीड़ित परिवार से पूछिए, परिवार कहता है
11: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
12: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
10: स्वागत है सीबीआई जांच का,
11: हम स्वागत करते हैं सीबीआई। सीबीआई जांच होनी चाहिए,
10: जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए। हाँ। जरूर होनी चाहिए।
11: अच्छा,
10: अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को? मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका?
12: सर
10: साहब जो कहना है केस पे हमारे कहने से क्या होगा?
11: सर क्या आप जवाब देने जा रहे हैं? सर
12: पुलिस स्टेशन जा रहे हैं
11: क्या? सर जवाब देने जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
10: सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
12: आपके बगल में ड्राइवर
11: सर, आप पैर के लिए लगे हुए हैं,
10: बंद करिए गाड़ी में।
11: आप ये बताइए कि एक बच्चे की जान देना जरूरी नहीं है आपको? क्या आप मीडिया पे गाड़ी चलाने जा रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं क्या मीडिया पे?
10: तस्वीर देखिए,
11: बात करने की
12: तरीके का बयान यहाँ पे दिया जा रहा है, उल्टा मीडिया पे चिल्ला छोड़ बताई जा रही है। सवाल से बता है क्यों पुलिस के पास नहीं जा रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर।
0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रवीश, गिरीबाला सिंह के वकील शायद इसलिए भी बौखला गए हैं क्योंकि कई चीजें, कई ऐसे तथ्य हैं जो अब उनके केस के अगेंस्ट जा रहे हैं।
2: देखिए, जिस दिन पहली बार गिरीबाला सिंह सामने आई थी मीडिया के, सोमवार का वो दिन था और समर्थ सिंह जो कि उनके बेटे हैं उनकी अग्रिम जमानत याचिका भोपाल अदालत से रद्द हुई थी। उसी दिन शाम को 7 बजे गिरीबाला सिंह अपने वकील ईशोन जॉर्ज कार्लो के साथ मीडिया के सामने आई थी। उस दिन भी जब वो सवालों के जवाब दे रही थी तो जो वकील साहब हैं उनके, वो मीडिया पे ही तमाम सवाल डाल रहे थे। वो आरोप लगा रहे थे कि मीडिया ट्रायल कर रहा है उनके मुवक्किल के परिवार का और ऐसे में फेयर इंक्वायरी कैसे होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कोर्ट फेयर जजमेंट कैसे देगा, ये तमाम बातें उन्होंने तब भी कही थी। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी, मीडिया के कैमरे सुबह से गिरीबाला सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि आज जबलपुर भी हियरिंग है उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पे। जो जमानत भोपाल अदालत से मिली हुई है उसे भी चैलेंज किया गया है जबलपुर हाईकोर्ट में। इसके साथ ही सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर के भी जबलपुर हाईकोर्ट में आज याचिका लगी हुई है। तो महत्वपूर्ण दिन था, तो जाहिर सी बात है सबकी कोशिश यही थी मीडिया के लोगों की कि गिरिबाला सिंह का कोई पक्ष सामने आए। और जब वो बाहर निकल रही थी आज, जब उनके वकील साथ में थे, तो उस दौरान जो मीडिया का जमावड़ा था उनके घर के बाहर, तो तमाम मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने के लिए जब वहां पहुंचे, तो एक बार फिर से पिछली बार की तरह उनके जो वकील हैं उन्होंने आपा खो दिया।
0: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मध्यप्रदेश का एक सुसाइड केस भी सवालों के घेरे में। मामला ग्वालियर के इंस्टाग्राम क्वीन पलक रजक का है। वो रील्स में मुस्कुराती तो दिखती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने जिंदगी ही खत्म कर ली। परिवार के आरोपी के ससुराल वालों ने एक हस्ती जिंदगी की सांसें छीन ली।

0: ग्वालियर की ये तस्वीरें अब एक रहस्य बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स वाली पलक रजक, जो इंस्टाग्राम पर अपनी मुस्कान और रील्स के लिए जानी जाती थी, आज खुद एक सवाल बन गई है। भोपाल की ट्रीशा की तरह ग्वालियर की पलक रजक की मौत की खबर भी 12 मई को आई। कमरे में पलक का शव मिला, 21 साल की उम्र और मौत की वजह बनी फांसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है, हैंगिंग से दम घुटने के कारण मौत हुई। शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान भी नहीं है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पलक के परिवार ने इस मौत को आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। पिता राधेश्याम रजक और भाई प्रिंस रजक का आरोप है कि शादी के बाद से ही पलक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कार और सोने की चैन की मांग होती थी, सास और देवर मानसिक दबाव बनाते थे और पति अमित कभी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। परिवार का दावा है कि पलक अंदर ही अंदर टूट चुकी थी।
1: जो इन लॉज हैं, उन्हें दहेज के चक्कर में लड़की को मार दिया। एक साल अभी शादी को नहीं हुआ है। लास्ट 3 दिन से लड़की भूखी थी, घर पे इन्फॉर्म कर रही थी, पर जब हम जाने की बात करते थे तो उनके घर वाले टाल मटोल कर देते थे। काफी टाइम से उससे गाड़ी की भी मांग करी जा रही थी और अभी लड़की बिल्कुल पूरे तरीके से लड़की को मारा भी गया है। लड़की के बॉडी के ऊपर बहुत ही मतलब निशान भी है पर, और जो एक्चुअल अक्यूज थे वो सारे के सारे फरार हो चुके हैं।
0: सबसे बड़ा सवाल उस फोन कॉल ने खड़ा किया है, जो मौत से करीब 20 मिनट पहले पलक ने अपने पिता को किया था। परिजनों के मुताबिक पलक ने फोन पर अपनी तकलीफ बताई थी, घर से ले जाने की भी बात हुई। भाई प्रिंस उसे लेने निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई, पलक अब नहीं रही।
2: देखिए, थाना मुरार में एक नवविवाहिता ने सुसाइड किया, प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। इसमें बॉडी का पीएम हम करा रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पे इसमें नगर पुलिस अधीक्षक मुरार जो है उसकी जांच कर रहे हैं। फिर इनके परिजनों के भी हम कथन ले रहे हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, और भी जो लोग वहाँ चश्मदीद थे उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट से और अन्य सभी पहलुओं की इसमें हम जाँच की जा रही है।
0: अब पुलिस की जाँच का बड़ा हिस्सा बन चुकी है पलक की सोशल मीडिया रील्स। पलक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। उसकी कई रील्स अब मानसिक तनाव की तरफ इशारा करती दिख रही हैं। 10 मई को पोस्ट की गई एक रील में पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूअस क्राइंग और डिप्रेशन जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। वहीं 24 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी पर पोस्ट की गई रील में भी दर्द और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। क्या ये रील्स मदद की पुकार थी या फिर किसी गहरे तनाव का संकेत?
3: इसी के साथ रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So, you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
9: After multiple assassination attempts, they can't even get...
10: They're reliable.
11: Always when I need them.
8: ...to live sports action.
12: One-hand jam by LeBron on the break.
13: That's another three, Steph Curry.
8: And your favorite music.
14: Well, the dawn begins to crack.
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.

0: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि जो 403 विधानसभाओं पे संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है। इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
1: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
2: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।

नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

सासुर के साल बाद आज जुमे के दिन धार भोजशाला में अखंड पूजा। श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती की, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2027 में गठबंधन की विसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका। दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत। मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकती राजधानी से बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल। भोपाल की ट्रिशा डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई। मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश, सास की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के गिरीवाला के वकील। सूरत से बरसती आग में तप रहा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की कटौती, कई शहरों में हुई पानी की किल्लत।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, न्यूज रूम लाइव में दो बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं खबरों का डोज लेकर। तो आज कौन कौन सी खबरें, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं न्यूज रूम लाइव में आज किन खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धार की भोजशाला की। जैसा आप देख रहे हैं कि अब यहां पर रिवाज बदल गया।

0: पूजा का आयोजन आज धार के भोजशाला में हो रहा है। शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन आमतौर पर इससे पहले फैसला आने से पहले शुक्रवार के दिन नमाज हुआ करती थी और नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर अता करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम आया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भजन की गूंज, तालियों की गूंज और माँ वाग्देवी की अखंड जो पूजा हो यहाँ पर इस वक्त हो रही है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
1: शुक्रवार को महाआरती, शुक्रवार को वाग देवी पूजा, शुक्रवार को गूंजा जयकारा, ऐसा पहली बार हुआ है। भोजशाला में हिंदू भक्तों की शुक्रवार के दिन ये भीड़ पहली बार जुटी है। सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा, हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी हर तरफ नजर आ रही थी।
2: पूजा का मुख्य दिन जो है वो शुक्रवार ही है, क्योंकि माताओं की पूजा, देवी की पूजा हमारे धर्म में शुक्रवार के दिन ही होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बहुत अच्छा पहला शुक्रवार है, 700-750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहाँ पूजा कर पा रहा है निरंतर।
3: माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहाँ बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
4: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गई है।
1: भोजशाला में सुबह से भक्ति का माहौल रहा, लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई और फिर यात्रा निकली और फिर महा आरती हुई और इस तरह हिंदू भक्तों के लिए आज यानी 22 मई की ये तारीख खास बन गई।
2: आज का जो दिन है वो महज एक दिन नहीं है धार के लोगों के लिए, ये 721 साल लंबा इंतजार है जो आज खत्म हुआ है। आज से पहले 721 साल तक मध्य प्रदेश के धार में ये जो भोजशाला है यहाँ शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद ये मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया और आप देखिए गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और भोजशाला के गर्भगृह से ये जो एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक तस्वीर रखी है, क्योंकि असली जो प्रतिमा है वो तो लंदन के म्यूजियम में इस वक्त मौजूद है।
1: भोजशाला में ऐसे दृश्य पहली बार दिखे हैं। शुक्रवार को यहां जुमे की नमाज होती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद स्थिति बदल गई है। आज यहां जुमे की नमाज नहीं, वाग्देवी की महा आरती हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को अपने फैसले में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से पहले हिंदू समुदाय को सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति थी, मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ते थे। अच्छी बात यह रही कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से जुमे की नमाज को लेकर कोई कोशिश नहीं दिखी, हालांकि प्रशासन के लिए आज बड़ी चुनौती थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भारी तैनाती थी।
2: डॉग स्क्वाड के साथ साथ अगर आप देखें तो मेटल डिटेक्टर के साथ भी पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं और वो लगातार चप्पे चप्पे पर जाकर के इस भोजशाला में जो यहां पे किसी भी तरीके की अप्रिय वस्तु हो सकती है उसकी जांच की जा रही है। धार प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत संवेदनशील मौका बन जाता।
1: भोजशाला पर हक को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यानी कि अंतिम फैसला वहीं से आना है, लेकिन भोजशाला में अमन चैन बना रहे इसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
0: तो 700 साल बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसा वहां पर श्रद्धालु कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रवि जरा बताइए कितना लंबा इंतजार किया गया और आज क्या तस्वीरें खास रही धार के भोजशाला से?
2: देखिए भोजशाला की तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दूसरा पक्ष भी दिखा देते हैं, क्योंकि जुमे की नमाज आज भोजशाला के भीतर नहीं

0: हो रही है तो मुसलमानों ने अपील की थी कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अब अपने अपने घरों में दुकानों में जहां उनको जगह मिल रही है वहां आकर के वो आज नमाज पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने हाथों में काली पट्टियाँ बांधी हुई है कि संवैधानिक रूप से उन्हें आज भले ही वहाँ नमाज पढ़ने नहीं दी गई हो जहाँ ये पिछले इतने सालों से नमाज पढ़ रहे थे शुक्रवार की जुमे की, लेकिन आज जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हाथों में काली पट्टी बांध करके प्रतीकात्मक स्वरूप से विरोध कर रहे हैं इस फैसले का हाई कोर्ट के। और अपने अपने दुकानों पे अपने घरों पे जहां जगह मिल रही है वहां पे आज वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल समद है मुखर आवाज है धार के मुसलमानों की और वहां पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो अपने घर के बरामदे में आकर के आज नमाज पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने काले कपड़े भी पहने हैं और साथ ही में जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग उन्होंने हाथों में काली पट्टियां बांधी हुई है आप देख सकते हैं ये आज जुमे पर काली पट्टी बांध करके ये उस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये तो संवैधानिक रूप से हाईकोर्ट का फैसला था, फिर इस पर विरोध कैसा जो आप लोग आज काली पट्टी बांधे हुए?
1: सर हमारा संवैधानिक अधिकार है, 700 साल से हमारी मस्जिद रही है, वहाँ बरसों से हमारे बुजुर्ग भी नमाज पढ़ते हैं, हमारे लोग भी, हम भी आज तक नमाज पढ़ते हैं, इसलिए इसके कारण हमने आज विरोध करा है। इसी कारण से हमने हमारे आसपास और घर पे ही नमाज अदा की। जी
0: आप लोग बताएं क्या लग रहा है आपको, ये फैसला आप लोग के पक्ष में नहीं था तो किस तरीके से अब आप लोग देखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी गया है मुसलमान समाज?
2: अभी हमारा दिल दिमाग मुकाम पे नहीं, अभी कुछ सवाल नहीं करो तो ही अच्छा है।
0: तो काली पट्टी का
2: मकसद इसका विरोध कर रहा है,
3: नमाज पढ़ने का इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं आज हम।
0: आज कहाँ नमाज पढ़ी, नमाज कहाँ पढ़ी फिर आप लोगों ने?
4: हमने हमारे घर पे ही नमाज अदा की।
0: घर पे
3: नमाज अदा की है,
4: निफले नमाज अदा की है, जुमे की नमाज तो वहीं होती है जामा मस्जिद में, और अभी हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से अभी वहाँ आज जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाए हैं तो उसी के विरोध में हमने ये काली पट्टी
0: भी काली पट्टी
4: जी
0: आप देख सकते हैं ये काली पट्टियां जो है ये उस विरोध का स्वरूप है जो इन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज जताया है क्योंकि हाईकोर्ट ने वहां नमाज पढ़ने की मनाही दी थी।
5: तो मतलब काली पट्टी बांध के यहां पर विरोध अपना जताया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं लखनऊ से भी एक खबर है, लखनऊ के मलिहाबाद में राजा कंस पासी के किले में आज नमाज को लेकर विवाद हो गया। जब आज शुक्रवार नमाज अदा करने नमाजी वहां पहुंचते हैं तो उनका विरोध किया गया। लखनऊ के मलिहाबाद में नमाज पर विवाद छिड़ा। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मलिहाबाद की है और यहां पर ये बताया जा रहा है कि राजा कंस पासी का किला है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष यहां पर कह रहा है कि यहां पर तो बहुत पहले से नमाज पढ़ी जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि ये किला नहीं है, उनके मुताबिक यहां मजार पर सालों से नमाज पढ़ी जाती है लेकिन पासी समाज इसे राजा कंस का किला बता रहा। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव वहां पर मौके पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: लखनऊ के मलिहाबाद एरिया में सबसे बड़ी बात है कि कंसा पासी का जो बुर्ज बताया जाता है, जो किला बताया जाता है, वो मेरे पीछे मौजूद है जहां पर नमाज होने की बात है क्योंकि आज जुम्मा है और यहां पर नमाज भी होनी है, हर बार होती है। इसका विरोध जो पासी समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं और ये आप तस्वीरें अगर देख रहे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ये कंसा पासी का बुर्ज है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बुर्ज के अंदर इस तरीके की मजार जो है वो बनाई गई है। ये दावा किया गया है यहाँ के जो समाज है, कम्युनिटी है उसका, क्योंकि ये माना गया कि ये जो बुर्ज है, ये जो किला नुमा है, ये कंसा पासी का था और यहाँ पर इस तरीके से पूरी नमाजें अदा की जाने लगी हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा किला था और अब इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति से बचाया जा सके। अब अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये बुर्ज नुमा किला है, ये अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से ये पूरी तरीके से बताया गया कि ये कंसापासी का किला रहा और उस समय जब जिस तरीके से बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बसने की कोशिश की तो ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा मजार यहाँ पर आप देखेंगे जो पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और ये पूरा ये जो आप नक्काशी देख रहे होंगे ये भी दावा किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मानना है कि यहाँ पर उनका ये दरगाह है। लेकिन जो कांसी समाज का लोग है उनका मानना है जो नक्काशी है ये नाग की बनी हुई है, जो आप देख रहे होंगे नाग की फन टाइप बना हुआ है। ये पूरा एक पीछे गांव का एरिया है और यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए, चूँकि फ्राइडे की जुमा की नमाज है उससे पहले एहतियातन इसको पूरी तरीके से पुलिस से नाकाबंदी कर दिया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
5: देखिए लखनऊ की बात की जा रही थी तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। देवरिया में गए थे, विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा था। इसी बीच एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया और कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हर जिले में माफिया था, हर पर्व में उपद्रव होता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ये बड़ा हमला और उनकी तरफ से ये कहा गया तीखा हमला करते हुए कि हर जिले में एक माफिया हुआ करता था जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिलता था और चेहरा देखकर योजनाएं बांट दी जाती थी।
7: क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू यावानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।
5: अब देखिए ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2027 में तैयारी है लेकिन उससे पहले पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने दाव यहां पर खेल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें आई कि मायावती के पास 2 लोग गए नेता, मायावती ने मिलने से मना कर दिया। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह देते हैं कि हम तो सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे और उनकी एक हिंट यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो कैसे गठजोड़ के रिश्ते बन रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई।
8: दो हजार सत्ताईस में यूपी में होगा एसपी कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है बात सीट की नहीं जीत की है।
9: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
8: तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं। हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे।
10: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
11: निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी का कोई निर्णय पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने निर्णय से वो गए थे।
9: कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के
11: व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए थे।
9: यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था?
11: जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं।
8: कांग्रेस लाख इनकार करे लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के पीतमपुरा में अवैध मदरसे को तोड़ दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के पीतमपुरा में अवैध मदरसा बनाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि डीडीए की जमीन पर यह अवैध मदरसा बनाया जा रहा था जिसको बीजेपी विधायक और बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जनरल सिंह उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं की तरफ से इसे ढहा दिया गया। वहीं इसके साथ में एक अन्य अस्थायी ढांचा भी खड़ा किया गया था, ये दावा किया गया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या हुआ वहां पर आज जिसको लेकर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और काफी हंगामा होता हुआ दिख रहा है?
12: देखिए, इसको लेकर के पहले से ही काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था और बताया जा रहा था कि जो जमीन डीडीए की है उस जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकि एक दीवार वहां पर जरूर खड़ी थी, तमाम समर्थकों के साथ सुबह जब विधायक पहुंचे तो खुद नजर आए, वो सीढ़ी लगाए दीवार पे चढ़े और वहां वो खुद हथौड़ी मारकर उस दीवार को गिराते हुए नजर आए और उस दीवार को जो एक दीवार खड़ी थी उसको उन्होंने गिराने की कोशिश की, उसका कुछ हिस्सा गिराया भी और उसी दौरान वहां पर चूंकि काफी समर्थक थे काफी हो हल्ला हुआ। पुलिस की टीम तुरंत मौके पे पहुंची और जितने भी लोग वहां पर थे सभी को वहां पे हटा दिया गया है, सबको समझा दिया गया है और बताया गया है कि जो तमाम जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। सबसे पहले ये जमीन का मालिकाना हक किसका है, दूसरी चीज अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा था तो अवैध निर्माण क्या होना था, क्या वहां पर मदरसा बनना था क्योंकि अभी दीवार खड़ी हो रही थी तो आगे उसको क्या बनाना था, तो कौन इस को बनवा रहा था, इसके पीछे कौन लोग थे,
5: ये मतलब पूरी जांच का विषय है, जांच की जाएगी और पुलिस के संज्ञान में ही मामला है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। मानचू यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
16: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
17: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
15: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
16: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
17: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
18: नहीं,
17: और म्यूचुअल फंड से
18: सही।
19: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
20: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
21: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
23: इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
25: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
26: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
27: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
22: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
23: इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
25: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: 721 साल बाद आज जुमे के दिन धार भोजशाला में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुश्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका। दिल्ली दंगों के आरोप में तुमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकते राजधानी से बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल। भोपाल की तुषा डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई। मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश, सास की जमानत रद्द करने पर हाई कोर्ट में सुनवाई। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के गिरिबाला के वकील। सूरत से बरसती आग में तप रहा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की कटौती, कई शहरों में पानी की किल्लत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे जो गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी को बढ़ाती जा रही है। और ऐसा नहीं हो रहा है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह कुछ ऐसे ही हालात है। उत्तर भारत की तस्वीरें देखिए, उत्तर भारत इस वक्त धधक रहा है। कोई शख्स आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। जो लोग हैं वो पानी से या तो प्यास बुझा रहे हैं या फिर किसी पेड़ की छांव का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भीषण गर्मी, अब कहीं पर तो बिजली कट गई है तो लोग अलग परेशान हो गए हैं कि बत्ती है नहीं तो गर्मी को दूर कैसे करें, घर से बाहर निकल नहीं सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत कि जल संकट भी यहां पर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि आगे फिल्म क्या रहने वाली है, यानी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गर्मी से कैसे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और ये हर जगह की हालात है, एक राज्य के नहीं, अलग अलग राज्यों में इसी तरह लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कह दिया जरूरी नहीं है तो घर में रहिए, बाहर मत निकलिए।

0: मई के महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ये गर्मी और कितना झुलसाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे कठिन हालात उत्तर प्रदेश में, जहां पारा अर्धशतक लगाने की तैयारी में है। बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल या फिर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, हर जगह सूरज की तपिश झेली नहीं जा रही। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और ओडिशा सहित कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग स्पष्ट चेतावनी दे चुका है कि इस गर्मी में बाहर ना निकलें। सुबह 8 से 4 बजे तक तो कतई नहीं। गर्मी इतनी है कि सुबह 8 बजे तक ही प्रयागराज जैसे शहरों में पारा 30 के पार निकल जाता है। दिन होते होते ऐसा लगता है कि सड़कें जल रही हैं। गर्मी से बचने के लिए प्रयागराज में सड़कों पर छिड़काव कराया जाता है, लेकिन ये फुव्वारे सूरज की तपिश में कब वाष्पित होकर निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ये गर्मी कितनी खतरनाक है इसको ऐसे समझिए कि यूपी के बांदा में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। हर दिन अस्पतालों में नए मरीज आ रहे हैं। इस कठिन समय में खतरा हीट स्ट्रोक का है। दिल्ली में भी हीट स्ट्रोक के मामले आने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के संजय झील से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इस झील में सैकड़ों मछलियां मर गई।
1: दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ये संजय वन और संजय लेक का इलाका है, जहां इस वक्त इस तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी पड़ी हैं। ये मछलियां लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से भी मरी हैं और इस तालाब में घटते जल स्तर की वजह से भी इन मछलियों की मौत हुई है। सैकड़ों मछलियां इस वक्त आप देख सकते हैं इस तालाब की सतह पर मरी पड़ी हैं। यहां जो काम करने वाले लोग हैं और यहां आने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार इन मछलियों की मौत हो रही है।
0: गर्मी की वजह से राजस्थान में भी हाल बेहाल है। यहाँ श्री गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। राजस्थान में करीब 15 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। नागपुर से वर्धा, ब्रह्मपुरी तक पारा 46 डिग्री के पार है। मौसम विभाग की माने तो इस तपती गर्मी से तुरंत राहत मिलती नहीं दिख रही, लेकिन अच्छे संकेत ये हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो उसका असर भी शुरू हो गया। इस पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी राज्यों, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गर्मी से राहत मिल सकती है। साथ ही उसका असर पश्चिमी यूपी और दिल्ली तक भी दिख सकता है।
2: केरला के लिए हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विथ मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो ये वो लाइन्स है जो वहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है। तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये बियो बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। और स्टार्टिंग अगर आप इधर की करते हैं तो जब 26 मई या जब आगे केरला में ऑनसेट मानसून होता है तो उसके बाद हम फर्दर बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा।
0: ऐसे हालात में बस राहत की एक ही खबर है कि 26 मई को मानसून केरल पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत में आते आते आधा जून बीत जाएगा। यानी अभी उत्तर और मध्य भारत को अभी तो लगभग 1 महीने तक कोई राहत के आसार नहीं दिखते। गर्मी और लू के तपेड़े पंजाब और हरियाणा को भी बुरी तरह झुलसा रहे हैं। पंजाब के बहुत से जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग खुद बता रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन यही हालात रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बार पंजाब और हरियाणा में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और देखिए अभी बात यही चल रही है कि अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या साधन है? आप बिजली के उपकरण है, एसी चलाएंगे, है ना, कूलर चलाएंगे, पंखे चलाएंगे, लेकिन जब लाइट ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ खपत हुई है। आज 22 तारीख है, 21 तारीख की बात करें तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतनी ज्यादा बिजली खपत एक दिन में हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: मई जून के महीने में जब आसमान आग उगलता है तो राहत देते हैं बिजली के उपकरण, लेकिन अगर बिजली ही ना आए तो फिर एसी, कूलर, फ्रिज, पंखे शोपीस बनकर रह जाएंगे। इस प्रचंड गर्मी में से राहत या बिजली के उपकरण दे सकते हैं या फिर खुद प्रकृति, लेकिन आसमान से राहत मिलती दिख नहीं रही, इसीलिए सहारा बिजली और उसके उपकरणों का है। देश में जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया बिजली की खपत बढ़ती गई और इस बार भारत में बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 21 मई 2026 को बिजली खपत उच्चतम स्तर पर रही। 21 मई को बिजली की खपत 271.82 गीगावाट रही। 20 मई को 265.44 गीगावाट, 19 मई को 260.45 गीगावाट, 18 मई को 257.37 गीगावाट रही। गर्मी के इन कठिन दिनों में लोग बिजली उपकरणों के सहारे ही दिन काट रहे हैं। सबसे ज्यादा बिजली डिमांड शहरी इलाकों में रहती है। जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा मांग, उतनी ही ज्यादा खपत। इन शहरों की डिमांड को पूरा करने के लिए गांव से बिजली काट कर इधर सप्लाई कर दी जाती है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूट गए।
1: दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है तो दूसरी तरफ बिजली की खपत भी नए कीर्तिमान गढ़ रही है। 21 मई को दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड खपत दर्ज की गई और इस दौरान लगभग 3:30 बजे 8,200 मेगावाट तक की बिजली की खपत दर्ज की गई। स्टेट लोड डिस्पैच एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाए, लेकिन लगातार बढ़ने वाली गर्मी की वजह से ये अब तक का सबसे बड़ा लोड है जो दर्ज किया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ये मांग 9,000 मेगावाट तक भी पहुंच सकती है। यानी इस गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड खपत दिल्ली में दर्ज की जा रही है।
0: दिल्ली में 21 मई को बिजली की मांग सबसे उच्च स्तर पर थी। 21 मई को राजधानी में 8,231 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जबकि 20 मई को ये 8,000 मेगावाट तक थी। विद्युत मंत्रालय का अनुमान था कि इस बार देश में 270 गीगावाट तक बिजली की डिमांड हो सकती है, जबकि 21 मई के दिन अनुमान से अधिक खपत रही। पिछले 3 सालों में किस तरह से देश में बिजली खपत रही, आइए समझते हैं। 2026 की बात करें तो अभी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 2025 में किसी एक दिन अधिकतम खपत 242.77 गीगावाट रही और वो जून का महीना था। 2024 में 250 गीगावाट तक डिमांड पहुंची थी और वो मई का महीना था। गर्मी की वजह से देश में अचानक बिजली की खपत और डिमांड बढ़ी है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए पहले से तैयार था। मंत्रालय ने 21 मई को आई पीक डिमांड और सप्लाई का डेटा शेयर किया। 270.82 गीगावाट की रिकॉर्ड मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से बिजली ली गई। इसमें कोयले से बनने वाली बिजली का हिस्सा 62% रहा, 22% सौर ऊर्जा से आया, 5% हाइड्रो पावर प्लांट से आया, पवन ऊर्जा का हिस्सा भी 5% रहा। पीक डिमांड और सप्लाई को लेकर ऊर्जा मंत्रालय अपनी पीठ थपथपा रहा है कि बिना किसी कठिनाई के सब हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं से बिजली कम करके कहीं सप्लाई की गई। आज तक ब्यूरो।
3: तो विद्युत विभाग वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कहीं कटौती नहीं की और जितनी डिमांड थी हमने पूरी कर ली है, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं उजाला है तो कहीं अंधेरा है। क्या सच्चाई यही है? क्योंकि अलग अलग जगह से कुछ ऐसी खबरें आई हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं रोशनी देने के लिए कहीं पर अंधेरा करना पड़ा।
0: ये उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद है, जहां शिकोहाबाद के माधवगंज फीडर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने फीडर पर तालाबंदी कर दी। अघोषित बिजली कटौती से लोग इस कदर परेशान हैं कि बिजली विभाग की अर्थी निकाल दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है, अधिकारी फोन नहीं उठाते, बिजली नहीं आने से घर में बच्चे और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।
4: बिजली विभाग द्वारा किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी सब परेशान है, छोटे छोटे बच्चे घरों में परेशान है। इस समय लाइट की समस्या इतनी दयनीय हो गई है कि बिजली विभाग का ना कोई अधिकारी सुनता है, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है।
0: अब जरा कानपुर का हाल भी देखिए, दिन हो या रात बिजली कब आती है पता ही नहीं चलता। 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान और उसमें बिजली ना आए तो लोग
5: कहां जाएं? कानपुर शहर के अलग अलग इलाकों में घंटों तक बत्ती गुल रहती है। कटौती से परेशान लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। कानपुर के बर्रा में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो कहीं उपभोक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम लगाया, सब स्टेशनों का घेराव किया। बर्रा में तो गुस्साए लोगों ने कैस्को सब स्टेशन पहुंचकर तालाबंदी कर दी। लंबे पावर कट से घरों में पानी का संकट भी गहरा गया।
6: आपने आके एक बहाना दे दिया कि सीयूजीएल की लाइन बस हो गई, तो उसको बनवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप 3 दिन हो गए हैं, लोग रोड पे घूम रहे हैं, रात में खटिया लगा के रोड में सोते हैं, कोई दुर्घटना घटना हो जाए इसके जिम्मेदार कौन होगा? कैस्को एमडी की जिम्मेदारी लेंगी?
7: पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती, आज 5 दिन हो गए, हम लोग एक दिन भी नहीं सो पा रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में लोग काम करके आते हैं सो नहीं पाते हैं, यही समस्या हमारी है।
8: ये बताइए, हस्बैंड लोग मेरे रात में दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में सो नहीं पाते, रोटों पर बैठ के गुजारा करते हैं।
9: आप लोगों ने कैसे शिकायत वगैरह करी क्या साथ साथ?
8: 2-3 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की।
5: कानपुर में बिजली कटौती से लोग इस कदर परेशान हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक भी वार स्टेशन पहुंचे। बीजेपी विधायक ने भी बिजली विभाग पर सवाल उठाए।
10: और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिमाह प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली की कटौती फॉल्ट और कटौती।
5: बिजली है नहीं इसीलिए अंधेरा है। ये कानपुर देहात का मेडिकल कॉलेज है जहां मेडिकल छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मेडिकल कॉलेज में बिजली नहीं है, भीषण गर्मी, लगातार बिजली कटौती और अव्यवस्थाओं से परेशान सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही। छात्रों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच हॉस्टल में केवल 8 से 9 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे पढ़ाई और दैनिक जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब ये मेरठ की तस्वीर, यहाँ भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित कटौती से परेशान लोगों ने मेरठ के मेयर आवास का घेराव किया। बढ़ता तापमान लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। बाहर सूरज आग उगल रहा है और घर पर बिजली नहीं है। मौसम विभाग कहता है कि यूपी वाले घर से ना निकलें, लेकिन यूपी वाले आखिर करें तो क्या करें? पूर्वांचल धधक रहा है, बुंदेलखंड उबल रहा है, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में भी त्राही मची है। इस प्रचंड गर्मी में बिजली कटौती की समस्या सिर्फ यूपी की नहीं, देश के बाकी राज्यों का यही हाल है। जम्मू में भी पारा 40 डिग्री के पार है, वहां भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं।
11: तो यहां जम्मू में लू काफी ज्यादा चल रही है, इस समय तापमान जो है 42 डिग्री को पार कर चुका है और यहां पर लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं, और उन इलाकों में लोगों को ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है जिन इलाकों में पार कट्स हो रहे हैं, जिसके कारण न तो पंखे चल पा रहे हैं न तो एसी चल पा रहे हैं। लोग जो है इसीलिए काफी यहाँ पर परेशान है, खासतौर पर वो लोग जो कि उन इलाकों में रह रहे हैं जहां पर आजकल पावर कट्स हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जो पावर कट्स की समस्या है ये कम हो सके, लेकिन इस भीषण गर्मी से लोग जो हैं यहां जम्मू संभाग में काफी ज्यादा परेशान हैं।
5: अब जरा राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का हाल देखिए। शेखावटी क्षेत्र में दिन में पारा 45 डिग्री तक चला जाता है, रात में 30 डिग्री तक आ पहुंचता है। ऐसे में पानी की किल्लत के चलते लोग टैंकरों से पानी मंगवा रहे। सबसे ज्यादा परेशानी बिजली की वजह से बढ़ती है, क्योंकि बिजली कटौती दिन रात होती है, कोई शेड्यूल नहीं, जब मर्जी तब बिजली काट दी जाती है। आज तक ब्यूरो।
3: और आपको पता है कि जब इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ती है तो उसके बाद क्या संकट शुरू हो जाता है? जल संकट। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक पानी के लिए किल्लत इस वक्त मची हुई है। हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत किसान अब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि पानी की एक एक बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है।

0: गर्मी बढ़ते ही देश में भयानक जल संकट क्यों पैदा हो गया? बड़े शहर हो, कस्बे हो या ग्रामीण इलाके, जल संकट से कैसे उबरेगा हिंदुस्तान? राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, लगभग पूरा हिंदुस्तान ही इस वक्त भीषण जल संकट की चपेट में। गर्मियां आते ही ऐसा लगता है कि सरकार की हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भी फेल हो गई। ये तस्वीरें तो यही बता रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड तक हालात एक जैसे ही हैं। ये गुजरात का वलसाड है, जहां बूंद बूंद पानी के लिए जिंदगी और मौत का संघर्ष है। कुएं सूख गए हैं, नल में पानी नहीं है, जल जीवन मिशन कागजों पर है, लेकिन जमीन पर कुछ है तो यह चल सकता है। वलसाड का यह दिवासी इलाका है, गांव में एकमात्र कुआं है जहां पानी कहीं से रिसकर आता है। करीब 45 फीट गहरे इस पथरीले कुएं में रस्सी के सहारे एक शख्स नीचे उतरता है, फिर ऊपर से रस्सी के सहारे बाल्टी या डिब्बा नीचे भेजा जाता है और जो पानी नीचे मिल जाता है उसे ही भर लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये पानी पीने योग्य है भी या नहीं।
1: अभी वहाँ पे क्या है सर, वो जो हमारा बेरस्ता मोटी परसेंट बेरस्ता फलिया है, वहाँ पे जो मेरा कुएं में पानी अभी होली के बाद सूख गया है, उसे बहनों और भाइयों के लिए अभी 35-50 फुट का कुआ है, उसमें जो पानी बनने के लिए और सीढ़ी और दोड्डा द्वारा निकलना पड़ता है। जोखिमी सर वही है, जो कुएं में उतरना और नीचे से ऊपर तक पानी निकलना बहुत जोखिमी है।
0: ये मुंबई से सटा पालघर जिला है, जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन और मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बस्तियों के लोग आज भी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये डहाणू तहसील, जहां सैकड़ों परिवारों को रोजाना पानी के एक बर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों के बावजूद यहां नल आज भी सूखे पड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि गांव के बोरिंग और कुएं भी पूरी तरह सूख गए। पानी के पारंपरिक स्रोत खत्म होने के बाद अब ग्रामीण जंगलों में बने छोटे गड्ढों के सहारे अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। जिस पानी से मवेशी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसी दूषित पानी को ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है। पैंतालीस डिग्री की गर्मी में पानी के लिए जद्दोजहद। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास का रीवा गांव, जहां 5,000 की आबादी है और ये लोग पिछले 50 वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां सरकार की पानी वाली हर एक योजना फेल साबित हुई है। यहां पानी निकालने के लिए सोलर पंप लगाया गया है। जब तक सूरज है तब तक ये पंप बड़ी मुश्किल से पानी निकालता है, सूरज ढला तो पानी भी चला जाता है, और 45 डिग्री तापमान वाले इस मौसम में पानी तो वैसे भी नहीं आ रहा।
2: दुनिया के कई हिस्सों में जमीन संसाधनों और तेलों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पास रीवा के गांव में यहां के आम लोग यहां की गर्मी, भीषण गर्मी से, अपनी प्यास से, सिस्टम से और सरकार के करोड़ों के जल जीवन मिशन के दावों से ये जंग कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे 40 साल से ये समस्या बनी हुई है। बताया जाता है कि जब से आजादी है तभी से ही इस गांव में पानी नहीं आता है।
3: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
8: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save.
9: Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
10: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
13: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
12: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
14: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रिशा मौत मामले में बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी गई है, यानी एम्स में, दिल्ली एम्स में ट्रिशा का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की टीम जाएगी। और रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, क्या जानकारी है?
15: देखिए, बड़ी खबर ये है कि सेकंड पोस्टमार्टम को एक तरीके से मंजूरी दे दी है हाईकोर्ट ने। ये बड़ी खबर है, तीसा का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। और जो तीसा के वकील हैं, उनकी तरफ से हमें ये जानकारी भेजी गई है कि जो डॉक्टर्स की एक टीम है वो दिल्ली एम्स से उड़ करके भोपाल पहुंचेगी, और भोपाल एम्स में ही एक्सपर्ट की टीम जो है, दिल्ली एम्स की जो टीम है, वो तीसा का पोस्टमार्टम करेगी। और इसमें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ये पोस्टमार्टम करना होगा। यहाँ पे तीसा के वकील की तरफ से ये जानकारी हमें दी गई है। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पे कि तीसा के सेकंड पोस्टमार्टम की जो प्रेयर हाईकोर्ट में उन्होंने डाली थी, उसे हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली एम्स की टीम।
3: तो शुक्रिया रवीश आपका हमारे साथ इस जानकारी के लिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि दिल्ली एम्स में नहीं, दिल्ली एम्स के डॉक्टर, स्पेशल जो डॉक्टर्स की टीम है, भोपाल आएगी। भोपाल एम्स में ये पोस्टमार्टम होगा। रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
14: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
18: बस दो हजार
19: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
20: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
1: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
21: उसने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
1: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

त्रिशा की बॉडी का होगा दूसरा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट की मंजूरी, एम्स दिल्ली से जाएंगी डॉक्टरों की टीम, कोर्ट में सरेंडर करेंगे पति, डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी अब सीबीआई।

भारती की, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम, हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। 2027 में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश यादव की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका, कहा कि यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकते राजधानी से बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल।

तीन बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और चलिए शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर से। ईशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, पति समर सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। जमानत वापस लेने की जानकारी देने के साथ ही पति के वकील ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की पेशकश की। ईशा मौत केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शव को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। ईशा सुसाइड मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर किया। परिवार की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल हो सकती है सुनवाई। ईशा शर्मा और सास किरीबाला सिंह के व्हाट्सएप चैट के हवाले से वकील का बड़ा दावा, कहा ईशा को दी जा रही थी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। सास किरीबाला सिंह के वकील ने कहा कि शव को सड़ने नहीं दिया जाना चाहिए, वह हमारे घर की बहू है, हमारा धर्म है कि हम उसका अंतिम संस्कार करें। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर भी हुई बहस। ईशा के परिवार के वकील ने कहा कि डॉक्टर की निष्पक्षता काबिले तारीफ, लेकिन दूसरी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। शादी के वीडियो का डायलॉग बना चर्चा का विषय। ईशा और सामर्थ की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है मौत के बाद।

0: तनाव और नशे की बात कही है। मायके वालों की जांच प्रभावित करने का आरोप भी लगाया गया है। सीएम योगी ने देवरिया में 19 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, कहा कि विकास और रुकेगा नहीं। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में हर जिले में एक माफिया हुआ करता था।
1: समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू याबानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था।
0: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी बैठक में बड़ा बयान दिया है। बोले कि तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से बार बार दोहराया कि बात सीट की नहीं हो रही, जीत की है। यूपी के 19 बाहुबलियों को मिले गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मांगा बाहुबलियों से मिले शस्त्र लाइसेंस का ब्यौरा। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले या लाइसेंस और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। IRCTC घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिलहाल टल गई है। अब 9 जून को सुनवाई होगी। 19 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगाया। 2007 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन जलाने के मामले में आरोप तय किए गए। भारत में 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा, रणनीति और आर्थिक साझेदारी पर नई ऊंचाइयों देने पर जोर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF अलंकरण समारोह में शामिल हुए हैं। बोले ये समारोह अडिग निष्ठा और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास, गृह मंत्री ने साहस और नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ में हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल, 50 से ज्यादा अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक, कहा कि इससे ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। गौशाला परिसर में सुबह की आरती, कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। आरती देवी सरस्वती की समर्पित भोजशाला मंदिर में की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। अदालत के आदेश के बाद परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति नहीं है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। 721 साल बाद पहला ऐसा शुक्रवार हुआ जब परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई है और महाआरती संगठनों ने अखंड पाठ महाआरती का आयोजन भी किया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार शहर में छावनी में तब्दील कर दिया। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, CRPF और SAF के जवान तैनात किए गए। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में 12 राज्यों में खाली हो रही हैं 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होंगे। महाराष्ट्र से सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु से CV षणमुखन की सीट पर उपचुनाव होंगे। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून से जारी होगी, नामांकन 8 जून तक होंगे। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। BJP के कुराज में सिर्फ दाम और मांग बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून में होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, CM होंगे मौजूद। सोना पप्पू और पूर्व DCP शांतनु सिन्हा विश्वास द्वारा चलाए जा रहे वसूली रैकेट की जांच के लिए सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ED ने कई जगहों पर छापेमारी की है। क्रॉस स्ट्रीट में एक होटल के साथ साथ एक कारोबारी के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। कोलकाता पुलिस ने एक अन्य सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी रेड किया है। ED की टीम मुर्शिदाबाद स्थित शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर भी पहुंची। ये सभी छापेमारी आज सुबह 6 बजे के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंद्र अधिकारी का पहला दिल्ली दौरा, आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और BJP नेतृत्व के से शिष्टाचार मुलाकात भी होगी। प्रक्रिया से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध

0: पशु कुर्बानी, बिना अनुमति पशु व्यापार और पशु के प्रति क्रूरता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, गली सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी, नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े को डालना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी किसी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का संज्ञान लेने से पहले अदालत के लिए आरोपी को पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। चुनावी रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में जिस झालमुड़ी वाले से प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उसे अब धमकियां मिल रही हैं। आरोपों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल आ रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बहुत बड़ा असर, त्रिलोकपुरी में संजय झील में पानी के कम होने से कई मछलियां मरी। मेरठ में बिजली कटौती से नाराज जनता ने घेरा मेयर का आवास, मेयर के ने बाहर आकर सुनी लोगों की समस्या, दिया मदद का भरोसा। कानपुर देहात में बिजली न आने से परेशान मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हंगामा, मुख्य गेट पर धरने पर बैठे छात्र, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली दंगे के आरोप उमर खालिद को दिल्ली के हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को 3 दिन दिया अंतरिम जमानत, उसकी मां की सर्जरी के दौरान अस्पताल में उसे मिलने की इजाजत दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया है कि खालिद को इसी पते पर रहना होगा, वह केवल अस्पताल में ही अपनी मां से मिल सकता है, किसी अन्य स्थान पर वो नहीं जाएगा। खालिद को 1,00,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही रहना होगा और अपने पते पर ही रहना होगा। खालिद को अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है, उसके पास केवल एक मोबाइल ही होना चाहिए। ओडिशा के गंजाम में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की गई जान, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार बस से ऑटो की टक्कर में मारे जाने से हुआ यह हादसा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी कुएं में कूद कर सुसाइड कर लिया। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, बाइक सवार समेत 3 दर्दनाक मौत। बेगूसराय में पुलिस लिखी कार पर धक्का लगाने के बाद कार सवार महिला की दबंग गई, पिकअप चालक की कॉलर पकड़कर सरेआम की पिटाई। ओडिशा के क्यूझर में अचानक आई आंधी तूफान से मचाई तबाही, एक विशाल टेंट से गिर जाने से 3 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बेगूसराय में दबंगों ने तांडव किया, घर में घुसकर परिवार की बेरहमी से पिटाई की, जमीनी विवाद को लेकर मामला आया सामने। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर ओवरब्रिज पर बसों की भड़ंत, 2 यात्रियों की मौत, 2 घायल, चालक पर शराब के नशे में चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत हो गई, परिवार ने उठाई जांच की मांग। सूरत की वेसू इलाके में एक बिल्डिंग में 9th फ्लोर पर लगी भीषण आग, 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैला धुआं, 10 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पहचान बदलकर युवती से शादी करने और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, सालों तक रेप का भी आरोप लगाया, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है, पहाड़ी से गिरने बोल्डर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान में लव जिहाद का मामला भी आया सामने, निकाह की तैयारी के बीच पुलिस ने हिंदू नाबालिग लड़की को किया भी छुड़वाया, मौलवी और युवक पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार के युवक ने गुरुग्राम में की आत्महत्या, भाई को भेजा 8 पन्नों का सुसाइड नोट, सुपरवाइजर पर लगाए गंभीर आरोप। पटना का IGIMS फिर से रण क्षेत्र में हुआ तब्दील, जूनियर डॉक्टर्स की कर्मचारियों की पिटाई कर दिया, शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हथियारों के साथ रील बनाना, 3 युवकों को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में मोतिहारी में इंजीनियर कॉलेज ने छात्रा की संदिग्ध मौत के सुसाइड के बाद हंगामा हुआ, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय में अनुकंपा नियुक्ति की लालच में भाई की हत्या कर दी, घटना में 7 दिन के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी में लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पर बाइक फंसने से मची अफरा तफरी। सूरत रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार किया गया। इसी कोच से सफर करने वाली महिला यात्रियों को बनाता था अपना निशाना। गुरुग्राम में शर्मनाक हरकत, महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कैब चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार को भी किया जब्त। भागलपुर से लापता 5 बच्चियों पटना जंक्शन से सकुशल बरामद की गई। बच्चियों ने खुलासा किया है कि 1 साल से घूमने की प्लानिंग कर रही थी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत से मरीज परेशान है, भीषण गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल के बच्चा चोरी का प्रयास किया गया, पुलिस की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी। तेलंगाना में मेडक के नई मारुति कारों को ले जा रहे कंटेनर ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, 10 नई कारें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान हुआ है। धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा महत्वपूर्ण मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों टीमों के लिए यह आखिरी लीग का मैच है, शीर्ष 2 में अपनी जगह पक्की करने की टिकी है दोनों टीमों की निगाहें। इस अहम चक्कर के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों ही टीमों में जोश आई है, अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है दोनों टीमें। सनराइजर्स के खिलाफ मैच में पहले आरसीबी और को मिली है राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित किए गए। केकेआर के खिलाफ मैच में रजत को सिर में लग गई थी चोट। दोनों टीमों में हैदराबाद की टीम का पल्ला भारी है, अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से 2 हैदराबाद ने 14 और बेंगलुरु ने जीते हैं 12 मैच। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिनों में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी लगा भक्तों का मेला, अब तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम पर भी खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्पर फाड़ हो रही है कमाई। 32 दिनों में यमुनोत्री मंदिर में समिति ने कुल 23.5 लाख रुपए की आय की है, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ आय में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों में 45 के पार पहुंच चुका है तापमान। बिहार औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक की स्कूल को बंद कर दिया गया, गया जहानाबाद में भी स्कूलों का समय बदला गया है। बिहार का कैमूर रहा सबसे गर्म शहर, 44 डिग्री के पास पहुंचा कैमूर का तापमान, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। आम आदमी की नई फिल्म GDN का ऐलान, थासू पोस्टर रिलीज किया गया है, GD नायडू की कहानी पर से उठेगा पर्दा। नेटफ्लिक्स पर आज धुरंधर की रॉ और अनदेखी वर्जन की धूम है, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी ये फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमा घरों में हुई रिलीज, फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे का अहम रोल है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं तीशा शर्मा के मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक बड़े अपडेट को लेकर। इस मामले में जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि तीशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तीशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दे दी है, डॉक्टर की कमेटी तीशा को दोबारा से पोस्टमार्टम करेगी। इसके लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम मध्य प्रदेश जाएगी, जहां पर यह पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर CBI जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी, और आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा बॉडी का, तीशा की बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली एम्स की टीम इस पोस्टमार्टम को अंजाम देगी, और बताया जा रहा है कि टीम दिल्ली से रवाना होगी और मध्य प्रदेश जाकर भोपाल जाकर यह पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब बात लखनऊ की करते हैं, लखनऊ के मलिहाबाद के ऐतिहासिक स्थल की, जहां पर आज राजा कंस पासी के किले में नमाज को लेकर आज तनाव बरकरार है। पासी समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के दिन किला परिसर में नमाज पढ़े जाने का कड़ा विरोध किया। उनका दावा है कि वर्तमान में मस्जिद और कब्रिस्तान के रूप में जानी जाने वाली ये संरचना दरअसल 21वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला है और मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह किला नहीं। मुस्लिम पक्ष के लोग के मुताबिक ये मजार पर सालों से नमाज पढ़ी जाती है, जिसके बाद आज बाहर से काफी तादाद में लोगों ने कि नमाज पढ़ने आने के इनपुट भी मिल रहे थे। प्रशासन ने एहतियातन बैरिकेडिंग करके भारी पुलिस बल इस इलाके में तैनात किया हुआ है।
2: लखनऊ के मलिहाबाद एरिए में सबसे बड़ी बात है कि कंसा पासी का जो बुर्ज बताया जाता है, जो किला बताया जाता है, वो मेरे पीछे मौजूद है, जहां पर नमाज होने की बात है, क्योंकि आज जुम्मा है और यहां पर नमाज भी होनी है, हर बार होती है। इसका विरोध जो पासी समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं और ये आप तस्वीरें अगर देख रहे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये कंसा पासी का बुर्ज है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बुर्ज के अंदर इस तरीके की मजार जो है वो बनाई गई है। ये दावा किया गया है यहाँ के जो समाज है, कम्युनिटी है उसका, क्योंकि ये माना गया कि ये जो बुर्ज है, ये जो किला नुमा है, ये कंसा पासी का था और यहाँ पर इस तरीके से पूरी नमाजें अदा की जाने लगी हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा किला था और अब इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति से बचाया जा सके। अब अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये बुर्ज नुमा किला है, ये अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ से ये पूरी तरीके से बताया गया कि ये कंसा पासी का किला रहा और उस समय जब जिस तरीके से बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बसने की कोशिश की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा मजार यहाँ पर आप देखेंगे, जो पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और ये पूरा ये जो आप नक्काशी देख रहे होंगे, ये भी दावा किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मानना है कि यहाँ पर उनका ये दरगाह है। लेकिन जो कांसी समाज का लोग है उनका मानना है जो नक्काशी है ये नाग की बनी हुई है, जो आप देख रहे होंगे नाग की फन टाइप बना हुआ है। ये पूरा एक पीछे गांव का एरिया है और यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए, चूँकि फ्राइडे की जुम्मा की नमाज है, उससे पहले एहतियातन इसको पूरी तरीके से पुलिस से नाकाबंदी कर दिया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
0: चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
8: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
7: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
10: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं,
10: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: बस 2000
8: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
9: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है वो नजर आती है, जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

ऋषा की बॉडी का होगा दूसरा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट की स्वीकृति, एम्स दिल्ली से जाएगी डॉक्टर्स की टीम, कोर्ट में सरेंडर करेगा पति, डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई। सात सौ इक्कीस साल बाद आज जुमे के दिन धार भोजशाला में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम, हाईकोर्ट के निर्णय को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दो हजार सत्ताईस में गठबंधन की बिसात पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका, कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा उसका फायदा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के लिए मिली राहत, नहीं जा सकते राजधानी से बाहर, एक फोन का करना होगा इस्तेमाल। सूरज से बरसती आग में तप रहा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री पहुंचा, लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी बिजली की कटौती, कई शहरों में पानी की कमी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत हम त्रिशा शर्मा के केस से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव की दोबारा पोस्टमार्टम को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर्स की कमेटी त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी और इसके लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी भोपाल, जो वहीं पर करेगी पोस्टमार्टम। त्रिशा के परिवार की लगातार ये मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, करवाया जाए, और उसके बाद अब ये निर्णय आ चुका है। डॉक्टर्स की कमेटी दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टर्स भेजे जाएंगे जो त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम करेंगे, और ये पोस्टमार्टम अब दोबारा होगा। परिवार को इससे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि परिवार लगातार ये प्रश्न उठा रहा था कि त्रिशा का पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाए। त्रिशा का पति समर्थ सिंह ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकता है। समर्थ सिंह के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि समर्थ सिंह अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लेगा। वकील की ओर से समर्थ सिंह के ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर की पेशकश कर दी है। अभी तक समर्थ सिंह फरार चल रहा था, वो सरेंडर नहीं कर रहा था, और उसने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। एक याचिका पहले उसकी रद्द हो चुकी है और अब दोबारा समर्थ जो याचिका दायर कर चुका है वो उसे वापस ले लेगा, ये वकील ने कहा है। और यह हो सकता है कि जल्द ही समर्थ सिंह अब सरेंडर कर दे। त्रिशा शर्मा की मौत का मामला हर दिन नए सवालों और नए खुलासों के साथ और भी उलझता जा रहा है। इस बीच त्रिशा का पति समर्थ अब भी फरार चल रहा है। पुलिस ये दावा कर रही है कि समर्थ सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच खबर ये भी आ गई कि समर्थ आत्मसमर्पण कर सकता है।
1: सर, गिरफ्तारी को लेकर पंजीयन का लगातार आरोप है समर्थ सिंह को कि वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है, अग्रिम जमानत के लिए लगातार परिजनों के संपर्क में है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझ के लापरवाही कर रही ताकि वो अपने बेल अग्रिम जमानत ले ले।
2: नहीं, हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमने अपना पूरा जोर लगा रखा है।
0: उधर मध्य प्रदेश सरकार ने त्रिशा शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 10 दिन पहले त्रिशा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन त्रिशा के पिता सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठा रहे थे और उन्होंने सवाल उठाते हुए ससुराल वालों को ही मौत का जिम्मेदार बता दिया था। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। दोनों परिवार ने जबलपुर में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। त्रिशा के पिता ने जहां दोबारा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम की मांग की, जिसे मांग लिया गया, वहीं सास गिरेबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की गुहार भी लगाई गई। दूसरी ओर फरार चल रहे त्रिशा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है, लेकिन अब खबर यह आ रही कि समर्थ कर सकता है सरेंडर। त्रिशा शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश के बीच जब त्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह से पत्रकारों ने प्रश्न किया तो पूर्व जज ने चुप्पी साध ली। वहीं उनके वकील झल्लाते हुए दिखाई दिए। देखिए,
3: अरे आदमी को चलने नहीं दे रहे। अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? ये कोई तरीका है आपका? खोलो, चलो वो पहले स्वागत है सीबीआई जांच का। हम स्वागत करते हैं सीबीआई।
4: सीबीआई जांच होनी चाहिए,
3: जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
4: अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई।
3: बहुत गलत है ये। इंसान को उसकी इंसानियत दोगे कि नहीं दोगे? अरे क्या तरीका है ये?
4: आपका भी तरीका ठीक
3: है, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे घेरते हैं किसी को? वो एक महिला है
4: सर। आप बदतमीजी कर रहे हैं सर।
3: हम क्यों बदतमीजी करेंगे?
4: बदतमीजी कर रहे हैं।
3: आप क्या कर रहे हैं?
4: आप क्या कर रहे हैं?
0: अरे भाई, और अब खबर जहां जनता ये पूछ रही है कि बिजली कहां है, समस्या कटौती की है, दिन हो या रात जनता बेहाल है। इस मुद्दे पर पहले हम आपको कुछ अपडेट दे दें। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी कर रखा है कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष नजर बड़े अधिकारी रखें। बिजली की मांग बढ़ने और कई जगह बिजली कटौती की खबरों के बाद जनता ने नाराजगी दिखाई, जिसे देखते हुए मध्यांचल डिस्कॉम में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 31 जुलाई 2026 तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ में ही बिजली बीजेपी के दो विधायक उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा को चिट्ठी लिखकर ये बता चुके हैं कि बिजली कटने से उत्तर प्रदेश की जनता में गुस्सा है। बीजेपी के ही एक और विधायक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो बिजली कटौती के पीछे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। मतलब ये कि समस्या है ये सब मान रहे हैं, लेकिन जब इसी बिजली कटौती से परेशान जनता सड़कों पर उतरती है तो पुलिस उसे धमकी देती है, कहती है कि गर्मी से पहले ही परेशान हो, मुकदमे से और परेशान हो जाओगे।
5: कानपुर में जनता बिजली कटी तो सड़क पर आ गई। फिरोजाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ पुतला जलाकर प्रदर्शन होने लगा। सहारनपुर में थाने में इसकी सांसद इकरा हसन धरना दे रही थी, धरने के बीच थाने की बिजली कट गई। कानपुर में ही एक जगह पर बिजली की अघोषित कटौती ने जनता के हाथों सड़क बंद करा दी, बैरिकेड लगाकर सड़क जाम करनी पड़ी। महिलाएं बिजली दफ्तर में घुसकर अपना गुस्सा दिखा रही हैं। लखनऊ के फैजुल्ला गंज में जब बिजली ने त्राहिमाम कर दिया तो जनता समाधान खोजने खुद ही आक्रोशित होकर पहुंच गई। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल प्रचंड गर्मी के बीच, जहां अपराधियों की गर्मी उतार देने का दावा कानून व्यवस्था करती है, लेकिन बिजली विभाग की अव्यवस्था इस कदर कि जनता को ही गर्मी में बिजली की कटौती वाले टॉर्चर से परेशान होकर जूझना पड़ रहा है। और तब बिजली कटने से परेशान जनता जब बिजली मांगती है तो मुकदमे की धमकी पुलिस देती है। जब हापुड़ में आम आदमी पूछता है कि बिजली क्यों नहीं वक्त से आती तो पुलिस कहती है घर चले जाओ वरना गर्मी के बाद मुकदमे में परेशान घूमोगे।
6: सुनिए पहले मेरी बात, ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा, फिर बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा।
5: ये मनीष चौहान है, हापुड़ नगर कोतवाली प्रभारी। ये इस वक्त उन आम लोगों पर बिलबिला कर अपनी पुलिसगिरी दिखा रहे हैं जो पहले से खुद परेशान है। वो आम लोग जो दिन को किसी तरह काट कर जब घर पहुंचकर सोचते हैं थोड़ा आराम करेंगे, तभी उत्तर प्रदेश की बिजली इन्हें रुलाना शुरू करती है।
7: बत्ती भाग रही है, बस मजदूरी आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें नींद पूरी नहीं होगी तो वे कैसे कमा करेंगे। फिर ये बताओ गरीब आदमी बच्चों को पाल रहा है या पेट भर रहा है या दवाई गोली का करे, क्या करेगा? पूरे दिन तो हारे थे, कहीं हंसते जाएंगे और फिर जाकर नींद भी पूरी ना होगी।
5: घंटों तक बिजली आई नहीं और पसीना गर्मी में बहना बंद नहीं हुआ तो परेशान आम आदमी क्या करता, बिजली घर पहुंच गया, सुनवाई होती नहीं दिखी तो रास्ता जाम कर दिया, जनता और कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन हापुड़ कोतवाली के नगर प्रभारी को ये गलत लगा, इसे सरकारी काम में बाधा बताकर मुकदमे की धमकी देने लगे।
6: आप लोग रोड पे रहेंगे, कार्य में व्यवधान होगा, व्यवधान किस सरकारी कार्य में किसी को कोई बर्दाश्त नहीं है, निश्चित मान लीजिए। रोड पे आवागमन में आपकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है तो निश्चित मान लीजिए न्यूसेंस पारित कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई मेरी तरफ से भी होगी।
5: हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि सड़क जाम रहेगी तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन सवाल है कि हर साल गर्मी में डिमांड बढ़ने पर अगर बिजली कटती रहेगी तो फिर वादा जो सरकार 24 घंटे बिजली का करती है जनता से, उस वादे का क्या? और जिस तरह पुलिस आम आदमी को प्रदर्शन करने पर धमकाती है, क्या ऐसे ही धमकी उन नेताओं को भी दे पाती है जो अपने अपने हित की सियासत में प्रदर्शन करने सड़क पर उतरते हैं?
0: गर्मी में बिजली की डिमांड हाई जाती है और इसका आंकड़ा भी आ गया है जो ये बताता है कि 19 मई 2026 को दोपहर 3:40 पर पूरे देश में हमारे भारत में बिजली की मांग इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर 260.45 गीगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन हमारे देश का पावर ग्रिड पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। जहां एक तरफ 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट है, वहां अकेले भारत में 5 गुना अधिक मांग है जो भारत संभाल रहा है। कल लगातार चौथा दिन रहा जब हमारे देश में बिजली की पीक डिमांड एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कल दोपहर हमारे देश में 3:45 पर दावा है कि पीक बिजली डिमांड 270 गीगावाट रही, जिसे पूरा कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ने भी बताया कि 20 मई को उत्तर प्रदेश में पीक डिमांड 30,160 मेगावाट रही, जिसे पूरा किया गया। हर वर्ष डिमांड बिजली की बढ़ जाती है जब पारा 45 डिग्री के पार होने लगता है, कूलिंग उपकरण अधिक चलने लगते हैं और तभी बिजली की कटौती जनता को रुलाने लगती है। उत्तर प्रदेश में तो इस संकट के कारण जनता की परेशानी का मुद्दा खुद बीजेपी के ही नेता अब उठा रहे हैं।
8: बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा?
9: बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं।
10: बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के वादे पर सवाल हुआ तो बहुत ठसक से तंज कसते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले थे, यूपी में तो बिजली आती है। कितना आती है वो अपनी बीजेपी के ही विधायकों से ही देख लें। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, कहें कि जनता बहुत नाराज है बिजली की कटौती से। इनसे पहले लखनऊ उत्तर के बीजेपी विधायक नीरज वोरा बिजली मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जनता परेशान भी है और आक्रोशित भी। रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी विधायक तो अपनी सरकार के तले चलते बिजली विभाग के अधिकारी को फोन करके बोल रहे हैं, लगता है कि तुम लोग जानबूझकर बिजली काट रहे हो ताकि सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो। अब कार में जाते हुए रायबरेली से आने वाले बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे जनता क्यों प्रदेश में बिजली कट से बेहाल हो रही है।
11: ये क्या दिक्कत है भाई, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है, लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5, 6-6 घंटे किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।
10: बीजेपी के विधायक ही मानते हैं कि 6-8 घंटे की कटौती हो रही है। जिस रायबरेली की बात बीजेपी के विधायक ने की, उन्हीं की जनता को सुनिएगा।
12: न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न लोग अपने घर में रह पा रहे हैं, न खाना
13: कवर कर लेता है, मगर रात में बहुत ही स्थितियाँ गड़बड़ है। बिजली की समय बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं, रात में कितनी बार ट्रिप हो रही है, इन्वर्टर तो हमें फुल तरह से चार्ज ही नहीं हो पा रहा है और कम से कम रात में बोला 4-5 बार तो जाने ही जाने।
10: लेकिन क्या बिजली विभाग जनता की समस्या को समझ पाता है? कतई नहीं समझता। तभी तो बीजेपी के विधायक को कहना पड़ रहा है, भैया देख लो, हम अगर आ गए तो ठीक नहीं होगा।
11: एसडीओ साहब देखिए, मैं एक ही बार 4 घंटे खड़ा था आपके बिजली घर पे, बहुत सी चीजों में सुधार हो गया था। अब ऐसा ना हो कि विधायक को हर रोज जाकर के बिजली घर पे खड़ा होना पड़े। आपके लिए समस्या हो जाएगी फिर। इतनी भी दिक्कत सरकार की ओर से नहीं जितना आप लोग पब्लिक में कर दे रहे हैं।
10: ये हाल केवल रायबरेली का नहीं, प्रदेश के तमाम जिलों में रात में कटौती से जनता परेशान है। लेकिन अब रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक इसमें सियासी साजिश का एंगल देने लगे।
11: कुछ कर्मचारियों की वजह से और कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार की मंशा के अनुरूप वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, जानबूझकर वो लोग किसी ऐसी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित होकर के काम कर रहे हैं जिससे सरकार की साख पे बट्टा लग रहा है।
10: ये वीडियो वायरल होने के बाद का बदलाव है या फिर वाकई बिजली संकट में कोई सियासी साजिश है? जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की होगी और उसके मंत्री ए के शर्मा की, जिनकी नाक के नीचे मतलब राजधानी लखनऊ में ही दुबग्गा इलाके के लोग दावा करते हैं कि दो दो तीन तीन दिन की बिजली कटौती के बाद वो परेशान हो चुके हैं, लाचार होकर सड़कों पर उतर आए। यहीं पर प्राइवेट अस्पताल के जनरेटर जब लगातार बिजली जाने के बाद सरेंडर कर गए तो मरीज बेहाल दिखने लगे, इलाज जांच सब थम गई।
14: एक होती है मरहम पर पट्टी और दूसरा होता है घाव पर नमक, तो कुछ यही होगा घाव पर नमक। लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में इस वक्त हीट वेव है, 45 के पार कई जिलों का टेम्परेचर है। ऐसे में बिजली समस्या बढ़ी और लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल, यहां की तस्वीरें आप अगर देखें तो खुद तस्वीरें देखें, खुद समझें और खुद जायजा लें। ये एक पेशेंट है जो इस वक्त यहां पर एडमिट है, लेकिन इनकी मुसीबतें और तब बढ़ गई जब बिजली ही चली गई। जरूर अस्पताल में एक ट्रांसफॉर्मर था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर भी क्या करे जब घंटों दिनों दिन बिजली नहीं आ रही है। पंखा दिखाएं, ये पंखा लगाया तो गया था पेशेंट की मदद के लिए, कब से यहाँ पर पंखा बंद है?
15: हो गया दो तीन दिन, तीन दिन।
14: आप तब से यहाँ ऐसे ही एडमिट हैं गर्मी में?
15: जी ऐसे ही एडमिट है, क्या करें?
16: अब लाइट आ जाए, इलाज होना चालू हो जाए, लाइट है नहीं, क्या करें हम लोग?
17: एमआरआई होना था।
14: एमआरआई एक्सरे भी कैसे? देखिए एमआरआई एक्सरे केवल पंखा ही नहीं है, अस्पताल में तो एमआरआई एक्सरे सीटी स्कैन सारी ही चीजों को बिजली चाहिए, और जब बिजली ही नहीं है तो क्या होगा?
16: दो दिन से हमारे मरीज की ऐसी हालत है, पैर की हड्डी टूट गई है, अब वो उसको सही समय से उसका इलाज नहीं होगा तो अब पैर का खतरा।
10: सोचिए यह हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां बीजेपी के ही विधायक राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी बिजली मंत्री को लिखकर कहा कि इस बार बिजली बाधित होना, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फ्यूज फेल्योर, शिकायत के निस्तारण में देरी की वजह से जनता में संतोष बढ़ रहा है। मतलब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिजली विभाग कुछ नहीं कर पा रहा। आगे चिट्ठी में लिखा कि ये समस्या अभी की नहीं है, ये तो पिछले साल भी हुआ था। अब ये तो मंत्री ए के शर्मा ही बता सकते हैं कि वो काहे जनता की समस्या हर साल दूर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से बीजेपी के विधायक उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाते हैं और जनता गर्मी से बेहाल होकर परेशान रात में बिजली आने का इंतजार करते करते थक कर प्रदर्शन करने लगती है और तब पुलिस की धमकी मिलती है, गर्मी सहो वरना मुकदमा झेलो।
6: रोड से हट जाएंगे, अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा, फिर बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा।
0: महोबा में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी। अजय राय एक कार्यक्रम में महोबा गए थे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। अजय राय को आप देख रहे हैं, पत्रकारों से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो अब शब्दों का इस्तेमाल किया। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ ही सुमित होंगे आपके साथ।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: गर्मी के कहर के बीच इंडिया गेट का दर्शन भारी पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली तप रही है। तपती राजधानी में दोपहर के वक्त सैर सपाटा खतरे भरा है क्योंकि यहां का तापमान भी 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 20 मई को दिल्ली का रिज इलाका सबसे ज्यादा तपता नजर आया, वहां 45.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो सफदरजंग में 44.5 डिग्री रहा। आया नगर में भी पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। पूरी दिल्ली तड़प रही है, यहां दोपहर के वक्त बहुत जरूरी हुआ तो लोग कपड़े से चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं। ताजा हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, कहा है कि आने वाले कुछ और दिन लू के संकट का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी मुसीबत कम होती नहीं दिख रही, वहां के कई शहर इस संकट से जूझ रहे हैं। नागपुर में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहां पारा 46.6 डिग्री तक जा पहुंचा है। विदर्भ के सभी जिलों में पारा 45 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र के वर्धा में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया है। वहीं नागपुर में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 46.6 डिग्री हो गया। अमरावती में 46.4 डिग्री और चंद्रपुर में 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गढ़चिरौली में 45.6, अकोला और यवतमाल में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि महाराष्ट्र में अगले 5 से 6 दिन तापमान और बढ़ेगा। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी बुरा हाल है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच रामगढ़ में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ रहा है। रांची की सड़कों पर भी सन्नाटा हालात की गवाही दे रहा है। कई राज्यों में ऐसा ही हाल है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नागपुर से योगेश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

द्विशा की बॉडी का होगा दूसरा पोस्टमार्टम, हाई कोर्ट की मंजूरी, एम्स दिल्ली से जाएगी डॉक्टर्स की टीम, कोर्ट में सरेंडर करेंगे पति, डेथ मिस्ट्री पर जांच करेगी सीबीआई। सात सौ इक्कीस साल बाद आज जुम्मे के दिन थार भोजशाला में अखंड पूजा पाठ, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती भी की, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम, हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।

0: मोदी पर की अभद्र टिप्पणी, मोहब्बा में पत्रकार से सवाल पर बढ़ के पीएम मोदी के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। सूरज से बरसती आग से तप रहा है देश, कई शहरों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में स्कूल बंद, बढ़ने लगी है बिजली की कटौती, कई शहरों में पानी की भी किल्लत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: ईरान का यूरेनियम छीनेगा अमेरिका, महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू। हुर्मुज समंदर पर ईरान की तानाशाही, जहाजों से वसूलेगा टैक्स। इजरायली बमबारी बेअसर, महाशक्ति बनकर दोबारा उभरा ईरान। इजराइल को बचाने में खाली हुआ अमेरिका का मिसाइल भंडार। अमेरिकी प्रोपेगेंडा वीडियो में उड़ा ईरान के सुप्रीम लीडर का मजाक। महायुद्ध की आहट से सहमा सऊदी, मक्का में किया महाशक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा, चीन ईरान की बढ़ी टेंशन। हुर्मुज संकट के बीच भारत को अमेरिकी तेल का बंपर ऑफर।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ती तनातनी एक नए महायुद्ध का अलार्म बजाती जा रही है। दोनों देशों के बीच टकराव एक दूसरे पर बड़े मुद्दे में सामने आ रहे हैं। पहला मुद्दा ईरान में मौजूदा 400 किलो यूरेनियम का है, जो वेपन ग्रेड से बस एक कदम दूर है। अगर 90% एनरिच कर लिया जाए तो उससे 8 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान से ले जाने पर आमदा है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप दिया जाए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई इसके लिए सख्त खिलाफ है। टकराव का दूसरा मुद्दा है हॉर्मूज को लेकर, जिसे टोल वसूलने पर ईरान अड़ा हुआ है। इन दोनों मुद्दों पर फिर से जंग छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है, और इसी आशंका के बीच सऊदी अरब ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया है। वहीं इन हालातों के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री कल से भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। उनके इस दौरे से ईरान और चीन दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिमी एशिया में इस वक्त एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान के एनरिच यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ईरान में मौजूद करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम को ईरान के हाथ में नहीं रहने देंगे। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर वो भी ईरान में मौजूद बेहद संवर्धित यूरेनियम को देश के

0: आईजीसी की नेवी मंजूर करेगी। ईरान जहाजों में तय की गई फीस भी वसूलेगा। और इस बीच आईआरजीसी नेवी ने दावा किया कि बीते 24 घंटे में तेल टैंकर समेत 35 कंटेनर जहाजों ने उसकी इजाजत से हॉर्मुज रूट पार कर लिया है। यानी ये लगातार दोनों के दोनों देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनकी ही पकड़ मजबूत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा नया वेपन डेवलप कर ईरान के हाथों में दे दिया, जिसके बाद अब ईरान उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए मुफ्त और मुक्त होगा, लेकिन ईरान ने हाल ही में फारस की खाड़ी स्टेट ऑफ प्राधिकरण यानी PGCSA का गठन किया है। इसके जरिए वो हॉर्मुज के जल डमरू क्षेत्र को अपने इलाके में या फिर पूरे इलाके पर नियंत्रण करने के साथ साथ इससे पैसा वसूलने की बात कह रहा है। अब आप देखिए कि कहां पर है। देखिए, यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यह है आप देख सकते हैं बंदर अब्बास और बाकी के इलाके, और यहीं से अगर आप देखें यह ओमान है और ओमान की खाड़ी का इलाका आगे यह पड़ता है, जहां पर अमेरिका के नौसेना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है, कई डिस्ट्रॉयर्स की मौजूदगी है। लेकिन अब गल्फ ऑफ परेशिया के नाम से यानी फारस की खाड़ी के इलाके के पूरे इलाके में ईरान अपना कब्जा जमा, यहां पर एक ब्लॉकेट है, दूसरा ब्लॉकेट यहां पर है, और आपको बताऊं कि यहां से ठीक पीछे अमेरिका की नौसेना की तैनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस इलाके के साथ साथ अब ईरान इन इलाकों के अंदर भी अपनी पेट्रोलिंग अपनी क्षमताओं का इजाफा कर रहा है और चाहता है कि जो परेशियन गल्फ का यह पूरा इलाका है वो इसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल जमा सके, और ना सिर्फ आने जाने की जहाजों के लिए अनुमति ईरान से लेनी पड़े बल्कि उनके लिए उसके लिए पैसा भी ईरान को देना पड़े। अब आपको हम लगातार बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करके समझा रहे हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, यूएई हो, ओमान हो, सऊदी हो, उसको इससे दिक्कत होगी क्योंकि उनके लिए यहां से ट्रांसपोर्टेशन अपने ऑयल गैस के लिए नामुमकिन हो जाएगी। हर चीज के लिए फिर ईरान से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर ऐसे में अमेरिका भी सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान के पास बैठकर सिर्फ एक मॉनिटरिंग के तौर पर बैठ सकता है, इस इलाके में कुछ नहीं कर सकता। शायद अब अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईरान, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब गल्फ ऑफ परेशिया के अंदर वो लगातार अपनी फारस की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है। अब ईरान को लेकर ट्रंप अक्सर बड़े बड़े बयान करते रहते हैं। आपको उनका एक ऐसा ही दावा सुनाते हैं जिसकी पोल अमेरिकी एजेंसी ने ही खोल दी। पहले आप ईरान में हथियार निर्माण को लेकर ट्रंप का यह दावा सुनिए।
1: We'd say we knocked out 85% of their missile capacity. It's very hard for them now to build missiles, to build drones. We have great drone technology, anti-drone technology now that frankly we didn't have even 2 months ago. We have unbelievable drone technology, both for making them and also for knocking them down.
0: सुना आपने, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान मिसाइल नहीं बना सकता, ड्रोन भी नहीं बना सकता, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी उनके इन दावों को ना सिर्फ झूठा बल्कि गलत साबित कर रही है। यही इसी वक्त इससे जुड़ी एक बड़ा अपडेट जो मिल रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि 39 दिन के युद्ध में इसराइल और अमेरिका की भारी बमबारी के बाद भी ईरान अपनी सैन्य ताकत को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा से खड़ा करने में लगा हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रमों को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों ने नहीं की होगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ कहा है कि ईरानियों ने जितनी तेजी से मिसाइल और ड्रोन को फिर से बनाना शुरू किया है उसके आगे हमारी ओर से दी गई सारी टाइमलाइन फेल हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के तुरंत बाद ही ईरान ने अपने ड्रोन और प्रोडक्शन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। अमेरिकी आकलन बताते हैं कि ईरान अगले महज 6 महीनों के भीतर ही ड्रोन से हमला करने की अपनी पूरी ताकत को वापस हासिल कर लेगा, यानी जंग के मैदान में उसने कुछ नहीं खोया होगा, वो अपने आप को रिवाइव कर लेगा। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने उन तमाम दावों को की हवा निकाल दी है जिसमें वो ये बताते हैं कि ईरान की नेवी एयरफोर्स मिसाइल ड्रोन उत्पादन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ईरान के पास कोई ताकत नहीं बची। हकीकत यह है कि ईरान अपने नष्ट हुए मिसाइल अड्डों, लॉन्चर्स, हथियार की फैक्ट्री, युद्ध स्तर पर तेजी से एक्शन पर काम कर रहा है, और इस कहानी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू यह है

कि चीन और रूस का एक्टिव सपोर्ट भी उसे मिल रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी पुर्जे सप्लाई किए, जिससे ईरान को इतनी जल्दी खड़ा होने में या फिर अपनी ताकत को मजबूत करने में मदद मिली। हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने प्रवक्ता ने साफ तौर पर इस दावों को खारिज किया था, इन्हें बेबुनियाद बताया था। लेकिन लगातार ये भी बात सही है कि ना सिर्फ उनकी स्ट्रेटेजिक एसर्ट्स को बल्कि उनको लगातार कम्युनिकेशन और सैटेलाइट चीजें देने में, उनको जानकारी मुहैया कराने में चीन और रूस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब एक तरफ ईरान जहां धड़ल्ले से मिसाइल और ड्रोन बना रहा है, वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हथियारों के भंडार को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। और ये खबर है कि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि अमेरिकी हथियारों का भंडार खाली हो गया। अखबार ने पेंटागन के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान के हमलों से इसराइल को बचाने के चक्कर में खुद अमेरिका का अपना मिसाइल भंडार खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल की रक्षा करने की पेंटागन के लिए सबसे एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा फूंक दिया गया है। अमेरिका ने अपने खासतौर पर बेजोड़ थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 200 से ज्यादा इंटरसेप्ट मिसाइलें दाग दी थी, जो अमेरिकी सेना के कुल स्टॉक का लगभग आधा है। बात सिर्फ जमीन से मार करने वाली थार की नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने समंदर में तैनात अपने युद्धपोतों में 100 से अधिक SM-3 और SM-6 एंटी मिसाइल भी ईरान के हमलों में रोकने के लिए हवा में उड़ा दिए हैं, यानी उनका इस्तेमाल कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इसराइल पर हमला हुआ उसने खुद अपने बचाव में अमेरिका से कम मिसाइलें चलाई। आंकड़ों के मुताबिक इसराइल ने अपने एरो इंटरसेप्टर में सिस्टम से 100 से भी कम मिसाइलें अपने आप कह सकते हैं डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल सिस्टम से सिर्फ 90 के करीब मिसाइलें दागी, यानी इसराइल से ज्यादा अमेरिका ने उसे बचाने के लिए अपनी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में सबसे डराने वाली बात और चेतावनी दी गई है कि अगर इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच दोबारा से युद्ध भड़कता है तो हालात बेहद बेकाबू हो सकते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी किल्लत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल डिफेंस फोर्स के कई मिसाइल सिस्टम्स को मेंटेन करने में लगा हुआ है। ऐसे में इसराइल का सुरक्षा कवच पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। अब देखना यह है कि मिसाइलों के इस खाली होते भंडार के बीच अमेरिका ईरान को आगे कैसे रोकता है। और देखिए, भले ही अमेरिका के खिलाफ मिसाइल कम पड़ रही हो, लेकिन प्रोपेगेंडा भी पीछे नहीं हटाया जा रहा। दोनों एक दूसरे पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी युद्ध के युद्ध विभाग ने ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षी सैन्य योजनाओं को दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गोल्डन डोम के लेकर गोल्डन फ्लीट तक और अंतरिक्ष से में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा दिखाया गया। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने आवाज में यह पीआर वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बेसाखियों के सहारे चलने वाले दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। ये क्लासिक मिलिट्री प्रोपेगेंडा वीडियो है जो शक्ति प्रदर्शन और घरेलू राजनीति और दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में जुटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन में से ये वीडियो काफी आम हो गए, यानी लगातार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में या साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इस तरीके के वीडियो दोनों तरफ से जारी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ईरान की भी कई ऐसी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, जो लगातार इस तरीके के वीडियो सार्वजनिक करते हैं जहां पर ट्रंप को बेबस नजर आता हुआ दिखाया जाता है। अब ऐसे समय में जब हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर तनाव है, और तब यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी मुस्तैदी और तैयारी की तस्वीरें भी सार्वजनिक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अब्राहम लिंकन टेरर स्ट्राइक ग्रुप इस समय अरब सागर में पूरी तरीके से तैनात है और जबरदस्त मुस्तैदी बनाए हुए हैं। आधिकारिक बयान में साफ किया गया है कि अमेरिकी नौसेना का यह दस्ता ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ लागू की गई अमेरिकी नाकेबंदी को कड़ाई से प्रभावी बनाने का मिशन को पूरी तरीके से सफल बनाए हुए है। यह सैन्य हलचल ऐसे समय पर सामने आई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इनरिच यूरेनियम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान एक बार फिर से राजनयिक और रणनीतिक आप कह सकते तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान बंदरगाहों की जा रही घेराबंदी को क्षेत्र में किसी भी संभावित सैन्य टकराव से पहले अमेरिकी दबाव कायम रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, इसी बीच अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर सऊदी अरब भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हद से पहले सऊदी अरब का शक्ति प्रदर्शन देखा गया, जहां मक्का में सुरक्षा बलों की बड़ी परेड की गई। सऊदी अरब 24 मई से शुरू हो रही हद से पहले मक्का में वार्षिक सुरक्षा परेड आयोजन कर अपनी सुरक्षा इमरजेंसी की तैयारियों का प्रदर्शन भी किया गया। परेड में विशेष
पुलिस यूनिट, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस और बॉर्डर गार्ड और मेडिकल इमरजेंसी टीम भी शामिल है। कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट और भीड़ नियंत्रण अभ्यास दिखाए गए। सुरक्षा बलों में ने आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, आपातकालीन निकासी और आग बुझाने जैसी मॉकड्रिल भी की गई। परेड में सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुल अजीज बिन सऊदी बिन नायफ ने मौजूद रहे। दुनिया भर में हज यात्रियों के मक्का पहुंचने के लिए बीच यह प्रदर्शन किया गया है और अनुमान के मुताबिक 2026 हज सीजन 20 से 30 लाख मुस्लिम श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे, यहां पहुंचेंगे। सऊदी अरब हाल ही में वर्षों में हज प्रबंधन की तकनीक और विशेष सुरक्षा इकाइयों का इस्तेमाल लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री दो दिन से तेहरान में मौजूद है और अब पाकिस्तान सेना के फील्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी लगातार तेहरान पहुंचने की खबर आ रही। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आसिम मुनीर ट्रंप की फाइनल शर्तों के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी अब ये शर्तें नहीं मानी तो ईरान पर इस बार जो हमला होगा वो ऐतिहासिक होगा, बहुत ज्यादा विध्वंसक होगा।

0: ईरान पर हमले की डेडलाइन करीब आ रही है। ईरान अमेरिका महायुद्ध को लेकर जितनी तेजी से घड़ी की सुई घूम रही है, उतनी ही पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले दो दिनों से ईरान को मनाने में जुटे हैं और अब पाक आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर बातचीत की कमान संभालने जा रहे हैं। समस्या ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान ने अपने प्रस्ताव में युद्ध पूरी तरह खत्म करने की मांग की है और फ्रीज किए गए पैसे वापस मांगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की शर्त भी रखी है, लेकिन बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटकी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तबा खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसकी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर वो ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा तो पाबंदियां हटने के बाद ईरान कर्ज निपटाने में उसकी मदद करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये एक थ्री वे डील है जिसमें शांति, पैसा और पाइपलाइन तीनों शामिल हैं। लेकिन ये सपना पाकिस्तान के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और अब खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक खबर को आपको बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कल से एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़े दौरे पर भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में इस दौरे का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो का ये भारत दौरा एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला साबित हो सकता है। इस दौरे में चार बड़े मायने। सबसे पहले मार्को रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये चीन को सीधा संदेश है। अमेरिकी दूतावास ने इस दौरे को घोषणा करते हुए क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक साझेदारी के फ्रंट पर रखा हुआ है। जारी की गई आधिकारिक तस्वीर में चारों देशों के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय ध्वजों के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरी तरीके से मुक्त और मुफ्त और उसको खोलना रहेगा, जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र में चीनी दबदबे को रोकने की बड़ी घेराबंदी है। दूसरा मुद्दा, हॉर्मुज संकट के बीच भारत को बंपर एनर्जी का ऑफर देना होगा। भारत के लिए रवाना होने से ठीक पहले मियामी में पत्रकारों से बात करते हुए मार्को रूबियो ने भारत को एक बेहतरीन साझेदार और एक बड़ा सहयोगी भी बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जितना तेल खरीद सकता है उतना अमेरिका बेचने के लिए तैयार है। रूबियो ने एक और बड़ा हिंट भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ वेनेजुएला के तेल को लेकर भी बात कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगले ही हफ्ते वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स भारत के दौरे पर आ रही है। ऐसे में अमेरिका, भारत और वेनेजुएला के मिलकर एनर्जी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा त्रिकोणीय समझौता हो सकता है, जिससे भारत को सस्ता तेल मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। जहां तक रूबियो के भारत दौरे की कार्यक्रम की बात करें तो वो 23 मई यानी कल से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो केवल नई दिल्ली में कूटनीतिक बैठक ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत के सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, आगरा और जयपुर का भी दौरा करेंगे। कल सबसे पहले वो कोलकाता पहुंचेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद रूबियो की पहली बड़ी बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी और अब भारत की सरजमी पर होने वाली ये बैठक इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक या फिर आप कह सकते रणनीतिक हलचल में तेज मानी जा रही, यानी उनका इदारा दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
2: India has been deeply affected by the energy supply, the shutting of the Strait of Hormuz. Can the U.S. provide more energy itself, or what else can the U.S. do with that?
3: Well, we want to sell them as much energy as they'll buy. And obviously, you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim President Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well.
1: चले वक्त है रणभूमि में एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से,
5: इन एसोसिएशन विद भारत।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
10: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
9: Smartless.
11: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
9: Marketplace.
12: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
9: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
17: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
20: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट।
20: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
21: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
22: Like I said before, we better hold the sins.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
7: Aaj tak la raha hai video wala paper. हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: बड़ा झटका, कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर की अभद्र टिप्पणी, मुंबई में पत्रकार के सवाल पर भड़के, पीएम मोदी के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, सफाई के बयान को बताया एआई जनरेटेड। सात सौ 21 साल बाद आज जुमे के दिन धार गौशाला में अखंड पूजा पाठ, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती भी की, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। विशा की बॉडी का होगा दूसरा पोस्टमार्टम, हाई कोर्ट की मंजूरी, एम्स दिल्ली से जाएगी डॉक्टर्स की टीम, कोर्ट में सरेंडर करेगा पति, डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: अब गोलियों की गूंज नहीं, विकास की बयार है।
4: मैं आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, और एक ऐसा सपना था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया।
5: सना पुंगारी लेत सना नानो रे, ओ आयो वया वे नानो।
3: खौफ का साया नहीं, सुनहरे भविष्य का इंतजार है। जंगलों में वीरानगी नहीं, जिंदगी जीने की दरकार है। बंदूकों वाला बस्तर अब बदल रहा है। हालात बदलने में वक्त लगता है, और फिर जब हालात बदलते हैं तो कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नक्सलियों से मुक्त हुए बस्तर में अब हालात कैसे हैं, ये देखने के लिए आज तक की टीम वहां पहुंची। बदलाव की बयार के बीच की गई इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको उस इलाके से जुड़ा हर सच दिखेगा, जिसकी पहचान कभी गोलियों, हिंसा और ब्लास्ट से थी।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ड्रोन आधुनिक युद्ध को पलटने की ताकत रखते हैं, और भारतीय सेना की नए नए ड्रोन को शामिल कर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है कि भारत की डिफेंस टेक कंपनी नाइब लिमिटेड ने पूरी तरीके से स्वदेशी वायु अस्त्र एक लोटरिंग मुनिशन का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। लोटरिंग मुनिशन यानी एक ऐसी आत्मघाती ड्रोन जो आसमान में चील की तरह मंडराकर दुश्मन को खोजता है और फिर मिसाइल बनकर उस पर टूट जाता है। भारतीय सेना को 100 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाले इस अचूक हथियार की जरूरत थी। ये टेस्ट उसी सिलसिले में किया गया। इस महा हथियार की ताकत को परखने के लिए राजस्थान के तपते पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ की 14,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर इसके टेस्ट किए गए। पोखरण में 10 किलो बारूद के साथ इस ड्रोन ने 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को सिर्फ एक मिनट में सटीक दूरी के भीतर जाकर तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इसने इंफ्रारेड कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंकरों को खोजकर निकालकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि आखिर के वक्त में हमला रोकना हो या दोबारा से टारगेट को बदलना हो तो ये भी कर पाना इसके लिए बहुत आसान है। जोशीमठ के बर्फीले मौसम में इसने लगातार 90 मिनट तक उड़ान भरी, और मिशन पूरा करने के बाद ये सुरक्षित वापस भी लौटा है। साफ है कि लद्दाख से लेकर पोखरण तक इस स्वदेशी काल ने बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। और अब रणभूमि में एक ऐसी युद्ध भूमि की बात करते हैं जो दशकों से रेड साय का या फिर आप कह सकते हैं कि दर्द झेल रही थी। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सलवाद हिंसा का एक ऐसा खेल इतने सालों से खेला जा रहा था जिससे खौफ का साया पीढ़ी दर पीढ़ी मंडराता जा रहा था। कई जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जाकर हालात बदले हैं और पूरे इलाके में नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है। हालांकि उनका बिछाया बारूद अब भी गांव से लेकर जंगलों तक और जमीन में छिपा हुआ है। इसी चुनौती का सामना कर सुरक्षा बल कैसे कर रहे हैं इस पूरे बारूद को निष्क्रिय, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।
3: बीते दिनों की बात हुआ नक्सलियों का कोहराम, रंग लाया सुरक्षा बलों का साहसिक अभियान। बदल रही बस्तर की तस्वीर, जल्द बदलेगी तकदीर। छत्तीसगढ़ के बस्तर का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। ये वो जमीन है जो दशकों से बारूद की गंध से महकती रही है। हर कदम पर खतरा, हर कदम पर मौत की आहट। नक्सली मुक्त बस्तर को अब बारूद मुक्त बनाने का अभियान जोरों पर है ताकि शांति बनी रहे और लोगों में भरोसा बढ़ता रहे।
6: सड़कों के साथ साथ जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस वक्त डिमाइनिंग का बड़ा अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे इलाकों में डिमाइनिंग किया जा चुका है लेकिन जो कुछ एरिया बचे हैं उनको पूरी तरीके से इस तरीके से विस्फोटक फ्री किया जा रहा है जिससे कि पर्यटक इन तमाम इलाकों में आ सके। और इसका सीधा मकसद यह है कि इन इलाकों में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 सालों में बस्तर को सबसे ज्यादा जो है यहां बेहतर फैसिलिटीज दी जाएंगी उसके लिए इस तरीके का अभियान चल रहा है जिससे कि आम लोगों में एक तरीके से बड़ा जो है सुरक्षा का भाव पैदा हो। और यही काम जो है अलग अलग इलाकों में बस्तर के इलाके हो या फिर बीजापुर सुकमा इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है।
3: सुरक्षा बलों के लिए चुनौती अभी भी बनी हुई है। बस्तर के कई इलाकों में आईडी लगे होने की पुख्ता जानकारी के बाद से पूरे इलाके को विस्फोटकों से मुक्त कराने का अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है।
6: नक्सल मुक्त भारत होने के बाद अब इन इलाकों में बड़े स्तर पर डीमाइनिंग का सबसे बड़ा अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। हम यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आईडी को अगर नक्सलियों ने छिपा रखा है, बहुत सारे नक्सलियों से पूछताछ हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के जरिए अलग अलग इलाकों में जहां पर आशंका है वहां पर आईडी सर्च की जा रही है। दरअसल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें इस तरीके से जो इनके पास बीडीडीएस टीम है उसके जरिए यहां पर ये लोग डिटेक्ट करते हैं क्योंकि आईडी एक बड़ा खतरा हो सकता है, इससे निपटना जरूरी है। और यही वजह है कि तमाम जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीओ जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं।
7: सभी तरह के आईडी के सभी संभावित खतरों को दूर करने के लिए हम रेगुलर जो है डिमाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है कि नक्सलियों ने जो है इसको अपना मुख्य हथियार बना रखा था, परंतु अभी जितने भी एनएच और नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और जितने भी सड़क मार्ग हैं जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही है, आम जनता कर रही है, उसको जो है आईडी से मुक्त करने के लिए जिससे कि वो भय मुक्त होकर के इस पर चल सके और जो है इन फ्यूचर में इसका इस्तेमाल जो है क्लियरली आराम से किया जा सके। इसका वही प्रोसेस ये है कि जितने भी संभावित अगर खतरे हैं, साइड में अगर कोई वायर लगा हुआ है तो ट्रैक्टर के द्वारा इसकी खुदाई करते हैं, उसके बाद जो कॉम्पैक्ट वायर डिटेक्टर है इसके द्वारा अगर कोई भी संभावित अगर वायर है और डीएसएमटी मेटल है, मेटल डीएसएमटी द्वारा अगर कोई भी ऐसी संभावित कोई खतरा है तो उसको दूर किया जाता है।
3: जमीन में छिपाए गए विस्फोटकों को ढूंढने में सीआरपीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए कई तरह के हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है।
6: 95% से ज्यादा जो अलग अलग इलाके हैं उसको पूरी तरीके से आईडी फ्री कर दिया गया है। जो बाकी इलाके हैं वहां पर ऐसे ही कोशिश लगातार की जा रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है और ये एक खास तरीके का रडार है जो कि सीआरपीएफ के पास मौजूद है जिससे जमीन के अंदर अगर 2 से 3 फीट की दूरी पर कोई विस्फोटक छिपा हुआ है तो उसके जरिए भी इसको खोजा जा सकता है। और एक बड़ा अभियान जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। ये आप लोग सर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से आईडी फ्री किया जाए, तो किस तरीके से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं?
8: सर जैसे कि आपने बताया कि ये ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार, इसका हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ड्यूल सेंसर है सर। इसमें हम दो चीजें अपना मेटल्स और जो क्या नाम है मिट्टी में, जैसे अगर यहाँ कुछ कंटेनर दबा है पुराना तो ये उसको भी डिटेक्ट करेगा कि यहाँ मिट्टी से कुछ छेड़छाड़ हुई है और उसके नीचे कुछ कंटेनर है, चाहे मेटल का हो चाहे वैसा हो, कि बाकी एटमोस्फेयर से यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है, मतलब कुछ हो सकता है, तो मेनली हम उसके लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ 2.5 से 3 फीट भी तीन फुट तक मैक्सिमम अगर कुछ गड़ा है तो उसको डिटेक्ट करने में सक्षम है।
9: इलाका बड़ा है और संसाधन सीमित, इसीलिए सुरक्षा बल हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिससे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। इसीलिए अब ड्रोन का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है।
6: ड्रोन का भी इस वक्त छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया जा रहा है इस्तेमाल सर्विलांस करने के लिए। जैसे ही यहां पर डिमाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया उसके बाद से ड्रोन के जरिए हर एक रास्तों को देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम जो यहां पर बनाया गया है उसमें तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं। जो भी पार्टी यहां से निकलती है डिमाइनिंग करने के लिए उसके सामने किसी भी तरीके का बाधा पैदा न हो उसके लिए सर्विलांस यहां पर लगाया जाता है और सर्विलांस के जरिए ये देखा जाता है कि आगे किसी तरीके से जो है इनको दिक्कत न हो डिमाइनिंग करने वाली पार्टी को। इसके लिए पूरी यहां पर तैयारी की गई है और ड्रोन का अलग अलग स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग किया जा रहा है वहीं बीडीडीएस टीम भी इनके साथ मौजूद रहती है।
9: आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इस पूरे अभियान का जायजा लिया, साथ ही उन पुलिस अफसरों से भी बात की जिन्होंने इस इलाके में नक्सलियों के बारूद साम्राज्य से हुए नुकसान को बेहद करीब से देखा है।
10: सुरक्षा बल को तो काफी बड़ी नुकसान पूर्व में हुई, साथ साथ क्षेत्र का निर्दोष जनता है जो महुआ बीनने के लिए जंगल में जाते हैं या कोई मवेशी चराने के लिए जंगल में जाते, कई बार उन्होंने भी आईडी के चपेट मारकर उनकी जान चले गई है या कई लोग का पैर उड़ गए थे, किसी का आंख की रोशनी चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक भी आईडी का शिकार हो गए थे। इस प्रकार का परिस्थिति पूर्व में रहा, इस विषय को देखते हुए विगत समय में लगातार एंड डिमाइनिंग ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा संचालित किए गए थे। विगत दो वर्ष में यदि देखा जाएगा लगभग 2000 से अधिक आईडीज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई करके उसका सेफली डिफ्यूज किया गया।
9: सीआरपीएफ ने अबूझमाड़ के घने जंगलों को आईडी मुक्त कराने के लिए शुरू किए गए अभियान को ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
6: आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो डीआरजी के जवान हैं वो सभी जवान यहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो भी आईईडी छिपाए गए हैं उसको ढूंढा जाए। नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक बड़ा चैलेंज ये सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेज को डंप मिले हैं जिसमें सुरक्षा बलों को आईईडी के साथ साथ नक्सलियों के पास से जो उन्होंने पैसे छिपा रखे थे करोड़ों की संख्या में ये रुपए मिले हैं और इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है कि इन जंगलों में जो आईडी या इसके साथ साथ विस्फोटक छिपा रखा है उसको ढूंढा जाए और ये काम लगातार छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
0: और जितेंद्र बहादुर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ये देख रहे थे। ये सब सुरक्षा बलों के साहस और सरकार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है कि सैकड़ों नक्सलियों ने घुटने टेक दिए, वो फिर चाहे बस्तर हो, सुकमा हो का इलाका हो या फिर दंतेवाड़ा का इलाका, जहां उनका नेटवर्क तबाह हो चुका है और हथियार डालने वाले नक्सली अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं और सम्मान के साथ अपनी एक नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
9: ये कोई आम कैफे नहीं है, ये उन इलाकों की बदलती तस्वीर है जो कभी तबाही के कगार पर खड़े थे और गोलियों की गड़गड़ाहट जहां की पहचान होती थी, सुकमा हो या फिर बस्तर। तस्वीर के साथ साथ अब तकदीर भी पूरी तरह बदल रही है।
11: आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधूर के नाम से गुंडाधूर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी। मित्रों, में राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति, लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच एक बच्ची के मुंह से हम बच गए ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन बहुत कठिन।
9: बदला माहौल उन सुरक्षा बलों के लिए भी राहत लेकर आया है जिनके कई जवानों को इन ऑपरेशंस में जान से हाथ धोना पड़ा है।
6: अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर कमांडोज मौजूद हैं, यहाँ पर्यटन केंद्र भी खोला गया है। सुकमा का ये सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र इस इलाके का है जहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और ये जो कमांडोज हैं वो यहाँ अभी भी मौजूद रहते हैं। एक खतरा इस इलाके में जरूर है जो नक्सलियों ने आईडी छिपाया हुआ है, लेकिन उसको भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो कमांडोज हैं इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ का माहौल बना रहे हैं, पर्यटन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
12: पहले यहाँ भी आना मुश्किल था, जैसे यहाँ से कोंटा लगभग 50 किलोमीटर है, इस रास्ता में लोग नहीं आ पाते थे और उड़ीसा के रोड होते हुए फिर सुकमा आ पाते थे मुख्यालय में, ऐसा स्थिति था। इस समय तो लोग अच्छा से आ रहे जा रहे घूम रहे बढ़िया है सर।
6: कैसे आप पहले और अब में अंतर देख रहे हैं?
13: सर मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले जो डर था सर, वो जो बाकी लोग जितने भी जो अंदर इलाके के लोग यहाँ पे सुकमा जिला को देखना भी मतलब बड़ी मुश्किल होती थी सर। अभी क्या है, बाहर के लोग भी यहाँ के सुकमा जिले का जो माहौल को देख के जा रहे हैं, तो सर मेरे को बहुत अच्छे लगा है क्योंकि पहले से कुछ ज्यादा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ। जो लोग अभी मतलब जो देख के भी जा रहे हैं सर।
9: अब यहाँ सैर सपाटा हो रहा है और कैफे में काम करने वाले वो हैं जिनके सिर पर कभी लाखों का इनाम रखा गया था।
6: कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला सुकमा आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पर वो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, सरेंडर नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कैफे चलाए जाते हैं। मैं इस वक्त तुंगल इको पार्क जो कि पर्यटन केंद्र सुकमा है यहाँ पर मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कैफे बनाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है, तुंगल नेचर कैफे। इस कैफे को चलाने वाली जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर 5 लाख से 8 लाख तक जो है इनाम था, सरेंडर नक्सलियों के द्वारा यहां पर इस पूरे कैफे को चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहां के आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं ऐसे कैफे में और यहां आप देखिए कि इन्होंने सरेंडर किया है, जिनके ऊपर 5 लाख किसी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन अब इनके द्वारा ये फॉरेस्ट कैफे चलाया जा रहा है जिसकी तुंगल नेचर कैफे जिसको कि बोलते हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस तरीके का नेचर कैफे यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जो कि पहले नक्सलियों के बहकावे में आ जाते थे, अब उनको केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिल करके इस तरीके के रोजगार दिए जा रहे हैं और ऐसे पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में शीशे के उस पार से देख सकते हैं कि रिवर है और यहाँ पर लोग बोटिंग करने के लिए भी काफी संख्या में पहुंचते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था इस पूरे इलाके में किया गया है और खास बात यह है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के जो है ऐसे कैफे का लुत्फ उठाते हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो लोग हैं जो लोग सरेंडर किए हैं नक्सली, वो लोग इस कैफे को चलाते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है?
14: सर अभी तो सुकमा तो पहले से ज्यादा ही बेहतर है। अभी अभी उन लोग को देखने से भी अभी डर नहीं लगता है, पहले तो डर लगता था सर। अभी यहाँ पर नेचर के कैफे खोले हैं तो यहाँ का सब अच्छा ही लगता है सर।
6: थैंक यू। और इसके अलावा और भी लोग आते हैं आसपास के? यहाँ तो पहले बहुत ही खराब तरीके का माहौल था, लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो अब पर्यटन और इन तमाम चीजों में कितना अंतर देख रहे हैं?
14: सर आते हैं सर बहुत दूर दूर से। अभी पहले जैसे तो सुकमा अब डर का माहौल में नहीं है सर, पहले नक्सल का गढ़ बोलते थे सुकमा को, अब उतना खास नहीं है सर, बहुत दूर दूर से आते हैं। अब लोग सप्ताह में 2-3 बार तो आते हैं सर। ये
6: आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं?
15: मांडवी बुद्री।
6: मांडवी
15: बुद्री।
6: अच्छा, तो पहले जैसे आप लोग नक्सल उसमें थी, अब यहाँ पर पुनर्वास उसमें आई है, तो ऐसे काम में बेहतर तरीके से आप लोगों का विकास हो रहा है?
15: अच्छा ही हो रहा
6: है। अच्छा है। आप ये बताइए कि अभी क्या काम आप लोग यहाँ पर, यही फॉरेस्ट जो नेचर कैफे यही चला रहे हैं?
15: जी कैफे में हम लोग चला रहे हैं सर। जी
6: आपका नाम क्या है, कितना इनाम था आपके ऊपर उस दौरान?
16: मेरा नाम कुरम राम है, इनाम था 5 लाख है।
6: अच्छा, तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, सरकार बेहतर तरीके की व्यवस्था आप लोगों के लिए किया है, ऐसे कैफे चला रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं?
16: पहुँच रहे सर, अभी गर्मी में उतना लोग नहीं आते, लेकिन ठंडा समय में आते हैं, अभी शाम तक भी थोड़ा बहुत आते हैं इधर।
0: जितेंद्र बहादुर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे नक्सल के उन इलाकों से जहां पर अब शांति और समृद्धि स्थापित की जा रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रणभूमि में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब वक्त है ब्रेक का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
1: उसने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
0: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बॉर्डर सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम, देश से बाहर निकाले जाएंगे अवैध घुसपैठिए।

पर अखिलेश की पहली चाल से कांग्रेस को लग सकता है झटका। कहा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए मुस्तैद, जो साथ आएगा फायदा उसका।

0: पीएम मोदी पर अजय राय की अभद्र टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी, बोले ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को दिखाती है, बयान को हताशा, निराशा और कुंठा वाला बताया। सात सौ इक्कीस साल के बाद आज जुम्मे के दिन धार भोजशाला में अखंड पूजा, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती, पुलिस का भारी सुरक्षा इंतजाम, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। पेशा की बॉडी का होगा दूसरा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट की मंजूरी, एम्स दिल्ली से जाएगी डॉक्टरों की टीम, कोर्ट में सरेंडर करेगा पति, डेथ मिस्ट्री की जांच करेगी सीबीआई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साहिल जोशी। बंगाल के हाई प्रोफाइल चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, जिसकी 2027 में सियासी परीक्षा भी होने वाली है। और इसी इंतजार के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक संदेश ने कई तरह के चुनावी संकेत कर दिए हैं। जी हां, अखिलेश ने कह दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी की सभी 403 सीटों पर मुस्तैद है। हालांकि अखिलेश का यह बयान उस घटना के बाद भी आया है जिसपे कांग्रेस के नेताओं ने मायावती से मिलने की कोशिश की थी। अब अखिलेश के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत में योगी से अकेले लोहा लड़ने का मन बना चुके हैं अखिलेश यादव? क्या अखिलेश कांग्रेस को आईना दिखाना चाहते हैं? क्या बंगाल में कांग्रेस के फ्लॉप शो के बाद अब यूपी में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं अखिलेश? या फिर बंगाल में ममता की हार के बाद इंडिया गठबंधन में खुद को सबसे बड़े चेहरे पर सामने रखने का प्लान कर रहे हैं अखिलेश? आज के दंगल में हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की एक खास रिपोर्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या नया करवट लेगी।

0: साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
1: जो कांग्रेस के लोग गए, अब ये किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
2: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो अब कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पर सामने बहन जी का बंगला है। तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं, तो मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते अगर होंगी तो।
0: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
3: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी

0: प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन तीन सवाल चर्चा शुरू होने के पहले दंगल में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो यूपी चुनाव के पहले क्या पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई अविश्वास का माहौल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है 403, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई किसको पूछ कर गए थे और ऐसे अचानक कैसे चले गए, ये भी सवाल उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि यूपी में बीएसपी का दलित वोट और समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्लस मुस्लिम वोट दोनों विपक्ष के लिए क्या अहम है, और कांग्रेस के बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने पर क्या एसपी को अपना कोर वोट बैंक खिसकने का डर है, और क्या इसी के वजह से सब समाजवादी पार्टी के लिए हम अकेले ही काफी है, 403 पर हम लड़ लेंगे। तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव के पहले नए गठजोड़ की भी कोशिश होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कांशीराम प्रति प्रेम उमड़ कर आ रहा है। कांशीराम के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम, उनके लिए भारत रत्न की मांग की गई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, तो कांशीराम शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, ये भी कहने की कोशिश है। तो यह भी क्या नई राजनीति है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से। आज अनुराग भदौरिया जी, बड़ी अच्छी स्लोगन दी हुई है अखिलेश यादव ने
1: जी,
0: बात सीट की नहीं जीत की। तो सीट की बात कौन कर रहा है और जीत की बात कौन कर रहा है इंडिया गठबंधन?
1: हम लोगों ने हमेशा से देखिए हमेशा से समाजवादी पार्टी का मानना रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है, जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोग महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरह से कराह रहे हैं, और जिस तरह से जो हालत है अभी, जिस समय आप देखिए आज देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जो आर्थिक स्थिति कितनी तंग है, हर व्यक्ति अपनी तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि नौकरियां तो बढ़ी नहीं, कहीं इनकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, बेरोजगारी तो दूर हुई नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई, तो सोचो कैसे लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। अब चाय भी 10 रुपए की 20 रुपए में मिलने लगी है, तो लोग अपनी चाय तक नहीं पी सकते। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से संगठित पार्टी रही है और उसका संगठन गांव-गांव तक मजबूत है, और जाहिर सी बात है हम लोग वही चाहेंगे कि जो कैंडिडेट जीते, जो जीत का फॉर्मूला होगा, जो जो प्रत्याशी जीते उसी को टिकट दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि बात सीट शेयरिंग की नहीं है, बात है कि आपस में जब भी इंडिया गठबंधन बैठेगा, इंडिया गठबंधन की आपस में मीटिंग हुई, तो बात यही प्राथमिकता दी जाएगी कि जीत की बात होगी, क्योंकि ये नहीं कि किसको कितनी सीटें मिल गई, किसको आपने कम मिल गई, किसको ज्यादा मिल गई। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि जनता के सम्मान को लौटाना है, जनता की परेशानियों को दूर करना है, उनका दुख दर्द जिस तकलीफ में वो जी रहे हैं उनके दर्द को समझना है, और भारतीय जनता
0: पार्टी। लेकिन 403 की बात कहां से आ गई?
1: जब भी सीट की बात होगी तो बात इस बात
0: को, 403 की बात कहां से आ गई?
1: देखिए
0: कहीं हाथ हाथी को थपथपा रहा है उसी के वजह से 403 तो याद नहीं आ गया पूरा।
1: नहीं, 403 कोई पहली बार थोड़ी है, 403 पे तैयारी तो समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से करती है, और समाजवादी पार्टी हमेशा से 403 सीटों पे ही लड़ती है, चाहे किसी के भाई हमारा साथी भी कोई लड़ेगा तो हमें भी तो उसे जिताना होगा ना। हम अगर फील्ड पे मजबूत होंगे, हमारा संगठन मजबूत होगा, 403 सीटों पे हमारी तैयारी होगी, तभी तो अगर कोई मेरे साथ आएगा अभी तो उसको भी तो हमें जिताना है ना, चूंकि बात तो जीत की है ना। तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आया। देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या, देखो उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको चिंता समाजवादी पार्टी की है, इंडिया गठबंधन की है। अरे भाई अपनी चिंता करो, अपनी चिंता कर कि आपके पासवान जी, सुने चिराग पासवान जी यहां सीटें मांग रहे हैं, उनके होर्डिंग पोस्टर भी लगे हम देख रहे हैं, उनको कितनी सीटें देंगे इस पे बोलने को तैयार हैं क्या? वो राजभर जी कितनी सीटें मांग रहे हैं उसमें बोलने को तैयार हैं क्या? निषाद पार्टी रोज इनको आंख दिखाते हैं, उनको कितनी सीटें देंगे? अनुप्रिया पटेल जो अपना दल है उसको कितनी सीटें देंगे? अपने ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, सारी चर्चा वो विपक्ष पे केंद्रित करना चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर चर्चा हो पाए, मुद्दों से भी ध्यान भटकाना है, इसलिए वो छोटी छोटी
0: बात यह है अनुराग भदौरिया,
1: उन्होंने रणनीति बनाई।
0: इंडिया अलायंस के भीतर जो नेताओं को इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर इंडिया अलायंस की चिंता कहीं ना कहीं नजर आती है। इसीलिए राजेश चौधरी जी आपके पास आना है, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से अजय वर्मा जी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं अजय वर्मा जी, 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो दाव है ना, देखिए तमिलनाडु में भी हमने देखा था, ये स्क्रिप्ट पहली बार नहीं देख रहे हैं। चुनाव के पहले अचानक टीवी के जो चीफ है विजय, उनको मिलने के लिए आपके नेता पहुंच गए थे, वो पता चल गया था, और उसके बाद सारी चीजें बदलने लग गई थी। इस बार भी मायावती जी को मिलने चले गए, लेकिन बहन जी ने मिलने नहीं दिया आपको, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई अचानक पता चला हमको, अचानक लगा कि भाई हम चले जाते हैं करके। तो ये अचानक तो कुछ होता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी ने देख लिया है कि आप अचानक

0: कहीं ना कहीं और मुड़ना शुरू कर दिया है आपने?
1: देखिए आदरणीय साहिल जोशी जी, 403 का जहां तक सवाल है, इंडिया गठबंधन और हमर समाजवादी लड़ेंगे तो एक दूसरे को जिताने का संकल्प लेके भी लड़ेंगे। हम लोग वो नहीं है कि 46 गठबंधन में पार्टियां हैं, जैसे यूपी में बीजेपी के साथ रालोद है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, छोटे और गिनती तो और बहुत दूसरे हैं। अब मुझे तो नए सूत्रों से पता चला है कि ओबीसी भी इनके साथ अब जाने वाले हैं, मुस्लिम के चक्करों में ओबीसी को भी अपने गठबंधन में 2027 के चुनाव में बाबा लेने वाले हैं। जैसे हुमायूं कबीर को बंगाल में कहा था कि तुम चिल्लाओ मस्जिद मस्जिद, हम मंदिर मंदिर, इस काम को करना। खैर ये तो इनका ही हो गया पॉलिसी की बात है। अब मैं बताना चाहता हूं, पुनिया पुनिया साहब बहन जी के प्रमुख सचिव थे, तो जब वो कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी कांग्रेस में आए थे, ब्रजलाल खाबी साहब भी कांग्रेस में आए थे, गाइड बेस इनके लीडर थे, मजबूत लीडर थे और पूरे काशीराम जी के संस्थापक सदस्य थे ब्रजलाल खाबरी साहब। तो जब ये आए यहां, देखिए राजेंद्र गौतम जी की बात तो छोड़ दो, अच्छी
0: ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जरा जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ट्विशा केस में समर्थ सिंह जो उनके पति है वो पहुंच चुके हैं जबलपुर के अदालत में, क्योंकि वहां पर उन्हें सरेंडर करना था। और ट्विशा शर्मा का पति है समर्थ सिंह, उसने कोर्ट पहुंचकर जबलपुर में अपने आप को सरेंडर कर लिया है। ये बड़ी खबर है ट्विशा शर्मा मौत मामले में। ट्विशा शर्मा के पति ने कहा था कि वो सरेंडर करेंगे, सरेंडर की अर्जी लगाई थी और उसी के तहत जबलपुर के कोर्ट पे पहुंचकर वो वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तो जबलपुर जिला कोर्ट में इससे पहले सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसका ट्विशा केस में जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा किया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और सीबीआई के द्वारा इस पे जांच की जाएगी, ये भी कहा गया है। बड़ी खबर है कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद तमाम दावे किए जा रहे थे और उसके बाद उसके पति पर, ट्विशा शर्मा के पति पर भी आरोप लगाए गए थे और अब जबलपुर के जिला कोर्ट पे पहुंचकर समर्थ सिंह ने वहां पर अपनी हाजिरी लगाई है। सरेंडर की अर्जी इससे पहले दे दी गई थी। ससुराल से ट्विशा शर्मा पर भी आरोप लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त ट्विशा शर्मा मामले में। ठीक है अजय जी, आप अपनी बात बता रहे थे।
1: जी मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो, चूंकि पुनिया साहब को बहन जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसके बाद जब से इन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो तनुज पुनिया जी को तो हम भेजते ही नहीं। कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं थी और रहा सवाल इसका, अगर जाना था तो बाकायदा में बहन जी चूंकि इतनी बड़ी नेता है, लेकिन जब से वो बीजेपी के समर्थन में अपने स्टेटमेंट देती है, बीजेपी के साथ बैठकर देश की मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करती हैं, उनके फेवर में करती हैं, तो जाटव और सारे लोग समझ चुके हैं कि बहन जी कहां हैं। लेकिन उसके बाद भी हाँ, हमारे नेताओं को वहां देखना ही जाना था, हमारा कोई और उद्देश्य ना था ना है, तो फिर भी पूछ के अनुमति लेकर जाना चाहिए। भाई बहन जी अंतर्राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़ी नेता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 3-3 बार की मुख्यमंत्री है। अब मैं अपनी पार्टी की रणनीति बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का यह निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में देश के मुद्दों पर जनता लड़े, इन लोगों से व्यापार पर, नौकरी पर, हम मेलोडी वाले पीएम नहीं है, हम मेलोडी वाले काम नहीं करते, हम करेंगे तो किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, युवाओं की
0: तो
1: बात
0: करेंगे। इसीलिए आपको अचानक कांशीराम जी की याद आ रही है
1: पर, और हम बात
0: अचानक आपके नेता ये कहना शुरू कर चुके हैं कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, और सचमुच में भारत रत्न मिला तो जो मिलने वाले जाटों वोट भी खिसक जाएंगे बीजेपी के पास।
1: अजय राय साहब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, बड़े मजबूती से लग रहे हैं, हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी में चले गए, लेकिन वो भी चलो हमारा ही घर है, हमारा ही गठबंधन है, लेकिन ब्रजलाल खाबरी हमारे पार्टी बेस्ड लीडर हैं और पार्टी को मजबूती से जोड़ने का हमारे यहां फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के में ना तो ज्ञानेश जी की SIR काम करे इस बार, ना ये वोट जो इन्होंने काटने का सिस्टम बना रखा ईवीएम वाला काम चले, जनता के मत के आगे, जनता के हित के आगे परिवर्तन प्रकृति के नाम है, और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप महिलाओं से पूछिए, किसान,
0: कांग्रेस पार्टी की क्या कोशिश नजर आ रही है,
1: छोटे छोटे
0: देखिए अचानक संविधान सभाएं वहां पर शुरू हो चुकी है, 2024 में हमने देखा कि जाटव वोट जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है उसमें साफ नजर आता है कि बहुजन समाज समाज पार्टी से वो खिसक भी रहा है। 44% बहुजन समाज पार्टी को मिला लेकिन 24% समाजवादी पार्टी और 27% भारतीय जनता पार्टी के पास भी गया हुआ है। और अचानक कांशीराम को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये भी बयान उनके तरफ से दिए जा रहे हैं। कांशीराम को भारत रत्न दे देंगे, ये भी बयान वहां से चल रहे हैं। और अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। सतीश प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
2: जी जी जी जी साहिल जी, सॉरी सॉरी। नहीं देखिए साहिल जी, एक एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी चुनाव आता है स्पेशली कांग्रेस के अंदर जो दलित लीडर काम कर रहे हैं उनकी भाषा कोई बहुत बेहतर नहीं होती। वो बहन जी को लेकर के, वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा उदित राज जी ने बहन जी को लेकर के किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। आज ये राजेंद्र पाल गौतम जी और पीएल पुनिया जी के जो बेटे हैं वो बहन जी के घर के बाहर जाकर के फोटो खिंचवा करके बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं और वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस जाना चाहती है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के लोगों से, आपको शायद कांग्रेस के को ये मंथन करना चाहिए कि अगर भारत में आज बीजेपी तमाम दलों के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर अगर फैल रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। कांग्रेस तमाम लोगों से सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है। अगर यही कांग्रेस जब पिछला चुनाव हो रहा था विधानसभा का मध्य प्रदेश के अंदर तो बाकायदा एक बात को हवा दिया गया कि हम गठबंधन करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ गठबंधन नहीं करती। और ऐसा ही इन्होंने राजस्थान में भी किया। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जिस समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं, इन्हीं की सरकार को जो चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करते, बाकायदा इनको बाहर से समर्थन दे करके राजस्थान में इनकी सरकार बनवाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। और कांग्रेस का चरित्र देखिए कि उसी बहुजन समाज पार्टी के भोले भाले विधायकों को बाकायदा तोड़ लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनर्मंथन करना चाहिए, वास्तव में ही अगर उसको देश को बीजेपी मुक्त।
0: लेकिन सतीश प्रकाश जी, आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि वीरा पासी के प्रतिभा का अनावरण किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कांशीराम के लिए भारत रत्न मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू होते तो मुख्यमंत्री बनते कांशीराम, ये भी बात कहीं ना कहीं कहने की कोशिश हो रही है उनके तरफ से, वो भी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर कही थी। तो आपका जो बचा कुचा जाटव वोट है वो भी तो खींचने की बात चल रही है ना। कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि राहुल गांधी अस्थि तारणहार है दलित समाज के।
2: देखिए मैं राहुल गांधी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि, लेकिन माननीय कांशीराम जी जैसे व्यक्तित्व को लेकर, अरे वो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनते, उन्होंने कहा भाई, वो तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, अंतिम क्षण तक भी वो अपने परिवार में नहीं गए, सबके कहने के बाद उन्होंने एक बार बाकायदा लोकसभा का चुनाव लड़ा।
1: 20 सेकंड
2: जी, नहीं नहीं अजय जी आप बोलिए बोलिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं कुछ सवाल है निश्चित रूप से यहां होने चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब कांग्रेस को इन बातों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार याद आ रही है, वो कानून व्यवस्था भी याद आ रहा है, वो महिलाओं की सुरक्षा भी याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, 8.5 लाख पद उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पड़े हैं, उनको याद आता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 से लेकर के 2012 तक, तब 6.5 लाख।
0: तीसरा एंगल अभी भी बहुजन समाज पार्टी बने रहना चाहती है अजय वर्मा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूरी बनाकर यहां पर बीएसपी बनाने की कोशिश कर रही है। और वो कह रहे कि ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिएगा, चौकट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है।
1: नहीं देखिए, मैं देखिए आदरणीय सतीश जी बहुत अच्छे चिंतक हैं और कभी कभी खुल के आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, बढ़िया बात करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं सतीश जी कि बहन जी के पिछले उसमें लोकसभा राज्यसभा में स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, ये सब कमी। बहन जी बहुत अच्छी नेता है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि अब हमारी नेता सड़क पे आके संघर्ष नहीं कर रही तो राष्ट्रीय स्तर पर, और इधर देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मजबूती से, चाहे वो पेपर लीक पे लाठी खानी हो, चाहे वो महिलाओं के अत्याचार पर हो, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, हम लोग फ्रंट पे आकर देश की सरकार पर हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे अखिलेश जी दोनों लटपटाकर काम करते हैं, बात करते हैं, मुद्दों की चीज रखते हैं।
2: जी जी जी, अजय जी मैं एक सवाल पूछूं आपसे। लोकसभा में आप ये कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव के बाद में बाकायदा न्यायालय से आरक्षण में वर्गीकरण हुआ, पूरा देश का दलित उबलावा था, बहुजन समाज पार्टी सड़कों के ऊपर थी, ना समाजवादी पार्टी ने ना ना राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। एक एक कहीं ना कहीं दलित समाज जब अपने आप को अलग थलग महसूस करता है उसको समस्या आती है। आरक्षण का मतलब समझते हैं, एक दलित के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो आरक्षण जैसे व्यवस्था से ही वो इस देश से जुड़ा है। तो अब आप ऐसी बातें करेंगे, पंजाब में आपने बहुत समय ऐसे किया। देखिए मेरा सवाल है, आज आप तय कीजिए आपको बहुजन समाज पार्टी से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी को ही मतलब कैसे भी पार्टी है बताइए आप, हम किस मुद्दों के ऊपर सुनिए किस मुद्दों के ऊपर आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सर मैं तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा, आपके हर सवाल का जवाब, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है? आपको मालूम है ये सब कहने से कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं की भाषा है, ये सब कहने से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बाद में धार्मिक पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन के बाद में बीजेपी को लाभ।
3: अजय वर्मा
2: समाजवादी पार्टी,
1: मैं बोलूं सतीश जी सुन लीजिए
3: जल्दी से, अजय वर्मा उसके बाद राजेश चौधरी वहां पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव के पहले ये हाल है तो चुनाव के वक्त क्या होगा? जल्दी से अजय वर्मा उसके बाद राजेश चौधरी बात करेंगे।
1: सतीश जी हाँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ आदरणीय सतीश जी का। प्रोफेसर देखिए हमने कभी भी ये नहीं कहा बी टीम है, हमने ये कहा कि बहन जी सबक के मामले में बीजेपी को समर्थन करती हैं, बोलती हैं उनके फेवर में, अपने स्टेटमेंट देती हैं है। तो लोग समझ रहे हैं, दलित समझ रहे हैं,
2: सर समझ क्या
1: दलित समझ रहे हैं, सुन तो लीजिए सतीश जी, एक मिनट सुन लीजिए
2: उसके बाद आप बोलना। मैं नहीं,
1: देश के ओबीसी और दलित ये समझ रहे हैं
2: सर। मैं अजय जी एक सवाल पूछता
1: हूं, इस देश के दलित और ओबीसी ये समझ रहे हैं
2: सर?
1: सतीश जी इस देश के दलित और ओबीसी ये समझ रहे हैं?
2: मेरा सवाल है आपने जिसको बी टीम बताया, एक सवाल बताऊंगा आपको,
1: सुन लीजिए।
2: देखिए अजय जी एक छोटा सा सवाल है, देखिए
3: चले एक मिनट जरा
2: जी
3: सतीश जी, एक मिनट
2: मैं सही
3: सतीश जी, एक मिनट सतीश जी, एक मिनट मैं खुद ही जरा कांग्रेस एक सतीश जी एक सेकंड चल जल्दी से क्योंकि राजेश चौधरी जी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा सतीश जी एक सेकंड, राजेश चौधरी जी आप कैसे देखते हैं उसको, उसके बाद अनुराग भदौरिया उसका जवाब देंगे, लेकिन एक मिनट राजेश जी आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि भाई वो तो आपकी बी टीम है, और ये दिखाई भी देता है कई जगह पर, मैं बी टीम तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 16 सीटें ऐसी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट पड़े उससे कम वोटों से इंडिया अलायंस वहां पर हारी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पेट में दर्द है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर हम मायावती को अप्रोच करेंगे, बहन जी को अप्रोच करेंगे तो वो दलित वोट भी मिल जाए शायद हमें।
4: देखिए साहिल जी पूरे प्रोसेस को मैं सुन रहा था, सब लोगों के मैंने बयान बड़े गौर से सुने, इस सब चीजों में समाजवादी पार्टी की कमजोरी हमको नजर आती है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज बोल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं टिकती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। योगी जी ने जो काम किए उन कामों के सामने समाजवादी पार्टी नहीं टिक पा रही है। और जहां तक आप ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो के चुका, कांग्रेस ने वहां समाजवादी पार्टी को सीट देने के लिए बुला लिया, पूरी रात कार्यालय के बाहर स्टूल पर बैठे रहे समाजवादी पार्टी के नेता, एक सीट दी क्या? राजस्थान में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अभी बंगाल में
3: समाजवादी पार्टी की बारी है,
4: देखिए ना क्या स्थिति।
3: इस बार भी वो स्टूल देंगे बाहर, कांग्रेस 403 पर तैयारी करेंगे और बाहर स्टूल दे देंगे कांग्रेस पार्टी।
4: ये अपना अस्तित्व साहिल जी, ये अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं, इनको पता है चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं वो जमीन पर ईमानदारी के साथ लागू हो रही है, तो इनको चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मायावती जी के घर चले गए, भाई टाइम लेके भी तो जा सकते थे, किसी के घर आप जाओगे तो सूचना भी नहीं दोगे घर पे है या नहीं है, मीटिंग ले रही है, कुछ और काम करिए, जाकर के फोटो खिंचा के वापस चले आओगे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये सब ये जो टीवी पे बैठ करके लोग बोल रहे हैं ना, ये कोई निर्णय करने वाला नहीं है, इनसे कोई पूछेगा क्या? पार्टी की लाइन इनकी तय नहीं है, ये तो खामा खामे आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल का समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई कोई लाइन आज बसपा ने तय नहीं की, कोई लाइन कांग्रेस ने तय नहीं की, कोई लाइन आज समाजवादी पार्टी ने तय नहीं की। अच्छा कांग्रेस का तो वो हाल है भैया, सुनिए, अरे सुनिए ना भैया मेरी बात, मैं नहीं बोला ना आपको, बड़ा धैर्य से सुना,
1: बताओ आपकी पूछेंगे।
4: आज कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हालत है
1: 2027।
4: अरे भैया मुझे
1: ये तय हो चुका है,
4: मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे? यदि टॉर्च लेकर के ढूंढेंगे, यदि टॉर्च लेकर के ढूंढेंगे तब समझ में आती है कि कांग्रेस का एक आध कोई विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठा हुआ है। ढूंढना पड़ता है टॉर्च से, ये हैसियत है, कुछ बचा ही नहीं है। देखने नहीं है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष क्या भाषण दे रहा है,
1: बीजेपी के
4: क्या बयान दे रहा है देश के प्रधानमंत्री के बारे में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में भाषा है कांग्रेस की।
3: अनुराग भदौरिया
4: राहुल गांधी बोलते हैं, वही बात
3: स्टूल रखने की बारी आपकी है,
4: इनको बहुत गंभीरता से
3: रखा था, इस बार स्टूल रखने की बारी आपकी है
5: जी।
1: हम मेलोडी
3: ठीक है, राजेश चौधरी जी,
1: हम मेलोडी टॉफी
5: देखिए, आप कमाल की
1: से गुजर
3: ठीक है। अजय वर्मा जी जरा समाजवादी पार्टी को जवाब देने दीजिए, वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं।
4: अरे तुम्हारी मेलोडी लेक और रहा है,
3: अजय वर्मा जी एक मिनट प्लीज,
4: कहां है आपकी मेलोडी बांटने वाली?
3: एक मिनट
5: मैं बोल रहा हूं,
3: अलग अलग डिस्कशन शुरू ना करें,
4: हम
3: भाई मेलोडी का डिस्कशन कल हो चुका है।
4: राहुल गांधी को
3: अजय वर्मा जी एक मिनट प्लीज,
4: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
3: राजेश चौधरी, राजेश चौधरी
5: मैं बोल रहा
3: ठीक है,
4: कौन पूछ रहा है आपको भाई, जनता चलिए लगातार।
3: अनुराग भदौरिया ठीक है,
5: देखिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की के पास मुद्दों की कंगाली कैसी है। उनके लिए समाजवादी पार्टी इतना बड़ा हुआ है कि उस स्टार्ट ही समाजवादी पार्टी से करते हैं और शब्द भी उनके चुराते हैं। स्टूल इन्हीं के मंत्री हैं, स्टूल मंत्री हैं कई इनके यहाँ, वो समाजवादी ने बताया स्टूल मंत्री कौन कौन है जो स्टूल लिए डोलते रहते हैं और हम ही को स्टूल बता रहे हैं। सोचो हमारी बात हम पे बता रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो महंगाई से किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार है, बेरोजगारी से लोग कहरा रहे हैं, उनकी चिंता न करके ये चिंता किसकी करते हैं? विपक्ष के गठबंधन की। विपक्ष के गठबंधन की तो चिंता है लेकिन जनता के दर्द की चिंता नहीं है। अरे भैया हम पीडीए वाले लोग हैं, पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। हाथरस में दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी खड़े हुए, विश्वकर्मा बेटी के साथ अन्याय हुआ गाजीपुर में तो समाजवादी लोग खड़े हुए, यहाँ पे ब्राह्मण जी की चोटी पे आक्रमण हुआ उनकी चोटी पकड़ी गई, सिखा का अपमान हुआ तो समाजवादी खड़े दिखाई पड़े। विकासनगर लखनऊ के अंदर में एक दलित बच्चे को पुलिस ने उठा लिया, उसकी कस्टडी मौत हुई तो समाजवादी पार्टी खड़े हुए। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है, हर पीड़ित के मदद के लिए आगे आती है, चाहे वो किसी जात और धर्म का हो। हम पीड़ित वाले लोग हैं, हम पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं और पीड़ितों का सम्मान करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी की तो है नहीं, बीजेपी की चिंता तो खाली हमारी
3: है। मलुक नागर जी के पास जाना है लेकिन जरा एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये पीडीए का फुल फॉर्म जरा फाइनल कर देते हैं हम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है या पिछड़ा दलित और अगड़ा है, जरा वो एक बार फुल फॉर्म फाइनल कर देते हैं, उसके बाद में नागर जी के पास चलूंगा।
5: देखिए एक ही इसका एक ही मतलब समझिए, पीडीए का मतलब होता है जो व्यक्ति पीड़ित है समाज के अंदर में, जो भी पीड़ित होगा वो पीडीए होगा। एक एक लाइन में आपने पूछा, एक लाइन में मैंने बता दिया, जो व्यक्ति पीड़ित होगा, जिस समाज को पीड़ित किया जाएगा, समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी धरना सेठों के साथ खड़ी दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी जिसके साथ अन्याय होता है किसानों के साथ खड़ी दिखाई देती है, अगर महिला के साथ अन्याय होता है तो महिला के साथ उसको न्याय दिलाने की बात करती है, ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय होता है तो ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी होती है, जिसके साथ
3: मलुक नागर जी एक ठीक है। चलिए आपने आपने आपने पी का फुल फॉर्म क्या, डी का फुल फॉर्म क्या और ए का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा था, आपने उसका डेफिनेशन बताने की कोशिश की है, आपने उसका डेफिनेशन बनाने, जरा एक मिनट जरा शांत करिए प्लीज मलुक नागर जी, जरा एक मिनट मलुक नागर जी, आपने तो दोनों गठबंधन देख लिए,
5: तो
3: आपने तो इंडिया अलायंस देख लिया है, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन देख लिया और बीजेपी के साथ भी आप गठबंधन देख रहे हैं, तो किसको किसकी चिंता होनी चाहिए वो जरा आप साफ करिए, उसके बाद विजय जी के पास जाना है क्योंकि विजय त्रिवेदी कई सालों से इस राजनीति को देख रहे हैं, जरा मुझे उनसे भी कुछ चीजें समझनी है जल्दी से मलुक नागर जी।
6: अभी तो अभी तो इन्हें चिंता ये है कि मैं जब बोलूंगा तो इतना खतरनाक बोलूंगा ये बीच में कूदेंगे, प्रार्थना बीच में ना कूदे। साहिल जी आज प्रश्न सीधा ये उठता है, सारे दर्शक आपके ये देख रहे हैं कि एनडीए के बीजेपी के प्रवक्ता चौधरी साहब और मुझे आपने सबसे बाद में बुलाया क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश के चुनाव की तरह और देश के सारे प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं उसकी तरह आपस में लड़ता है। देखो फिर कूद गया बीच में, ये भी आपस में लड़ते हैं और उसी क्रम में आज टेलीविजन पे चुनाव से पहले ही आपस में लड़ रहे हैं और वो युद्ध देखो। साहिल जी इनको रोको प्लीज, साहिल जी रोको प्लीज,
2: इसलिए कुछ नहीं है ये।
3: अरे वो आपका उत्साह है, आप अपनी बात खत्म करिए, आप अपनी बात खत्म
1: करिए। ये तो हमारा प्रेम है,
6: ये आपस में
1: घर में
6: इसीलिए ये आपस में लड़े और ये इन्होंने मैसेज दिया कि कांग्रेस का और इनका यूपी में ये आपस में इकट्ठे होके लड़ नहीं सकते। और अखिलेश जी ने देखा कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, तो इनसे दूरी बनाओ, नहीं तो ये खुद तो मरेंगे, ये अपना भी मरेंगे और इनको भी मरवाएंगे। और 2004 से लेकर जनता की कर रहे हैं भाई, 2004 से लेकर 2014 तक आय से अधिक संपत्ति के केस
3: आपकी ट्रेन रोकिए जरा, मलुक नागर जी जरा सबको शांत करिएगा। मलुक नागर जी आप है ना एनडीए के भीतर नए नए एंट्री एंट्रेंट है आप। 2024 में आपकी एंट्री हुई है एनडीए के भीतर, ठीक है, 2024 में आपकी एंट्री हुई है, उससे पहले तो भदौरिया जी के साथ ही घूमते थे आप, है ना। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि एनडीए के साथ आपका ठीक चल रहा था या इंडिया अलायंस के, क्योंकि अभी विधानसभा में सीट शेयरिंग अलग होता है, लोकसभा में सीट शेयरिंग अलग होता है, विधानसभा के लिए अलग अलग चिंता सता सकती है आपको। इसीलिए आपको पूछ रहा हूं कि आपके भीतर तो सब ठीक है ना।
1: मैं ये कह रहा हूं मल्लुक,
6: सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कर्णधार नींवधार नीतीश जी से अलग हुए और हर प्रदेश में देखिए बीच में बोल रहे हैं, इस बात की गवाही है कि मेरी बात इन पर झिलनीरी ने पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और ये एकदम साफ हो जाएगी राजनीतिक रूप से, इसलिए बीच में कूद रहे हैं। अगर ये कूदे तो इसका मतलब यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, हरियाणा मध्य प्रदेश में इन्हें मिलकर नहीं लड़े
3: विजय त्रिवेदी, हो गया विजय त्रिवेदी जरा ये राजनीति समझाइए प्लीज,
1: उत्तर प्रदेश
3: जरा एक मिनट,
1: बहुत सारे चेहरे हैं,
3: जरा शांत करिए अभी सबको, जरा शांत करिए, जरा राजनीति भी समझना बहुत जरूरी है। जरा हम कुछ चीजें देखते हैं पत्रकार के तौर पर, तो हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं ना, अभी तो एक साल बाकी है चुनाव के लिए, लेकिन एक साल पहले जिस तरीके से चीजें हो रही है वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है और आंकड़े भी बड़े दिलचस्प है। देखिए जाटव वोट 54%, 21% दलित पॉपुलेशन में 54% जाटव वोट है, वो एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी का तगड़ा वोट बैंक हुआ करता था, आज उसमें स्प्लिट नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अगर 44% जाटव वोट पड़े हैं तो बाकी वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में स्प्लिट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी 47% गैर जाटव वोट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस पर हावी नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या उन जाटव वोटों पर नजर बनाए रखे हैं, इसीलिए अचानक कांचीराम की याद आ रही है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कांचीराम को लेकर, और वहां समाजवादी पार्टी तमिलनाडु के भीतर जो हुआ उसके बाद 403 की बात करने लगी है उत्तर प्रदेश के भीतर।
7: बिल्कुल ठीक बात है साहिल जी, आपने सही पहचाना, अखिलेश जी ने और माननीय हमारे मित्र अनुराग जी ने, भदौरिया जी ने जैसे कहा कि पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है, तो वो एक मैसेज भी है, एक धमकी भी है, एक चेतावनी भी है, वो स्टूल भी है, सब कुछ है। और जो तमिलनाडु में हुआ उससे पहले जो इंडिया ब्लॉक में हुआ था उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता कम होती है, तो समाजवादी पार्टी को लगता है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो गठबंधन की जो चाबी है वो तो समाजवादी पार्टी के पास है। अब यहाँ पर अखिलेश वखिलेश नहीं चलता कि आप बोल देंगे कि अखिलेश वखिलेश कौन है, तो उत्तर प्रदेश में तो उनको तय करना है कि वो कैसे करेंगे। और राहुल जी लगातार लग रहा है कि भाई ये एक दबाव बनाया जाए समाजवादी पार्टी पर कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, इसलिए वो काशीराम जी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भारत रत्न देने की बात की है और मुख्यमंत्री बनाने की बात भी उन्होंने लगातार की, तो वो उस दलित वोट बैंक जो कांग्रेस का भी एक जमाने में बड़ा वोट बैंक होता था उसके साथ जाने की तैयारी में लगे हुए कि एक्सरसाइज की जाए। तनुज पुनिया कांग्रेस के बड़े युवा नेता हैं, वो पुनिया साहब की बात तो आप भी जानते हैं और सब लोग भी जानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के सांसद हैं और राहुल गांधी जी की टीम के लोगों में से, तो वो ऐसे ही अचानक चले गए हो ऐसा नहीं है, कुछ तो बात हुई होगी, लेकिन उनको ये मैसेज शायद नहीं मिला होगा कि बीएसपी जो है अभी उनकी मित्रता भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर रखी हुई है, समझे, और वो अपनी स्थूल
3: तो
7: भारतीय
3: आपको
7: जनता
3: लगता है कि
7: पार्टी,
3: कांग्रेस
7: भारतीय जनता
3: जी
7: पार्टी किन्हीं कारणों से, वो मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार बात नहीं दिखता है, और कांग्रेस भी मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ ही जाने की संभावना लग रही है, लेकिन वो अपने ऑप्शंस तलाशती है किस तरह से, और इसीलिए तुरंत अखिलेश जी ने रिएक्ट किया। अखिलेश जी ने ये रिएक्ट तो नहीं किया कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने कहा हम 403 सीटों पर दुरुस्त हैं, तो 403 सीटें कौन सी हैं दुरुस्त होने वाली, वो कांग्रेस के साथ संगठन के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, लोकसभा के चुनावों ने बताया कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी कि कांग्रेस के साथ जाने में ठीक ठाक सी स्थिति हो सकती है, हालांकि कोई बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का नहीं है, ये जो एक्सरसाइज है ये मैं समझता हूँ बहुत मैच्योर एक्सरसाइज तो नहीं है, इससे एक बड़ा ही नुकसान होता है क्योंकि आप सहयोगी दल के साथ डिच करेंगी, तो इस तरह से देखिए, और
3: कुल मिलाकर
7: कांग्रेस
3: अनुराग भदौरिया जो नजर आता है बहुजन
7: कांग्रेस
3: समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी ने अंडरस्टैंडिंग तो कर ली थी लेकिन वोट ट्रांसफर आपको नहीं हो पाया था, और कांग्रेस पार्टी के साथ में आपका जो अलायंस रहा 2024 में वो तो ठीक ठाक रहा, ऐसे में 403 कहीं उल्टा ना पड़ जाए।
5: इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी 80 सीटें लोकसभा में पूरी तरह से तैयार रहती है, 403 सीटें विधानसभा में पूरी तरह से तैयार रहती है, जिससे कि कोई गठबंधन दल हमारे पास आए तो उसको उसको भी हमारी मदद की से वो भी अपनी सीटें निकाल ले, क्योंकि हम लोग तैयारी, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हमारी वहां सरकारें रही हैं, हमारी पार्टी के जो संगठन जो कार्यकर्ता है, जो हमारे विंग्स हैं, जो चाहे यूथ का हो चाहे यहाँ पे हमारे मेन बॉडी हो, सभी लोग चाहे यहाँ महिला सभा की हो, सभी लोग मजबूत तरीके से 403 सीटों पे लगे रहते हैं। जब कोई गठबंधन दल हमारे पास आता है तो हमारी मदद उनको मिल जाती है, तो उनकी
3: ठीक
5: उनकी
3: है।
5: भी सीटें
3: राजेश चौधरी,
5: है। लेकिन उसमें योगदान
3: राजेश चौधरी कुछ ऐड करना चाहिए
5: ना, लेकिन अगर हम अपनी तैयारी करके
3: ठीक है राजेश
5: तो
3: चौधरी
5: मदद
4: देखिए साहिल जी
5: जीत पाएंगे,
3: तैयारी के साथ में है राजेश चौधरी, राजेश चौधरी बात कर
5: होगा
3: ठीक है
5: सीटों का नहीं,
3: बाकी लोग को शांत करिए, राजेश चौधरी बात
5: बताओ
3: जी, राजेश चौधरी
4: साहिल जी मैं अपने मैं इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूँ, 2017 के समय पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत में थी और सरकार में थी 2017 तक, और राहुल गांधी जाकर के अखिलेश यादव के कैरियर पे लटक गए थे साइकिल पे जाकर के, साइकिल भी पंचर हो गई और हाथ का पंजा भी टूट गया था, परिणाम आपके सामने है, कितना सीट आई थी 40 समाजवादी पार्टी की,
5: में
4: और चिंता मत करिए जीरो को कहीं भी मिला दोगे जीरो ही रहेगी, ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, आज समाजवादी पार्टी उतनी ताकत में नहीं है जितनी 2017 में थी, इन्होंने 12 से 17 तक जो अन्याय अत्याचार बलात्कार व्यभिचार भ्रष्टाचार दंगे ये सब
5: और आप 33 सीटों पे हैं, इसलिए अत्याचार भ्रष्टाचार चोरी डकैती हत्या लूटमार बलात्कार
3: आपके 30 सेकंड में, एक बार फिर विजय त्रिवेदी सभी को शांत करिएगा, विजय त्रिवेदी अगर नंबर देखे तो समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी 9 से 10% वोट वहां पर बचे हुए हैं, और वही फर्क है समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस और बीजेपी और उनके अलायंस के बीच में, 9 से 10% का वोट अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है, क्या ये इसकी तैयारी है या कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, ये किसकी तैयारी आपको नजर आती है?
7: बिल्कुल ठीक है साहिल, बहुजन समाज पार्टी के पास जो पहले बड़ा वोट था वो आज 8-10% भी रह गया, लेकिन वो एन ब्लॉक वोट है, और मायावती जी अक्सर कहती है कि भाई हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस का, या जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता, तो कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक वो मिलता है, समाजवादी पार्टी से वो वोट बैंक नहीं मिलता उनको, लेकिन एक बड़ी संगठन वाली पार्टी वहां मिलती है, लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां हैं राजेश चौधरी जी की जो नजर है उससे मायावती जी कहीं निकल सकती है इसकी संभावना मुझे कम लगती है, और फिर एक निवेदन कर दूं मलूक
3: कुल
7: नाथ
3: मिलाकर
7: जी
3: उत्तर प्रदेश के
7: राजनीतिक
3: भीतर काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनाव का, और इससे पहले गठबंधनों का भी एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर कोई अपनी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, तो अगले साल भर उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।
0: फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
7: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
7: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
9: नहीं
7: और म्यूचुअल फंड्स है
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: इन एसोसिएशन विद
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
11: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू? समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
16: २०२७ में यूपी में होगा SP कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर SP कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है बात सीट की नहीं जीत की है। तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं? हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे।
17: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
18: निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी का कोई निर्णय, पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने अपने अपने निर्णय से वो गए थे।
19: कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के
18: व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए थे।
19: यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था?
18: जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं।
16: कांग्रेस लाख इनकार करे लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रह रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
1: जो कांग्रेस के लोग गए, अब ये किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
2: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी, जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे, और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पे सामने बहन जी का बंगला है, तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं। मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते अगर होंगी तो।
0: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
3: निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: हालांकि दोनों दल के नेता गोलमोल जवाब देकर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल से भी कम वक्त में अखिलेश का कांग्रेस को बार बार आईना दिखाना कहीं न कहीं उसे सख्त संकेत जरूर दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
3: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
5: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राय के अपशब्द पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के विभिन्न नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के राजनीतिक संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वालों का फायदा। कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब साथ। बंगाल की कमान संभालने के बाद सीएम शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिले, पहले राष्ट्रपति से मिले। बॉर्डर सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम, देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए। त्रिशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट, जबलपुर कोर्ट पहुंचा मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह, सरेंडर की लगाई थी अर्जी, सीबीआई करेगी पूरे मामले की जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल कतई भी।
1: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है। फलों पे
2: 2 रुपए किलो प्रयाग वालों ने बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने बढ़ा दिया, अमूल ने बढ़ा दिया, तो जब दूध के 2 रुपए बढ़ गए तो आप खुद देखो ना क्वांटिटी 100 किलो में कितने का फर्क आ गया, 200 रुपए का फर्क आ गया ना।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये विशेष एपिसोड इसलिए क्योंकि युद्ध की वजह से, जिस तरह की स्थिति हम मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से देख रहे हैं पूरे विश्व में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के सामने ये है कि धीरे धीरे पहले कीमतें बढ़ाई गई, फिर 90 पैसे कीमतें बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की, ऐसे में आम आदमी तक मार पहुंच रही है, माल ढुलाई बढ़ेगा, उसकी वजह से अगर आने वाले वक्त में महंगाई दर में भी हम जबरदस्त इजाफा देखें तो ये अचरज की बात नहीं होगी। खुदरा महंगाई दर 3.4 के आसपास जरूर है, लेकिन 8.3 पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गया, चैलेंज बड़ा है। रुपया अगर आप देखिए तो डॉलर के मुकाबले वो भी जिस तरह से गिर रहा है, टूट रहा है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोविड जैसे हालात हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद हमारे 12 साल का काम खत्म हो जाएगा, जो हमने 12 साल में प्रोग्रेस किया था, और ऐसा पीएम ने पहले कभी नहीं कहा था किसी भी स्थिति में, तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री को गद्दार कहा है तमाम मुद्दों पर, तो वो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप पर कैसी मार और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत के क्या मायने। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ माधव आनंद महासचिव आरएलएम के जुड़ रहे हैं और अश्विनी महाजन जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इधर आलोक शर्मा जी के साथ आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और अखिल स्वामी जी अर्थशास्त्री के तौर पर, ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त पे हमें क्या करना है। भाई इस पूरी लड़ाई और इधर उधर की जो हाई पिच डिबेट होती है उसमें ये लोग नहीं बताते कि हमें अब क्या करना है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं।
0: भाई साहब इतने परेशान हैं, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल कतई भी। इतनी मट्टी पलित हो रही, देखियो इनकी शिकल देखो, एक बार घुमाओ नहीं, बहुत ज्यादा मट्टी पलित हो रही है। जहां गाड़ी पहले 1000 रुपए में जा रही है, 600, 500, 600, 500 इतनी मट्टी पलित हो रही है। CNG बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पर भाई रेट नहीं बढ़ा रहे।
4: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं।
1: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है। फलों पे और कीवी जो है पहले 100 रुपए की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है अब से 150 रुपए पीस, 60 रुपए पीस चल रहा है, इसलिए उस पर भी कीवी पे और चीजों फलों पे भी असर पड़ा है।
2: सर पहले दही हम 100 रुपए किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 की, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, कमर्शियल हम यूज करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज करने की वो है तो हम कमर्शियल यूज करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और बिल भी नहीं रहा।
4: चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है.
5: एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड अस टू सेव एनर्जी ओवर द नेक्स्ट ईयर. इन मोमेंट्स लाइक दिस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स. As Mr. Vajpayee ji famously said, governments will come and go, but the nation shall remain.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं. साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया.
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे. हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट

0: आने वाला है, इसमें तो दोनों आदमी सहमत हैं। अब ये क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, आपका जो FII है, जो जिसे कहते हैं आपकी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले छह महीने में, पांच महीने में 2,00,000 करोड़ रुपए बाहर गया। आप कह सकते हैं ईरान युद्ध की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देख लें, 2025 में 1,66,000 करोड़ क्यों गया, 2022 में 1,30,000 करोड़ क्यों बाहर गया, 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर क्यों गया। इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आउटफ्लो का बढ़ रहा था लगातार, और ईरान वार ने उसमें दिक्कत पैदा कर दी। अब दूसरी बात, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 3.54 करोड़ का है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.98% का है। सवाल क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 7,750 बिलियन डॉलर का 7% के 17% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई पड़ी उसमें, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है बल्कि नीचे जा रहा है 442 बिलियन डॉलर। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकॉनमी में इंबैलेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इकॉनमी के अंदर। अगर आप दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, आपका जो गोल्ड इंपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट 82% की गति से बढ़ा है अप्रैल के महीने में, 82%।
1: तो गोल्ड का खान कहां से बना ले इंडिया में,
0: क्यों खरीद रहे हैं लोग? अब इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना,
1: खरीद रहे हैं लोग
0: इसलिए। क्योंकि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड तो दो कारणों से खरीदा जाता है, एक तो इसलिए कि भाई हम ज्वेलरी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोगों को लगता है जब हमारी दिक्कत पैदा होगी, आर्थिक संकट होगा, तो गोल्ड होगा जो उनको बचाएगा। ये स्थिति जब आपने पैदा की है,
1: ठीक है, ये इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का विश्वास नहीं रहा, उनको लगा कि भाई सोना ही हमको सुरक्षित रहेगा भविष्य के लिए, तब खरीद में बढ़ोतरी।
2: देखिए पहली बात तो आशुतोष जी ने कहा कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, गलत है। एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर क्रॉस हो चुके हैं और पिछले महीने के कंपेरिजन में 4% बढ़े। दूसरा, इन्होंने कहा कि गोल्ड स्पेसिफिक हिंदुस्तान की चीज नहीं है, ग्लोबली गोल्ड की डिमांड पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है, हर कंट्री के अंदर हाईएस्ट है, ये हर सेंट्रल बैंक के अंदर जो गोल्ड है वो 80% से ऑन एन एवरेज सर्च किया है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं है। जरूर इंडिया की इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप ये मैप से समझ सकते हैं, पहले हमारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिति थी, ये देश का इलेक्ट्रिसिटी मैप था जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे नहीं पहुंचाए। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे पहुंच चुकी है, तो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, जैसे जो गोल्ड एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, उसको अगर हम कम करें, तो एसेंशियल इंपोर्ट जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। पर बड़ी बात क्या है, मैं वापस से कहूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अंजना जी 2% से कम है, यूपीए के समय 6% था, ट्विन डेफिसिट की बात करी थी, फिस्कल डेफिसिट 5-5.5% यूपीए के समय 10-15% के बीच में था, पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद करने की बात कर रहे थे। मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि ये क्राइसिस अगर आगे भी चलता है, हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स झेलने की स्टेबिलिटी है, साथ में ये जरूर है कि अगर ग्लोबली समस्या होगी तो भारत में भी आएगी।
1: चालाकी करते हैं ना, कभी देखिए 90 पैसे बढ़ा दिया, इसमें आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, फिर कभी 3 रुपए बढ़ा दिया, ये क्या तरीका बढ़ाने का?
2: इसमें 2022 से लेके 26 के बीच में एक भी बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, यूपीए ने ऑन एवरेज 154% से दाम बढ़ाए, हमने उसका आधा भी नहीं बढ़ाया। हम तो चाह ही रहे कि कम से कम बढ़े, जिससे कि हम आम आदमी पे उसकी लीस्ट इम्पैक्ट दे सके। इसका तो आपको और आशुतोष जी को स्वागत करना चाहिए। ये मैं
1: छोटा सा जवाब अखिल जी,
0: थोड़ा जवाब उन्होंने लंबा दिया, थोड़ा
1: जल्दी
0: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हमारे देश के अंदर, हाँ। लेकिन जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब हम कितने परसेंट इंपोर्ट करते थे? 80%। अगर हमने मेजर्स लिए होते तो 90% नहीं बढ़ता, ये फेलियर है। फेलियर क्यों है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा साफ तौर पर कहता है कि क्रूड ऑयल लगातार छठे महीने श्रिंक किया है, उसका प्रोडक्शन श्रिंक किया है, और पिछले महीने -5.2%। नेचुरल गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया लगातार 20वें महीने प्रोडक्शन में 5% का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट श्रिंक किया है पिछले 6 महीने में 11 महीने में 6 महीने,
1: ठीक है।
0: अब फर्टिलाइजर में आप सोचिए, आपको आप
1: ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी घटी है,
0: 10 सेकंड ठीक है। जब सबको सबको मालूम है कि भाई कार को लेकर, गाड़ियों को लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन न केवल तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए बल्कि उसके कुछ ऑल्टरनेट मेजर्स भी करने चाहिए। आपने क्यों नहीं किए,
1: क्या किया आपने, जल्दी बताइए।
2: बहुत अच्छी इन्होंने बात करी। ये रहा मेरे पास में डेटा, इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन पहले जो था जिन

0: नॉन फॉसिल फ्यूल हमारा 10% भी नहीं था, आज 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अपनी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को मीट कर रहे हैं। तो हम जाना चाहते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्रूड की बात आ रहा है, उसकी डिमांड हम 30% तक करें, हम आज की तारीख में 50% तक पहुंचे, तो हम लॉन्ग टर्म मेजर। इन्होंने बोला ऑयल के रिस्पेक्ट में क्या किया, जीरो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे, आज की स्थिति के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक्सकवेशन लार्जर केजी बेसिन में भी हमने शुरू कर दिया है और आगे भी शुरू किया। 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी नॉर्डिक कंट्रीज में गए, यूएई में गए, यूएई के साथ हमने लॉन्ग टर्म डील करी जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है एलपीजी के रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ सके। तो हम तो स्टेप्स ले ही रहे हैं, पर ये हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि भारत आज 6 से 7% पे ग्रो कर रहा है, तो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक गोल्ड को हमें कम करना होगा।
1: मैं मान लेता हूं प्रदीप जी जो भी बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, हर फ्रंट में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-08 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था, अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था पूरा वर्ल्ड हिल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी गरीब लोगों के हाथ में। देखिए एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का पिछले 12 साल में इन लोगों ने ऐसा ध्वस्त किया है। ये जीडीपी की बात करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, सारे के सारे बड़े पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं, ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं, 18 लाख ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं, वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई 90 लाख ट्रक्स हिंदुस्तान के स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कारण ये, वो कहते हैं टोल को माफ कीजिए जैसे आपने कोविड में किया था, आप सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर्स सड़क पे आ गए हैं, लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम आपने डबल कर दिए हैं, आप सारा का सारा देशभक्ति का पाठ गरीबों को पढ़ा रहे हैं।
2: अभी 5 किलो राशन तो ये देते हैं,
1: 5 किलो अनाज का अनाज की कीमत होती है 150 रुपए महीने आप देते हैं, और जीएसटी में और पावर बिल में हर जगह आप पैसा उसे लूट रहे हैं।
2: आलोक जी,
1: गरीब
2: आदमी को,
1: गरीब आदमी का पैसा, क्योंकि गरीब की परचेजिंग पावर आपने छीन ली है। देखिए एक बार बंगाल के अंदर एक अकाल आया था, खुद खाद्य भंडार भरे हुए थे, लोग भूखे मरे थे, कारण ये थी लोगों का परचेजिंग पावर नहीं थी। आपने पिछले 12 साल में बड़े बड़े, और एक जो आप सोने की बात कर रही थी, देखिए सोना कौन खरीद रहा है, ये हम जैसे मध्यम वर्ग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेंगे, 80 करोड़ लोग वो खरीदेंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, ये खरीद रहे हैं। बड़ा मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी से कहती हैं, ये मोदी जी से कहलवाने की क्या जरूरत थी, मैं ही 1-2 टन सोना हर महीने खरीदती हूँ, नहीं खरीदूंगी। ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग सोना बेच रहे हैं, हम लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं, हमारे घरों के अंदर 12,000 रुपए में नोएडा के वर्कर, जो बेचारे वर्कर 12,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे थे, सड़क पे आए थे,
0: उनका जीवन कैसे। अखिल जी आपने कहा कि भारत के अंदर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, भारत में कंजम्पशन कम हो रहा है, सुनिए डेटा, मैं इनको फैक्ट चेक करूंगा, भारत के अंदर कंजम्पशन 60% बढ़ा है, दुगना हुआ है। 2013 में भारत के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन $1 trillion का था, अब यह बढ़कर $2.1 trillion का हो चुका है, 7.2% से ग्रो हुआ है। तो यह पूंजीपति का कंजम्पशन नहीं है, गरीब मिडियम वर्ग का है, यह सच्चाई की बात है। किसी ने झूठ बोलना बंद, वर्ल्ड बैंक का कहता है कर रहे हैं, गरीब 20 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। अभी आपका आर्ग्यूमेंट था कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, 61% नेशनल डीजीपी का पहुंच चुका है, कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी, कांग्रेस के समय में 6% करंट अकाउंट डेफिसिट, असली गद्दारी ये होती है, ये आपने 2001, अरे इनकम दुगनी हो गई,
1: भूखा मार दिया आपने,
0: दुगनी हो गई पर कैपिटा इनकम, दुगनी
1: आपने मिडिल क्लास को भूखा मार दिया,
0: 50 पर कैपिटा इनकम थी डॉलर की, वो बढ़ के
1: अमीरों को सारी संपत्ति आप दे रहे हैं, आप बिना पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं,
0: आप शायद कांग्रेस चाइना से इंपोर्ट ले रहे कर रहे हैं,
1: चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया है, एक्सपोर्ट 15%
2: हो गया
1: है, चीन के लिए अपना रास्ता खोल दिया है।
2: आलोक शर्मा जी, चुनौतियां बहुत है लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा, गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा।
3: चुनौतियां हैं ही कहाँ, बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है, मोदी जी तो मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं। मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है, देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एप्सटीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव चुनाव नहीं खेलता रहता, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के, तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं, फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है। ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं, 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी है। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा है, सबको जेब में रख रखा है, लोकतंत्र की हत्या हो रखी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है।
2: जवाब
0: अंजना जी, देखिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को गद्दार समझती है तभी 99 चुनाव तक राहुल गांधी को विपक्ष में बैठाई है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको इंडोर्स करते हैं, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने सीआईए से पैसा लिया है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब बैक करते हैं, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी विदेश में क्या टूरिज्म किस लड़की से मिलते हैं, क्या टूरिज्म करने जाते हैं, किससे मिलते हैं किसी को नहीं पता, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट को भारत छोड़ो यात्रा में अपने साथ में बैठाती है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो 66 करोड़ अपने खर्च पे करती है, राहुल गांधी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिसमें 11 करोड़ की इनकम है, 40 करोड़ का ये है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर परिवार फर्स्ट की बात होती है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लागू करी, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गया, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 12% इन्फ्लेशन दिया, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने चीन के साथ में सीक्रेट डील करी जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस का परिवार 99 चुनाव से विपक्ष में बैठा है उसको गद्दार कहती है। 99 चुनाव देश की जनता ने हराए, आगे 99 और हराएगी, और ये तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है, कहते हैं चुनाव की क्या जरूरत है, चुनाव ये इनकी मंशा सोचिए, भारत के लोकतंत्र की नींव पे हमला करना चाहते हैं क्योंकि परिवार सत्ता पे नहीं बैठा है, इसीलिए डेंजरस है, डेंजरस के साथ में ये हानिकारक है और इविल है, इविल है ये देश के लोग,
2: इकोनॉमी पे आइए ना,
0: देश के लिए लोकतंत्र
3: दे देता हूँ। इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं।
0: झूठ,
3: एक शब्द नहीं बोलते हैं लोग,
0: झूठ बोल रहे हैं।
3: सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी
0: आप असली सीआई से पैसा लिया है,
3: वापस
0: सीआई के
3: बीच में नहीं बोला,
0: मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बोलूंगा
3: यार, मछली बाजार मत बनाओ यार,
0: झूठ नहीं बोलेंगे,
3: पूरे देश का मछली बाजार बना दिया
0: आप लोग,
3: शांत रहो, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला
0: प्रधानमंत्री जी को,
3: शांत रहो,
0: आप शांत रहिए आलोक जी,
3: आपके टाइम पे आप जवाब दीजिए,
0: गद्दार आप लोग हैं,
3: आप लोग अपने समय
0: के रात तक गद्दारी
3: ठीक है, आज तक आप हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो,
0: गए ऊपर से नीचे से बेल पे भार हो गया,
3: फिर आप नीचे मत बोलो भाई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24 में, उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है, हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया, विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया, अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया, और दिक्कत यह है जितनी योजनाएं चलाई वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई, एक का उद्घाटन करने जा रहे थे उसमें भी आग लग गई, और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की, ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं
2: है,
3: अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला, इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भुखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चेताएंगे हम,
0: ये इनकी मंशा है।
3: देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला, जो मैंने बोला है देश के प्रधानमंत्री ने बोला, चार
0: नहीं बोला है
3: देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं, शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1-2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे, क्या एग्रीकल्चर फार्मर करेगा?
2: मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी।
0: 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, एक गद्दार कांग्रेस, 70 सालों में
3: एक व्यक्ति को बता दो जिसको,
0: अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा
3: 50% सालों
0: में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी, नेहरू इंदिरा राजीव ने जाकर ऐसा पैसा दान कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी, नेहरू राजीव इंदिरा मनमोहन सोनिया ने ऐसा बंटा दान कर दिया कि देश में 15% इंफ्लेशन कर दिया, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। इनको घबराइए कि देश में नेपाल जैसे हालात क्यों नहीं हो रहे, ये चाहते हैं कि देश का लोग आपका अहंकार आपको ऐसा ले डूबेगा, 99 चुनाव बनाए, देश की जनता आपको ऐसा
3: 99
0: क्यों हो रही है कि इटली के साथ डील हो रही है, राहुल जाके जॉर्ज सोरोस करें, ये
4: जलन
0: राहुल
4: जलन तो स्वाभाविक होगा, विपक्ष में बैठे हैं तो जलन होने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अंजना जी, मैं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखता हूँ और रखना भी चाहिए। जो प्रश्न पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब जो है ना, एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और तथ्यों के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता है। और आज जो पूरी दुनिया जिस स्थिति में है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, सबको पता है कि कोविड की महामारी हो या वैश्विक जैसे युद्ध की स्थिति अभी जो बनी हुई है, या सप्लाई चेन संकट है, या आर्थिक अस्थिरता है, इन सब ने यह चीज तो साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वैसे देश संकट के समय ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत अस्थिरता, विश्वास और विकास तीनों को बनाए रखा है, और उसका पूरा श्रेय मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें भी आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यही भारत 2014 से पहले, आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था, सारे अर्थशास्त्री बैठो, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था, फ्रेजाइल 5, आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में, जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री जी की जो है सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था, यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है, यही भारत यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था, और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन आपके तरह प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं, चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हमने और आप में अंतर है, आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौतियों पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। आप लोग विपक्ष में है, आप लोग अदरगल बातें करते रहिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले भारत जो है संभावना के लिए जाना जाता था भारत, आज भारत उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।
2: ठीक है, माधव जी में भी जोश आ गया और आप भी शालीन का जोर के पर अश्विनी जी अभी तक नहीं बोल पाए।
0: 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के
5: उसके बाद 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई?
0: आपने 13वें नंबर पे
5: बाद 5 किलो राशन तक दे रहे हो भाई?
0: और इटली के साथ जिस मेलोडी से दिक्कत है, 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड पहुंचने वाला है। अब मेलोडी मेलोडी करेंगे, अब सोरोस सोरोस करो, अब सोरोस सोरोस करो, हम मेलोडी मेलोडी करके 20 बिलियन डॉलर पहुंचाएंगे। पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कराए जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए, शर्म आनी चाहिए।
2: अश्विनी जी
0: सब कांग्रेस की पूछ रहे हैं, आपको आना चाहिए।
2: अश्विनी जी अश्विनी जी
5: इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़ों पे आपसे
0: 28
5: अरे सुनिए ना
0: भाई, इलेक्ट्रिफिकेशन 70 सालों में किया,
5: सुनो ना,
0: मैं उत्तर देता हूं, ये सच्चाई।
5: आपने कहा हमने 13,500 करोड़ को इलेक्ट्रिफाई किया,
0: मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने बोला
5: मोदी जी ने
0: घर तक कहा है,
5: मोदी जी ने लाल किले से कहा, सुनिए
0: हर घर तक।
5: अरे सुनो ना भाई, 7 लाख गांव थे इसमें, हमने 12,500 गांव को एक साल में दिया।
0: झूठ
5: आप फिर झूठ।
0: अरे भाई कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने गांव को
5: कैलकुलेट कर लो,
0: 11 साल में
5: कैलकुलेट कर लो।
0: मैं
5: पॉलिटिकल साइंस
0: बिल्कुल कैलकुलेट
5: कर लो,
2: शांति से बैठ
5: के कैलकुलेट कर लो,
2: बिल्कुल कैलकुलेट कर लो। एक सेकंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। अश्विनी जी तीन बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चैलेंज तो है, इससे कोई इनकार करे आंखें बंद कर ले, ये उसकी उसका शौक है। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ऐसे बढ़ रही है तो असर उसका दिखेगा ही, माल ढुलाई और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है, अब ऐसे में भारत के सामने क्या स्थिति है, क्या रोड मैप है?
6: देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस राजनीति से बाहर आना चाहिए, ये राष्ट्रीय संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट है। और इस प्रकार की मैं अभी सुन रहा था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है, अगर मान लिया मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए, विदेश यात्राओं को रोकना चाहिए, सोने की खरीद कम करनी चाहिए,
5: वर्क फ्रॉम होम करना, याद आया मोदी जी को?
6: बीच में मत बोलिए,
5: पहले चुनाव चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व
0: वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दो, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करोगे? हाँ है ना, वन नेशन यही एक्सपोज हो गए,
5: लाइए ना,
0: नहीं नहीं करो, चलो राहुल गांधी से समर्थन करा दो, 24 घंटे में करा दो समर्थन, नहीं है
5: 12 साल
0: से नहीं, इनको गुम हो
5: जाएंगे
0: ऑफिशियली, ऑफिशियली जाके कहिए राहुल से, आपने कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली ट्वीट करवाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में, यह सच्चाई है,
5: यही
0: झूठ मत बोलिए, यही है
5: सरकार आपकी करेगा विपक्ष
0: भैया, सर्वसम्मति से
5: यू आर नेशन में इलेक्शन बनाए,
0: क्या बात कर रहे हैं, अपनी तेलंगाना कर्नाटक ऑलरेडी सबमिट हो गई है,
5: कहां है?
2: चलिए एक बार अगर मुमकिन हो तो मुझे इन दोनों के साथ दिखा दीजिए। आज हल्ला बोल के इस एपिसोड में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, प्रवक्ता ही ये बोल रहे हैं लेकिन ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इसी के साथ मेरे शो में ही आलोक शर्मा जी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए, क्योंकि उससे भी कीमतें घटेंगी, पता है 15% 20% तो वहीं घट जाएगा, हम जो हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं। दोनों पर सहमति बनी है, अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या होता है और अब देखते हैं उस कमिटी में क्या होता है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया गया है। अश्विनी जी अब आप बात बोलिए और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं संरक्षण दूं, बोले
6: जी आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद।
2: बोलिए
6: कि आप आज
5: को संरक्षण
6: आज आज
0: केरला में आपने दूध के दाम 4 रुपए से बढ़ा दिए, ये आपकी सच्चाई है, सबसे ज्यादा दूध के दाम केरला में बढ़ा है, सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल में कांग्रेस की सरकारें लगा रही
2: है।
5: पाकिस्तान को पूछ लू, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा अभी,
0: घर में घुस के मारेंगे,
5: क्या कहा है,
0: घुस के मारेंगे,
5: क्या कहा,
0: घर में घुस के मारेंगे,
5: क्या कहा, बताइए
0: पाकिस्तान को घर में बताइए, याद रखो ऑपरेशन सिंधु 2.0
5: आप लोग भी
0: अंग्रेज़ों के मुख पर बताओ,
5: आप तो बातचीत कर रहे हो यार,
0: जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन सिंधु 2.0 नहीं बोला, सब ऐसा गलत कोट कर रहे,
2: नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला,
0: घर में घुस के मारेंगे, जब भी आप जैसे चीनी एम्बेसडर के पास गए थे जलवायु में, चोरी चोरी छिपके छिपके पाकिस्तानी के साथ भी चोरी चोरी छिपके छिपके जाओगे, तब भी पाकिस्तान से हमला करेंगे,
2: घर में आफत में नहीं बोलनी थी, आप लोगों को यहाँ बुला लिया था, आपको आज मैं पक्का टॉफी खिलाऊंगी,
0: मेलोडी
2: इतना जहर आ गया,
5: मैं भी यही बोलने वाला,
2: इटली वाली नहीं है वो, इंडिया की है, गलत मत बोलिए, अश्विनी जी प्लीज लेट हिम स्पीक,
6: प्रदीप जी मुझे लगता है कि मैं प्रदीप जी से तो आदेश दे सकता हूँ कि आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए, तो मेरा ये कहना है कि सामने सामने अर्थशास्त्र का विषय है और यहाँ राजनीति हो रही है, तो इसको इसको हमें ये करना चाहिए कि सब सभी राजनीतिक दल एक बार बैठे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और कम से कम एक भाषा बोले।
5: नहीं तो कौन बुलाएगा ऑल पार्टी मीटिंग, अभी तक क्यों नहीं बुलाई? इसका उत्तर है आपके पास?
7: देश नहीं चलाते, न चलाएंगे, याद रखना। ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री चलाते हैं और देश की लोकतंत्र, देश की जनता चलाते हैं। और एक ओबीसी समाज, ओबीसी समाज का आपने अपमान किया है, ओबीसी सराव, ईबीसी सराव के नीतीश कुमार जी का अपमान किया है, देश देख रहा है। 100 साल तक बिहार में सत्ता में नहीं आओगे, आपने ईबीसी का अपमान किया है।
5: मैंने देश देख रहा है, मैंने इनके युवराज का अपमान किया, जिससे
7: कौन देखेगा? ये नहीं रहेंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे।
5: प्रदीप जी, मैंने उस युवराज का भी अपमान किया है, जिसका पता नहीं कौन सा नशा कर रहा
2: है। देखिए, हमने युवराज युवराज क्यों बोल रहे हैं? अपने वाले को भी युवराज मान रहे हैं क्या?
5: युवराज उसने शुरू किया,
2: तो अपने वाले को मत बोलिए ना सर।
7: हम तो कभी भी कार्यक्रम,
2: आप नाम लीजिए ना, आप मत बोलिए युवराज, मत बोलिए।
6: हमने प्रदीप जी को कहा है चुप रहने के लिए और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, या तो तरीके से, तरीके
5: मोदी जी से निवेदन क्यों नहीं करते? मुझे थोड़ी बुला लिया ऑल पार्टी मीटिंग,
2: ऑल पार्टी मीटिंग।
5: आप मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, आज ही लिखिए, यहीं बैठ के मैं कागज में देता हूँ।
6: आप मुझे, मुझे आपके कागज की जरूरत नहीं। आप एक बार बोलने तो दीजिए, आप बोलते रहेंगे क्या?
5: बोलिए बोलिए,
6: मतलब ये क्या तरीका है?
5: बताइए ना,
6: दिस इज नॉट वे, नो वे। तो मेरा ये निवेदन है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय समस्या तो है ही, और प्रधानमंत्री ने भी एक जनता से अपील की है, वो भी मैंने कहा। तो मेरा ये कहना है कि सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में विचार करना चाहिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि आप इसको कंजम्पशन को कम करिए, ये करिए, तो अगर रुपया बचेगा तो मोदी जी का रुपया है क्या?
5: सभी को जनता करेगी तो सरकार इसलिए क्या करेगी? सरकार के दो कदम बताइए पिछले 2 महीने में, जो ऐसा लगता हो कि इस वजह से ये डॉलर हमारा बचेगा। 2 कदम बताइए मुझे।
6: देखिए, सरकार
5: जो कदम
6: जो सरकार कर सकती है वो कर रही है।
5: दो कदम बताइए ना,
8: सरकार कुछ नहीं कर रही है।
5: मैं बताता हूँ,
2: केवल दो कदम बताइए, दो कदम बताइए।
7: राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, वही राहुल गांधी सरकार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ कर रहे हैं।
9: 30,000 मैट्रिक टन एलपीजी प्रोडक्शन था एक क्राइसिस शुरू होने के पहले, 50,000 मैट्रिक टन क्रॉस हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% पेट्रोल के दाम बढ़े, 40% बढ़े, भारत में 3% बढ़े। ये सरकार कर रही है। अगर कांग्रेस होती तो कहती 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो, कांग्रेस होती तो कहती आइसक्रीम जो है वो मत खाओ। यही है आपको इलॉजिकल देश की जनता कहती है, तभी 12 साल से यहाँ बैठे हो और आने वाले 25 साल भी बैठोगे। ये सच्चाई है, एक एक सत्य कर रहा है। 12.5 घंटे तो रिजाइन कर दो तेलंगाना से, रिजाइन करो तेलंगाना से, रिजाइन करो केरला से, केरला भी ट्वीट किया। ओ केसी वेणुगोपाल जी धन्यवाद करो, क्यों केरला से रिजाइन करो ना, क्यों केरला से रिजाइन करो आलोक शर्मा। एक काम करो, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, आलोक जी एक राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, बोलो केरला से रिजाइन
2: करेंगे।
7: माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिचौलिया संस्कृति और इस तरह भ्रष्टाचार पे जो चोट पहुंचाया है, और डीबीटी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों जो है लोगों के, गरीब लोगों के खाते पहुंचाने का काम किया, असली प्रॉब्लम यहाँ इन लोगों को लगता है।
1: मेरा सवाल यह है कि ये नोट जो है 97 के पार क्यों जा रहा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो इसका जवाब
7: देखिए। देखिए, ग्लोबल क्राइसिस तो मैंने पहले कहा चुनौतियां हैं।
1: अरे ग्लोबल क्राइसिस तो अभी हुई भाई,
7: तो बोल रहे हैं चुनौतियां हैं। सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है, सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है। बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है।
2: क्योंकि एक सेकंड प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स पर है, नहीं विदेशी मुद्रा भंडार हमारा अभी दुरुस्त दिख रहा है, इतना कम नहीं हुआ है अभी, वो 690 अरब डॉलर के आसपास है। क्यों रुपया गिर रहा है, इसकी वजह क्या है?
7: देखिए, बहुत सारे इसमें इश्यूज होते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की उन्होंने बात की, और अभी जो वैश्विक स्थिति है, जब हम लोग का एक्सपोर्ट
4: कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, दोनों सारा चीज बहुत
8: और जो जो कह रहा हूं जब रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी नॉमिक्स में रुपया गिर रहा है और एक्सपोर्ट भी गिर रहा है।
9: कंप्लीटली झूठ, ये सार्वजनिक
4: सप्लाई चेन, अर्चना जी सप्लाई चेन संकट को समझने की आवश्यकता, इकोनॉमिक सप्लाई चेन संकट को जब समझेंगे तो भारत चाह के भी बहुत सारे जगह पे माल नहीं पहुंचा पा रहा है। सप्लाई चेन संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सप्लाई चेन संकट पूरे विश्व के लिए है, और सप्लाई चेन संकट जो है आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा फैक्टर है।
10: इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जिसपे सवाल पूछा गया था कि आपकी आय बढ़ रही है या घट रही है। 65% लोगों ने कहा था कि आय बढ़ नहीं रही है। ये इंडिया टुडे का सर्वे है, ये क्यों ऐसा हो रहा, लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं, 97 पे आपका रुपया जा रहा है, सब कुछ चंगा है। अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर भयानक स्थिति भी हुई, कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं, कोविड के पहले के क्वार्टर में जनवरी से मार्च के बीच में 2020 आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23 समथिंग लाइक, माइनस पे था आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइनस में था।
2: काउंटर पॉइंट आपके लिए भी है, जैसे उनसे मैंने पूछा भाई, एक सेकंड, काउंटर पॉइंट ये है कि सुनिए, बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है, रूबल, नहीं नहीं एक सेकंड, रूबल देखिए 4 रुपए के
9: एक
2: बार बोलने
9: देशों का नहीं गिर
10: रहा, एक एक मिनट,
2: सप्लाई चेन भी असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा
10: है,
2: सप्लाई चेन वजह है या नहीं है उस पे आने के लिए ये सवाल।
10: अंजना जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में। क्यों? कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी -27% भारत की गई थी, क्यों गई थी, क्यों गई थी?
8: अंजना जी बहुत गंभीर विषय है ये, जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है सब चंगा सी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा, आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए, इसका पूरा नुकसान होगा, जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा, डॉलर बाहर चला जाएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं।
10: अंजना जी ये समझना बहुत आवश्यक है, कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक करती हैं, जिसको जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट में फायदा हो। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उनका करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है, हमारा करेंसी का वीक होना हमारा, ये लोन हम जो नए ले रहे हैं पुराने लोन को वापस लेने के लिए रहे हैं, हम डेट ट्रैप में हैं, हम डेट ट्रैप में हैं।
6: देखिए भारत डेट ट्रैप में नहीं है, इतनी बात समझ लेनी चाहिए।
9: मैं लिख दे सकता हूँ डेट ट्रैप, आप देश के ऊपर कर सकता हूँ डेट ट्रैप।
6: देखिए अगर बीच में अगर बीच में बोलेंगे तो
9: बताइए ना डेट ट्रैप कैसे नहीं, आप बताइए, आप यही बात
6: आपको मालूम है क्या,
9: बताइए
6: आप ही ऊंचा बोल सकते हैं क्या,
9: बताइए ना भाई डेट ट्रैप में कैसे।
6: देखिए जब हमारा जब आपने छोड़ा था ना तो उस समय 58-62% था जीडीपी जेट डेट, और आज की डेट में 56% है जब जीडीपी के डेट के। अरे आपको मालूम नहीं है कुछ, आपको मालूम नहीं है, चुप रहिए फिर।
9: सर्वे 2025 का पढ़ लीजिए,
6: मुझे भी बोलना आता है,
9: पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही है।
6: हाँ अगर
9: मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा
6: है, अगर पढ़ा होगा ना 56% है आज,
9: पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं है,
6: सरकार की बात। अगर अगर आपकी डिग्री इसका मतलब
9: सारे हाईवे बैंकों के पास डिग्री है,
6: मैं
9: सारे के सारे हाईवे
6: मैं कुछ कह नहीं सकता,
9: जहां एक टोल था वहां 6-6 टोल है।
6: मैं डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट,
9: दिल्ली से टोल है।
2: अरे मत कीजिए आलोक जी, बहुत ज्यादा
9: दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है,
4: मैं बता सब। देखिए आलोक जी, झगड़ा करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग गंदा कर लेंगे, उसे इकोनॉमी तो मेरी अधिक हो जाएगी, लेकिन मैं हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा, हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा कि 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, देश हित में निर्णय लिए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपीलें की है, उस 7 अपीलों को अगर हम लोग अक्षरशः पालन करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर, विकास और विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था में बना रहेगा।
9: आशुतोष जी ने इंडिया टुडे की सर्वे की बात बोली, इंडिया टुडे के सर्वे को वापस से कोट करता, वही सर्वे कहता है कि 48.88% लोग सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट से खुश है, आधा इन्होंने कॉमा लगाया था। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कोई डेट ट्रैप नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 गुना ज्यादा है यूपीए के समय से, यह झूठ बोला। चाइना $2 trillion इंपोर्ट करता है, हम $900 billion इंपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना को इंपोर्ट कंपनी झूठ बोलते हैं। सच्ची बात यह है, दुनिया के अंदर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, भारत में लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं।
2: चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आज मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी, मैंने सबको यहाँ बुला लिया था, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे सर, आप पैनलिस्ट हैं या आप कैसी बात करते हैं, अच्छा नहीं शोभा देता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
8: हिंट
7: बड़े आराम से।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
14: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
13: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
14: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
16: नहीं
14: और म्यूचुअल फंड्स है
16: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: Director, the taste of success.
19: Like I said before, we better hold the sins.
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
21: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं।
9: भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल रहा कतई भी। इतनी मट्टी पलित हो रही, देखियो इनकी शिकल देखो, एक बार घुमाओ ना, बहुत ज्यादा मट्टी पलित हो रही है। जहाँ गाड़ी पहले 1000 रुपए में जा रही है, 600-500 इतनी मट्टी पलित हो रही है। CNG बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पर भाई रेट नहीं बढ़ा रहे।
8: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं।
10: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन फ्रिजों पे भी फर्क पड़ रहा है। फलों पे और कीवी जो है पहले 100 रुपए की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है अब से 150 रुपए पीस, 60 रुपए पीस चल रहा है, इसलिए उस पर भी कीवी पे और की जो फलों पे भी असर पड़ा है।
11: सर पहले दही हम 100 रुपए किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 के, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, कमर्शियल हम यूज करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज करने की वो है तो हम कमर्शियल यूज करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और बिल भी नहीं रहा।
8: चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है।
12: एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड अस टू सेव एनर्जी ओवर द नेक्स्ट ईयर। इन मोमेंट्स लाइक दिस नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स एज मिस्टर वाजपेयी जी फेमसली सेड। Governments will come and go, but the nation shall remain.
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया।
13: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है।
8: 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की, जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज तक के इस विशेष शो में अगले आधे घंटे में दिनभर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट। जबलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, अब सीबीआई करेगी जांच। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा कांग्रेस के ये हैं राजनीतिक कुसंस्कार। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के राजनीतिक संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वाले का फायदा। कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब साथ। बंगाल की कमान संभालने के बाद सीएम शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से की मुलाकात, पहले राष्ट्रपति से भी मिले। बॉर्डर सुरक्षा पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम, कहा देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए। और बुलेटिन की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जहां भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में उसके पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को जबलपुर की जिला अदालत में पुलिस ने कुछ देर पहले हिरासत में ले लिया। आरोपी समर्थ सिंह ने पहले सरेंडर की अर्जी लगाई थी, लेकिन ट्विशा शर्मा के वकील का आरोप है कि आरोपी पति को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले जब समर्थ सिंह जबलपुर अदालत पहुंचा तो वहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इसने सरेंडर की अर्जी लगाने के बाद जबलपुर अदालत में अपने आप को खुद पेश किया, आत्मसमर्पण किया। अभी तक समर्थ सिंह फरार चल रहा था और मध्य प्रदेश की पुलिस, भोपाल की पुलिस समर्थ सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन आज जब समर्थ सिंह ने आपसे कुछ देर पहले अदालत में अपने आप को पेश किया तो अब वहीं से पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है।
1: कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है, उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, 2-3 सवाल एक साथ। क्या समर्थ को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या अदालत में समर्थ ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया है? क्या अदालत में उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला है और आगे क्या हुआ?
2: बिल्कुल सही जी, बिल्कुल बातचीत सवाल आपने उठाए हैं। सबसे पहले तो इस सवाल से जवाब दे दूं, हिरासत को उसे ले लिया गया है, गिरफ्तार इसलिए नहीं कहेंगे, ये जबलपुर पुलिस का मामला है नहीं, ये भोपाल पुलिस का मामला है। जबलपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अब भोपाल पुलिस की टीम वहां जाएगी, आधिकारिक रूप से अब उसे गिरफ्तार करके भोपाल में जज के सामने पेश किया जाएगा, जहां फिर यह तय होगा कि क्या उसे पुलिस की है या फिर उसे न्यायिक निर्णय। दूसरा सवाल जो आपने पूछा वो बिल्कुल सही है कि उसके रसूख का इस्तेमाल यहाँ पे सबने देखा, वहां पे समर्थ सिंह अकेला नहीं था, हाईकोर्ट से उसके साथ वकील की पूरी फौज थी, वकीलों की संख्या पूरी फौज थी, और वो वहां पे ना केवल के परिवार के वकील थे, उनको बंसी वहां जो तमाम मीडिया कर्मी थे जो समर्थ से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे उनको भी धक्का देकर वहां से दूर किया गया है। और जहां तीसरा सवाल आपने पूछा कि क्या उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला, बिल्कुल जो समर्थ के सामने जो लॉयर है उषा के परिवार के,
0: जी,
2: उनका साफ तौर पे यह आरोप है कि जब वो उन्हें जानकारी मिली कि एक आरोपी वहां पे पहुंचा हुआ है, तो उसके हाव भाव और जिस तरीके से उसने वहां पे,
0: ठीक, रविश रविश थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको, रविश, क्या सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद अब भोपाल पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं?
2: सीबीआई के पास ये इसीलिए केस गया क्योंकि भोपाल पुलिस की जांच में कई लापरवाही सामने आई। आज तक में सबसे पहले आपको बताया था कि भोपाल पुलिस ने वो फंदा जो इलास्टिक बेल्ट था जिम्नास्ट का, वो फंदा पोस्टमार्टम के समय एम्स भोपाल को सौंपा ही नहीं था, वो एफएसएल की टीम के पास था और जिसने बाद में अपनी औपचारिकता पूरी करके उसको माल खाने में जमा कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही होगी कि जिस फंदे से फांसी लगाई थी कथित रूप से पीछा ने, वो फंदा पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही नहीं गया, तो उनके गले पे जो निशान थे
0: जी,
2: उसका मैच पहले पोस्टमार्टम से हो भी नहीं पाया और इसीलिए परिवार ने आरोप लगाए थे कि हमें दूसरा पोस्टमार्टम करवाना है। दूसरी बात, भोपाल पुलिस जो इस पूरे मामले में प्रमुख इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, वो 10 दिनों तक क्या करती रही? जब उसने 6 टीमें बनाई, 10,000 का इनाम पहले घोषित किया, बाद में 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया, बावजूद इसके वो 6 पुलिस की टीमें आखिर थी कहाँ कि समर्थ जो है वो हाई कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है जबलपुर में और फिर वहां से जबलपुर पुलिस हिरासत में ले लेती है, तो फिर भोपाल पुलिस कहाँ थी इतने दिनों तक? जो एक आरोपी जिसने पहली बार ये अपराध किया इस तरीके का, जिसके घर में एक उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, वो आखिर फरार हो जाता है इतने दिनों तक और पुलिस को पता नहीं चल पाता है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवीश आप, तो भोपाल पुलिस पर भी अब जबरदस्त सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रवीश आप बने रहिएगा और बातचीत हम आपसे करेंगे। पिछले 9 दिनों से भोपाल में ट्रिशा शर्मा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आखिर ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई, अब इसकी जांच सीबीआई को करनी है।
3: ट्रिशा की शादी का ये नया वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर शादी में खुश नजर आ रही ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी, जिसकी सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। वहीं हाई कोर्ट ने ट्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करने जाएगी, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को कहा है।
4: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
3: ट्रिशा के परिवार

0: शर्मा का ये बयान आया है। अब से कुछ देर पहले समर्थ सिंह ने जबलपुर अदालत में सरेंडर किया था, वो वहां पहुंचा था, उसने अपील भी की थी, एक अर्जी भी लगाई थी, उसे हिरासत में ले लिया गया जबलपुर पुलिस के द्वारा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा और ट्विशा शर्मा के वकील ने उसे देखा तो ट्विशा शर्मा के वकील को पीटा गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। राजनीतिक जोड़ गणित का खेल चल रहा है। दो दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने मायावती से मुलाकात की कोशिश की तो अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर तैयारी की बात कहकर कांग्रेस के साथ गठबंधन में खींचतान की अटकलों को जबरदस्त हवा दे दी।
1: 5 राज्यों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का कांग्रेस पर ये ट्वीट क्या यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर था? अखिलेश ने ममता और स्टालिन के साथ तस्वीरें साझा करके बिना नाम लिए साथ छोड़ने वालों पर तंज किया था और अब अखिलेश यूपी विधानसभा में सभी सीटों पर तैयारी की बात कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल पुराना है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने भी मायावती से मुलाकात की कोशिश की थी। हालांकि बहन जी साफ कर चुकी हैं कि वो सियासी मैदान में अकेले लड़ेंगी। ऐसे में अखिलेश के बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं।
2: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया।
3: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे।
1: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इस खींचतान ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। सपा और कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा कोई साम्यता नहीं है। दोनों दलों में आपस में न कोई भरोसा है और न ही कोई तालमेल। उनके बीच एक अवसरवादी मेल है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल में कहीं न कहीं सीटों का बंटवारा भी छिपा हुआ है। जहां यूपी में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश ने सीटों का ऐलान करके कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उधर आज देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया, जहां माफिया राज और राम मंदिर को लेकर निशाना साधा।
4: चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे, लूट मचा रखी थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को कांग्रेस को परहेज था।
0: उधर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि विवाद बढ़ता देख अजय राय की सफाई भी आ गई, जिन्होंने वीडियो को AI वीडियो बताया है। अजय राय के बयान के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अजय राय पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, प्रधानमंत्री के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय, अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालीपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने योग्य भी स्थिति उनकी नहीं रही। और अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के पहले दौरे पर

0: राय अब से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले शुभेंदु ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की तो सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने वो पहुंचे। इससे पहले कल दौरे के पहले दिन शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास धार में स्थित भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आज पहला जुमा था। ऐसे में वाग देवी पूजा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला तो मुस्लिम समाज ने अदालत के निर्णय के विरोध में काले कपड़ों में नमाज पढ़ी।
1: ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा। हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी यहां के भक्तों में साफ नजर आ रही है।
2: पहला शुक्रवार है, 700-750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहां पूजा कर पा रहा है निरंतर।
3: 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहां बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
4: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गई।
1: भोजशाला में सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई, यात्रा निकली और फिर महाआरती हुई।
2: आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद यह मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है।
1: हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी बाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आज पहला जुमा था। ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ी और कोर्ट के फैसले का विरोध किया। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर अदालत की टेढ़ी नजर है जिसका पूरा हिसाब किताब किया जाएगा।
1: जिन हथियारों को यूपी के बाहुबली अपनी ताकत का प्रतीक समझते हैं, अब हाईकोर्ट की नजर इन बाहुबलियों के हथियारों पर है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जारी किए गए हथियार लाइसेंसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पुलिस अफसरों से पूछा है कि आखिर गंभीर आपराधिक मामलों में नाम आने वाले बाहुबलियों और दबंग नेताओं को हथियारों के लाइसेंस किस आधार पर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह समेत 19 बड़े नामों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि इन लोगों को किस परिस्थिति में शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें किस तरह की सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। इनमें 6,062 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सरकार ने ये भी बताया कि 23,407 लाइसेंस अभी लंबित हैं, जबकि 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस मौजूद हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान झारग्राम में जिस झालमुड़ी वाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी उसे मिल रही धमकियों की खबर आई। झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साहू के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। विक्रम साहू ने दावा किया कि उन्हें इन कॉल्स के द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस घटना ने विक्रम साहू और उनके परिवार को गहरे डर और चिंता में डाल दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
5: अभी बहुत तरह की दिक्कत हो रहा है, जो धमकी आ रहा है, कल से हमको ज्यादा धमकी आया, रविवार से मैंने पाकिस्तान से जो फोन आया, ज्यादा धमकी आ रहा है, माँ बाप खाना भी नहीं खा रहे, हम भी टेंशन में है, मेरा जान के खतरा है, उन लोग उल्टा पुल्टा धमकी दे रहा है, मैसेज कर रहा है, हर तरफ की उन लोग धमकी ज्यादा दे रहा है, पाकिस्तान के लोग है, व्हाट्सएप पे है, हाँ वीडियो कॉल किया था, अलैकुम सलाम ऐसा कुछ बोल रहा था, उन लोग ग्रुप में दिखा रहा था बहुत तरह तरह की ऐसा
6: क्या दिखा रहा था,
5: बहुत लोग थे मैंने वहाँ पर, हथियार वगैरह था, चोक लाल करके दिखा रहा था हमें कि हम तुम्हारा दुकान टारगेट में है, बम से उड़ा देना।
0: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
11: somebody save me,
10: to timeless favorites,
11: and life is like a song,
10: and new discoveries,
11: so much more than a history. Wake up!
10: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
1: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
0: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
2: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
8: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
9: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
10: बस 2000
11: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
12: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
13: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
15: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
16: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
17: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
18: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
19: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड से
19: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
21: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
22: कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
23: विक्रम!
15: हिंट।
22: बड़े आराम से।
24: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
25: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
26: सोच बदलो और बैंक भी।
27: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
28: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
29: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
30: Director, the taste of success.
31: Like I said before, we better hold the sins.
32: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
33: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: वो समुद्री रास्ता जो अमेरिका इसराइल से युद्ध छिड़ने के बाद ईरान का सबसे मजबूत हथियार बना, जिस रास्ते के दम पर ईरान ने दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई का रास्ता रोक दिया, वही हॉर्मुज रूट एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिस पर ट्रंप तिलमिला उठे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बताया कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे हॉर्मुज के ट्रैफिक से टोल वसूली को व्यवस्थित किया जा सके। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार विवाद के केंद्र में है। ऐसे में ईरान के टोल वसूली के प्लान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर टोल उन्हें कतई पसंद नहीं है और ईरान इस वसूली को फौरन बंद करे।
1: It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job.
0: अमेरिका-ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन अब यही रास्ता ईरान की अहम ताकत बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ओर से अपनी शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, कुछ दिन पहले पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी थी ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करने को किसी भी सूरत में राजी नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की धमकी का ईरान पर क्या असर होगा, और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या दोनों देशों के बीच और भी विनाशकारी युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: कृष्णा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट। जबलपुर कोर्ट मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीबीआई करेगी अब जांच। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये कांग्रेस की राजनीतिक कुसंस्कार। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के राजनीतिक संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर मुस्तैद, साथ आने वालों का फायदा। कांग्रेस बोली इंडिया गठबंधन में सब साथ। बंगाल की कमान संभालने के बाद सीएम का पहला राजनीतिक दौरा, पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से भी मिले शुभेंदु। नीट कांड में सीबीआई का एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका विशेष में। गर्मी भीषण है, तापमान 45 से 48 डिग्री तक हो गया है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली संकट भी पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बिजली की कटौती हो रही है। गर्मी से बचने के लिए सरकार कह रही है कि बाहर मत निकलो, घर में रहो, और घर में बिजली नहीं आ रही तो लोग क्या करें। अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग आक्रोश में सड़कें जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई उत्तर प्रदेश में अभी भी ठीक नहीं है।

0: 45 डिग्री के टेम्परेचर में यूपी वाले बेहाल हैं। लू से बचने के लिए घर में रहने को कहा गया है और घर पर बिजली नहीं आ रही। यूपी के हर जिले में ऐसा ही हाल है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भीषण गर्मी में बिजली की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। सरकारी दावा है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही। सरकार कह रही है कि लू से बचना है तो घर में रहो, और घर में तो बिजली ही नहीं आ रही। यूपी में बिजली एक खोज। यह हंगामा बीती रात मेरठ में हुआ, वो भी मेयर आवास के बाहर। बिजली नहीं आई तो लोगों ने मेयर का घर ही घेर लिया, खूब हंगामा किया, नारेबाजी हुई। बाद में मेयर भी बाहर आए और अपनी बेचारगी जताने लगे। कहने लगे कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि शहर में बिजली नहीं आ रही, पता होता तो वो इन लोगों के साथ बिजली घर चले जाते।
1: मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले चाहे कितनी देर लगे, नंबर वन है। मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे, अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एक मिनट बात हो जाए आपके सामने बात हो।
0: अब जरा कानपुर देहात का हंगामा देख लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, भीषण गर्मी में लगातार बिजली कट रही है। मुश्किल से इनके हॉस्टल में 8 से 9 घंटे ही बिजली आ रही है। इससे इनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और ये परेशान भी हो रहे हैं। मजबूरी में बीती रात ये कॉलेज के गेट के बाहर सड़क पर उतर आए और जमकर गुस्सा फूटा और नारेबाजी की। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट रहा है और लोग बिजली कटौती से कितना परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास यूपी की जनता के लिए बिजली नहीं है? यूपी के बिजली मंत्री एके शर्मा का दावा है कि पीक आवर्स में यूपी में बिजली की डिमांड बढ़कर 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुँच रही है। रात को 3:19 पर बिजली की उच्चतम मांग में जो बिजली सप्लाई की गई वो 30,276 मेगावाट थी। यानी सरकार खुद मान रही है कि करीब 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली की कमी है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से बिजली ले रही है और बिजली की सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की भीषण कमी बनी हुई है। मंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं कि आपका संयम और सहयोग प्रार्थनीय है, लेकिन जनता कैसे संयम कर ले? 45 से 47 डिग्री के तापमान में जब बिजली ही 6 से 8 घंटे आएगी और रात भर गायब रहेगी तो जनता तो सड़कों पर उतरेगी ही। संयम तो खुद अब बीजेपी के विधायकों का भी जवाब दे रहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने इन्हीं ऊर्जा मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि उनके क्षेत्र में बिजली नहीं मिल पा रही, तुरंत समाधान हो। लिखा है कि आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि समस्या इस साल की नहीं, पिछले कई वर्षों से यही हाल है। विधायक जी ने मंत्री जी को सिंगापुर और जापान का मॉडल भी समझाया है कि कैसे इन देशों में बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए काम किया जाता है। लखनऊ में क्या हाल है देख लीजिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया। लगातार कटौती हो रही है, लोग न सो पा रहे हैं और न कोई काम हो पा रहा है, तो बीती रात लोगों ने सड़क ही जाम कर दी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। पुलिस भी आई लेकिन लोग हटे ही नहीं। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 मई 2026 को लखनऊ का मैक्सिमम पावर लोड 1923.58 मेगावाट दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 20 मई 2025 को बिजली की अधिकतम मांग 1665.46 मेगावाट थी। यानी लखनऊ में बिजली की डिमांड बहुत हाई चल रही है और यही वजह है कि अब खुद बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के कर्मचारियों से नाराज दिख रहे हैं। ये रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अशोक कोरी बिजली विभाग के कर्मचारियों को हड़का रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली नहीं दे रहे।
2: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है लगातार। इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5, 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।
0: अशोक कोरी रायबरेली से विधायक हैं और उनके इलाके में बिजली की सप्लाई का बहुत बुरा हाल है। लोग खुद बता रहे हैं कि 24 में से सिर्फ 4-6 घंटे ही बिजली आती है। लोग विधायक को ही शिकायत करेंगे तो विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी।
3: एक ही बहुत ज्यादा समस्या है, खास तौर पर राही और इधर क्षेत्रों में हमने देखा है कि 4-5 घंटे, 6 घंटे बहुत ज्यादा लाइट आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ रही है।
4: बिजली तो इस समय बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। रात में कितनी बार ट्रिप हो रही है कि इन्वर्टर तो हमें अब तक पूरी तरह से चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, और कम से कम रात में हमको लग 4-5 बार तो जाने ही जाने। अब रात में आदमी एकदम थका हारा गया, लेटा है, मालूम है लाइट है ही नहीं, बार बार आ रही जा रही, लाइट की समस्या रहा है बहुत गंभीर।
2: अच्छा, बच्चों के लिए कितनी दिक्कतें हैं?
4: बच्चे तो
2: छोटे बच्चे हैं, दिन में
4: बच्चे भी बहुत रात में परेशान रहते हैं, कभी उनको 5 मिनट बाद अगर लाइट चली गई तो चल जाते हैं।
0: विधायक जी अभी भी कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली नहीं दे रहे, जबकि सरकार तो अपनी तरफ से बिजली की पूरी सप्लाई कर रही है।
5: लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से ना करने के कारण हम जो सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कल की जो घटना है वो केवल कल की नहीं, लगातार मेरे क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है कि जो लाइनमैन हैं, जो हमारे जेई हैं, एई हैं, उनकी गलतियों की वजह से निर्बाध रूप से जो हम लोग बिजली आपूर्ति देना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, और उसके परिणाम स्वरूप लगातार हमारे यहाँ खास करके डी बिजली घर में, छतों बिजली घर में और करहिया का एक फीडर है, वहाँ पर 100-150 की संख्या में जो जनता है वहाँ पर पहुँच जा रही है, और कोई स्थिति वहाँ पे खराब ना होने पाए आम जनमानस का जो आक्रोश है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए कई बार मैं स्वयं विद्युत घरों पर जा करके वहाँ खड़े होकर के मैंने सुविधाओं को सही कराया है।
0: आज तक ब्यूरो।
6: उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग इस समय अपने पीक पर चल रही है। सरकार दावा कर रही है कि वो दूसरे स्रोतों से बिजली खरीद रही है, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। ग्रामीण इलाकों में तो 24 घंटों में से सिर्फ 6-8 घंटे ही बिजली आ रही है। लू ऐसी चल रही है कि रात को भी गर्म हवाएं हैं, तो ये भी संभव नहीं कि लोग बिजली अगर घर में नहीं है तो बाहर जाकर छतों पर सो जाएं।
0: बिजली कटौती की यह समस्या यूपी के बड़े शहरों और बड़े जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर इलाके में यही हाल है। इसीलिए तो बिजली कंपनियों के खिलाफ लोगों के साथ बीजेपी के विधायकों ने भी मोर्चा खोल लिया है। कानपुर में भी यही हाल है, यहाँ तापमान 45 के पार पहुंच चुका है और इसके साथ ही शहर के कई इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। गुरुवार को बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मेहता ने कानपुर में बिजली देने वाली कंपनी केस्को के दफ्तर ही पहुंच गए, कंपनी के अधिकारियों को ज्ञापन दिया, अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन क्या इसके बाद भी लोगों को बिजली मिलेगी?
7: बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी करा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इतनी कठिनाई आ रही है। मैं 8 महीने पहले जब बद्दर सर्दी थी उस समय लगभग मैं आया था और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती।
0: लोगों की समस्याएं चरम पर हैं। पूरी रात लाइट नहीं आती, लोग सो नहीं पा रहे, छोटे बच्चों के साथ तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिजली का बिल तो हर महीने दे रहे हैं, तो फिर बिजली आ क्यों नहीं रही।
8: तकलीफ झेल रही जनता हमारी इस बेहद गर्मी में, जब मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और इतना तापमान बढ़ा जा रहा है और लोग त्रस्त हो चुके हैं। किसको का कोई काम नहीं, एमडी आई है, अगर वो आप अपना पद नहीं संभाल पा रही, अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रही है। आज उन्होंने एक बयान, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि सीजीएल की लाइन थी वो डैमेज हो गई है, तो अभी तक आपने क्यों जवाब नहीं दिया। 3 दिन से लोग आपके किसको के चक्कर काट रहे थे, आप कोई अधिकारी खुल के नहीं आया। अब 5 दिन जब प्रशासन ने एक नया रूप लिया तब आपने आके एक बहाना दे दिया कि सीजीएल की लाइन ध्वस्त हो गई, तो उसको बनवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब 3 दिन हो गए हैं,
9: पूरी रात लाइट नहीं आती, आज 5 दिन हो गए, हम लोग एक दिन भी नहीं सो पा रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में लोग काम करके आते हैं, सो नहीं पाते हैं, यही समस्या हमारी है।
10: आपने की है किसको?
9: कितनी बार गए हैं, कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पे।
10: क्या अब हम मांग करते हैं?
9: हमें लाइट चाहिए, हमारी व्यवस्था, मतलब जो दिन भर काम करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, हर महीना देते हैं, हर महीना जमा होता है, तो कम से कम घर वाले अगर सो नहीं पाएंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे।
0: लखनऊ में तो बिजली का ये हाल है कि यहाँ अस्पतालों की भी बिजली गुल हो गई है। ये लखनऊ के दुबग्गा का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेट वार्ड में मरीज भर्ती हैं, लेकिन बिजली नहीं है।
11: लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस वक्त हीट वेव है, 45 के पार कई जिलों का टेम्परेचर है। ऐसे में बिजली समस्या बढ़ी और लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल, यहाँ की तस्वीरें आप अगर देखें तो खुद तस्वीरें देखें, खुद समझें और खुद जायजा लें। ये एक पेशेंट है जो इस वक्त यहां पर एडमिट है, लेकिन इनकी मुसीबतें और तब बढ़ गई जब बिजली ही चली गई। जरूर अस्पताल में एक ट्रांसफार्मर था, लेकिन वो ट्रांसफार्मर भी क्या करे जब घंटों दिनों दिन बिजली नहीं आ रही है।
6: विशेष में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
1: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
0: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
2: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
11: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
19: Like I said before, we better own the sins.
20: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
21: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
22: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
20: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
23: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
21: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
20: जहां खबर वहां खबरदार।
24: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you...

0: साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
1: जो कांग्रेस के लोग गए, अभी किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
2: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी, जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे। और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो अब कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पर सामने बहन जी का बंगला है। तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं। मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते अगर होंगी तो।
0: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
3: निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: हालांकि दोनों दल के नेता गोलमोल जवाब देकर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल से भी कम वक्त में अखिलेश का कांग्रेस को बार बार आईना दिखाना कहीं न कहीं उसे सख्त संकेत जरूर दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: ऐसे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही पलों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता सिंह होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट। जबलपुर कोर्ट के मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, सीबीआई करेगी जांच। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा ये है कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। दो हजार 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के राजनीतिक संकेत। बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वाले का फायदा। कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब साथ। बंगाल की कमान संभालने के बाद शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु ने अमित शाह से मुलाकात की। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार गिरफ्तार। एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर इसे किया था नियुक्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां आज सबसे पहले खबरदार करने की जरूरत है त्विशा शर्मा मौत मामले में, क्योंकि यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई न्याय से ऊपर, इंसाफ से ऊपर, कानून से ऊपर हो सकता है। और इस सवाल को पूछने की वजह है कि त्विशा का जो पति है समर्थ सिंह, उसको तलाश करने में पुलिस लंबे समय से जुटी रही, लेकिन आज वो सरेंडर करने पहुंचा। जो बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उसे हिरासत में आज ले लिया गया। समर्थ सिंह 10 दिन से फरार चल रहा था, पुलिस ने उस पर इनाम रखा हुआ था, इसके बावजूद भोपाल पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी और वो अचानक सरेंडर करने पहुंच गया। इसी दौरान त्विशा शर्मा के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी समर्थ सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस अब समर्थ सिंह को लेकर भोपाल निकल गई है।
1: कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा, आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ, जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ, वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: समर्थ सिंह को हिरासत में लिए जाने और सरेंडर की कोशिश करने को लेकर त्विशा शर्मा के पिता जो हैं वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं। आज तक से उन्होंने बातचीत की है और आज तक से बातचीत में जो बातें सामने रखी हैं, बड़ी खबर सामने है। त्विशा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके वकील को मारा गया है। समर्थ सिर्फ ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर सकता था, लेकिन कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके पिता ने कहा कि ये लोग कानून से खेल खेल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।

0: इस पूरे मामले में लगातार पिछले 10 दिन से सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए कि सेशंस जज के कमरे में बैठने को लेकर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, समर्थ सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है, सरेंडर करवाने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें इस बात पर सवालिया निशान लगा रही है कि आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे।
1: गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास, जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप्पी साधिया बैठती। गिरिबाला सिंह भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप जो चीख चीख कर बहुत कुछ बोलते हैं। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
2: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
3: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं,
4: पीड़ित परिवार
5: कहता है।
3: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
5: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
2: स्वागत है सीबीआई जांच का।
1: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं, बल्कि ये मामला सिस्टम रसूख और जांच पर उठते सवालों का बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच जाता है।
3: जवाब देने जा रहे हैं सर, इतनी जॉर्ज साहब इतनी जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
2: अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
3: सर,
2: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
1: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंच जाता। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी बहू पर आरोप लगाती रही, जैसे कि वो घंटों

0: हमें ये अपडेट मिला है कि पीएम टू की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
1: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: कहा ऑडियो की जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
1: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
1: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है त्रिशा की सास गिरिबाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिबाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले, तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
1: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की दरकार है। अगली खबर का रुख हम करते हैं जहां पर धर्म की जमीन पर चार विवाद हम आपको अब बताने वाले हैं। एक एक करके ये तस्वीरें हमारे साथ देखिए कि किस तरीके से सबसे पहली जो तस्वीर है लखनऊ में एक किला ऐसा है जिसे हिंदू पक्ष राजा पासी का किला कहता है, मुस्लिम पक्ष मकबरा कहता है, मस्जिद का दावा करता है। विवाद नमाज पर हो रहा है। धार में अदालत के फैसले के बाद आज जुमे की नमाज नहीं हो पाई क्योंकि अदालत ने कह दिया है कि ये वाग देवी का मंदिर है, दिल्ली में अवैध मदरसे की दीवार को गिरा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी पर होती

0: سیاسی جنگ سے خبردار کرتے ہیں.
1: کیا جو لوگ گائے کو کھاتے ہیں کیا وہ سور کا دودھ پیتے ہیں کیا؟
2: قربانی ہوگی گائے کی بھی قربانی ہوگی بکری بھی قربانی ہوگی.
3: اس سرکار میں وہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ کاؤز کو ماتا بھگوان سمجھتے ہیں.
4: یہ ریلیجیس میٹر ہے, ہمارا حق ہے, دستور میں ہمارا حق بتایا, ہم قربانی کریں گے.
1: گو ماتا کو کٹنے نہیں دیں گے, ہندوؤں کو بٹنے نہیں دیں گے.
5: گائے کو نیشنل جانور کا درجہ دیجیے.
4: گائے کے مطلب کیا ہے, یہ گائے آخر کہاں جائے گی یہ بھی پوچھیے.
6: 28 مئی کو بقرعید کا تیوہار ہے یعنی عید الاضحیٰ, جو مکھی روپ سے پیغمبر ابراہیم کی طرف سے اللہ کے پرتی دکھائے گئے ٹوٹ وشواس, تیاگ اور سمرپن کی یاد میں منایا جاتا ہے. تیاگ اور سمرپن کا وہ تیوہار بھارت میں ہر سال راجنیت کی دوھاری تلوار کی دھار پر آ جاتا ہے, جہاں اپنے فائدے اور دوسرے کی وچاردھارا کے نقصان کی چاہت کے بیچ سماجک شانتی اور سوہارد کی قیمت لگ جاتی ہے. اس وقت دیش کے 3 راجیہ چرچا میں ہیں. اتر پردیش, جہاں کہہ دیا گیا کہ نماز سڑک پر نہیں پڑھی جا سکتی.
1: نماز پڑھنی آوشیک ہے, آپ شفٹ میں پڑھیے, ہم اس کو روکیں گے نہیں, لیکن سڑک پر نہیں. پیار سے مانیں گے ٹھیک بات ہے, نہیں مانیں گے تو دوسرا طریقہ اپنائیں گے.
6: اتر پردیش کے فیروز آباد میں پولیس نے مسلم سماج کے لوگوں کو بلا کر بیٹھک کر لی, سمجھائش دے دی ہے, بتا دیا کہ کن کن باتوں کا دھیان بقرعید پر رکھنا ہے.
7: کوئی بھی پرتیبندھت پشو کی کوئی قربانی نہیں ہوگی, باقی سڑک پہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں تاکہ سوشل میڈیا پہ کوئی لائیو قربانی کرتا ہے تو وہ نہ کرے.
6: دوسرا راجیہ ہے دیش کی راجدھانی دلی, جہاں گوونش کی قربانی بقرعید پر اگر کسی نے دی تو کیس درج ہوگا.
8: دلی میں گوونش, گائے, بچڑا تتھا اونٹ و انیہ پرتیبندھت جانوروں کی قربانی پوری طرح سے غیر قانونی ہے, اور ایسا کرنے پر یا ایسا کرنے کی کوشش کرنے پر اپرادھک معاملہ درج کیا جائے گا, قانونی کاروائی کی جائے گی.
6: لیکن اس وقت بقرعید سے پہلے سب کی نظریں پشچم بنگال پر سب سے زیادہ لگی, جہاں پر بی جے پی سرکار بننے کے بعد, شبھیندو سرکار آنے کے بعد بقرعید پر گائے کی قربانی کو لے کر جب پرانا ہی نیم کہتے ہیں کہ سختی سے لاگو کرا دیا گیا تو کئی طرح کی باتیں سامنے آنے لگی. پشچم بنگال میں اس وقت بقرعید پر گوونش کی قربانی کو لے کر کئی پکش, ایک پکش جو سیدھے کہتا ہے کہ گوونش کی قربانی نہیں ہو سکتی, دوسرا پکش کہتا ہے کہ گائے کی قربانی 1400 سال سے ہو رہی ہے تو اس بار بھی ہوگی, تیسرا پکش کہتا ہے ٹھیک ہے جو سرکار کہتی ہے وہ مانیں گے, چوتھا پکش کہتا ہے کہ اس بار نیم میں چھوٹ دے دو ورنہ پشو پالکوں کو بہت نقصان ہوگا, پانچواں پکش کہتا ہے کہ بار بار مسلموں کے لیے ہی پابندی کیوں لگتی ہے, چھٹا پکش کہتا ہے اتنی ہی چنتا ہے تو گائے کو راشٹریہ پشو کا درجہ کیوں نہیں دے دیتے. اس طرح 6 نظریوں میں بقرعید پر قربانی کو لے کر رسا کشی چلنے لگی ہے.
0: تو سیاست میں الگ الگ رخ آپ کو نظر آئیں گے اس مدے پر, اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پشچم بنگال کے الگ الگ ضلعوں میں جائیں اور جو سامانیہ مسلم ناگرک ہیں ان سے جانیں کہ گائے کی قربانی کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں.
6: جہاں سب سے پہلے بابری مسجد بنگال میں چناؤ سے پہلے بنوانا شروع کر کے دیش بھر میں سرخیاں بٹورنے والے اور اپنی الگ پارٹی بنا کر 2 جگہ سے چناؤ جیتنے والے ہمایوں کبیر کا بیان سننا ضروری ہے.
2: کوئی مسلمان کو گائے کھانے کے منع کرے تو گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کا جیو کر کے وہ منع کر دیجیے, لیکن قربانی تو ہوگا ہی, قربانی کوئی منع کرے گا وہ بھی نہیں سنے گا. وہ قربانی ستا میں آئے شبھیندو ٹھیک ہے, لوگوں کو ان کو پاس ووٹ ڈالا, وہ سرکار چلائے گی, لیکن میرا 1400 سال سے پہلے سے ایک قربانی होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
6: लेकिन जो हुमायूं कबीर की गाय की कुर्बानी को लेकर सोच है, क्या बकरीद पर कुर्बानी को लेकर वही नजरिया बंगाल के दूसरे मुस्लिमों का भी है? कोलकाता में कुर्बानी पर मुस्लिम नागरिकों की राय से आज आप खबरदार होइए।
9: हमारे हुकूमत जो बात बोल रही है कुर्बानी के सिलसिले में, हम लोग हुकूमत का बात को मान के चलेंगे, सारा मुसलमान, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो हुकूमत कर रही है आपको उसका बात मानना होगा। तो हमारी हुकूमत जो हम लोग को हुक्म देगी, हम लोग इंशाल्लाह हुकूमत का बात को मानते हुए अपने तमाम धर्म का पालन करेंगे हम लोग, ठीक है जी। ऐसा कोई काम नहीं करेगा मुसलमान हिंदुस्तान का जिससे हमारे हुकूमत को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को या हमारे अमन को खतरा पहुंचे।
6: पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम नागरिक जो बकरीद पर पहले कुर्बानी के तौर पर गोवंश का इस्तेमाल करते आए, वो अब की बंगाल में सख्त हुए नियम के बाद ये कहते हैं कि सरकार ने गाय की कुर्बानी रोकी है तो वो नियम मानेंगे।
10: गाय को हम लोगों ने जो है तर्क कर दिया, वो गौ माता को जो है आप लोग जो है घर में रखें, उनको बढ़िया से जो है पूजे, और हम जो है उसका ऑप्शन जो है हमारे पास खस्सी है, हम खस्सी कुर्बानी कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौम हमारा जो है इस पर मुतमईन है और जो है बिल्कुल इत्मीनान रखे हुए हैं हम जो है, और कोई भी बात जो है अवहेलना नहीं करेंगे। जो बोल दिया है सरकार ने, हम उस पर जो है 100% जो है मान करके चलेंगे।
11: सरकार जहाँ तक मसला कुर्बानी का, तो वो जो है हम लोग कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ में है और उसका ऑप्शन भी रखा है। इस्लाम में, दुनिया में, इस्लाम में हर चीज सहूलियत बहुत तरीके से दिया। आपने कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आप सब सहूलत हमारे लिए करके रखा है, ये नहीं करना तो ऐसे करना है।
6: आपको सुनकर हो सकता है कि लगे कि मुस्लिम नागरिक तो फैसले पर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर तक इनके साथ बात करने पर भीतर की नाराजगी जाहिर होने लगती है। शायद मुस्लिम नागरिकों को ये लगता है कि रह रहकर चुनकर उनके खिलाफ जानबूझकर पाबंदी लगाई जाती है।
12: सरकार ने सोचा था मुसलमान रास्ते पर आएंगे गाय के लिए, सरकार ने सोचा था रास्ते पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम लोग रास्ते वास्ते पे नहीं आने वाले। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, तदबीरें सब सरकार की उल्टी पड़ चुकी हैं। हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सबसे ज्यादा एहतराम अगर करता है कोर्ट का, आइन का, संविधान का, तो उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत करता है।
13: अगर कुर्बानी की बात आई तो कुर्बानी में हमारे अल्लाह ताला ने ये अवसर रखा है कि बड़े जानवर की कुर्बानी देना है, जायज समझते हैं, तो उसका ऑप्शन खस्सी के तौर पर यहाँ भारत सरकार में ये तैयार है और हम लोग देते भी हैं बड़े पैमाने पर, और ये चीज जारी भी रहेगा, हुकूमत के तरफ से भी आया। लेकिन ये चीज है कि हमारे लिए पाबंदी रहे और हुकूमत कह रहे हैं कि स्पॉट करे, तो ये चीज नहीं होगा। हम कम खाते हैं और स्पॉट ज्यादा होता है।
12: अब कल को बोल देंगे कि आप दाढ़ी काट दीजिए, हम काट देंगे। कल को बोल दे मुसलमान कपड़ा नहीं पहनेगा, हम नंगे घूमेंगे। हम लोग सरकार का बहुत एहतराम करते हैं भाई, हम लोग को एहतराम कर लेने दीजिए। सरकार के बारे में हम लोगों से मत पूछिए।
6: अब ये बयान सुनकर ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या किसी तरह की ज्यादती की जा रही है, क्या गोवंश की कुर्बानी पर रूल सख्त करने से मुस्लिम नागरिकों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? तो यहाँ समझ लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध से जुड़ी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को ही कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा, खुले सार्वजनिक जगहों पर किसी भी पशु की कुर्बानी पूरी तरह बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
3: हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स, उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउज को माता भगवान समझते हैं।
6: अब सवाल है कि जिस कुर्बानी से तौबा करते खुद मुस्लिम नागरिक नजर आते हैं, क्या उस पर केवल राजनीति की वजह से ही हल्ला मचा हुआ है?
9: आज जो माहौल पैदा हो रहा है सियासत के अलावा कुछ नहीं है।
0: दरअसल 13 मई को बंगाल सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, इसमें गो हत्या को लेकर जो 1950 का कानून है और इसके साथ ही 2018 के का कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है उसका हवाला दिया गया है। अब अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गोवंश की हत्या अगर की जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान है, और सजा के प्रावधान के तहत या तो 6 महीने की जेल या फिर 1,000 रूपये जुर्माना या फिर दोनों। तो अब बहुत कड़ाई से इसके पालन करने की बात की जा रही है, और इसीलिए जो कुर्बानी के लिए गाय बेचने वाली जो बाजार है वहां पर आपको सन्नाटा इस समय नजर आएगा।
14: পশ্চিম বাংলায় সেই সংখ্যা 7 কোটির বেশি, তারা খুব কষ্ট পেতেন মনেতে, কাউকে বলতে পারতেন না। আইনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে হিন্দু সমাজকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এটা করা হতো। আইন আছে, সেই আইনকে আমরা সবার সামনে রেখেছি, 4 ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাকে প্রচার করেছি, আর সবাই যাতে আইন মানেন আমরা আবেদন করেছি, আমি বৈঠক করেছি, এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিএমদেরকে যে পুরোপুরি যাতে আইন মানা হয়।
6: पश्चिम बंगाल में जैसे इस बार गोवंश की कुर्बानी को लेकर पहले ढीले चलते कानून को सख्त किया गया, बीरभूम के पशु बाजार से गोवंश गायब हो गया, केवल बकरा और दूसरे पशु बिकते दिखे। मुर्शिदाबाद में बकरीद पर इस बार गोवंश बेचकर पैसा कमाने वाले चिंता में डूब गए। हावड़ा में पशु पालने वाले कहने लगे इस बार अगर कुर्बानी में गोवंश नहीं बिकने दिया तो फिर परिवार आर्थिक संकट में आ जाएगा। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में जब ऐसे ही एक बाजार में आज तक संवाददाता राही हल्दर पहुंचते हैं, जहां कभी बकरीद से पहले हर साल हजारों की तादाद में गोवंश खरीदे बेचे जाते थे, वहां अब उंगलियों पर गिनती लायक गोवंश बिकता नजर आया, वो भी केवल वही जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट बन पाया, मतलब जो गोवंश कानूनन बिकने लायक था। इसकी वजह से दावा है गोवंश बेचकर कमाने वाले बंगाल में परेशान हो गए,
15: मुश्किल में पड़े हैं बहुत सारे गायों के जो व्यापारी है वो व्यापारी। हम अभी जहां पर खड़े हैं वो है एक गाय का हाट। यहां पर ही जो दूसरे टाइम था, जो पिछले साल भी बकरीद के पहले यहां का बहुत ही तादादों में गायों का व्यापार होता है था, लेकिन इस साल पूरा इन लोगों का जो व्यापार है ये व्यापार एकदम बंद होने की कगार में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकार का नया नियम लागू किया गया है उससे लोग गाय खरीदने कम आ रहे हैं, और ये जो गाय का हाट है ये गाय का हाट एकदम एकदम दूसरी साल यहाँ पर जो हजारों की तादाद में गायें बिकते थी इस साल ये पूरा खाली दिख रहा है, और सभी जो ये इस व्यापार के साथ जुक्त है चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इस सभी के माथे पे अभी दुश्चिंता घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग लोन लेके ये व्यापार करते थे।
16: कस्टमर नहीं आ रहा है, कहाँ से माल बिकेगा, दुकानदार भूसी नहीं दे रहा है, बिचाली नहीं दे रहा है, लाख टका देना है हम लोग का, लोग जो बाड़ी आ रहा है कैसे देगा, हम लोग बोलता है माल बिका नहीं कैसे देगा हम लोग, वो लोग जोर कर रहा है बंधन के लोन में लोग आ रहा है, सूद का लोन लोग आ रहा है कैसे देगा हम लोग, ग्रुप बॉय लोन ये सब माल बिकेगा तब ना टका देगा हम लोग, नहीं दे रहा पा रहा है कैसे चलेगा। कुर्बानी ईद उपलक्ष्य इतना माल सब चला जा रहा है, आज माल पूरा खड़ा है खटाल पर।
6: यह हाल बंगाल में इस वक्त एक इलाके में नहीं बल्कि हर जगह है। हावड़ा में बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार के फैसले का सच जानने हम पहुंचे तो बबलू खान जैसे पशु बेचने वाले दुखड़ा रोने लगे।
17: इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे, हम इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मैंने आपका सूद पे पैसा लिए हैं, बीवी का जेवर बंधक है, और भी लोन वगैरह लिए हैं, प्लस देखिए सर इधर दिखाइए आप, इतना मैंने जो आदमी काम कर रहा है, इन लोगों का 3 महीना 4 महीना का सैलरी बाकी है। हमारा अगर जानवर नहीं बिकेगा तो हम कहां से इनको देंगे? हमारा तो लास्ट पोजीशन ये हो जाएगा कि अगर हमारा जानवर नहीं निकलेगा सर, तो हमको या तो फांसी लगाना होगा या नहीं तो बीस खा के मरना होगा।
6: इस वक्त प्रशासन ने भी दावा है इतनी सख्ती कर दी, जिसके बाद पहले ही गोवंश जिनके पास हैं उन्हें गिन कर रख लिया जा रहा है, ताकि कोई चोरी छिपे भी ना बेच सके।
17: एकाक जो बिका था वो भी बोल रहा है कि मेरा पैसा वापस दीजिए, नहीं पैसा देना है तो आप रख लो, मगर हम गोरू नहीं ले जाएंगे। यहाँ सर बजरंग दल वाला के धमका रहा है, प्रशासन आके बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे पास इस साल से कुर्बानी नहीं होगा। कोई दुधारू जानवर नहीं, हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध जब तक खत्म नहीं होगा हम क्यों देंगे सर? दूध वाला पशु तो हम लोग खुद खरीद के लेके आते हैं, मगर जो दूध खत्म हो गया इस जानवर का हम क्या करेंगे आप बताइए। वो लोग आके सीधा धमका रहा है कि इतना गोरू गिन के जा रहे, कुर्बानी का बाद भी इतना गोरू देखना चाह रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तो इसके बाद में हम तुम लोग के खिलाफ और मैंने जो भी हो कार्रवाई करेंगे।
18: सरकार हम लोग को हेल्प करेगा ये करेगा तो हम लोग पूछना पूछेगा, नहीं तो ये पालन नहीं कर पाएगा। ऐसा बात
6: तय है कि बकरीद पर बंगाल में इस बार बदलाव बड़े स्तर पर नजर आने वाला है, जहां बेचने वाले तनाव में और खरीदने वाले खुद ही बाजार तक नहीं पहुंच रहे हैं।
0: तो हमने आपको दिखाया कि आम लोगों की राय क्या है, जो बाजार है उसकी राय क्या है, और अब एक सवाल कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद है, क्या कुर्बानी की अलग अलग व्याख्या उनके बीच भी है? ये सवाल पूछने की वजह है जो बंगाल के पूर्व मंत्री रहे हैं और जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल प्रमुख रहे हैं, उनकी तरफ से आया एक बयान है।
19: आपको क्या लगता है इस कुर्बानी को लेके सरकार ने जो रवैया अपनाया है उस रवैये के बारे में आपका क्या राय है?
20: सियासत के बारे में हमको तकलीफ है, सियासी तवा पर गरम रोटी सेकने की कोशिश मत करें, ये दुख की बात है। ये पता चला है कि उनके अंदर कुछ है नहीं सलाहियत, ये गरम करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हम सियासत में नहीं जाएंगे, ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। बंगाल के गाय में इकोनॉमी डेवलप होता है और यूपी के गोरू में इकोनॉमी नीचे गिरता है, यूपी की स्थिति अलग, नागालैंड में लोग खाते हैं, मणिपुर में खाते हैं, मिजोरम में खाते हैं, त्रिपुरा में खाते हैं।
19: कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं करके किसी और जानवर की कुर्बानी करने में क्या हर्ज
20: है? बताओ, गाय भी गोरू है, बलद भी गोरू है, आज जो बाज है वो भी गोरू है, तो गाय के मतलब क्या है? ये गाय आखिर कहाँ जाएगी ये भी पूछिए। अगर कोल्लानी में गोरू पालन होता है, मुझे अंदाजा नहीं है, अगर हम समझे कि 200 गोरू है गाय, 7 साल तो दूध नहीं देगी, कहाँ भेजेंगे उसको? चुपचाप कसाई खाने में भेज देता है, पता नहीं चलता जी। तो ये तो हठधर्मी है, हम लोग गुरु के बारे में कोई बदतमीज तो करते नहीं है। यूपी में तो कान में भी हमने देखा वो एक पहचान लगा हुआ है, आधार बनाइए फिर देखिए, छोड़ दीजिए बंगाल के गुरु को रास्ते पर, या बहुत हजार बीघा लगाइए, गोरू पालन कीजिए, फाइल तैयार कीजिए, कब जन्म होता है, साल साल में उनका सेहत देखिए, फिर रिव्यू कीजिए, ये तो आपको करना पड़ेगा, कौन रोकता है? अब तक 70-76 साल में हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के नाम पर तो शपथ हुआ है जी, उनके स्टैचू पर आपने फूल के माला चढ़ाए। मैं पूछना चाहता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर कभी कुर्बानी में गाय में उनकी जिंदगी में झगड़ा किया है?
0: पश्चिम बंगाल से ही आती एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिन विक्रम साहू के यहां पर झालमुरी खाई थी उनको धमकियां आई, जिसके बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। विक्रम साहू को पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिली, इसके बाद ये सुरक्षा उनको दी गई है और उनकी दुकान के सामने केंद्रीय बलों के जवान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो धमकियां आने की खबर आई थी और अब ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा उनको मुहैया करा दी गई है। और अब धार्मिक विवाद दिल्ली से, जहां पर एक निर्माणाधीन ढांचे को गिरा दिया गया। बीजेपी विधायक और बीजेपी के जो मंदिर प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, उनके द्वारा इसे गिराया गया और यह बताया गया कि एक अवैध मदरसे का निर्माण हो रहा था।
5: यहाँ पर रात को आकर के इनके लोग टोपियां पहन करके इसकी चिनाई खुद करते हैं, क्योंकि मिस्त्री डरते हैं यहाँ नहीं आएंगे। तो ये मैं बनने नहीं दूंगा। आज आपके सामने हमने अनलीगल जो ढांचा जो बन रहा था, मंदरसा जो बन रहा था, उसको दीवारों को गिरा दिया है।
21: छपुर बस्ती के उसी डीडीए ग्राउंड में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ देर पहले स्थानीय विधायक करनैल सिंह ने अवैध निर्माण को गिराया। ऐसा आरोप लगाया गया था कि जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से, कि यहाँ पर मेरे पीछे जो अवैध निर्माण देख रहे हैं कि यहाँ पर मदरसे का जो निर्माण है वो किया जा रहा था। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुंचा और जांच की जा रही है कि ये अवैध निर्माण आखिरकार किसकी तरफ से किया जा रहा है। विधायक की अगर बात की जाए तो उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने 3 महीने पहले इसकी शिकायत की थी, बावजूद उसके ये अवैध निर्माण नहीं रुका। आज जो विधायक है उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर ये जो अवैध निर्माण है इसको यहां पर गिरा दिया। राजेश खत्री, आज तक।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 2027 के चुनावों से पहले क्या विपक्षी एकता का जो सियासी भविष्य है वो अधर में लटक गया है। कांग्रेस की तरफ से मायावती से मुलाकात करने की कोशिश के साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से ये बता दिया गया कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था उन्हें हराया है, और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
6: और अब मौसम की गर्मी के बाद दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बुधवार को सबसे गर्म रात 14 साल की दर्ज की गई। लेकिन हम आपको दिखाते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में भले तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो लेकिन दिल्ली के लोग 65 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेल रहे हैं।

0: गर्मी वो नहीं है जो तापमान में दिखती है, गर्मी वो नहीं जिसे हम सिर्फ अपनी आँखों से देख पाए या महसूस कर पाए। गर्मी की गर्माहट हर किसी के लिए अलग होती है, कुछ के लिए तो बहुत ही भयानक।
1: अगर ये ब्लू है ना डॉट, पेड़ की छाया आ रही है ना, मैं अगर यहाँ ले आऊँ, 36 दिखा रहा है यहाँ, है ना, 36 से 37 के बीच, पर अगर जहाँ धूप का एक्सपोजर ज्यादा है वहाँ मैं ले जाऊँ तो 48 हो जाएगा।
0: दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, लेकिन हकीकत केवल इतनी नहीं। अगर हम कहें कि दिल्ली वाले 65 डिग्री से ज्यादा की गर्मी से दो चार हो रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर जब तापमान 45 डिग्री के पार दिख रहा हो तो फिर 65 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का टॉर्चर दिल्ली वाले कैसे अनजाने में सहने को मजबूर हैं? ये समझने के लिए हमने थर्मल कैमरे की नजर से आज गर्मी को देखा है, जो दिखाता है कि तापमान कितना है और असल में गर्मी का एहसास कितना है। ये रंगों से गर्मी को मापता है। अगर किसी व्यक्ति और सामान के आसपास गर्माहट ज्यादा है तो गहरे लाल पीले रंग दिखते हैं। कम गर्मी को नीले और जामुनी रंग में दिखाया जाता है। ग्रीन पीस एनजीओ के थर्मल कैमरा और टेम्परेचर मीटर की मदद से आज तक ने यह जानने की कोशिश की है कि सतह का वास्तविक तापमान कितना है और जमीन पर गर्मी की असल स्थिति क्या है।
2: मैं ये रोड देख सकता हूँ, हाँ। इसका कितना तापमान दिखा रहा है?
3: जो इस टाइम इसका सरफेस टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 62 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 63 डिग्रीज दिखा रहा है, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है। लाइक 60 से नीचे तो जा नहीं रहा है, 62, 62.5, 62.8, 62.9, और अब यहाँ आएंगे तो 64 हो रहा है।
0: तो दिल्ली के नंद नगरी में तापमान की असलियत थर्मल कैमरे में अलग है, मतलब यहाँ असली गर्मी दावों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में जहाँ पर पेड़ है वहाँ गर्मी कम, ये थर्मल कैमरे में भी दिखता है। इसे आप भी देखिए,
3: अभी जो थर्मल कैमरा दिखा रहा है 44 दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है, बीच में 43 भी दिखा रहा है।
2: तो कहीं ना कहीं आपने साफ तौर पर देखा कि बाहर जब हम शूट कर रहे थे ओपन में एकदम सूरज की रोशनी के नीचे, तो वहाँ जो सड़क का सरफेस टेम्परेचर था वो 60 प्लस था, पर जैसे हम कुछ मीटर आगे आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे दो बड़े पेड़ लगे हूँ, उनका सीधा सीधा असर सरफेस टेम्परेचर पर देखा जा रहा है कि जहाँ जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास है सरफेस का, तो साफ तौर पर ये बयां करता है कि कैसे पेड़ प्रदूषण साथ के साथ गर्मी दोनों से निपटने के लिए कितने कारगर हैं।
0: लेकिन जहाँ पर कोई शेड नहीं, कंक्रीट, वहाँ पर तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा, इतना ज्यादा कि कोई भी जल जाए।
2: गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, स्टील की बनी हुई गाड़ी है, लोहे की बनी हुई गाड़ी है, तो इसका तापमान, इसके सरफेस का तापमान क्या होगा, क्योंकि गाड़ी सीधा सीधा धूप में समय खड़ी है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धूप की रिफ्लेक्शन भी इस पर पड़ रही है, पर थर्मल इमेजरी के जरिए हम जानना चाहेंगे इसके सतह का क्या तापमान है। तो मैम क्या तापमान दिखा रहा है आपका थर्मल कैमरा?
1: अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखते हैं इस डॉट के जरिए तो वो हमें दिखा रहा है 59 एंड 62 तक जा रहा है जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ठीक गाड़ी के ऊपर अगर आप देख सकते हैं।
0: तो भले ही तापमान 45-46 डिग्री के आसपास पहुंचे, लेकिन कंक्रीट का जंगल बन चुकी दिल्ली में रहने वाले 65 डिग्री तक की गर्मी झेलने को मजबूर कहे जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी गर्मी, वो चाहे घर के अंदर खाना बना रही गृहिणी हो या फिर सड़क पर सामान बेच रहा कोई रेहड़ी पटरी वाला। थर्मल कैमरा हमें बताता है भले ही आसमान से गर्मी बरसाते सूरज की तपिश में अंतर ना हो, फिर भी गर्मी सभी के लिए समान नहीं है, गर्मी का एहसास सबके लिए अलग अलग है।
4: खबरदार में अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते।
8: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
9: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
10: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
11: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
10: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
12: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
13: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
14: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
13: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
16: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
16: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
20: मौसम विभाग ने कहा है कि इस

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
5: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पैसा बाजार CPL में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
1: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Hint, बड़े आराम से। Vimal, बोलो जुबां केसरी।
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Summer Cool Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Summer Cool Cooler, life बनाए wonderful.

0: एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ, ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। एक दिन पहले संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया, पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी।
1: जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाए।
0: इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं वो आर्थिक और सामरिक बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ युद्ध की आशंका है, दूसरी तरफ जेब पर बढ़ता बोझ। अमेरिका और ईरान के तनाव ने पूरी दुनिया को एक बंद चेंबर में घुटने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे हफ्ते रुपए ने डॉलर के मुकाबले जबरदस्त गोते लगाए, गिरावट का खौफनाक रिकॉर्ड बना जिसने देश के हर नागरिक और नीति नियंताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इसी हफ्ते टूटकर लाइफ टाइम लो के स्तर को क्यों छू गया और ये संघर्ष कैसे लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि जैसे रुपया गिर रहा है देश के लिए आयात करना महंगा सौदा बन जाता है। और इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों को लेकर होने वाली बड़ी सुनवाई के बारे में बताएंगे। एक ऐसे बड़े केस की दोबारा सुनवाई होने वाली है जो देश की सियासत और सनातन की दिशा बदल सकता है। ये मामला है मंदिरों पर हद से ज्यादा सरकारी नियंत्रण का। लोग चढ़ावा देते हैं भगवान को, मंदिर को, लेकिन पैसा कहां जाता है? साल 2012 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के उन कड़े सरकारी कानूनों को चुनौती दी जिसके तहत मंदिरों के चंदे से लेकर मंदिर के प्रशासन तक सरकार का सीधा कब्जा है। हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है कि जब मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में सरकारी दखल नहीं होता तो सिर्फ हिंदू मंदिरों के दान और संपत्ति पर सरकारों की नजर क्यों है? अब देश के सैकड़ों अमीर मंदिरों के हक की यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। 24 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मंदिरों पर सरकार का हक रहेगा या नहीं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अब चीन नई सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के लिए मंजूर किए गए $14 बिलियन के पैकेज पर रोक लगा दी है। ये वही पैकेज है जिसके तहत अमेरिका ताइवान को नए और आधुनिक हथियार देने वाला था। ये रोक तब लगाई गई जब पिछले हफ्ते चीन ने बीजिंग दौरे पर आए राष्ट्रपति ट्रंप से ये कहा था कि वो ताइवान के मामले में दखल ना दे। इस धमकी के बाद अमेरिका झुक गया और उसने ताइवान को हथियार देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति भी चीन के दौरे पर आए। उन्हें उम्मीद थी कि चीन नई गैस पाइपलाइन के लिए उनके साथ समझौता करेगा। जो तस्वीरें आई वो शक्तिशाली थी। इन तस्वीरों से चीन और रशिया ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। लेकिन यहां भी चीन ने रशिया के साथ गैस पाइपलाइन की डील नहीं की। चीन ने अमेरिका को यह बताया कि अब वो उसकी बराबरी पर खड़ा है और रशिया को यह बताया कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। और इन्हीं घटनाओं ने आज वैश्विक राजनीति के पूरे समीकरण बदल दिए हैं।
1: अगर वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते कद को समझना हो तो इससे बेहतर तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। साल था 1979। चीन के तत्कालीन वाइस प्रीमियर डेंग शियोपिंग अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस वक्त चीन की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। डेंग शियोपिंग चाहते थे कि अमेरिका उनका सहयोग करे और चीन की आर्थिक तरक्की को आसान बनाए। उसी दौर में ये तस्वीर खींची गई जब डेंग शियोपिंग अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का झुककर अभिवादन कर रहे थे। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ चीन भी बदल गया। आज 2026 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आए तो चीन झुककर अभिवादन नहीं कर रहा था बल्कि वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था।
2: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: ये अमेरिका को चीन का एक कूटनीतिक संदेश था कि अब वो दिन लग चुके हैं जब दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता था जिसमें अमेरिका ही इकलौती महाशक्ति होती थी। लेकिन अब ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बदल रही है और आज जो हुआ है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस अमेरिका ने दशकों तक ताइवान को चीन के खिलाफ एक लिवरेज की तरह इस्तेमाल किया उसी ताइवान पर आज अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हुंग काओ ने सीनेट में यह ऐलान किया है कि अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों की सप्लाई रोक रहा है।
3: We've encouraged Taiwan to buy arms from us, and all of a sudden there's a pause.
4: Chairman, I have not heard, I have not spoken to the Taiwanese. However, we have done some military, foreign military sales to them, and it's just right now we're doing a pause. In order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty, but we're just making sure we have everything. But then the foreign military sales will continue when the administration deems necessary, sir.
1: जिन हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने रोकी उनके लिए $14 बिलियन का पैकेज मंजूर हुआ था और इससे सबसे ज्यादा परेशानी चीन को थी। चीन का कहना था कि अमेरिका ताइवान को हथियार देकर उसके साथ अपने रिश्ते कैसे सुधार सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले हफ्ते बीजिंग के दौरे पर गए तब भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा। इस धमकी पर तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन आज ताइवान को हथियारों की सप्लाई रोककर अमेरिका ने सब क्लियर कर दिया। अमेरिका ने बता दिया कि मौजूदा वक्त में वो चीन को खुश रखना चाहता है और इसके लिए अगर ताइवान को हथियारों की सप्लाई भी रोकनी पड़े तो वो भी अमेरिका करने के लिए तैयार है।
5: 台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定。ताइवान
1: और चीन पर अमेरिका की नीति में ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है और पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन से तो कुछ लेकर नहीं आए, उल्टा चीन के लिए उन्होंने ताइवान पर अपनी नीति ही बदल डाली। ये कूटनीति के चेस गेम में चीन की पहली जीत है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आए। शी जिनपिंग और पुतिन के हैंडशेक की ऐसी तस्वीरें आईं जो अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रही थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि चीन और रूस के संबंध भी अपने सबसे मजबूत दौर में हैं, लेकिन चीन ने यहाँ भी एक दांव खेला। राष्ट्रपति पुतिन यही सोच रहे थे कि चीन इस बार गैस पाइपलाइन की परियोजना को अपनी मंजूरी दे देगा। ये 2600 किलोमीटर लंबी वो गैस पाइपलाइन है जो रूस के पश्चिमी साइबेरिया को मंगोलिया और चीन से जोड़ने वाली है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इससे रूस हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस चीन को भेज सकता है। ये 525 टेरावाट घंटों की ऊर्जा के बराबर है जो ब्रिटेन जैसे देश की साल भर की बिजली खपत से भी दोगुना है। और पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि इस गैस पाइपलाइन पर चीन राष्ट्रपति पुतिन के बीजिंग दौरे पर जरूर सहमति देगा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। पहले रूस की नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश थे, लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बना ली। इसके कारण रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रॉम को भारी नुकसान हुआ और रूस यूरोप की जगह नए खरीदार ढूंढने लगा। यहां नए खरीदार के लिए रूस के पास चीन से अच्छा विकल्प नहीं था। रूस ने यही सोचा कि अगर कल को चीन उसकी गैस का बड़ा हिस्सा खरीदने लगा तो उसकी यूरोपीय देशों पर बनी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यहां चीन को इसमें फायदा नहीं था। चीन की गैस अभी जहाजों में लाद कर लाई जाती है और ये जहाज जिन दो रास्तों से गुजर कर आते हैं वो दोनों ही संवेदनशील हैं। इनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब चीन भी यही सोच रहा था कि अगर रूस से सीधी पाइपलाइन उसके देश तक पहुंच गई तो समुद्र के रास्ते गैस लाने का झंझट खत्म हो जाएगा। और राष्ट्रपति पुतिन भी यही सोचकर बीजिंग आए थे कि जब चीन का इस प्रोजेक्ट में फायदा है तो वो मना क्यों करेगा या इसे क्यों ही लटकाएगा। लेकिन यही रूस से गलती हुई। रूस ये भूल गया कि चीन इस वक्त सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो जानता है कि इस पाइपलाइन के लिए रूस के पास ज्यादा समय नहीं है और वो इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता, जबकि चीन के पास समय ही समय है और वो इसके लिए इंतजार कर सकता है। और सब जानते हैं कि कूटनीति वही जीतता है जो देश जल्दबाजी में ना हो और जो इंतजार कर सकता हो। और इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन के बीजिंग दौरे पर ये डील हो नहीं पाई। यानी एक तरफ चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप को झुकाया और उन्हें ताइवान पर अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन को भी बीजिंग बुलाकर उनका भरोसा जीता, लेकिन उनके साथ गैस पाइपलाइन की डील पर हस्ताक्षर नहीं किए। और यही बातें बताती हैं कि चीन इस बार कुछ अलग कर रहा है। चीन दुनिया को खुद पर निर्भर बनाना चाहता है, लेकिन वो खुद किसी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर रूस पाइपलाइन के रास्ते चीन को गैस की आपूर्ति करना शुरू करता है तो चीन रूस की गैस पर निर्भर हो जाएगा और ये निर्भरता रूस के लिए लिवरेज बन जाएगी, जिसमें चीन अभी फंसना नहीं चाहता। लेकिन इसी दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया को चीन पर निर्भर बनाकर रखना चाहते हैं। ये बात बहुत कम लोगों ने समझी कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कंपनियों के सीईओज को अपने साथ बीजिंग लेकर क्यों आए थे, लेकिन हकीकत में यहाँ भी चीन अपनी ताकत को दिखा रहा था। जैसे इलॉन मस्क की टेस्ला अमेरिका में

0: रहे हैं। सबसे पहले इस साल की शुरुआत में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग, फिर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन इस वक्त खुद को दुनिया को नए पावर सेंटर के रूप में पेश कर रहा है। दुनिया चीन के इस उभार को सिर्फ अमेरिका के विकल्प तक सीमित मान रही है, लेकिन हकीकत में ये पावर शिफ्ट काफी कुछ कह रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं का सबसे तेजी से विस्तार कर रहे हैं, वो देश चीन है। ईरान युद्ध में चीन ने यही दिखाया कि वो शांति की तरफ खड़ा है और वो अमेरिका के युद्ध थोपने के तरीकों का विरोध करता है, लेकिन हकीकत में इसी चीन ने हथियारों से लेकर मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल के लिए ईरान की खूब मदद की है। चीन ने ऊपर से यही दिखाया कि वो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार पक्ष बन सकता है, लेकिन अंदर से चीन की नीतियों को सब जानते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया के कुल निर्यात में लगभग 15% हिस्सेदारी है। हर 100 में से 15 रुपए का सामान चीन से ही बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचता है, और अपनी इसी एक्सपोर्ट पावर को चीन ने हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया है। चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दुनिया को ब्लैकमेल करना हो, या हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करना हो, चीन ने दुनिया के सामने अब तक चुनौतियां ही पेश की हैं। और आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश और खासकर यूरोपीय देश अमेरिका से शिफ्ट होकर चीन की ओर जा रहे हैं, तो यहां दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीन सुपर पावर बन गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा।
1: 全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪。
0: दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति एक ही महीने में स्टेट विजिट के लिए चीन आए। यही नहीं, कनाडा के किसी प्रधानमंत्री ने 9 साल बाद पहली बार चीन का दौरा किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूरे 8 साल बाद चीन की स्टेट विजिट पर आए, और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए ये चीन की पहली आधिकारिक यात्रा थी। और ये सारे दौरे इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका की नीतियां दुनिया को असहज कर रही हैं और उन्हें इस वक्त चीन एक विकल्प के रूप में नजर आ रहा है। यानी चीन दुनिया का नया पावर सेंटर तो बन रहा है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि दुनिया को चीन पर भरोसा है। इसका कारण ये है कि दुनिया का अब अमेरिका के साथ अविश्वास बढ़ रहा है। अमेरिका की मनमर्जियों और अनिश्चितता से भरे फैसलों ने दुनिया को मजबूर किया है कि वो उसे छोड़कर किसी दूसरी महाशक्ति को अपना आधार बनाए, और इसके लिए चीन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन आज यहाँ दुनिया को ये सोचना होगा कि अगर चीन सुपर पावर बन भी गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा, और क्या चीन पर दुनिया कभी भी पूरी तरह विश्वास कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाल में 2 बार कीमतों में इजाफा हुआ, इनमें भी वृद्धि की आशंका है। ये आग सिर्फ भारत एक तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक भयंकर तेल संकट की चपेट में है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर है। इस चौतरफा आर्थिक संकट के बीच वॉशिंगटन से आए संकेतों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो फिर से युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जिससे दुनिया में फ्यूल, महंगाई, इन सब का संकट बढ़ते जा रहा है।

0: इससे भी बड़ा सैन्य हमला कर सकता है।
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives.
0: पलटवार में ईरान ने भी पूरी दुनिया को दहलाने वाली चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगी। इस जुबानी जंग का सीधा असर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है और रविवार तक बात नहीं बनी तो दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सस्पेंस और युद्ध के हालात ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे ज्यादा तपिश भारत की तरफ बढ़ रही है। दुनिया पर जो दबाव है सो है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के रास्ते पर जंग का ताला लगने का सीधा मतलब है भारत में महंगाई का महाविस्फोट। सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल अप्रैल के महीने में भारत का क्रूड इम्पोर्ट पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 4.3% घट गया है, यानी हमने तेल कम मंगाया, लेकिन तेल कम खरीदने के बावजूद भारत सरकार का तेल खरीद का बिल पूरे 50% बढ़ गया है, यानी कम माल के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो जो तेल हमें 100 रुपए में मिल जाता था, अब उससे भी कम 150 रुपए में मिल रहा है। अकेले अप्रैल महीने में ही देश को तेल आयात पर 50% ज्यादा विदेशी मुद्रा फूंकनी पड़ी। इस आफत के पीछे दो बड़े विलेन हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, और दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर कमजोर होना। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद डॉलर में होती है, इसलिए रुपए के कमजोर होने से भारत को डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से बहुत ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। 27 फरवरी को यानी युद्ध जैसे हालात बनने से पहले की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.95 के स्तर पर था, लेकिन आज ईरान और अमेरिका के संकट के बीच रुपया ऐतिहासिक रूप से टूटकर 95.95 पर झूल रहा है। महज 2.5 महीनों के भीतर रुपया करीब 5.5% तक टूट चुका है। रुपया जितना कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल उतना ही बेकाबू होता जाएगा। रुपए के गिरावट की मार सीधे रसोई पर पड़नी शुरू हो गई है। खाड़ी संकट की शुरुआत से लेकर अब तक भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर जो चोट पड़ी है उसकी लिस्ट देखिए। बीते 15 और 19 मई को पेट्रोल 3.87 रुपए और डीजल 3.91 रुपए तक महंगा हो गया। सीएनजी के दाम भी 3 रुपए बढ़ गए। गाड़ियों के ईंधन से अलग 14 मई को दूध के कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 13 मई को सोने पर आयात शुल्क 9% तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए की सीधी मार पड़ी तो कमर्शियल सिलेंडर देखते ही देखते 4 बार में कुल 1,331 रुपए तक महंगा हो चुका है। ईरान संकट की मार सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ रही बल्कि अमेरिकी डॉलर के सामने पूरा एशियाई बाजार घुटनों पर आ गया है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस तनाव के बाद फिलीपींस का पैसो और इंडोनेशियाई रुपया सबसे ज्यादा टूटे हैं, जिनमें करीब 6-7% तक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। भारत के रुपए के साथ साथ थाईलैंड का बाट और साउथ कोरिया का वॉन भी डॉलर के मुकाबले 5% से ज्यादा का गोता लगा चुका है। वहीं एशिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली करेंसी जापानी येन भी इस संकट में संभल नहीं पाई और वो भी करीब 2.5% कमजोर हो चुकी है। साथ है, खाड़ी में लगी ये आग पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा रही है। लेकिन इस महासंकट की असली जड़ खाड़ी देश का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीजफायर के ऐलान के 6 हफ्ते बाद भी तेल के जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो सकी है। इस नाकेबंदी के बीच ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आधिकारिक टैक्स यानी टोल वसूलने के लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया है जिसे नाम दिया गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। इतना ही नहीं, इस टोल व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए ईरान की ओमान के साथ बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। ईरान का प्लान साफ है, अगर हॉर्मुज से गुजरना है तो पर्ची कटवानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और शिपिंग कंपनियों के बीच अब एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को ये टोल टैक्स दे देना शुरू कर देना चाहिए? क्या ये पूरी दुनिया को ज्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा? इस रास्ते के बंद होने से रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल फंस जाता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोजाना 11 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। इसके मुकाबले ईरान गुपचुप तरीके से रास्ता देने के लिए प्रति जहाज करीब 16-17 करोड़ रुपए का टोल वसूल रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक जगह खड़े खड़े लाखों गैलन तेल और चालक दल का खर्च उठाने से कहीं बेहतर है कि ईरान को 16 करोड़ रुपए की पर्ची थमाकर जहाज निकाल लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया स्वेज या पनामा नहर को पार करने के लिए लाखों डॉलर चुकाती है। लेकिन पेंच कूटनीति का है, अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसे में जो भी देश या कंपनी ईरान को यह टोल देगी उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक जाएगी। यानी कंपनियां आर्थिक रूप से तो टोल देना चाहती हैं, लेकिन अमेरिकी गुस्से के डर से मजबूर है। अगर खाड़ी के देशों और ईरान के बीच इस टोल को लेकर कोई क्षेत्रीय समझौता नहीं बनता तो हॉर्मुज का यह लॉकडाउन भारत के इम्पोर्ट बिल को 50% से बढ़ाकर 100% तक कर सकता है। साफ है कि हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह का सीधा कनेक्शन भारत की हर रसोई और हर नागरिक की जेब से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए इस संकट का सामना करना आसान बिल्कुल नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू मंदिरों को लेकर एक ऐसे केस की सुनवाई होने वाली है जिसमें अगर फैसला हिंदू मंदिरों के पक्ष में आ गया तो ऐसे नेताओं को झटका लगेगा जो सनातन का खात्मा चाहते हैं। ये केस मंदिरों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का है। देश के कई राज्यों में मंदिर प्रशासन में नियुक्ति से लेकर मंदिर को मिलने वाला चंदा, सब कुछ राज्य सरकारों का नियंत्रण उस पर होता है। इसी मुद्दे को लेकर साल 2012 में धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। साल 2015 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक इस केस पर सुनवाई चलती रही। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्यों की हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दोबारा से सुनवाई करने का फैसला किया है। इसका अर्थ समझते हैं, सुनवाई का मतलब यह है कि अब एक बार फिर से तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पुडुचेरी हो, हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। पूछा जाएगा कि आखिर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों होना चाहिए, सारा का सारा पैसा उधर क्यों जाना चाहिए। मंदिर में लोग चढ़ावा देते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से देते हैं। हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण को लेकर तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम है 1959 का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धर्मार्थ हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्त अधिनियम 1987 है और पुडुचेरी में हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 1972 लागू है। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए आज मुख्य रूप से इन कानूनों के जरिए राज्यों के हिंदू मंदिरों के बोर्ड बनाए गए। ये बोर्ड मंदिर के कामकाज की निगरानी करते हैं। इन बोर्ड्स के जरिए मंदिर पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है क्योंकि ये जो बोर्ड बनाया जाता है मंदिर का वो राज्य सरकार के अधीन रहता है। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जब किसी अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थान में सरकारी दखलअंदाजी नहीं होती तो फिर हिंदू मंदिरों को राज्य सरकारों ने कानून बनाकर अपने नियंत्रण में क्यों ले लिया। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी राज्य की सरकार ये नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आय का कुछ हिस्सा विकास कार्यों पर अब खर्च करेगी। हिंदू मंदिरों को अलग रख दें तो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, इन सभी धर्म स्थलों के कामकाज में राज्य सरकारों का कोई सीधा दखल नहीं होता। लेकिन हिंदू मंदिरों में ऐसा नहीं है। जहां तक हिंदू मंदिरों की बात है तो आरोप लगते हैं कि राज्य सरकारें कानून का हवाला देकर हिंदू मंदिरों में दखल देती हैं, धार्मिक आजादी छीनती हैं। मंदिर को मिलने वाला दान, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, पैसा यानी रुपया, सोना, चांदी, कपड़े, कई लोग कुछ भी देते हैं, तरह तरह के सामान देते हैं। इन अन्य सामानों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के बजाय दूसरे कार्यों में किया जाता है और मंदिरों की कई बार इसकी वजह से उपेक्षा की जाती है। मंदिरों के आसपास का जो इलाका है उसके विकास के लिए कुछ नहीं हो पाता या मंदिरों की देखरेख के लिए नहीं हो पाता या मंदिरों की सफाई के लिए नहीं हो पाता। मंदिरों की संपत्ति के रिकॉर्ड में धांधली की खबरें आती है। सरकारी नियंत्रण होने की वजह से मंदिर की जमीनों, मंदिर की संपत्ति ताकतवर लोगों द्वारा कब्जा कर ली जाती है। कई मामलों में तो ये भी आरोप लगे हैं कि मंदिरों को मिलने वाले दान का इस्तेमाल सरकार ने अपनी योजनाओं तक में कर दिया जिससे श्रद्धालु खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे देश में हिंदू मंदिरों के कामकाज पर निगरानी के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं स्थापित की गई है। पहली है राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना और उसके तहत एक निगरानी बोर्ड की नियुक्ति करना जो मंदिरों का सारा कामकाज, दान हो, संपत्ति हो, सबका एक रिकॉर्ड बनाकर रखती है और फैसले लेती है। जिन राज्यों में अलग से कानून नहीं है वहां पर मंदिरों की व्यवस्था प्राइवेट ट्रस्ट यानी निजी ट्रस्ट हो, श्राइन बोर्ड हो, पारंपरिक मठ हो, अखाड़े हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, वो संभालती हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार एक संरक्षक के तौर पर काम करती है, जिसका मुख्य काम इन ट्रस्ट और श्राइन बोर्ड्स की व्यवस्था को बनाए रखना है। माना जाता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी में जो कानून है वो हिंदू मंदिरों के कामकाज में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देते हैं। इन राज्यों की सरकारें मंदिर के कामकाज में सीधे दखल दे सकती हैं। बोर्ड के ट्रस्टी के तौर पर मनपसंद व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं, मंदिर प्रशासन की कभी भी जांच कर सकती हैं, मंदिर को मिलने वाले दान और खर्च की निगरानी कर सकती हैं, और तो और कई मंदिरों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सीधी नियुक्ति भी कर सकती हैं। इसके अलावा हर साल इन राज्य सरकारों को मंदिर को मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा भी मिलता है। तमिलनाडु में करीब 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 35 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आय में राज्य सरकारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। असली विवाद इसी बात पर है कि राज्य सरकारों को मंदिरों की आय का हिस्सा क्यों मिलना चाहिए, और अगर ये मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में हो रहा है या नहीं, ये कौन सुनिश्चित करेगा। 24 जुलाई से अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्य सरकारों का हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं, और अगर नियंत्रण नहीं अगर होना चाहिए तो किस हद तक। समुद्र तट से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, हड्डियां कपाने वाली ठंड, बहुत दुर्गम रास्ता, लेकिन बाबा केदार के दर पर आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो चुके हैं। एक महीने से भी कम का समय और लगभग 6,00,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद भी हर रोज हजारों की भीड़ उमड़ रही है। इस आस्था को नमन है, इस श्रद्धा का पूरा सम्मान है, लेकिन इस बीच एक बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या केदार घाटी इतने बोझ के लिए तैयार है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पैर रखने तक की आज जगह नहीं है। दिन तो दिन, अब रात के अंधेरे में यात्रा चल रही है। सकरे रास्तों पर घोड़े, खच्चर, पैदल यात्रियों की कश्मकश जानलेवा खतरे में बदल चुकी है। जाम से बचने के लिए लोग खाई वाले खतरनाक शॉर्टकट्स ले रहे हैं। संवेदनशील मोड़ों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी, प्रशासन के दावे और भारी भीड़ के आगे ये सब कुछ छोटा लग रहा है। आस्था और श्रद्धा के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केदारनाथ का एक इकोसिस्टम है और वो बहुत संवेदनशील है। आखिर ये हमारे भगवान की स्थली है, ये वो जगह है जहां पर हम सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी भी है। ये इलाका दो दो बार बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेल चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्षमता से अधिक इंसानी दखल, पहाड़ों पर बढ़ता दबाव किसी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आज दिल से दिल ये बात की जाए। जब दुनिया के दूसरे देश ऐसी समस्याओं से निपट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जापान का जानते हैं माउंट फूजी, मशहूर माउंट फूजी, जब ओवर टूरिज्म यहां पर हो गया, ज्यादा पर्यटक पहुंचे, तो वहां की सरकार ने कड़े कदम उठाए। ना सिर्फ सैलानियों की संख्या सीमित की गई बल्कि भीड़ पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे तक टांग दिए गए। तो फिर केदारनाथ में सिर्फ नाम का रजिस्ट्रेशन क्यों, इसे सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर ये हमारी आस्था का मामला है। भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है और किसी समस्या से हम अपने आप को बचा सके। सरकार को महज कागजी नहीं बल्कि झेलने की क्षमता के आधार पर स्ट्रिक्ट डेली लिमिट तय करनी होगी। रात के समय यात्रा, घोड़े खच्चरों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगानी होगी ताकि आपात स्थिति में भगदड़ ना मचे, आस्था बनी रहे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तय हो, हिमालय का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, क्योंकि केदारनाथ की सुरक्षा ही बाबा के भक्तों की असली सुरक्षा है।

पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ रविवार तक का वक्त है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अगले दौर में, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि डील नहीं हुई तो अमेरिका

पिछले कुछ दिनों में देश में गर्मी ने बवाल मचाया हुआ है। आज जानते हैं उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर कितना है। बांदा में उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश में सबसे गर्म शहर। हालात ये बन रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मुमकिन है कि आपने महसूस किया हो पिछले कुछ दिनों से दिन हो रात हो, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। गर्मी के दिनों में ऐसा देखा जाता रहा है कि दिन में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन रात में तापमान गिर जाता था, 30 डिग्री 35 डिग्री तक रहता था, जिससे कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। पूरे दिन गर्मी से परेशान रहे लोगों को रात में कम तापमान की वजह से कुछ राहत मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय में रात का तापमान भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ और ये स्थिति लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे कमरे में वो रह रहा है जिसमें हवा के आने जाने की या एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। कम से कम रात में उसको थोड़ी राहत मिलती थी कि पंखा चल रहा है और तापमान गिरा हुआ है, लेकिन दिल्ली में मौसम पर नजर रखने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने चेन्नई के 50 घरों पर एक अध्ययन किया। मध्यम निम्न आय वर्ग लोगों के घरों का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। कई बार रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता था, तो शहर में दिन के अधिकतम तापमान जैसा ही था। यानी घरों में रहने वाले लोगों को बाहर के तापमान से बहुत ज्यादा राहत नहीं है, यहां तक कि रात के समय में भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 से 2018 के बीच भारत का औसतन जो तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साल 1986 से 2015 के बीच साल के सबसे गर्म दिन का तापमान लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि रात का तापमान बढ़ा है 0.8 डिग्री, यानी रात का तापमान ज्यादा बढ़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक दिन का तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक और रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। शहरी इलाके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से पीड़ित हैं। कंक्रीट की इमारतें, सड़कें पूरे दिन गर्मी सोखती हैं, जिससे रात के समय में भी गर्मी बनी रहती है। बहुत से घरों में वेंटिलेशन नहीं होता है, कूलर या एयर कंडीशनर्स नहीं होते, गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। देश के 30 करोड़ परिवारों में केवल 8% के पास, यानी देश के 2 करोड़ 40 लाख घरों में एयर कंडीशनर्स हैं। हालांकि भारत में एयर कंडीशनर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पिछले साल 17 करोड़ एयर कंडीशनर्स बिके थे, जिसमें से 9 करोड़ चाइना में और 1 करोड़ 20 लाख एसी भारत में खरीदे गए। जहां तक एयर कूलर की बात है तो देश के करीब 14% घरों में कूलर्स लगे हुए हैं, एयर कूलर। हालांकि अनुमान है कि 2025-26 में देश के करीब 30% घरों में गर्मी से निपटने के लिए एसी या कूलर में से एक जरूर है। हालांकि लगभग हर साल गर्मी अब इस देश में नए रिकॉर्ड बनाती है। कुछ वर्ष तो ऐसे रहे हैं जब गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया है, जान पर बनाई है। साल 2016 में राजस्थान पलौदी का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। साल 2019 में राजस्थान के चुरू में तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस था। साल 1956 में अलवर का तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस था। साल 2024 में राजस्थान के फलौदी में एक बार फिर तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। बांदा में उत्तर प्रदेश में फिर देखिए, साल 2022 में तापमान 49 डिग्री पहुंचा। भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी से परेशान जनता एसी कूलर पंखे का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है और बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, और इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो बिजली की कटौती है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में बिजली की कटौती पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: गर्मी में तापमान और लोगों का गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक और कहीं कहीं तो 48 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल रहे लोगों को कूलर, पंखे और एसी से कुछ राहत मिलती है, लेकिन जब पावर कट होने लगता है तो मौसम की गर्मी लोगों के दिमाग में चढ़ जाती है और फिर ये सब होता है। यूपी के फिरोजाबाद में पावर कट से गुस्साए लोगों ने बिजली घर के फीडर पर ताला लगा दिया और बिजली विभाग की अर्थी सजा दी। लखनऊ और कानपुर में भी लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां पर लोगों ने बिजली विभाग के सब स्टेशन का घेराव कर दिया।
1: को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिमाह प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली की कटौती फॉल्ट और कटौती।
0: मेरठ में भी यही हाल, यहाँ भी बिजली कटौती से लोग परेशान है। यहाँ के लोगों ने मेरठ के मेयर आवास का घेराव कर दिया। भयंकर गर्मी के इस मौसम में बिजली कटौती की समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली की डिमांड का पिछला रिकॉर्ड 30 मई साल 2024 को बना था। इस दिन डिमांड 250 गीगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस साल अप्रैल में टूट गया। 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बिजली की डिमांड 256 गीगावाट तक पहुंच गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 4 दिन के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें हर दिन बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। 18 मई के बाद से 21 मई तक हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 18 मई को बिजली की डिमांड 257 गीगावाट थी, 19 मई को 260 गीगावाट हो गई, 20 मई को ये बढ़कर 265 गीगावाट हो गई और फिर 21 मई को बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया जो 270 गीगावाट था। एक अनुमान है कि गर्मी के मौसम में एक सामान्य परिवार पंखा, कूलर या एसी तो चलाता ही होगा, और गर्मी के दिनों में बिजली की उनकी डिमांड 100 से 150 वाट तक जरूर होती होगी। इस हिसाब से देखें तो 270 गीगावाट का मतलब है देश के करीब 27 करोड़ घरों में बिजली की जरूरत थी। देश में करीब 30 करोड़ परिवार है, यानी मतलब ये निकला कि लाखों परिवारों को देश के किसी न किसी कोने में समय समय पर पावर कट की समस्या झेलनी पड़ रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारे देश की बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट तो है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में बताया था कि वो देश की 270 गीगावाट तक की डिमांड ही पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिजली केवल आपके घरों में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी इस्तेमाल होती है और वहाँ इसकी डिमांड ज्यादा है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बिजली की डिमांड पूरे समय एक जैसी होती है। इसकी वजह यह है कि गर्मी के मौसम में दिन का तापमान रात की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए डिमांड दिन में ज्यादा होती है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये गर्मी का पीक टाइम है। 21 मई को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड को कैसे पूरा किया था ये भी बताया है। 270 गीगावाट की डिमांड को पूरा करने में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी करीब 63%, सौर ऊर्जा से बनी बिजली की हिस्सेदारी 22%, हाइड्रो पावर प्लांट से हुई सप्लाई की हिस्सेदारी 6% और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 5% थी। अलग अलग स्रोत से बिजली की डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और व्यवहारिक रूप से उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: बिजली कटौती की ये समस्या यूपी के बड़े शहरों और बड़े जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर इलाके में यही हाल है। लोगों की समस्याएं चरम पर हैं। पूरी रात लाइट नहीं आती, लोग सो नहीं पा रहे, छोटे बच्चों के साथ तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिजली का बिल तो हर महीने दे रहे हैं, तो फिर बिजली आ क्यों नहीं रही?
3: तकलीफ झेल रही है जनता हमारी इस बेहद गर्मी में, जब मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और इतना तापमान बढ़ा जा रहा है और लोग त्रस्त हो चुके हैं। किसको का कोई काम नहीं, MD आई है, अगर वो आप अपना पद नहीं संभाल पा रही, अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रही है। आज उन्होंने कल उन्होंने बयान दिया है कि CGL की लाइन थी वो डैमेज हो गई है, तो अभी तक आपने क्यों जवाब नहीं दिया? 3 दिन से लोग आपके किसको के चक्कर काट रहे थे, आप कोई अधिकारी खुल के नहीं आया। अब 5 दिन जब प्रशासन ने एक नया रूप लिया, तब आपने आके एक बहाना दे दिया कि CGL की लाइन ध्वस्त हो गई, तो उसको बनवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब 3 दिन हो गए हैं,
4: पूरी रात लाइट नहीं आती, आज 5 दिन हो गए, हम लोग एक दिन भी नहीं सो पा रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में लोग काम करके आते हैं, सो नहीं पाते हैं, यही समस्या हमारी है।
5: आपने की है केस को?
4: कितनी बार गए हैं, कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पे।
5: क्या अब हम मांग करते हैं?
4: हमें लाइट चाहिए, हमारी व्यवस्था, मतलब जो दिन भर काम करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, हर महीना देते हैं, हर महीना जमा होता है, तो कम से कम घर वाले अगर सो नहीं पाएंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे?
2: लखनऊ में तो बिजली का ये हाल है कि यहाँ अस्पतालों की भी बिजली गुल हो गई है। ये लखनऊ के दुबग्गा का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ प्राइवेट वार्ड में मरीज भर्ती हैं, लेकिन बिजली नहीं है।
6: लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस वक्त हीट वेव है, 45 के पार कई जिलों का टेम्परेचर है, ऐसे में बिजली समस्या बढ़ी। और लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल, यहाँ की तस्वीरें आप अगर देखें तो खुद तस्वीरें देखें, खुद समझें और खुद जायजा लें। ये एक पेशेंट है जो इस वक्त यहां पर एडमिट है, लेकिन इनकी मुसीबतें और तब बढ़ गई जब बिजली ही चली गई। जरूर अस्पताल में एक ट्रांसफार्मर था, लेकिन वो ट्रांसफार्मर भी क्या करे जब घंटों दिनों दिन बिजली नहीं आ रही है। पंखा दिखाएं, ये पंखा लगाया तो गया था पेशेंट की मदद के लिए, उसको सहूलियत देने के लिए। एक बढ़िया सा प्राइवेट वार्ड भी आपको दिखा दें, ये बनाया था कि पेशेंट को सहूलियत मिलेगी, लेकिन क्या सहूलियत जब पंखे ही बंद है और पेशेंट यहाँ मजबूर है। कब से यहाँ पर पंखा बंद है?
7: हो गया 2-3 दिन। 3 दिन
6: तो आप तब से यहाँ ऐसे ही एडमिट हैं गर्मी में?
7: जी ऐसे ही एडमिट है, क्या करें,
6: परेशानी हो रही है
7: जी, गर्मी हो रही है ना बहुत।
6: क्या समस्या थी आप?
7: बुखार था।
6: तो आप देखें, खुद जायजा लें, खुद समझें कि क्या कहानी है इस वक्त, यूपी के हालात क्या है।
8: अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो EMI पर मोबाइल फोन या टैबलेट लेते हैं और उसकी किश्तें नहीं चुकाते। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के ऐसे डिफॉल्ट केसेस के लिए एक नया नियम ड्राफ्ट किया है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने लोन पर मोबाइल फोन लिया और EMI नहीं दी, तो बैंक या जिस भी फाइनेंस संस्था से फोन लिया गया है, माफ कीजिएगा लोन लिया गया है, वो मोबाइल फोन की कुछ सेवाओं को बंद कर सकेंगे। सोचिए, मतलब फोन तो आपने ले लिया, लोन का पैसा दिया नहीं, तो आप जो मोबाइल सर्विसेज ले रहे हैं उसको रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। यह नियम लोन पर मोबाइल फोन लेकर पैसा ना चुकाने वालों और EMI ना मिलने वालों पर मोबाइल फोन यूजर्स का डेटा लीक करने की धमकी देने वालों या फोन पूरी तरह से ब्लॉक करने वालों पर शिकंजा कसेगा। पिछले काफी समय से इस तरह के एक नियम की जरूरत थी। अभी होता यह है कि कुछ महंगा महंगा मोबाइल फोन खरीदते हैं और महंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए बैंक डिजिटल लोन कंपनीज या फिनटेक कंपनीज से लोन ले लेते हैं। ये कंपनियां उस फोन में कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर्स डालती हैं। EMI मिस होने पर ये कंपनियां फोन को ब्लॉक कर देती हैं या फिर स्क्रीन पर EMI देने का मैसेज चला देती है और कई बार तो निजी डेटा लीक करने की धमकियां भी दे देती है। कंपनियों का तर्क यह होता है कि लोन डिफॉल्टर जानबूझकर EMI नहीं देते और इसीलिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लोन चुकाएं। लोन लेने वाले ग्राहकों की शिकायत यह है कि फिनटेक कंपनियां लोन देकर उनके निजी डेटा का एक्सेस हासिल कर लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। RBI इस मामले को कानूनी रूप से रेगुलेट करना चाहता है और इसीलिए नए नियम बनाए गए। नए नियमों के मुताबिक बैंक या लोन देने वाले संस्थाओं को सख्त नियमों का पालन करना होगा। जैसे फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स को लोन अग्रीमेंट में EMI ना चुकाने पर होने वाली कार्रवाई की इजाजत लेनी होगी। लोन ना चुकाने पर कार्रवाई किस तरह से होगी ये भी बताना होगा। लोन डिफॉल्टर पर एक्शन तभी होगा जब वो लगातार 3 EMI नहीं चुका पाएगा और पहले उसे नोटिस दिया गया होगा। लोन देने वाले बैंक फाइनेंस कंपनीज पाबंदी के नाम पर फोन की जरूरी सुविधाओं जैसे इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल्स, इमरजेंसी मैसेजिंग, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े संदेश बंद नहीं कर सकते। आरबीआई का मानना है कि लोन देने वाले फाइनेंशियल संस्थानें डिवाइस को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर लोन की बकाया रकम चुका दी गई तो उसके एक घंटे के अंदर सारी पाबंदियां हटानी होगी। अगर गलती से पाबंदी लगी रही तो लोन देने वाले बैंक या कंपनियों को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा और इसके साथ साथ फोन में डाला गया उनका सॉफ्टवेयर तुरंत हटाना होगा। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: कूल फैंस से घर को सजाएं।
7: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
6: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: विक्रम, एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट।
9: बड़े आराम से।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
14: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, anybody can dream।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, AD फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
0: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
0: छोटे ऑन कर दे, ऑन कर दे,
2: ऑन कर दे। पैक कर दे समर कूल।
0: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: मैं करता हूँ ना,
5: मैं करूँगा।
6: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
6: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
6: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
0: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
1: ज्यादा बड़ी ना है।
0: छोटे ऑन कर दे,
2: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
1: पैक कर दे समर कूल।
0: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं पे संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
4: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा से लौटते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार जीत के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में वाणिज्य, पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रियों द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों और उनके प्रभाव का भी आकलन किया गया। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा उन्हें काम में सुधार लाने और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए सुधारों की सूची भी मांगी गई। प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति का आकलन किया और मंत्रियों को युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों जैसे ऊर्जा और कृषि विभागों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जून में मंत्रिमंडल में फिर बदल की अटकलें तेज हैं, ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कोई मिलने आए ना आए, आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आए। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी पर अजय राय के अपशब्द, कहा सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा, बोले ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। बंगाल के कमाल संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी अमित शाह से मिले। पेशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी केस की जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर मनीषा को किया था नियुक्त। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: आप हमारे सेट पर आज गोलियों की आवाज सुन रहे हैं, जी हाँ, और हमारे साथ यहां 6 जो लोग खड़े हैं ये हैं बाहुबली जो चलाते हैं गोलियां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, आप देख रहे हैं दस्तक रात के 10 बजे। बाहुबली ये वो शब्द है जो राजनीति और अपराध की दुनिया से निकलकर आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर दबंग नेताओं के लिए बाहुबली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनका एक समय में आपराधिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भारी दबदबा रहा है। जिस बाहुबली शब्द को सुनकर ही आम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं, आज इन बाहुबलियों के लाइसेंसी हथियारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के 19 बाहुबलियों को जारी लाइसेंसी हथियारों का सरकार से ब्यौरा मांग लिया है। इन बाहुबलियों में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, राजा भैया, धनंजय सिंह, अब्बास अंसारी, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, अजय सिंह मर्दा उर्फ गुड्डू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, संजय सिंह सिंगला, अतुल वर्मा, सुजीत सिंह बेलवा, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह, लल्लू यादव, बच्चू यादव और जुगनू वालिया जैसे बाहुबली शामिल हैं। और इतना ही नहीं, अदालत ने इन बाहुबलियों की क्राइम कुंडली भी सरकार से मांगी है। सरकार से अदालत ने पूछा है कि गंभीर मुकदमों के बावजूद इन बाहुबलियों के हथियार लाइसेंस और इन्हें सरकारी सुरक्षा कैसे मिली। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्यों अचानक से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन बाहुबलियों पर ये सख्ती दिखाई।
3: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार। जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली। लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है बल्कि उन पर हत्या के प्रयास किडनैपिंग डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के एक कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और पूरी गैंग वॉर चला।
4: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
3: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
4: उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।

0: बात का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
1: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
2: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं,
3: पीड़ित परिवार कहता है
2: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
3: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
2: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
2: जवाब देने जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
1: हड्डी टूट गई होगी पैर।
2: अरे माफी मांगो,
1: मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
0: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
4: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा।
5: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी।
0: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था, तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
6: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल

0: से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: भोपाल के रिटायर्ड जज सास ने खूब अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया इस केस को खत्म करने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। त्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की। परिवार और वकील आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में हैं। इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद अब बढ़ गई है और न्याय मिलने की उम्मीद भी काफी मजबूत हो गई है। रिटायर्ड जज सास के इरादे नाकाम हुए।
2: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: My first reaction was, Samarth, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली?
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं। आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ? क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा?

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है आप।
3: एक बड़ी खबर इस समय हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही है, वहां पर बिजली गुल होने की वजह से मेट्रो ठप हो गई है, रैपिड मेट्रो ठप हुई है, और इस रैपिड मेट्रो के ठप होने से जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग पिछले एक घंटे से रैपिड मेट्रो बंद पड़ी है और यात्री फंसे हुए हैं अलग अलग स्टेशन पर। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट पड़ा है, बिजली वहां पर चले गई है और बिजली जाने से यह हुआ है, ट्रांसफार्मर फूक गया है, यानी कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और उसके बाद ये हुआ है। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए, समय स्थिति क्या है?
4: बिल्कुल, देखिए रैपिड मेट्रो जो कि देश की पहली निजी मेट्रो सेवा है, उसका सेक्टर 72 के पास के 220 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर था वो फूक गया है, जिसके चलते जितने भी 7 और बिजली ट्रांसफार्मर थे वो भी फूक गए हैं, जिसके चलते पीछे एक घंटे से ये रैपिड मेट्रो की सेवा बाधित है। रैपिड मेट्रो जो कि डीएलएफ के तमाम कॉरपोरेट को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, तमाम जितने कर्मचारी हैं वो इसी मेट्रो के जरिए सफर करते हैं, जिसमें भी सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो कि कर्मचारी हैं डीएलएफ के, वो कहीं ना कहीं बाधित जरूर हुए हैं, लेकिन अब इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी डीएलएफ विभाग ने जरूर शुरू कर दी है। लेकिन
3: नीरज ये बताइए कि ये कब तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो काफी डराने वाली हैं, लोग पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात के 10:15 से ज्यादा का समय इस समय हो चुका है। नीरज
4: बिल्कुल, देखिए सेक्टर 38 से लेकर सेक्टर 57 तक के, सेक्टर 15 पार्ट 1 और 2 और सेक्टर 18 तक के बिजली घर तमाम ठप हैं, जिसके चलते ये सेवा बाधित है रैपिड मेट्रो की, जिसके चलते सैकड़ों लोग परेशान हैं। इस सेवा को यूज करने वाले लोग हैं, ये लोग तमाम लोग हैं जो कि डीएलएफ के कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं।
3: नीरज ये भी बताइए कि रात में आखिरी रैपिड मेट्रो कब कितने बजे चलती है और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे अगर तब तक ये ठीक नहीं हो जाती है तो?
4: बिल्कुल, देखिए जब से ये सेवा प्रभावित हुई है हजारों लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि पीक आवर्स हैं और तमाम डीएलएफ के कॉर्पोरेट में रहने वाले लोग कर्मचारी हैं यहाँ पे सफर करते हैं, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बिजली सेवा को दुरुस्त करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है,
3: यानी इसका मतलब ये मेट्रो तो नहीं चल पाएगी, इन लोगों को कोई वैकल्पिक इंतजाम करना होगा, इससे और ज्यादा परेशानी होगी। नीरज
4: बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी परेशानी है, आज हम अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, लेकिन अगर रैपिड मेट्रो जैसी मूलभूत सुविधा, सबसे महत्वपूर्ण सुविधा अगर प्रभावित होती है तो काफी महत्वपूर्ण है कि कितनी जल्दी इस रैपिड मेट्रो की सेवा को बहाल किया जा सकता है, इस बिजली व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है।
3: नीरज कहां से कहां तक ये मेट्रो चलती है और जो लोग फंसे हुए हैं वो अब किस वैकल्पिक रूट का सहारा लेंगे और क्या वो संभव है उनके लिए?
4: बिल्कुल, देखिए सेक्टर 38 से सेक्टर 57 तक ये मेट्रो सेवा चलती है, जिसमें सेक्टर 15 पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी इलाके हैं, बहुत बड़ा इलाका है, जितना भी डीएलएफ का एरिया है, डीएलएफ के कॉर्पोरेट ऑफिस है।
3: नीरज बहुत धन्यवाद. नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जानकारी दे रहे थे. रैपिड मेट्रो रुक गई है बिजली गुल होने की वजह से. दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटकर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे अब एनरिच्ड यूरेनियम पर मुश्तबा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप में आर पार. एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दस्तक.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से. इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: GK Max.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: GK Max. Best putty.
5: JK Wall Max.
3: Best paint.
6: JK Max.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
3: JK Max Paints.
7: JK Max Paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
5: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
6: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
7: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
10: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
5: हिंट
11: बड़े आराम से।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: Like I said before, we better own the sins.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
20: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
21: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
22: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।
23: आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू यावानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क टू लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।

0: तकरीबन पूरा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुके बांदा में गर्मी से बेहाल लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। आग की भट्टी की तरह तप रहे बांदा में गर्मी की वजह से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा, झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को गर्मी से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक पावर डिमांड 8231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। SLDC के मुताबिक इस सीजन में बिजली की खपत 9000 मेगावाट पार जाने का अनुमान है। दिल्ली में पावर डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस बार 76% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा अभी और चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की उम्मीद है, लेकिन इससे गर्मी में झुलस रहे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: फ्रेंड्स, इंडिया एंड द US शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्टनरशिप। वी आर बोथ फ्रेंड्स, वी आर बोथ consequential and important trading partners. We have a strategic partnership on critical minerals. We are working together on new technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning. We have finalized an interim phase one of a bilateral trade agreement with which India will get preferential access compared to our competitors to the large, nearly $30 trillion US market. The visit of Mr. Marco Rubio, the US Secretary of State, is extremely timely. Aap kalpana kariye, 6 lakh crore ke kareeb nivesh haal mein, pichle kuch mahino mein, data centers mein, nayi factories mein, semiconductor plants mein, alag alag cheezon mein, Bharat mein, United States akele ne घोषित किया। यह है भारत का आज आकर्षण। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। और अब बात ईरान अमेरिका के बीच नई तनातनी। ट्रंप ने एक बार फिर से नई धमकी दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान के पास हम एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहने देंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के लिए यूरेनियम को हासिल करके रहे, लेकिन इसका सीधा करारा जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तरफ से आ गया। मुज्तबा खामनेई ने अपने आदेश में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका या किसी के हाथों में भी नहीं सौंपेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है कि तेहरान पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। मुनीर वहां जाकर बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत की जो खबरें आ रही थी वो आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका का प्रस्ताव लेकर तेहरान पहुंचे हैं मुनीर। एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका ईरान में बात अटकी हुई थी और अमेरिका का एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं मुनीर। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख अगर ये प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं तो क्या अब ईरान इस प्रस्ताव को मानेगा? क्या युद्ध खत्म होगा?

0: ईरान अमेरिका में एनरिच यूरेनियम पर छिड़ेगा महायुद्ध। यूरेनियम पर आर पार ट्रंप की धमकी, बनाम मुश्तबा का आदेश। सुप्रीम लीडर मुश्तबा का मैसेज क्लियर है, यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। ४४० किलो एनरिच यूरेनियम की जंग महायुद्ध तक जाएगी। ईरान का यूरेनियम हासिल करना ट्रंप का बन जाएगा बुरा सपना। युद्ध में ट्रंप जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं। जिस एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग थोप दी, आज भी उस यूरेनियम पर अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका ईरान के साथ किसी भी कीमत पर यूरेनियम पर डील चाहता है, लेकिन ईरान के इरादों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का 440 किलो एनरिच यूरेनियम हासिल करना एक बुरा सपना बन जाएगा। और अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में ईरान में मौजूद करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को ईरान के हाथ लगने नहीं दिया जाएगा। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या 60% तक यानी परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब के स्तर तक एनरिच किया गया यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, इसके जवाब में ट्रंप ने इनकार करते हुए कहा कि वो अमेरिका के पास आएगा। जमीन में दबे यूरेनियम को अमेरिका निकालेगा और नष्ट कर देगा, क्योंकि इसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है, लेकिन ईरान के हाथ लगा तो वो इससे परमाणु हथियार बना सकता है। जाहिर है संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का विस्फोट कर सकता है।
1: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप के बयान के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का भी आदेश आता है। मुश्तबा ने कहा कि खबरदार, ख्वाब भी मत देखना, नहीं देंगे ईरान का गड़ा हुआ खजाना। एनरिच्ड यूरेनियम भंडार ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यूरेनियम का ये कीमती स्टॉक देश के बाहर नहीं जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक शब्दों में अपनी रेड लाइन समझा दी है। इजरायली और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार करते हुए मुश्तबा खामेनेई ने हुक्म जारी किया है कि ईरान का गड़ा हुआ खजाना यानी उसका वेपन्स ग्रेड यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश के बाहर नहीं जाएगा। दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान से लापता 440 किलोग्राम यूरेनियम नहीं मिला तो ये खतरा हमेशा सिर उठाए रहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि 440 किलो एनरिच यूरेनियम को ईरान ने इस्फहान और नतांज में कहीं छिपा रखा है। ये वही एनरिच यूरेनियम है जिसकी मदद से ईरान बहुत कम वक्त में एटमी हथियार बना सकता है। मतलब यूरेनियम नहीं मिला तो इसकी गारंटी कौन देगा कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद भी ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को वो हासिल कर लेंगे।
2: You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to...
3: It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves.
0: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी की माने तो बीते साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम वर्षा की थी। उस वक्त 440 किलो एनरिच यूरेनियम परमाणु सेंटर में मौजूद था और उसे शिफ्ट करने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन वो कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यूरेनियम को लेकर ईरान का अपना दावा है। एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, सब कुछ मलबे में दब गया है, उन्होंने कहा कि सरकार के पास मटेरियल वापस पाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये भी कि वो हमले के दौरान स्टॉक के भविष्य के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान की माने तो संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी हमले के बाद एटमी सेंटर के मलबे में दब गया, लेकिन इस दावे की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं करती। हमले के बाद ईरान ने एटमी साइट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी। वहीं एटमी हथियारों के जानकार बताते हैं कि ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। इसे थोड़ा और एनरिच करके ईरान एक दो नहीं बल्कि 9 परमाणु बम बना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार योग्य बनाने के लिए अहम सेंट्रीफ्यूज का काम 99% पूरा कर रखा है। यही वजह है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के पास मौजूद यूरेनियम है।
4: אנחנו פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם, לאיראן אין היום אפשרות להשאיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. אנחנו ממשיכים בריסוק היכולות הללו. אנחנו נרסק אותם עד דק, עד עפר.
0: ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल से थोड़ा ही कम है। इससे सिर्फ 10 के आसपास एटम बम बनाए जा सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा था कि ईरानी सरकार के पास लगभग 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड वाला यूरेनियम था। माना जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एक टनल कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया गया था, लेकिन अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। ईरान को ट्रंप की तरफ से भेजे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखे, क्योंकि ट्रंप भी समझते हैं कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाए बिना युद्ध विराम करना सुलगती हुई आग को छोड़ देने जैसा है। आज तक ब्यूरो।
5: आइए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, यूरेनियम पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के आदेश के बाद आपको क्या लगता है सुमित, कि क्या कभी एनरिच्ड यूरेनियम पर ईरान और ट्रंप की डील हो पाएगी?
6: देखिए सही, एनरिच यूरेनियम के साथ दो शर्तें हैं अमेरिका की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 400 किलो का जो एनरिच यूरेनियम है वही लगातार हैंडओवर करने की बात की जा रही है, उसके साथ दो शर्तें और हैं जो ईरान को मंजूर नहीं। सबसे पहली बात तो ईरान ने साफ तौर पर इस बात को लेकर पहले बातचीत करने के लिए तैयार था कि एनरिच यूरेनियम को वो रूस को दे दे ताकि कम से कम बातचीत का दायरा या फिर बातचीत हो सके, लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई उसके बाद सुप्रीम लीडर की तरफ से साफ कह दिया गया कि एनरिच यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा, वो ईरान में ही रहेगा। दूसरी बड़ी शर्त थी अमेरिका की कि जो फैसिलिटीज है एनरिच की, जो उनकी साइट्स हैं उसमें जो फोर्दो और नतांज है उन साइट्स के ऊपर खास तौर पर जो उनका उन साइट्स को बंद करना पड़ेगा। तीसरी जो साइट है इस्फहान की, जिसके अंदर जो जो जो कैपेबिलिटीज हैं एनरिच यूरेनियम को करने की, वो करीबन पहले और दूसरे स्टेज पर है। बाकी दोनों फैसिलिटीज पर यानी फोर्दो में और नतांज के अंदर वो जो उनके पास स्पिनर्स हैं यानी जो एनरिच करने के जो प्रोसेस होता है वो उनके पास 5 स्टेज और 6 स्टेज का है, तो उन दोनों को बंद करना पड़ेगा। वो भी ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। ईरान का मानना यह है कि ये उसने सारी कैपेबिलिटीज को पिछले 4 से 5 दशकों के अंदर हासिल किया है, वो लगातार इन सारी को ऐसे ही सरेंडर नहीं करना चाहता और ये जानता है कि देखिए अगर एनरिच यूरेनियम इस तरीके से हैंडओवर कर दिया गया तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए बहुत दिक्कत होगी, खासतौर पर सुप्रीम लीडर के ऊपर दिक्कत होगी, क्योंकि 40 साल तक जो उन्होंने सैंक्शन झेले वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। शायद इसी वजह से ईरान ने इन चीजों से मानने से इंकार कर दिया है।
5: बहुत धन्यवाद सुमित। सुमित चौधरी हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद और यूरेनियम की तनातनी अभी थमी भी नहीं कि अब समुद्र से एक और बेहद खौफनाक खबर आ रही है। हॉर्मुज इस समय महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है, क्योंकि ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कह दिया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के अनुसार यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहां किसी तरह का कोई टोल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसका जमकर विरोध किया है।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी, अब क्या करेंगे ट्रंप? हॉर्मुज में टोल वसूलने पर अड़ा ईरान, ओमान से पेमेंट सिस्टम पर बात। हॉर्मुज पर छिड़ेगा महायुद्ध, नेटो ने की हॉर्मुज के लिए तैयारी। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने पर अड़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि ईरान की इस जिद से कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि हॉर्मुज पर कोई टोल लगे। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ये न केवल सभी के लिए खुला बल्कि सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से एक भी जहाज उसकी मर्जी के बिना नहीं गुजर सकता। जिस जहाज को गुजरना है वो विदेश मंत्रालय के जरिए अर्जी दे, फिर उसे IRGC की नेवी मंजूर करेगी। ईरान जहाजों से तय की गई फीस भी वसूलेगा। और इस बीच IRGC नेवी ने दावा किया है कि बीते 24 घंटे में तेल टैंकर समेत 35 कंटेनर जहाजों ने उसकी इजाजत से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है।
1: It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: Donald Trump कह रहे हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए मुफ्त और मुक्त होना चाहिए। लेकिन ईरान ने हाल ही में फारसी खाड़ी जल डबरू बाध्य प्राधिकरण यानी PGSA का गठन किया है। इसके जरिए वो हॉर्मुज जल डबरू मध्य को अपने नियंत्रण वाला समुद्री क्षेत्र बनाने का इरादा रखता है। और बाकायदा ईरान ने हॉर्मुज का एक नक्शा जारी कर अपना प्रभाव क्षेत्र भी दुनिया को दिखा दिया है। ईरान अमेरिका की इस जंग में दुनिया चने के साथ खून की तरह पिस रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है। वो हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नाटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है।
5: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं, कल से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूबियो के दौरे से भारत अमेरिका संबंधों में फिर से नई गर्मजोशी की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर से आज तक की विशेष बातचीत हम आपको सुनवाते हैं।
7: मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
8: रोहित, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप भारत वापस जा रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं। मार्को रूबियो की इस भारत यात्रा का बहुत महत्व है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और इसलिए विदेश मंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, 4 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, जो मामूली बात नहीं है। जब विदेश मंत्री यात्रा करते हैं तो आम तौर पर वो 1 या 2 रातों के लिए ही आते हैं। वो अभी तक किसी एक देश में 4 दिनों के लिए नहीं गए हैं, इसलिए जब विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। इसका बहुत महत्व है, इससे भारत अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होंगे।
7: आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कोलकाता से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली लौटेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर जयपुर आगरा जाएंगे, वापस आएंगे और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हमें बस इतना बताइए कि हम किन ठोस परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या कोई ठोस परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं?
8: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ। विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वो कई बार मिले हैं, अमेरिका में भी और अन्य कार्यक्रमों में भी, इसलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बातें करना अच्छा है, लेकिन काम करना उससे भी बेहतर है।
5: दर्शक, मैं आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
12: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
13: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
17: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: GK Max.
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: GK Max. Best पुट्टी?
20: JK Wall Max.
19: Best paint?
20: JK Max.
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
20: जेके मैक्स पेंट।
19: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
21: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
22: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
23: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
24: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
25: Like I said before, we better hold the sins.
26: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
27: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
0: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीए को पता नहीं।
26: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
1: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
27: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
26: जहां खबर वहां खबरदार।
2: इन एसोसिएशन विद
3: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ, ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। एक दिन पहले संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया, पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी।
1: जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी, और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाए।
0: इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
7: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं।
8: भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल कतई भी। इतनी मट्टी पलित हो रही, देखिए उनकी शिकल देखो, एक बार घुमाओ नहीं ने, बहुत ज्यादा मट्टी पलित हो रही है। जहां गाड़ी पहले 1000 रुपए में जा रही है और 600 500 600 500 इतनी मट्टी पलित हो रही है। CNG बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पर भाई रेट नहीं बढ़ा रहे।
7: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं।
9: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है। फलों पे और कीवी जो है पहले 100 रुपए की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है 150 रुपए पीस, 60 रुपए पीस चल रहा है, इसलिए उस पे भी कीवी पे और चीजों फलों पे भी असर पड़ा है।
10: पहले दही हम 100 रुपए किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 के, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, कमर्शियल हम यूज करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज करने की वो है तो हम कमर्शियल यूज करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और मिल भी नहीं रहा।
7: चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है।
11: And our Prime Minister has asked us to save energy over the next year. In moments like this, national responsibility must rise above party politics, as Mr. Vajpayee famously said. Governments will come and go, but the nation shall remain.
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया।
12: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है।
7: पांच देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की, जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के विभिन्न नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। बंगाल की कमान संभालने के बाद शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री शुभेंदु। विश्वा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह पुलिस हिरासत में, बार काउंसिल ने रद्द किया लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, रैपिड मेट्रो की सेवा एक घंटे तक बाधित, लोग ट्रैक से पैदल जाने को हुए मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर दौरा, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी है बात।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कत्ल के एक मुजरिम को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है, मगर सजा के बीच ही वो पेरोल पर जेल से भाग जाता है। इसके बाद पूरे 12 साल बीत जाते हैं, मगर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। हालांकि इस दौरान वो छुपता नहीं है, बल्कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, मोहनलाल, रणबीर सिंह और इमरान हाशमी जैसे सितारों के साथ फिल्में कर रहा होता है। फिर 12 लंबे सालों बाद एक रोज एक मुखबिर का पुलिस को फोन जाता है और तब कहीं जाकर इस ठग ऑफ हिंदुस्तान का पूरा भेद खुलता है। ...2018 में एक फिल्म आई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बड़े बजट की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े सितारे थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई, पर जब ये फिल्म बनी तब खुद इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां तक कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान तक को ये पता नहीं था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में सचमुच का एक ठग काम कर रहा है। इस फिल्म के 4 साल बाद रणवीर सिंह और बोमन ईरानी स्टारर एक और फिल्म जयेश भाई जोरदार आई। 2022 में आई इस फिल्म में भी वो ठग काम कर रहा था, पर किसी को उसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। 2025 में एक और फिल्म आई, मेट्रो इंद्र। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान और पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार के साथ बनी इस फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए। डायरेक्टर अनुराग बासु की इस फिल्म में भी वो ठग काम कर रहा था, पर क्या मजाक जो कोई उसकी असलियत जान पाता। उसी साल यानी 2025 में साउथ के दिग्गज सुपरस्टार मोहनलाल की एक फिल्म आई, L2 एम्पुराना। इस फिल्म में भी वो ठग मौजूद था, पर कोई उसकी असलियत पहचान नहीं पाया। सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की भी वो शूटिंग कर चुका है। सोनाक्षी सिन्हा स्टारर तू है मेरी किरण फिल्म में भी उसकी झलक जल्द ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक कि इसी साल नेटफ्लिक्स पर आई चर्चित वेब सीरीज तस्करी में भी वो इमरान हाशमी के साथ काम कर चुका है, पर इन लोगों को भी उसकी कहानी नहीं पता। यकीन मानिए, नटवर लाल जिंदा होता तो खुद उसका फैन हो जाता। फिल्मी पर्दे और वेब सीरीज के जरिए इस अदाकार को देश भर में करोड़ों लोगों ने देखा होगा, पर इन करोड़ों निगाहों से गुजरने के बावजूद गुरुवार 21 मई से पहले खुद अहमदाबाद पुलिस की नजरें कभी इसे पहचान नहीं पाई। इस ठग अदाकार की तारीफ तो बहुत हो गई, अब तारुफ भी करा देते हैं। इनका पहला नाम है हेमंत नगीन दास पुरुषोत्तम दास मोदी। इनका दूसरा और छोटा नाम है हेमंत मोदी। तीसरा नाम है स्पंदन मोदी और इनका फिल्मी नाम है ट्विंकल दबे। इतने नामों वाला ये शख्स, इतने फिल्मी चेहरों वाला ये शख्स जानते हैं है कौन? एक कातिल जिसे कत्ल के इल्जाम में 18 साल पहले उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही वो जेल से ऐसा भागा कि अहमदाबाद पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। और कमाल ये कि वो छुपा भी नहीं, बल्कि फिल्मी पर्दों और टीवी के पर्दों पर बार बार अपना चेहरा अलग अलग किरदारों में दिखाता रहा, पर कोई उसे पहचान ही नहीं पाया।
1: कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक हेमंत नगीदास मोदी करके 12 साल से पेरल जब आरोपी को अहमदाबाद से पकड़ डाला है। उसमें रियलिटी ये है कि वो 2005 में अहमदाबाद के मर्डर के केस में उसे सजा हुई थी। उसके बाद वो 2014 तक जेल में थे, बाद में वहां से पेरल जंप हुआ। पेरल जंप के बाद 12 साल से वो वांटेड था।
0: तो डीसीपी साहब से इस ठग की जिंदगी की झलकियां तो आपने सुन ली, अब चलिए पूरी फिल्म दिखाता हूँ। बात 2005 की है, तब हेमंत मोदी अहमदाबाद में रहा करता था, कॉलेज में पढ़ रहा था, जर्नलिस्ट

0: चीज से दूरी बना ली।
1: उसने अपना खुद का जो नंबर और जो आइडेंटिटी थी वो छुपाने के लिए अहमदाबाद में आया ही नहीं था, पाटन और इस तरफ रहा था और बाद में बॉम्बे चले गया था। और जो अपना सोशल नेटवर्किंग और मोबाइल का उसने यूज ही नहीं किया था, इसे टेक्नोलॉजी की वजह से उस पर नहीं पहुंच सके थे। बाद में अहमदाबाद में आए, ऐसे लोकल इन्फॉर्मेशन से बातमी मिलने के बाद कल उसे पकड़े पाए।
0: अब चूंकि 12 साल बीत चुके थे, नाम हुलिया शक्ल सब कुछ बदल चुका था, लिहाजा हेमंत को लगा कि अब पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। इसी के बाद वो कुछ दिन पहले अहमदाबाद आए, लेकिन अहमदाबाद में जहां वो रुका वहां एक शख्स उसे देखकर पहचान गया और उसी ने पुलिस को खबर दी। यानी कायदे से अगर वो गुमनाम शख्स उसे नहीं पहचानता तो पुलिस कभी इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को पकड़ ही नहीं पाती। इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये है कि हेमंत के भाई समेत बाकी जिन 6 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो सभी अपनी अपनी सजा पूरी कर अब एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हेमंत को अब अपनी बाकी की सजा काटने के लिए वापस जेल जाना होगा। क्या पता इतनी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हेमंत मोदी पर अब कोई फिल्म बन जाए। अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक। पूरे 10 दिन बाद आखिरकार ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि अब भोपाल पुलिस समर्थ से पूछताछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस शाम समर्थ ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया उसी सुबह मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्विशा केस की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ट्विशा का फिर से पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया है। ट्विशा की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। 10 दिन बाद ट्विशा के पति समर्थ ने सरेंडर किया। एमपी हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। जज रही सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी सवाल। ट्विशा की मौत के ठीक 10वें दिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ट्विशा की मौत की जांच भोपाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का। अमूमन दहेज से जुड़ी मौत के मामले की जांच सीबीआई कम ही करती है, लेकिन ट्विशा की मौत के मामले में शुरू से ही जिस तरह भोपाल पुलिस का रवैया रहा उससे ट्विशा के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ट्विशा की सास कभी इसी शहर में जज हुआ करती थी, लिहाजा ट्विशा के घर वालों की मांग के बाद 22 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। इधर सुबह मध्य प्रदेश सरकार के सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करती है, उधर दोपहर होते होते ट्विशा केस में एक अहम सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुरू हो जाती है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने अपनी मां की तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी थी जिस पर सुनवाई होनी थी। दरअसल निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था। लेकिन इससे पहले कि हाई कोर्ट अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुरू कर दी, तभी बीच में ही समर सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली, ये कहते हुए कि समर सिंह कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने समर्थ को कोर्ट या संबंधित पुलिस के सामने सरेंडर करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद शाम होते होते समर्थ सिंह ने सरेंडर कर दिया।
2: कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल प्रस्तुत की थी समर्थ सिंह जी के द्वारा, उसमें आज समर्थ सिंह जी ने व्यक्त किया कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उस एंटीसिपेटरी बेल को हमने वापस ले लिया है।
3: कोई सुनवाई नहीं चल रही है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ जी। मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे।
0: एमपी हाई कोर्ट में ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने के मुद्दे पर भी सुनवाई हुई। ट्विशा के परिवार वालों का इल्जाम था कि भोपाल के एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ है वो मौत की वजह पर पूरी तरह रोशनी नहीं डाल पा रहा, इसीलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली के एम्स में

0: दोबारा पोस्टमार्टम हो। इस पर दोनों पक्षों में से किसी ने एतराज नहीं जताया, लेकिन हाईकोर्ट की चिंता ये थी कि 10 दिन बाद क्या मुर्दा घर में रखी ट्रिशा की लाश की हालत ऐसी है जिसे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स ले जाया जाए। इस पर सरकारी वकील की दलील के बाद एमपी हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि ट्रिशा की लाश दिल्ली ले जाने की बजाय दिल्ली से एम्स के डॉक्टरों की एक टीम को बुलाकर भोपाल में ही पोस्टमार्टम करवाया जाए। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की वजह से पिछले 10 दिनों से ट्रिशा की लाश भोपाल में एम्स के ही मुर्दा घर में रखी हुई है।
1: एक याचिका ट्रिशा शर्मा जी के फादर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए था। उस संबंध में कोर्ट ने एम्स दिल्ली को निर्देशित किया है कि वो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें और वो टीम भोपाल में आकर के पोस्टमार्टम कंडक्ट करें।
2: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: हालांकि भोपाल के जिस एम्स अस्पताल के मुर्दा घर में ट्रिशा की लाश पिछले 10 दिनों से रखी है उसके खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तेज गर्मी और ऊपर से लाश को प्रिजर्व करने के लिए जितने तापमान में लाश रखी जानी चाहिए उसकी फैसिलिटी खुद एम्स के पास नहीं है। एम्स ने इस बारे में भोपाल के पुलिस कमिश्नर से भी बात कर अपनी चिंता जताई।
3: क्योंकि हॉस्पिटल से भी हमें कन्वे किया गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो बॉडी के डिकम्पोज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको कन्वे किया गया है।
0: हालांकि ट्रिशा के पिता का कहना है कि एम्स में ही ट्रिशा की लाश को अच्छे से प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। उन्होंने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये दावा किया कि लाश को खराब होने से बचाने के लिए -80 डिग्री के तापमान में लाश रखने की जरूरत नहीं पड़ती, -4 डिग्री तापमान में भी लाश को बेहतर ढंग से प्रिजर्व किया जा सकता है। दरअसल इंसाफ न मिलने तक ट्रिशा के परिवार वालों ने ट्रिशा की लाश लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पिछले 10 दिनों से एम्स के मुर्दा घर में ट्रिशा की लाश पड़ी है। मौत से पहले ट्रिशा की यह आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। अब पता नहीं CCTV कैमरे की घड़ी और तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये सचमुच खराब है, क्योंकि इसमें तारीख और वक्त गलत दिखाई दे रहा है। 12 अप्रैल की रात ट्रिशा सीढ़ियों के जरिए छत पर जाती नजर आ रही है। ट्रिशा के हाथ में हेडफोन है। छत पर जाने के करीब घंटे भर के अंदर ट्रिशा की मौत हो जाती है। घंटे भर बाद छत पर ट्रिशा फंदे के सहारे लटकी मिली थी। अब यहाँ सवाल ये है कि खुदकुशी करने जा रहा एक शख्स अपने साथ हेडफोन लेकर क्यों जाएगा। सीढ़ियों से छत पर जाने के दौरान भी ट्रिशा बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। यहाँ तक कि छत पर जाने के बाद उसने अपनी माँ से भी फोन पर बात की, तब भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये लगता कि बस अब वो मरने जा रही है। तो फिर आखिरी पलों में छत पर क्या हुआ? अब छत की तस्वीर तो है नहीं, तो कैसे पता चले?
4: मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया।
0: हाँ, सीढ़ियों पर फोकस कर रहे CCTV कैमरे के अगले फ्रेम से ये जरूर पता चलता है कि समर्थ और उसके साथ पहले एक और फिर दो लोग ट्रिशा का सीना दबाकर उसकी सांस वापस लाने यानी उसे CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कैमरे की एक और तस्वीर बड़ी अजीब है। ये जज रही ग्रीवाला सिंह सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। ऊपर जाने वाली सीढ़ी के शुरुआत में शायद एक कमरा है। ग्रीवाला सिंह दरवाजा खोलती हैं और कमरे में दाखिल हो जाती है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब ग्रीवाला सिंह ऊपर आकर कमरे में जा रही होती हैं, तब उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर उनका बेटा समर्थ सिंह ट्रिशा को CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीवाला सिंह एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें ऊपर की तरफ नहीं उठाती, न ऊपर देखने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। है ना अजीब? इसके आगे की तस्वीर तो और भी ज्यादा अजीब है। कुछ पल बाद ही ग्रीवाला कमरे से बाहर आती है, हाथ में उनके कोई बैग या पर्स है, पर इस बार वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है। जाहिर है ऊपर जो कुछ हो रहा है उन्हें सब नजर आ रहा है। वो समझ भी रही होंगी कि ट्रिशा के साथ क्या हुआ या समर्थ इस वक्त वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि मानो ग्रीवाला सिंह को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो पल भर के लिए ऊपर देखती है और फिर सीढ़ियों के रास्ते नीचे चली जाती है। अब जरा सोचिए, एक घर में एक हादसा हुआ है, ऐसे में किसी का भी रिएक्शन कम से कम ऐसा तो नहीं होगा जैसा जज रही गिरिबाला सिंह का है। कैमरे में कैद ये सबूत और एफआईआर में दर्ज आरोपी के कॉलम में ये पहला नाम है, यानी जज रही गिरिबाला सिंह का नाम। कानून का फायदा उठाकर बेशक गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत लेकर गिरफ्तारी से बच चुकी है, भोपाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन कमाल देखिए कि आरोपी नंबर वन होने के बावजूद 10 दिन बाद भी भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह से अब तक एक बार भी पूछताछ नहीं की है। अब चूंकि ट्रिशा का पति समर्थ सिंह फरार है तो 12 अप्रैल की रात की कहानी, क्राइम सीन का वाकया और ट्रिशा की मौत को लेकर भला गिरिबाला सिंह से बेहतर जानकारी पुलिस को और कौन दे सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि भोपाल पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है जो उसने अब तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ ही नहीं की। किसी आम सास ससुर के मामले में क्या यही भोपाल पुलिस ऐसा ही करती है? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
7: How they looked after game one.
8: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
9: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ।
3: राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन का सीमा यहां पहुंच गया है कि अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। राजनीतिक सुचिता, राजनीति में एक दूसरे नेताओं के लिए शब्दावली, ये सब चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, उसका एक परिचय बताती है।

0: पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के विभिन्न नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। बंगाल की कमान संभालने के बाद शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री शुभेंदु। विश्वास शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह पुलिस हिरासत में, बार काउंसिल ने रद्द किया लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, रैपिड मेट्रो की सेवा एक घंटे तक बाधित, लोग ट्रैक से पैदल जाने को हुए मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर दौरा, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी है बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको हरियाणा के गुरुग्राम से बिजली संकट पर एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में बता दें। गुरुग्राम के सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर के मेन ट्रांसफार्मर में आग लगने से 7 बिजली घर ठप हो गए, इससे रैपिड मेट्रो की सेवा काफी देर तक बाधित रही। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रैपिड मेट्रो में सवार लोग मेट्रो लाइन के साइड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इनके रेस्क्यू के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर ठीक होने में 8 से 10 घंटे लगेंगे और इसीलिए देर रात तक सप्लाई बहाल होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, बट लोग अभी भी ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की खबर पर लगातार आज तक पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर पुणे से आ रही है, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी। सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा को एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक बात और हैरान करने वाली यहां पर है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं और तीनों के नाम मनीषा ही हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अरविंद, ये पेपर लीक के जो गुनहगार हैं इनके गिरफ्तार होने का सिलसिला थम नहीं रहा, क्या लगता है अरविंद ये कितनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं और देश भर में अभी कितनी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कैसे इस मामले में कार्रवाई अभी चल रही है? अरविंद
2: देखिए सही, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बात ये है कि एनटीए ने जिनको एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था उन्हीं पर आरोप है पेपर लीक करने का, पेपर से जुड़े जो सवाल थे वो लीक करने का। और एनटीए के जो नीट यूजी 2026 जो पेपर था उसकी प्रक्रिया का जो हिस्सा थे, ऐसे 3 प्रोफेसर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो ताजा गिरफ्तारी हुई है वो फिजिक्स की ये प्रोफेसर हैं जिनका नाम मनीषा संजय हवलदार है, ये पुणे की रहने वाली है और ये एक कॉलेज है वहां पर पढ़ाती है, प्रोफेसर है वहां पर। और इन पर आरोप है कि इन्होंने एक सह आरोपी थी बॉटनी की जो टीचर थी मनीषा मंडहरे, उनको फिजिक्स का जो पेपर है वो शेयर किया था और वही जो सवाल है वो एक पेपर में आया था। जी
0: बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आगे पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को संशोधित करने के लिए एसआईआर शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि जून से अक्टूबर के बीच एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी एसआईआर को हथियार बनाकर बिहार और पश्चिम बंगाल में जीत गई है, इसीलिए महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह से सतर्क है।

0: महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत से विपक्ष हैरान है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोका जाए। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर लगातार वोट चोरी और एसआईआर में धांधली करके जीतने के आरोप लगा रही है।
1: ये कांग्रेस आज एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चिंता जता रही है, बैठकें कर रही है, आखिरकार क्या सवाल उठा रहे हैं आप?
2: नहीं देखो, बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के खून में है। ईमानदारी से फिर चुनाव करके ये जीत नहीं सकते और ये हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम और लोग अपोजिशन के विरोधी होके वोट काटने का काम, ये एसआईआर का मूल उद्देश्य है। इसके पीछे पूरी राजनीति है। ये कोई क्या अधिकार है? इलेक्शन कमीशन को कौन सा अधिकार दिया है? आपको जो भी यहां का 18 साल पूरा करता है उसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है। नेशनलिज्म चेक करने का काम उसका नहीं है। फिर भी इस तरह का ये लगाकर ये वोट काटना चाहते हैं, अपोजिशन की वोट काटना चाहते हैं। इसमें अभी जो एविडेंस मांगा गया है तो उस सबको लेकर हम लोग एक आज जो बीएलए 1 नियुक्त किया गया है सब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो पूरे विधानसभा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बीएलए 1 करके जिसकी नियुक्ति किया है उसको आज ट्रेनिंग होगी। फिर बाद में महाराष्ट्र में हर जगह में ट्रेनिंग दिया जाएगा।
0: इस बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने ऐलान किया है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के सभी 9,86,00,000 मतदाताओं के रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए पूरे सूबे में एक विशाल एसआईआर अभियान शुरू कर रहा है। महाराष्ट्र में एसआईआर जून से अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसके तहत 1,00,000 से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर आईडी कार्ड की जांच करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और फॉर्म इकट्ठा करेंगे। 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का मसौदा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा। 4 सितंबर 2026 तक नागरिक मसौदा सूची के संबंध में अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम और अपडेटेड वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
3: महाराष्ट्र मध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन सुरू करण्यात येत आहे, त्याबाबत पूर्ण माहिती देण्यासाठी आपल्याला आज बोलवलेले आहेत। संविधानाच्या कलम 324 अन्वये प्राप्त अधिकारात भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात विशेष सखोल पुनरीक्षण घेण्याबाबत 24 जून 2025 मध्ये आदेश निर्गमित केलेले आहेत।
0: कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आने वाले वोटर लिस्ट संशोधन अभियान पर सवाल उठा दिए। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया है।
4: एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट में नामों को कटवाना, ये सिलसिला पूरे भारत में चल रहा है और एसआईआर के माध्यम से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता वहां पर लाई है। इसके पहले वोट चोरी के माध्यम से फर्जी वोटों को बढ़ाकर महाराष्ट्र में सत्ता हाथी आई थी। अभी वोटर लिस्ट को कम कर वोटर लिस्ट के जो मूल मतदाता है उनको हटाकर जो एसआईआर की जो साजिश चल रही है उस पर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और आज हमारा माइक्रो प्लानिंग यहां संपन्न हुआ, 288 हमारी जो पूरी विधानसभा है उसके बीएलए 1 की जो नियुक्तियां की थी आज उनके साथ इसको लेके कार्यशाला संपन्न हुई और सतेज रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला हुआ।
0: इसी मुद्दे पर आज महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। इससे पहले 20 मई को महाविकास अघाड़ी के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की। एसआईआर की प्रक्रिया के साथ कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की भी मांग की है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल 15 लोगों को अदालत में पेश किया गया जिनमें से एक नाबालिग निकला। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15 आरोपियों को 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
0: मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। यहाँ रेलवे स्टेशन कई दशकों से 500 अवैध झुग्गियों से घिरा था। रेलवे की जमीन पर यहाँ करीब 3000 लोग लंबे वक्त से रह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 4 दिन में अवैध झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। अब चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है।
6: मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में ये गरीब नगर है जहां पर 19 मई से रेलवे तोड़क कार्रवाई कर रही है। तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी और रेलवे के अधिकारी इस वक्त यहां काम पे लगे हैं और आप देख लीजिए जिस तरीके से जो तोड़क कार्रवाई हो रही है उस बीच में हजारों जो लोग हैं वो अपना सामान, घर का सामान ले लेके निकल रहे हैं। दुख और गर्मी और परेशानी और अनसर्टिनिटी, ये सब चीजें उन लोगों के आसपास हैं जिनका घर टूटा है, लेकिन रेलवे कह रही है कि उनको यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है जिसके लिए ये 600 करोड़ की जो जमीन है ये बहुत अहम है। और यही वजह है कि ये जो पूरी कार्रवाई है जो 23 मई तक चलेगी उसके तहत बहुत सारा ये जो तोड़क कार्रवाई के तहत जो मलबा निकल रहा है उसे यहाँ से निकाल के पूरी जमीन को साफ किया जाएगा और उसके बाद फेंसिंग करके यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू होगा।
0: 20 मई को इसी इलाके में अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद भी गिराई गई थी जिससे नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पत्थरबाजी के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को 15 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जिनमें से एक नाबालिग निकला। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15 आरोपियों को 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
6: बरसों से जो लोगों का आशियाना था वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में जो तोड़क कार्रवाई वेस्टर्न रेलवे की पिछले कई दिनों से चल रही है उसमें कई सारे लोगों का आशियाना, कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, ये सब तोड़े जा चुके हैं। और इसी वजह से जब ये देख रहे थे अपने तोड़क कार्रवाई को करते हुए रेलवे के और अपने घरों को टूटते हुए, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को टूटते हुए, तब उनका गुस्सा फूट पड़ा। स्टोन पेल्टिंग, वो आप देख रहे हैं उस इलाके में जो कई सारे घर हैं वहाँ से कई सारे लोगों ने स्टोन पेल्टिंग शुरू की थी, जिसके बाद जो रेलवे पुलिस, आप देख लीजिए रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस, जीआरपी की पुलिस, सब तरह की तकरीबन यहाँ पर 1200 लोग काम कर रहे थे प्रशासन की तरफ से, वो सब के सब तुरंत यहाँ जो लोग तोड़क कार्रवाई को रोकने की के लिए स्टोन पेल्टिंग जिन्होंने किया उनके ऊपर उन्होंने तुरंत धावा बोला। स्टोन पेल्टिंग तो 15 दिन मिनट में रुक गई, लेकिन अब उसके रिपरकशंस लोगों को देखने मिल रहे हैं। तकरीबन 19 लोगों को अब तक में गिरफ्तार कर लिया गया है, एक उसमें से माइनर है। 15 लोगों की पेशी अदालत में कल हुई थी और उसके बाद उन सबको पेश करके पुलिस ने 26 मई तक का रिमांड लिया है। उनसे अब कड़क पूछताछ होगी।
0: अतिक्रमण हटने के बाद खाली हुई जगह का इस्तेमाल मुंबई से शुरू होने वाली 50 नई ट्रेनों के संचालन और बांद्रा टर्मिनस के विस्तार के लिए किया जाएगा।
7: हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो मैं कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है, उस आदेश में दो मुख्य चीजें थी। एक तो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश नहीं करना है और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें डिसमेंटल करना है, डिमोलिश करना है। तो जो बाकी जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं ऑलमोस्ट 100% हमने, आज चौथा दिन है, ऑलमोस्ट 100% हमने सारा का सारा जो इलीगल स्ट्रक्चर हैं उन सबको हमने डिमोलिश कर लिया है, उन सबको तोड़ दिया है। अभी फिर भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके हायर फ्लोर्स में हमारे लोग जो हैं मैन्युअली डिसमेंटल कर रहे हैं।
6: ये जो है ये रेलवे ट्रैक के पास वाला है जहां हम जो लीगल है,
7: देखिए इन स्ट्रक्चर्स की स्टेटस ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर हैं उनको डिसमेंटल ना किया जाए। तो ये जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर हैं उनके जो ग्राउंड फ्लोर है उनको हम रिटेन कर रहे हैं और बाकी जो हायर फ्लोर्स हैं चूंकि वो बहुत हाईली अनसेफ हैं और कभी भी टूट सकते हैं तो उनको हम मैन्युअली डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि उनके ग्राउंड फ्लोर को हमें जो है रिटेन करना है तो इन स्ट्रक्चर्स को हम मशीन से नहीं तोड़ सकते।
0: लेकिन अवैध झुग्गियों में रहने वाले लोग अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसके बदले उन्हें घर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ 40 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे थे और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी। इसीलिए इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। विद्या, मुंबई, आज तक।
5: मुंबई की बांद्रा झील को प्रदूषित होने के कारण से पूरी तरह खाली करा लिया गया। अब उसकी तलहटी से गंदगी हटाने का काम चल रहा है। झील को संवारने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। कैसे 20 दिन तक झील से पानी निकाला गया, देखिए।

0: बीएमसी ने बांद्रा में झील के कायाकल्प का काम शुरू कर दिया है। स्वामी विवेकानंद झील और बांद्रा तालाब के नाम से पहचाना जाने वाला यह पर्यटन स्थल अब सवारा जा रहा है। बांद्रा पश्चिम में 7.5 एकड़ में फैली यह झील मुंबई का एक प्रमुख जल निकाय है। यहाँ का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित और गंदा हो चुका था कि पहली बार इसका पूरा पानी निकाला गया है।
1: इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में हैं और ये बांद्रा तालाब जिसका पानी अब निकाल दिया गया है, तकरीबन 15 से 20 दिन लगे इसका पानी निकालने में। ये जगह आप देख रहे हैं, ये 7.5 एकड़ इतनी बड़ी जगह है। इस वक्त बीएमसी ने जो प्लान या प्रोग्राम हाथ में लिया है वो ये है कि पहले इस पूरे तालाब का पानी निकालना, उसके बाद डीसिल्टिंग, यानी कि सालों साल ये तालाब काफ़ी पुराना माना जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह से नैसर्गिक झरने हैं जहाँ से पानी आता है, लेकिन सफाई कब हुई ये किसी को पता नहीं है। तो आप मान सकते हैं पहली बार कई सालों में एक डीप क्लीनिंग हो रहा है, यानी कि पूरा पानी निकाला गया है। उसके बाद ये जेसीबी एक्सकेवेटर्स लाए गए हैं, डीसिल्टिंग यानी कि जो भी गंदगी जमा हुई हुई है वो पूरी निकाली जा रही है। उसके बाद जब मॉनसून अराइवल होता है तो जो नैसर्गिक झरने यानी कि स्प्रिंग्स और उसके साथ साथ रेन वाटर, ये आप कह सकते हैं फिर से यहाँ पर पानी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकेगा, ऐसा बीएमसी का मानना है। फेज 2 में ब्यूटिफिकेशन इस पूरे इलाके की जानी है ताकि लोग यहाँ पर आ सके और लोगों के लिए जगह ओपन रह सके।
0: बीएमसी को एक बेसलाइन बायोडायवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि बांद्रा के घनी आबादी वाले आवासीय इलाके की ये झील बेहद खराब स्थिति में है, जिसके बाद इस झील को पूरा खाली करने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। बांद्रा झील का पूरा पानी निकालने में करीब 20 दिन लगे थे। ये झील इस कदर प्रदूषित थी कि इसमें एक भी जिंदा जीव नहीं मिला, सिर्फ तलहटी में 2 मरे हुए कछुए मिले थे। अब इसमें जमी गंदगी को निकाल दिया गया है जिससे आने वाले मानसून में ये प्राकृतिक तौर पर दोबारा भर जाए।
2: नहीं, बेशक बांद्रा तालाब एक ऐतिहासिक लोकेशन है और हार्ट ऑफ बांद्रा एसवी रोड पे है और लोगों की ये डिमांड कई सालों से थी कि इसका पानी जो है वो साफ नहीं था, हरा हो गया था। और कई बार हमने कई सालों से प्रयत्न किया था कि इसमें एरिएशन, महानगर पालिका की तरफ से हमने ये मांग की थी कि पानी को एरिएशन नहीं मिल रहा है सालों से, इसके लिए इसकी क्वालिटी जो ख़राब हो गई थी। और महानगर पालिका ने IIT कंसल्टेंट अपॉइंट किए थे, कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया और उन्होंने एक स्टडी किया था कि इसको डी वाटर करके नीचे का जितना सिल्ट है सिल्ट कर निकाल के तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साफ पानी होगा। और एक सूवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डाल रहे हैं जिसका ये पानी रीफिल्टर करके दोबारा डालेगा। महानगर पालिका का कहना था कि यहाँ पर सूवरेज के कनेक्शन हैं, जो मैं बार बार कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, एक कुछ कनेक्शन था कई साल पहले हमने बंद किया था, लेकिन ठीक है, एक पहल महानगर पालिका ने की है तो मुझे अच्छी बात है कि कहा ना कहा महानगर पालिका एक प्रयत्न कर रही है कि तालाब को दोबारा अच्छा करे, दोबारा जिंदा करे और एक ऐतिहासिक जगह बांद्रा में उसको मेंटेन किया जाए। मसला ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है 16 करोड़ का है, एक लीटर का इन्होंने सुवरेज ट्रीटमेंट डाला है, लेकिन मेंटेन, मसला ये है कि लोगों में एक डर ये है कि आप बिग टिकट प्रोजेक्ट तो कर लोगे लेकिन मेंटेनेंस क्या होगा।
0: अब सवाल है कि क्या बीएमसी प्रशासन आगे इस झील को प्रदूषित होने से बचा पाएगा।
1: WTE इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है पुणे कंपनी, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है डिसिल्टिंग का पानी निकालने का दिया गया है। अब उसके बाद ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ब्यूटिफिकेशन करने के बाद आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये लेक एक ग्रीन एरिया की तरह है, यहाँ की जो मरीन लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, पानी प्रदूषित हो चुका था, इसलिए पूरा पानी निकालना उसके बाद रेन वाटर और बाकी नेचुरल रिसोर्स से पानी आना, ये एक बीएमसी ने रास्ता जो है वो अपनाया है। अब देखना ही होगा कि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि नेचुरल स्प्रिंग्स जो है वो यहाँ पर पानी का नेचुरल सोर्स हमको अभी भी दिख करके आ रहा है, लेकिन साफ सफाई होने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा साफ होगी और जैसा कहा गया कि आने वाले समय में इसको मेंटेन रखना भी एक बड़ा टास्क होगा। कैमरामैन साइफर पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
3: छोटा सा ब्रेक, मुंबई मेट्रो में होते हैं उपस्थित, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: स्वागत है एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में. महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार फैक्ट्री है जहां बुलेट प्रूफ कार तैयार

की जाती है, नेता हो या व्यापारी, सेलिब्रिटीज हो या बड़े पुलिस अधिकारी, जिन लोगों की जान को खतरा होता है वो यहाँ की कारों में सफर करते हैं, यानी कि बुलेट प्रूफ में। आप भी देखिए कैसे तैयार होती हैं बुलेट प्रूफ कार्स।

0: अभी तक आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में सुना होगा। बड़े नेता, मंत्री, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी संभावित खतरे की वजह से ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गोली चलने का भी असर ना पड़े। हमारी टीम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अहिल्या नगर में ऐसी कंपनी में पहुंची जो देश विदेश के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार करती है। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां कैसे बनती है, इन्हें मॉडिफाई करने में कितना खर्च आता है। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्या नगर में शील्ड आर्मरिंग कंपनी पहुंची।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: 45,000 स्क्वायर फीट में फैली ये कंपनी कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों और सुरक्षा बलों के लिए लंबे वक्त से बुलेट प्रूफ और बख्तरबंद गाड़ियां उपलब्ध करा रही है।
2: तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको कहते हैं फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेस होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहां पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है। उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गनपोर्ट कहते हैं, वहां से निकाल के उसे इजीली फायर कर सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का भी काम आपको मिलता है करने के लिए, फिर चाहे पुलिस का हो या फिर फोर्स का भी?
2: हाँ जी, तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, VVIP प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं।
0: शील्ड आर्मरिंग कई सेक्टर्स को सर्विस देती है जिनमें सरकारी और डिफेंस एजेंसियां शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि वो देश की करीब 80% सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को यहीं तैयार कर रही है।
2: इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है जहां पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।
3: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free.

0: पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

भोपाल में ट्रिशा मौत केस में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाबुक चला, लाइसेंस रद्द किया। ट्रिशा में मौत मामले में ट्विस्ट, पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, पहुंचा था सरेंडर कर। ट्रिशा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी अनुमति, सीबीआई करेगी अब जांच। ट्रिशा शर्मा के पिता बोले, रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ को बचाया जा रहा है, हमारे वकील को मारा गया है। सास जज गिरिबाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को होगी अब सुनवाई। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर राजनीतिक घमासान, भड़के मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी के नेता। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा, धर्मेंद्र सिंह ने कहा यह समाज और लोकतंत्र के लिए घातक। अभद्र टिप्पणी के बाद यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा एआई जनरेटेड है ये वीडियो। महोबा दौरे के दौरान यूपी अध्यक्ष अजय राय ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मिले। आईपैक केस में ममता के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम साय को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा, जान से मारने की मिली थी धमकी। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के राजनीतिक संकेत, सभी 403 सीटों पर हम तैयार। अखिलेश के सीट नहीं जीत की बात वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब साथ। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 परियोजनाओं का शिलान्यास। देवरिया में संबोधन के दौरान सीएम योगी बोले विकास अब रुकेगा नहीं, बताया लोग खुद ही योगी जी जय श्री राम कहकर करते हैं अभी बात। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा मंच, 3D इमेज जारी। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में परीक्षण, 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम अग्नि 1। यूपी बंगाल के बाद दिल्ली में भी बकरीद को लेकर सख्त दिशा निर्देश, खुले में कुर्बानी पर रोक। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले गाय, बछड़ा, ऊंट, अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी गैर कानूनी, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली में 28 मई को बकरीद के अवसर पर बंद रहेंगे सभी सरकारी ऑफिस, केंद्र सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली दंगा केस में साजिश के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से मिली राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की जमानत मिली। अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को सम्मानित किया, कहा भारत ने आतंकवाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम धामी सख्त, बोले देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं। राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को मतदान। 1 जून को जारी होगी चुनाव के लिए अधिसूचना, 8 जून तक होगा नामांकन। महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजीत पवार, तमिलनाडु में सीवी षणमुखम को राज्यसभा की 2 खाली सीट पर होंगे उपचुनाव। गुजरात राज्यसभा की 4 सीटों पर 18 जून को होंगे चुनाव, सभी सीटें निर्विरोध पूरी होने की संभावना। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में चार्जशीट दाखिल, निदा खान समेत 4 के नाम। मुंबई के बैंड्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा मामले में 19 गिरफ्तार, जांच तेज। मुंबई में पहली बार बैंड्रा तालाब का डीप वाटरिंग हुआ शुरू, बीएमसी ने झील के पुनर्जीवन का काम तेज किया। रिजर्व बैंक का निर्णय, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए 3.25 लाख करोड़ का डिविडेंड देने की घोषणा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस पर मांगी रिपोर्ट, राजा भैया, ब्रिजभूषण, शरण सिंह, धनंजय समेत 19 का ब्यौरा। ईंधन बचत की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम भजनलाल ने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनकी फरियाद सुनी।
मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी ने MBA छात्रा मौत केस में जांच समिति बनाई, अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल, लू के कारण DM का आदेश। दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान। दिल्ली NCR के लिए अलर्ट, आने वाले एक हफ्ते तक जारी रहेगा गर्मी का सितम। राजस्थान में प्रचंड गर्मी, हीट वेव से सावधानी बरतने की सलाह। सवाई माधोपुर में बेजुबानों की परेशानी, 45 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव, दोपहर में घरों से लोगों को बाहर न निकलने की अपील। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं पर्यटक, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को राहत। पहाड़ों पर अचानक बदला मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल के कई इलाकों में बारिश। शिमला में बारिश के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, पर्यटक खुश। चमोली में बदला मौसम, झमाझम बारिश के बाद गिरा पारू, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भगवान लक्ष्मण का श्रृंगार, हेमकुट साहिब के साथ लक्ष्मण मंदिर में करेंगे दर्शन। अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के द्वारा जागरूकता, बैनर पोस्टर के द्वारा सिविल सोसाइटी के सदस्य सड़कों पर उतरे, CRPF भी शामिल। गांधीनगर में स्वामी महावीर का सूर्य तिलक, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में हजारों भक्त उमड़े। रांची में भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन ने कूलिंग जैकेट पुलिस वालों को दी, 8 घंटे तक ये AC जैसी ठंडक देगी। फिरोजाबाद में पावर हाउस में लगा कूलर, भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की कोशिश। प्रचंड गर्मी के बीच मोगा में पानी का संकट, 30 साल पुरानी बस्तियों में टैंकर से पानी। चारधाम यात्रा में 20 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, केदारनाथ धाम में करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन। कर्नाटक के दयानंद सागर विश्वविद्यालय ने NVIDIA के साथ साझेदारी में भारत की पहली AI फैक्ट्री को स्थापित करने की घोषणा की, AI क्षमताओं को विकसित करना है उद्देश्य। अहमदाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण मोम बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, घंटों की मेहनत के बाद 15 गाड़ियों ने काबू पाया। अहमदाबाद में भीषण आग, दमकल ने काबू पाया, लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत बचाव का काम जारी। सूरत में बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर बंद फ्लैट में आग लगी, 11 12वीं मंजिल तक फैला धुआं, 10 लोगों का रेस्क्यू। हरियाणा के भिवानी में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट, 4 फूलों की दुकानें जलकर खाक। वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान शराब पीने का वीडियो वायरल, बिहार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओडिशा के गंजम में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 6 की मौत, 4 घायल। महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। यूपी में कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, बाइक सवार समेत 3 की मौत। बेगूसराय में पुलिस धमकी की कार में धक्का लगने के बाद महिला की दबंग गई, पिकअप चालक का कॉलर पकड़कर पिटाई कर। बेगूसराय में दबंगों का तांडव, जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर परिवार को पीटा। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में चलती ट्रेन से मां ने अपने ही 1.5 महीने के मासूम को फेंक दिया, लोगों ने जान बचाई। दुर्ग में एक घर से पूरे परिवार की 4 शव बरामद, घरेलू विवाद, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर। ओडिशा में काल बैसाखी तूफान का तांडव, 3 की मौत। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बसों की भिड़ंत में 2 की मौत, 2 घायल। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत, परिवार ने जांच की मांग की। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा, मोबाइल देखने के चक्कर में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 6 से अधिक घायल। पंजाब के मोगा में दोपहिया वाहन सवार महिला ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, दोनों की स्थिति गंभीर। केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग में बड़ा हादसा, बोल्डर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। गुजरात के नवसारी में जनगणना प्रशिक्षण के बीच हॉल में घुसा बंदर, मची अफरा तफरी। सूरत में पिता ने ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो घर से भाग गए 3 बच्चे। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमरस लुक दिखाई दिया, खूबसूरत तस्वीरें।
फेस्टिवल में पंजाबी सिंगर कलाकार मीत कौर का बोल्ड लुक रेड कार्पेट पर दिखी। साउथ मेगास्टार चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 158 की शूटिंग शुरू, पहुंचे पवन कल्याण।

आरा वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से जलवा बिखेरेंगे, ब्रिस्टन एरिना में म्यूजिक कॉन्सर्ट। सरकार ने पेट्रोल डीजल एलपीजी का भरपूर स्टॉक होने का दावा किया। अप्रैल में क्रूड ऑयल में 3.5% की कमी के बाद तेल आयात बिल 50% तक बढ़ाया। देश विदेश में मेलोडी ट्रॉफी की मांग बढ़ने के बाद पार्ले ने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट की थी। अगर अगस्त तक हॉर्मोज बंद रहा तो दुनिया भर में 2008 जैसी आर्थिक मंदी आने की चेतावनी। रुपए को 100 के पार जाने से रोकने के लिए आरबीआई ने $5 अरब की स्वैप नीलामी की। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 55,000 करोड़ की फंडिंग गैप होने का अनुमान। घर का ख्वाब साकार हुआ मुश्किल। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड का इस्तीफा, पति को कैंसर का हवाला देते हुए पद छोड़ा। अमेरिका ईरान के बीच शांति की कोशिश तेज, तेहरान पहुंचे पाक आर्मी चीफ। लुहांस्क में छात्रावास पर हमले पर पुतिन भड़के, कहा जानबूझकर किया गया हमला। यूक्रेन के लुहांस्क में यूक्रेन का भीषण हमला, रूस के कब्जे में है, 6 छात्रों की मौत, 15 लापता, 40 घायल। ज़ेलेंस्की का बयान, शांति के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव की उम्मीद। पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा अमेरिका, ट्रंप ने किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की। रूबियो बोले नेटो के सभी देशों को फायदा होगा। ग्रीनलैंड में अमेरिका दूतावास के उद्घाटन का विरोध, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, ट्रंप का विरोध। माउंट एवरेस्ट फतेह कर लौट रहे 2 भारतीयों की मौत, अरुण कुमार और संदीप अरे की थकान के कारण मौत। रोनाल्डो ने जीता पहला सऊदी अरब लीग, अल नासर बनी चैंपियन।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं वो आर्थिक और सामरिक बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ युद्ध की आशंका है, दूसरी तरफ जेब पर बढ़ता बोझ। अमेरिका और ईरान के तनाव ने पूरी दुनिया को एक बंद चेंबर में घुटने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे हफ्ते रुपए ने डॉलर के मुकाबले जबरदस्त गोते लगाए, गिरावट का खौफनाक रिकॉर्ड बना जिसने देश के हर नागरिक और नीति नियंताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इसी हफ्ते टूटकर लाइफ टाइम लो के स्तर को क्यों छू गया और ये संघर्ष कैसे लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि जैसे रुपया गिर रहा है देश के लिए आयात करना महंगा सौदा बन जाता है। और इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों को लेकर होने वाली बड़ी सुनवाई के बारे में बताएंगे। एक ऐसे बड़े केस की दोबारा सुनवाई होने वाली है जो देश की सियासत और सनातन की दिशा बदल सकता है। ये मामला है मंदिरों पर हद से ज्यादा सरकारी नियंत्रण का। लोग चढ़ावा देते हैं भगवान को, मंदिर को, लेकिन पैसा कहां जाता है? साल 2012 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के उन कड़े सरकारी कानूनों को चुनौती दी जिसके तहत मंदिरों के चंदे से लेकर मंदिर के प्रशासन तक सरकार का सीधा कब्जा है। हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है कि जब मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में सरकारी दखल नहीं होता तो सिर्फ हिंदू मंदिरों के दान और संपत्ति पर सरकारों की नजर क्यों है? अब देश के सैकड़ों अमीर मंदिरों के हक की यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। 24 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मंदिरों पर सरकार का हक रहेगा या नहीं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अब चीन नई सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के लिए मंजूर किए गए $14 बिलियन के पैकेज पर रोक लगा दी है। ये वही पैकेज है जिसके तहत अमेरिका ताइवान को नए और आधुनिक हथियार देने वाला था। ये रोक तब लगाई गई जब पिछले हफ्ते चीन ने बीजिंग दौरे पर आए राष्ट्रपति ट्रंप से ये कहा था कि वो ताइवान के मामले में दखल ना दें।

0: इस धमकी के बाद अमेरिका झुक गया और उसने ताइवान को हथियार देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति भी चीन के दौरे पर आए। उन्हें उम्मीद थी कि चीन नई गैस पाइपलाइन के लिए उनके साथ समझौता करेगा। जो तस्वीरें आई वो शक्तिशाली थी। इन तस्वीरों से चीन और रशिया ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। लेकिन यहां भी चीन ने रशिया के साथ गैस पाइपलाइन की डील नहीं की। चीन ने अमेरिका को यह बताया कि अब वो उसकी बराबरी पर खड़ा है और रशिया को यह बताया कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। और इन्हीं घटनाओं ने आज वैश्विक राजनीति के पूरे समीकरण बदल दिए हैं।
1: अगर वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते कद को समझना हो तो इससे बेहतर तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। साल था 1979। चीन के तत्कालीन वाइस प्रीमियर डेंग शियोपिंग अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस वक्त चीन की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। डेंग शियोपिंग चाहते थे कि अमेरिका उनका सहयोग करे और चीन की आर्थिक तरक्की को आसान बनाए। उसी दौर में ये तस्वीर खींची गई जब डेंग शियोपिंग अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का झुककर अभिवादन कर रहे थे। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ चीन भी बदल गया। आज 2026 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आए तो चीन झुककर अभिवादन नहीं कर रहा था, बल्कि वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था।
2: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: ये अमेरिका को चीन का एक कूटनीतिक संदेश था कि अब वो दिन लग चुके हैं जब दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता था, जिसमें अमेरिका ही इकलौती महाशक्ति होती थी। लेकिन अब ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बदल रही है और आज जो हुआ है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस अमेरिका ने दशकों तक ताइवान को चीन के खिलाफ एक लिवरेज की तरह इस्तेमाल किया, उसी ताइवान पर आज अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हुंग काओ ने सीनेट में यह ऐलान किया है कि अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों की सप्लाई रोक रहा है।
3: We've encouraged Taiwan to buy arms from us, and all of a sudden there's a pause.
4: Chairman, I have not heard, I have not spoken to the Taiwanese. However, we have done some military, foreign military sales to them, and it's just right now we're doing a pause. In order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty, but we're just making sure we have everything. But then the foreign military sales will continue when the administration deems necessary, sir.
1: जिन हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने रोकी उनके लिए $14 बिलियन का पैकेज मंजूर हुआ था और इससे सबसे ज्यादा परेशानी चीन को थी। चीन का कहना था कि अमेरिका ताइवान को हथियार देकर उसके साथ अपने रिश्ते कैसे सुधार सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले हफ्ते बीजिंग के दौरे पर गए तब भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा। इस धमकी पर तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन आज ताइवान को हथियारों की सप्लाई रोककर अमेरिका ने सब क्लियर कर दिया। अमेरिका ने बता दिया कि मौजूदा वक्त में वो चीन को खुश रखना चाहता है और इसके लिए अगर ताइवान को हथियारों की सप्लाई भी रोकनी पड़े तो वो भी अमेरिका करने के लिए तैयार है।
5: 台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定。
1: ताइवान और चीन पर अमेरिका की नीति में ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है और पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन से तो कुछ लेकर नहीं आए, उल्टा चीन के लिए उन्होंने ताइवान पर अपनी नीति ही बदल डाली। ये कूटनीति के चेस गेम में चीन की पहली जीत है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आए। शी जिनपिंग और पुतिन के हैंडशेक की ऐसी तस्वीरें आईं जो अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रही थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि चीन और रूस के संबंध भी अपने सबसे मजबूत दौर में हैं, लेकिन चीन ने यहाँ भी एक दांव खेला। राष्ट्रपति पुतिन यही सोच रहे थे कि चीन इस बार गैस पाइपलाइन की परियोजना को अपनी मंजूरी दे देगा। ये 2600 किलोमीटर लंबी वो गैस पाइपलाइन है जो रूस के पश्चिमी साइबेरिया को मंगोलिया और चीन से जोड़ने वाली है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इससे रूस हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस चीन को भेज सकता है। ये 525 टेरावाट घंटों की ऊर्जा के बराबर है, जो ब्रिटेन जैसे देश की साल भर की बिजली खपत से भी दोगुना है। और पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि इस गैस पाइपलाइन पर चीन राष्ट्रपति पुतिन के बीजिंग दौरे पर जरूर सहमति देगा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया और क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। पहले रूस की नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश थे, लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बना ली। इसके कारण रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रॉम को भारी नुकसान हुआ और रूस यूरोप की जगह नए खरीदार ढूंढने लगा। यहां नए खरीदार के लिए रूस के पास चीन से अच्छा विकल्प नहीं था। रूस ने यही सोचा कि अगर कल को चीन उसकी गैस का बड़ा हिस्सा खरीदने लगा तो उसकी यूरोपीय देशों पर बनी निर्भरता खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ चीन को इसमें फायदा नहीं था। चीन की गैस अभी जहाजों में लाद कर लाई जाती है और ये जहाज जिन दो रास्तों से गुजर कर आते हैं वो दोनों ही संवेदनशील हैं। इनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब चीन भी यही सोच रहा था कि अगर रूस से सीधी पाइपलाइन उसके देश तक पहुंच गई तो समुद्र के रास्ते गैस लाने का झंझट खत्म हो जाएगा, और राष्ट्रपति पुतिन भी यही सोचकर बीजिंग आए थे कि जब चीन का इस प्रोजेक्ट में फायदा है तो वो मना क्यों करेगा या इसे क्यों ही लटकाएगा। लेकिन यही रूस से गलती हुई। रूस ये भूल गया कि चीन इस वक्त सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो जानता है कि इस पाइपलाइन के लिए रूस के पास ज्यादा समय नहीं है और वो इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता, जबकि चीन के पास समय ही समय है और वो इसके लिए इंतजार कर सकता है। और सब जानते हैं कि कूटनीति वही जीतता है जो देश जल्दबाजी में ना हो और जो इंतजार कर सकता हो, और इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन के बीजिंग दौरे पर ये डील हो नहीं पाई। यानी एक तरफ चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप को झुकाया और उन्हें ताइवान पर अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन को भी बीजिंग बुलाकर उनका भरोसा जीता, लेकिन उनके साथ गैस पाइपलाइन की डील पर हस्ताक्षर नहीं किए। और यही बातें बताती हैं कि चीन इस बार कुछ अलग कर रहा है। चीन दुनिया को खुद पर निर्भर बनाना चाहता है, लेकिन वो खुद किसी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर रूस पाइपलाइन के रास्ते चीन को गैस की आपूर्ति करना शुरू करता है तो चीन रूस की गैस पर निर्भर हो जाएगा, और ये निर्भरता रूस के लिए लिवरेज बन जाएगी जिसमें चीन अभी फंसना नहीं चाहता। लेकिन इसी दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया को चीन पर निर्भर बनाकर रखना चाहते हैं। ये बात बहुत कम लोगों ने समझी कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कंपनियों के सीईओज को अपने साथ बीजिंग लेकर क्यों आए थे, लेकिन हकीकत में यहाँ भी चीन अपनी ताकत को दिखा रहा था। जैसे इलॉन मस्क की टेस्ला अमेरिका में सोलर और एनर्जी स्टोरेज बिजनेस बढ़ाने के लिए चीन की एक कंपनी से $3 बिलियन के कुछ हाई एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी, लेकिन चीन की सरकार ने इस मशीनरी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, और इसके बाद इलॉन मस्क बीजिंग दौरे पर इसलिए पहुंचे ताकि ये रोक किसी तरह हट जाए। इसी तरह की कहानी एनवीडिया कंपनी की है। अमेरिका ने पहले चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स बेचने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन बाद में कुछ लिमिटेड मंजूरी दी गई ताकि एनवीडिया कुछ H200 चिप्स चीन की कंपनियों को बेच सके, लेकिन चीन की सरकार ने इस खरीद को भी पूरी तरह मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण एनवीडिया के जेनसेन हुआंग को भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अमेरिका आना पड़ा, और ये सूची बहुत लंबी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चीन अब जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है खुद को नई सुपर पावर साबित करना। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: एक सवाल ये भी है कि क्या चीन दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा है, और अगर बीजिंग वॉशिंगटन की जगह लेता है तो इसका पूरे विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या चीन का सुपर पावर बनना दुनिया में सिर्फ अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेगा, या इससे अस्थिरता और अनिश्चितता भी बढ़ जाएगी? क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर हमेशा से चिंता जताई गई है।
1: कूटनीतिक दुनिया में शक्ति प्रदर्शन इस बात से देखा जाता है कि किस देश में वैश्विक नेताओं का सबसे ज्यादा आना जाना हो रहा है, और अभी मौजूदा वक्त में चीन पूरी दुनिया के लिए एक पावर सेंटर बना हुआ है। जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता बीजिंग के दौरे पर जा रहे हैं उसमें एक खास पैटर्न नजर आता है, और ये पैटर्न बताता है कि शी जिनपिंग बीजिंग को अब नया वॉशिंगटन बना रहे हैं। सबसे पहले इस साल की शुरुआत में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, फिर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन इस वक्त खुद को दुनिया को नए पावर सेंटर के रूप में पेश कर रहा है। दुनिया चीन के इस उभार को सिर्फ अमेरिका के विकल्प तक सीमित मान रही है, लेकिन हकीकत में ये पावर शिफ्ट काफी कुछ कह रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं का सबसे तेजी से विस्तार कर रहे हैं, वो देश चीन है। ईरान युद्ध में चीन ने यही दिखाया कि वो शांति की तरफ खड़ा है और वो अमेरिका के युद्ध थोपने के तरीकों का विरोध करता है, लेकिन हकीकत में इसी चीन ने हथियारों से लेकर मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल के लिए ईरान की खूब मदद की है। चीन ने ऊपर से यही दिखाया कि वो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार पक्ष बन सकता है, लेकिन अंदर से चीन की नीतियों को सब जानते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया के कुल निर्यात में लगभग 15% हिस्सेदारी है। हर 100 में से 15 रुपए का सामान चीन से ही बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचता है और अपनी इसी एक्सपोर्ट पावर को चीन ने हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया है। चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दुनिया को ब्लैकमेल करना हो या हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करना हो, चीन ने दुनिया के सामने अब तक चुनौतियां ही पेश की हैं। और आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश और खासकर यूरोपीय देश अमेरिका से शिफ्ट होकर चीन की ओर जा रहे हैं, तो यहां दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीन सुपर पावर बन गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा।
6: 全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪。दुनिया
1: के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति एक ही महीने में स्टेट विजिट के लिए चीन आए। यही नहीं, कनाडा के किसी प्रधानमंत्री ने 9 साल बाद पहली बार चीन का दौरा किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूरे 8 साल बाद चीन की स्टेट विजिट पर आए और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए ये चीन की पहली आधिकारिक यात्रा थी। और ये सारे दौरे इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका की नीतियां दुनिया को असहज कर रही हैं और उन्हें इस वक्त चीन एक विकल्प के रूप में नजर आ रहा है। यानी चीन दुनिया का नया पावर सेंटर तो बन रहा है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि दुनिया को चीन पर भरोसा है। इसका कारण ये है कि दुनिया का अब अमेरिका के साथ अविश्वास बढ़ रहा है। अमेरिका की मनमर्जियों और अनिश्चितता से भरे फैसलों ने दुनिया को मजबूर किया है कि वो उसे छोड़कर किसी दूसरी महाशक्ति को अपना आधार बनाए, और इसके लिए चीन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन आज यहाँ दुनिया को ये सोचना होगा कि अगर चीन सुपर पावर बन भी गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा और क्या चीन पर दुनिया कभी भी पूरी तरह विश्वास कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाल में 2 बार कीमतों में इजाफा हुआ, इनमें भी वृद्धि की आशंका है। ये आग सिर्फ भारत एक तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक भयंकर तेल संकट की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर है। इस चौतरफा आर्थिक संकट के बीच वॉशिंगटन से आए संकेतों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो फिर से युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जिससे दुनिया में फ्यूल, महंगाई, इन सब का संकट बढ़ते जा रहा है।

0: पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ रविवार तक का वक्त है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अगले दौर में, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि डील नहीं हुई तो अमेरिका इससे भी बड़ा सैन्य हमला कर सकता है।
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives.
0: पलटवार में ईरान ने भी पूरी दुनिया को दहलाने वाली चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगी। इस जुबानी जंग का सीधा असर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है और रविवार तक बात नहीं बनी तो दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सस्पेंस और युद्ध के हालात ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे ज्यादा तपिश भारत की तरफ बढ़ रही है। दुनिया पर जो दबाव है सो है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के रास्ते पर जंग का ताला लगने का सीधा मतलब है भारत में महंगाई का महाविस्फोट। सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल अप्रैल के महीने में भारत का क्रूड इंपोर्ट पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 4.3% घट गया है, यानी हमने तेल कम मंगाया। लेकिन तेल कम खरीदने के बावजूद भारत सरकार का तेल खरीद का बिल पूरे 50% बढ़ गया है, यानी कम माल के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो जो तेल हमें 100 रुपए में मिल जाता था, अब उससे भी कम 150 रुपए में मिल रहा है। अकेले अप्रैल महीने में ही देश को तेल आयात पर 50% ज्यादा विदेशी मुद्रा फूंकनी पड़ी। इस आफत के पीछे दो बड़े विलेन हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, और दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर कमजोर होना। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद डॉलर में होती है, इसलिए रुपए के कमजोर होने से भारत को डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से बहुत ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। 27 फरवरी को यानी युद्ध जैसे हालात बनने से पहले की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.95 के स्तर पर था, लेकिन आज ईरान और अमेरिका के संकट के बीच रुपया ऐतिहासिक रूप से टूटकर 95.95 पर झूल रहा है। महज 2.5 महीनों के भीतर रुपया करीब 5.5% तक टूट चुका है। रुपया जितना कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल उतना ही बेकाबू होता जाएगा। रुपए की गिरावट की मार सीधे रसोई पर पड़नी शुरू हो गई है। खाड़ी संकट की शुरुआत से लेकर अब तक भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर जो चोट पड़ी है उसकी लिस्ट देखिए। बीते 15 और 19 मई को पेट्रोल 3.87 रुपए और डीजल 3.91 रुपए तक महंगा हो गया। सीएनजी के दाम भी 3 रुपए बढ़ गए। गाड़ियों के ईंधन से अलग 14 मई को दूध के कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 13 मई को सोने पर आयात शुल्क 9% तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए की सीधी मार पड़ी तो कमर्शियल सिलेंडर देखते ही देखते 4 बार में कुल 1,331 रुपए तक महंगा हो चुका है। ईरान संकट की मार सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ रही बल्कि अमेरिकी डॉलर के सामने पूरा एशियाई बाजार घुटनों पर आ गया है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस तनाव के बाद फिलीपींस का पैसो और इंडोनेशियाई रुपया सबसे ज्यादा टूटे हैं, जिनमें करीब 6-7% तक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। भारत के रुपए के साथ साथ थाईलैंड का बाट और साउथ कोरिया का वॉन भी डॉलर के मुकाबले 5% से ज्यादा का गोता लगा चुका है। वहीं एशिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली करेंसी जापानी येन भी इस संकट में संभल नहीं पाई और वो भी करीब 2.5% कमजोर हो चुकी है। साथ है, खाड़ी में लगी ये आग पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा रही है। लेकिन इस महासंकट की असली जड़ खाड़ी देश का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीजफायर के ऐलान के 6 हफ्ते बाद भी तेल के जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो सकी है। इस नाकेबंदी के बीच ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आधिकारिक टैक्स यानी टोल वसूलने के लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया है जिसे नाम दिया गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। इतना ही नहीं, इस टोल व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए ईरान की ओमान के साथ बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। ईरान का प्लान साफ है, अगर हॉर्मुज से गुजरना है तो पर्ची कटवानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और शिपिंग कंपनियों के बीच अब एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को ये टोल टैक्स दे देना शुरू कर देना चाहिए? क्या ये पूरी दुनिया को ज्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा? इस रास्ते के बंद होने से रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल फंस जाता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोजाना 11 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। इसके मुकाबले ईरान गुपचुप तरीके से रास्ता देने के लिए प्रति जहाज करीब 16 से 17 करोड़ रुपए का टोल वसूल रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक जगह खड़े खड़े लाखों गैलन तेल और चालक दल का खर्च उठाने से कहीं बेहतर है कि ईरान को 16 करोड़ रुपए की पर्ची थमाकर जहाज निकाल लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया स्वेज या पनामा नहर को पार करने के लिए लाखों डॉलर चुकाती है। लेकिन पेंच कूटनीति का है, अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखी है। ऐसे में जो भी देश या कंपनी ईरान को यह टोल देगी, उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक जाएगी। यानी कंपनियां आर्थिक रूप से तो टोल देना चाहती हैं, लेकिन अमेरिकी गुस्से के डर से मजबूर है। अगर खाड़ी के देशों और ईरान के बीच इस टोल को लेकर कोई क्षेत्रीय समझौता नहीं बनता, तो हॉर्मुज का ये लॉकडाउन भारत के इंपोर्ट बिल को 50% से बढ़ाकर 100% तक कर सकता है। साफ है कि हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह का सीधा कनेक्शन भारत की हर रसोई और हर नागरिक की जेब से जुड़ा हुआ है, और भारत के लिए इस संकट का सामना करना आसान बिल्कुल नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू मंदिरों को लेकर एक ऐसे केस की सुनवाई होने वाली है जिसमें अगर फैसला हिंदू मंदिरों के पक्ष में आ गया तो ऐसे नेताओं को झटका लगेगा जो सनातन का खात्मा चाहते हैं। ये केस मंदिरों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का है। देश के कई राज्यों में मंदिर प्रशासन में नियुक्ति से लेकर मंदिर को मिलने वाला चंदा, सब कुछ राज्य सरकारों का नियंत्रण उस पर होता है। इसी मुद्दे को लेकर साल 2012 में धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। साल 2015 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक इस केस पर सुनवाई चलती रही। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्यों की हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दोबारा से सुनवाई करने का फैसला किया है। इसका अर्थ समझते हैं, सुनवाई का मतलब यह है कि अब एक बार फिर से तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पुडुचेरी हो, हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। पूछा जाएगा कि आखिर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों होना चाहिए, सारा का सारा पैसा उधर क्यों जाना चाहिए। मंदिर में लोग चढ़ावा देते हैं, अपने श्रद्धा के हिसाब से देते हैं। हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण को लेकर तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम है 1959 का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धर्मार्थ हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्त अधिनियम 1987 है, और पुडुचेरी में हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 1972 लागू है। अब ऐसे में क्या होता है? देखिए, आज मुख्य रूप से इन कानूनों के जरिए राज्यों के हिंदू मंदिरों के बोर्ड बनाए गए। ये बोर्ड मंदिर के कामकाज की निगरानी करते हैं। इन बोर्ड्स के जरिए मंदिर पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये जो बोर्ड बनाया जाता है मंदिर का, वो राज्य सरकार के अधीन रहता है। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जब किसी अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थान में सरकारी दखलअंदाजी नहीं होती, तो फिर हिंदू मंदिरों को राज्य सरकारों ने कानून बनाकर अपने नियंत्रण में क्यों ले लिया? भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी राज्य की सरकार ये नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आय का कुछ हिस्सा विकास कार्यों पर अब खर्च करेगी। हिंदू मंदिरों को अलग रख दें तो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, इन सभी धर्म स्थलों के कामकाज में राज्य सरकारों का कोई सीधा दखल नहीं होता, लेकिन हिंदू मंदिरों में ऐसा नहीं है। जहां तक हिंदू मंदिरों की बात है, तो आरोप लगते हैं कि राज्य सरकारें कानून का हवाला देकर हिंदू मंदिरों में दखल देती हैं, धार्मिक आजादी छीनती हैं। मंदिर को मिलने वाला दान, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, पैसा यानी रुपया, सोना, चांदी, कपड़े, कई लोग कुछ भी देते हैं, तरह तरह के सामान देते हैं। इन अन्य सामानों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के बजाय दूसरे कार्यों में किया जाता है, और मंदिरों की कई बार इसकी वजह से उपेक्षा की जाती है। मंदिरों के आसपास का जो इलाका है, उसके विकास के लिए कुछ नहीं हो पाता, या मंदिरों के देखरेख के लिए नहीं हो पाता, या मंदिरों की सफाई के लिए नहीं हो पाता। मंदिरों की संपत्ति के रिकॉर्ड में धांधली की खबरें आती हैं। सरकारी नियंत्रण होने की वजह से मंदिर की जमीनों, मंदिर की संपत्ति ताकतवर लोगों द्वारा कब्जा कर ली जाती है, कई मामलों में तो ये भी आरोप लगे हैं कि मंदिरों को मिलने वाले दान का इस्तेमाल सरकार ने अपनी योजनाओं तक में कर दिया, जिससे श्रद्धालु खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे देश में हिंदू मंदिरों के कामकाज पर निगरानी के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहली है राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना और उसके तहत एक निगरानी बोर्ड की नियुक्ति करना, जो मंदिरों का सारा कामकाज, दान हो, संपत्ति हो, सबका एक रिकॉर्ड बनाकर रखती है और फैसले लेती है। जिन राज्यों में अलग से कानून नहीं है, वहां पर मंदिरों की व्यवस्था प्राइवेट ट्रस्ट यानी निजी ट्रस्ट हो, श्राइन बोर्ड हो, पारंपरिक मठ हो, अखाड़े हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, वो संभालती हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार एक संरक्षक के तौर पर काम करती है, जिसका मुख्य काम इन ट्रस्ट और श्राइन बोर्ड्स की व्यवस्था को बनाए रखना है। माना जाता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी में जो कानून है, वो हिंदू मंदिरों के कामकाज में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देते हैं। इन राज्यों की सरकारें मंदिर के कामकाज में सीधे दखल दे सकती हैं। बोर्ड के ट्रस्टी के तौर पर मनपसंद व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं। मंदिर प्रशासन की कभी भी जांच कर सकती हैं। मंदिर को मिलने वाले दान और खर्च की निगरानी कर सकती हैं। और तो और, कई मंदिरों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सीधी नियुक्ति भी कर सकती हैं। इसके अलावा हर साल इन राज्य सरकारों को मंदिर को मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा भी मिलता है। तमिलनाडु में करीब 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 35 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आय में राज्य सरकारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। असली विवाद इसी बात पर है कि राज्य सरकारों को मंदिरों की आय का हिस्सा क्यों मिलना चाहिए, और अगर ये मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में हो रहा है या नहीं, ये कौन सुनिश्चित करेगा। 24 जुलाई से अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्य सरकारों का हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं, और अगर नियंत्रण नहीं अगर होना चाहिए तो किस हद तक। समुद्र तट से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, हड्डियां कपाने वाली ठंड, बहुत दुर्गम रास्ता, लेकिन बाबा केदार के दर पर आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो चुके हैं। एक महीने से भी कम का समय और लगभग 6,00,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद भी हर रोज हजारों की भीड़ उमड़ रही है। इस आस्था को नमन है, इस श्रद्धा का पूरा सम्मान है, लेकिन इस बीच एक बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या केदार घाटी इतने बोझ के लिए तैयार है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पैर रखने तक की आज जगह नहीं है। दिन तो दिन, अब रात के अंधेरे में यात्रा चल रही है। सकरे रास्तों पर घोड़े, खच्चर, पैदल यात्रियों की कश्मकश जानलेवा खतरे में बदल चुकी है। जाम से बचने के लिए लोग खाई वाले खतरनाक शॉर्टकट्स ले रहे हैं। संवेदनशील मोड़ों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी, प्रशासन के दावे और भारी भीड़ के आगे ये सब कुछ छोटा लग रहा है। आस्था और श्रद्धा के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केदारनाथ का एक इकोसिस्टम है और वो बहुत संवेदनशील है। आखिर ये हमारे भगवान की स्थली है, ये वो जगह है जहां पर हम सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी भी है। ये इलाका दो दो बार बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेल चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्षमता से अधिक इंसानी दखल, पहाड़ों पर बढ़ता दबाव किसी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आज दिल से दिल ये बात की जाए। जब दुनिया के दूसरे देश ऐसी समस्याओं से निपट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जापान का जानते हैं माउंट फूजी, मशहूर माउंट फूजी, जब ओवर टूरिज्म यहां पर हो गया, ज्यादा पर्यटक पहुंचे, तो वहां की सरकार ने कड़े कदम उठाए। ना सिर्फ सैलानियों की संख्या सीमित की गई बल्कि भीड़ पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे तक टांग दिए गए। तो फिर केदारनाथ में सिर्फ नाम का रजिस्ट्रेशन क्यों, इसे सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर ये हमारी आस्था का मामला है। भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है और किसी समस्या से हम अपने आप को बचा सके। सरकार को महज कागजी नहीं बल्कि झेलने की क्षमता के आधार पर स्ट्रिक्ट डेली लिमिट तय करनी होगी। रात के समय यात्रा, घोड़े कचरों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगानी होगी ताकि आपात स्थिति में भगदड़ ना मचे। आस्था बनी रहे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तय हो, हिमालय का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, क्योंकि केदारनाथ की सुरक्षा ही बाबा के भक्तों की असली सुरक्षा है।

पिछले कुछ दिनों में देश में गर्मी ने बवाल मचाया हुआ है। आज जानते हैं उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर कितना है। बांदा में उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश में सबसे गर्म शहर। हालात ये बन रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मुमकिन है कि आपने महसूस किया हो पिछले कुछ दिनों से दिन हो रात हो, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। गर्मी के दिनों में ऐसा देखा जाता रहा है कि दिन में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन रात में तापमान गिर जाता था, 30 डिग्री 35 डिग्री तक रहता था, जिससे कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। पूरे दिन गर्मी से परेशान रहे लोगों को रात में कम तापमान की वजह से कुछ राहत मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय में रात का तापमान भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ और ये स्थिति लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति वो ऐसे कमरे में वो रह रहा है जिसमें हवा के आने जाने की या एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। कम से कम रात में उसको थोड़ी राहत मिलती थी कि पंखा चल रहा है और तापमान गिरा हुआ है, लेकिन दिल्ली में मौसम पर नजर रखने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने चेन्नई के 50 घरों पर एक अध्ययन किया। मध्यम निम्न आय वर्ग लोगों के घरों का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। कई बार रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता था, तो शहर में दिन के अधिकतम तापमान जैसा ही था। यानी घरों में रहने वाले लोगों को बाहर के तापमान से बहुत ज्यादा राहत नहीं है, यहां तक कि रात के समय में भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 से 2018 के बीच भारत का औसतन जो तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साल 1986 से 2015 के बीच साल के सबसे गर्म दिन का तापमान लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि रात का तापमान बढ़ा है 0.8 डिग्री, यानी रात का तापमान ज्यादा बढ़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक दिन का तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक और रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। शहरी इलाके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से पीड़ित हैं। कंक्रीट की इमारतें सड़कें पूरे दिन गर्मी सोखती हैं, जिससे रात के समय में भी गर्मी बनी रहती है। बहुत से घरों में वेंटिलेशन नहीं होता है, कूलर या एयर कंडीशनर्स नहीं होते, गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। देश के 30 करोड़ परिवारों में केवल 8% के पास, यानी देश के 2.40 करोड़ घरों में एयर कंडीशनर्स हैं। हालांकि भारत में एयर कंडीशनर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पिछले साल 17 करोड़ एयर कंडीशनर्स बिके थे, जिसमें से 9 करोड़ चाइना में और 1.20 करोड़ एसी भारत में खरीदे गए। जहां तक एयर कूलर की बात है तो देश के करीब 14% घरों में कूलर्स लगे हुए हैं, एयर कूलर। हालांकि अनुमान है कि 2025-26 में देश के करीब 30% घरों में गर्मी से निपटने के लिए एसी या कूलर में से एक जरूर है। हालांकि लगभग हर साल गर्मी अब इस देश में नए रिकॉर्ड बनाती है। कुछ वर्ष तो ऐसे रहे हैं जब गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया है, जान पर बनाई है। साल 2016 में राजस्थान पलौदी का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। साल 2019 में राजस्थान के चुरू में तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस था। साल 1956 में अलवर का तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस था। साल 2024 में राजस्थान के फलौदी में एक बार फिर तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। बांदा में उत्तर प्रदेश में फिर देखिए साल 2022 में तापमान 49 डिग्री पहुंचे। भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी से परेशान जनता एसी कूलर पंखे का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है और बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, और इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो बिजली की कटौती है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में बिजली की कटौती पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: गर्मी में तापमान और लोगों का गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक और कहीं कहीं तो 48 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल रहे लोगों को कूलर, पंखे और एसी से कुछ राहत मिलती है, लेकिन जब पावर कट होने लगता है तो मौसम की गर्मी लोगों के दिमाग में चढ़ जाती है और फिर ये सब होता है। यूपी के फिरोजाबाद में पावर कट से गुस्साए लोगों ने बिजली घर के फीडर पर ताला लगा दिया और बिजली विभाग की अर्थी सजा दी। लखनऊ और कानपुर में भी लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पर लोगों ने बिजली विभाग के सब स्टेशन का घेराव कर दिया।
1: को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिमाह प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली की कटौती फॉल्ट और कटौती।
0: मेरठ में भी यही हाल, यहाँ भी बिजली कटौती से लोग परेशान है। यहाँ के लोगों ने मेरठ के मेयर आवास का घेराव कर दिया। भयंकर गर्मी के इस मौसम में बिजली कटौती की समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली की डिमांड का पिछला रिकॉर्ड 30 मई साल 2024 को बना था। इस दिन डिमांड 250 गीगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस साल अप्रैल में टूट गया। 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बिजली की डिमांड 256 गीगावाट तक पहुँच गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 4 दिन के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें हर दिन बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। 18 मई के बाद से 21 मई तक हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 18 मई को बिजली की डिमांड 257 गीगावाट थी, 19 मई को 260 गीगावाट हो गई, 20 मई को ये बढ़कर 265 गीगावाट हो गई और फिर 21 मई को बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया जो 270 गीगावाट था। एक अनुमान है कि गर्मी के मौसम में एक सामान्य परिवार पंखा, कूलर या एसी तो चलाता ही होगा, और गर्मी के दिनों में बिजली की उनकी डिमांड 100 से 150 वाट तक जरूर होती होगी। इस हिसाब से देखें तो 270 गीगावाट का मतलब है देश के करीब 27 करोड़ घरों में बिजली की जरूरत थी। देश में करीब 30 करोड़ परिवार है, यानी मतलब ये निकला कि लाखों परिवारों को देश के किसी न किसी कोने में समय समय पर पावर कट की समस्या झेलनी पड़ रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारे देश की बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट तो है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में बताया था कि वो देश की 270 गीगावाट तक की डिमांड ही पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिजली केवल आपके घरों में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी इस्तेमाल होती है और वहाँ इसके डिमांड ज्यादा है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बिजली की डिमांड पूरे समय एक जैसी होती है। इसकी वजह यह है कि गर्मी के मौसम में दिन का तापमान रात की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए डिमांड दिन में ज्यादा होती है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये गर्मी का पीक टाइम है। 21 मई को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड को कैसे पूरा किया था ये भी बताया है। 270 गीगावाट की डिमांड को पूरा करने में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी करीब 63%, सौर ऊर्जा से बनी बिजली की हिस्सेदारी 22%, हाइड्रो पावर प्लांट से हुई सप्लाई की हिस्सेदारी 6% और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 5% थी। अलग अलग स्रोत से बिजली की डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और व्यवहारिक रूप से उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: बिजली कटौती की ये समस्या यूपी के बड़े शहरों और बड़े जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर इलाके में यही हाल है। लोगों की समस्याएं चरम पर हैं। पूरी रात लाइट नहीं आती, लोग सो नहीं पा रहे, छोटे बच्चों के साथ तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिजली का बिल तो हर महीने दे रहे हैं, तो फिर बिजली आ क्यों नहीं रही?
3: तकलीफ झेल रही जनता हमारी इस बेहद गर्मी में, जब मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और इतना तापमान बढ़ा जा रहा है और लोग त्रस्त हो चुके हैं। केसको का कोई काम नहीं, MD आई है, अगर वो आप अपना पद नहीं संभाल पा रही, अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रही है। आज उन्होंने बयान, कल उन्होंने बयान दिया है कि CGL की लाइन थी वो डैमेज हो गई है, तो अभी तक आपने क्यों जवाब नहीं दिया? 3 दिन से लोग आपके केसको के चक्कर काट रहे थे, आप कोई अधिकारी खुल के नहीं आया। अब 5 दिन जब प्रशासन ने एक नया रूप लिया, तब आपने आके एक बहाना दे दिया कि CGL की लाइन ब्रस्ट हो गई, तो उसको बनवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब 3 दिन हो गए हैं,
4: पूरी रात लाइट नहीं आती, आज 5 दिन हो गए, हम लोग एक दिन भी नहीं सो पा रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में लोग काम करके आते हैं, सो नहीं पाते हैं, यही समस्या हमारी है।
5: आपने की है केसको?
4: कितनी बार गए हैं, कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पे।
5: क्या आप मांग करते हैं?
4: हमें लाइट चाहिए, हमारी व्यवस्था, मतलब जो दिन भर काम करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, हर महीना देते हैं, हर महीना जमा होता है, तो कम से कम घर वाले अगर सो नहीं पाएंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे?
2: लखनऊ में तो बिजली का ये हाल है कि यहाँ अस्पतालों की भी बिजली गुल हो गई है। ये लखनऊ के दुबग्गा का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ प्राइवेट वार्ड में मरीज भर्ती हैं, लेकिन बिजली नहीं है।
6: लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस वक्त हीट वेव है, 45 के पार कई जिलों का टेम्परेचर है, ऐसे में बिजली समस्या बढ़ी। और लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल, यहाँ की तस्वीरें आप अगर देखें तो खुद तस्वीरें देखें, खुद समझें और खुद जायजा लें। ये एक पेशेंट है जो इस वक्त यहां पर एडमिट है, लेकिन इनकी मुसीबतें और तब बढ़ गई जब बिजली ही चली गई। जरूर अस्पताल में एक ट्रांसफार्मर था, लेकिन वो ट्रांसफार्मर भी क्या करे जब घंटों दिनों दिन बिजली नहीं आ रही है। पंखा दिखाएं, ये पंखा लगाया तो गया था पेशेंट की मदद के लिए, उसको सहूलियत देने के लिए। एक बढ़िया सा प्राइवेट वार्ड भी आपको दिखा दें, ये बनाया था कि पेशेंट को सहूलियत मिलेगी, लेकिन क्या सहूलियत जब पंखे ही बंद है और पेशेंट यहाँ मजबूर है। कब से यहाँ पर पंखा बंद है?
7: हो गया 2-3 दिन, 3 दिन।
6: तो आप तब से यहाँ ऐसे ही एडमिट हैं गर्मी में?
7: जी ऐसे ही एडमिट, क्या करें,
6: परेशानी हो रही है
7: जी, गर्मी हो रही है ना बहुत।
6: क्या समस्या थी आप?
7: बुखार था।
6: तो आप देखें, खुद जायजा लें, खुद समझें कि क्या कहानी है इस वक्त, यूपी के हालात क्या है।
8: अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो EMI पर मोबाइल फोन या टैबलेट लेते हैं और उसकी किश्तें नहीं चुकाते। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के ऐसे डिफॉल्ट केसेस के लिए एक नया नियम ड्राफ्ट किया है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने लोन पर मोबाइल फोन लिया और EMI नहीं दी, तो बैंक या जिस भी फाइनेंस संस्था से फोन लिया गया है, माफ कीजिएगा लोन लिया गया है, वो मोबाइल फोन की कुछ सेवाओं को बंद कर सकेंगे। सोचिए, मतलब फोन तो आपने ले लिया, लोन का पैसा दिया नहीं, तो आप जो मोबाइल सर्विसेज ले रहे हैं उसको रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। यह नियम लोन पर मोबाइल फोन लेकर पैसा ना चुकाने वालों और EMI ना मिलने वालों पर मोबाइल फोन यूजर्स का डेटा लीक करने की धमकी देने वालों या फोन पूरी तरह से ब्लॉक करने वालों पर शिकंजा कसेगा। पिछले काफी समय से इस तरह के एक नियम की जरूरत थी। अभी होता यह है कि कुछ महंगा महंगा मोबाइल फोन खरीदते हैं और महंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए बैंक डिजिटल लोन कंपनीज या फिनटेक कंपनीज से लोन ले लेते हैं। ये कंपनियां उस फोन में कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर्स डालती हैं। EMI मिस होने पर ये कंपनियां फोन को ब्लॉक कर देती हैं या फिर स्क्रीन पर EMI देने का मैसेज चला देती है और कई बार तो निजी डेटा लीक करने की धमकियां भी दे देती है। कंपनियों का तर्क यह होता है कि लोन डिफॉल्टर जानबूझकर EMI नहीं देते और इसीलिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लोन चुकाएं। लोन लेने वाले ग्राहकों की शिकायत यह है कि फिनटेक कंपनियां लोन देकर उनके निजी डेटा का एक्सेस हासिल कर लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। RBI इस मामले को कानूनी रूप से रेगुलेट करना चाहता है और इसीलिए नए नियम बनाए गए। नए नियमों के मुताबिक बैंक या लोन देने वाले संस्थाओं को सख्त नियमों का पालन करना होगा। जैसे फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स को लोन अग्रीमेंट में EMI ना चुकाने पर होने वाली कार्रवाई की इजाजत लेनी होगी। लोन ना चुकाने पर कार्रवाई किस तरह से होगी ये भी बताना होगा। लोन डिफॉल्टर पर एक्शन तभी होगा जब वो लगातार 3 EMI नहीं चुका पाएगा और पहले उसे नोटिस दिया गया होगा। लोन देने वाले बैंक, फाइनेंस कंपनीज पाबंदी के नाम पर फोन की जरूरी सुविधाओं जैसे इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल्स, इमरजेंसी मैसेजिंग, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े संदेश बंद नहीं कर सकते। आरबीआई का मानना है कि लोन देने वाले फाइनेंशियल संस्थानें डिवाइस को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर लोन की बकाया रकम चुका दी गई तो उसके एक घंटे के अंदर सारी पाबंदियां हटानी होगी। अगर गलती से पाबंदी लगी रही तो लोन देने वाले बैंक या कंपनियों को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा और इसके साथ साथ फोन में डाला गया उनका सॉफ्टवेयर तुरंत हटाना होगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कोई मिलने आए ना आए, आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आएंगे। नमस्कार।
9: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था उन्हें हराया है, और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए, लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर खड़े किए उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत। लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है।

0: ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
1: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
0: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
0: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ, तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।

0: त्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समन। त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
1: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
2: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं,
3: पीड़ित परिवार कहता है,
2: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
3: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
2: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
2: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
4: सत्यानाश
1: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
2: सर,
1: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
0: मुख पर मास्क लगाकर पहुंचे समर सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
5: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
6: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी।
0: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है।
7: I didn't say something
8: to anybody. I said about the
7: kind of intimacy.
8: Yes, you
0: can
8: do it for a favor.
0: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
9: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया शिव की कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
8: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: My first reaction was, Samarth, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली?
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिबाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिबाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटरनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025, यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब सीबीआई इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। ऐसे में वाघ देवी पूजा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने कोर्ट के निर्णय के विरोध में काले कपड़ों में नमाज पढ़ी।
5: ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा। हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी यहाँ के भक्तों में साफ नजर आ रही है।
6: पहला शुक्रवार है, 700-750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहाँ पूजा कर पा रहा है निरंतर।
7: 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहाँ बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
8: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गई।
5: भोजशाला में सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई, यात्रा निकली और फिर महाआरती हुई।
6: आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद यह मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है।
5: हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी बाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आज पहला जुमा था, ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ी और कोर्ट के फैसले का विरोध किया। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीती, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जगजाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कोर्ट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और पूरी गैंग वॉर चला।
8: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए
1: इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
7: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
7: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
6: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
7: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? मनीषा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्विशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्विशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
8: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
9: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
10: पीड़ित परिवार कहता है,
9: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
10: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
9: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्विशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
9: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
8: सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
7: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्विशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्विशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्विशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्विशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
11: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
12: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
7: जब त्विशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
13: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
7: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
0: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: My first reaction was, Samarth, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली?
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिबाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिबाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले, तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब सीबीआई इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर खड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीती, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली

0: वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और पूरी गैंग वॉर चला।
1: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
0: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस, 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
0: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ, तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के

0: शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
1: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने ट्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, ट्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
2: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
3: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
4: पीड़ित परिवार कहता है,
3: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
4: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
3: स्वागत है सीबीआई जांच का।
1: 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। ट्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
3: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
2: अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
3: सर,
2: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
1: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ ट्रिशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और ट्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि ट्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने ट्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
5: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा।
6: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
1: जब ट्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है।
7: I didn't say shove to anybody. I said the kind of intimacy.
8: Yes, we did do it for a
1: favor. समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
2: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है, वे पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
1: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
8: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: My first reaction was, Samarth, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली?
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं। आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ? क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा?

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटरनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती हैं जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। ऐसे में वाग देवी पूजा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने कोर्ट के निर्णय के विरोध में काले कपड़ों में नमाज पढ़ी।
5: ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा। हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी यहां के भक्तों में साफ नजर आ रही है।
6: पहला शुक्रवार है, 750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहाँ पूजा कर पा रहा है निरंतर।
7: 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहाँ बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
8: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गई।
5: भोजशाला में सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई, यात्रा निकली और फिर महाआरती हुई।
6: आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद यह मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए, गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है।
5: हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आज पहला जुमा था, ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ी और कोर्ट के फैसले का विरोध किया। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं पे संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांगी है और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह, उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह, ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
8: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
7: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंस धारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
8: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
7: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
6: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
7: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
9: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
10: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
11: पीड़ित परिवार कहता है,
10: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
11: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
10: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
10: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
12: सत्यानाश
9: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
10: सर,
9: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
7: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
13: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर देर तक फोन हेडफोन लगा?
14: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
7: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है।
15: I didn't say stuff to anybody. I said the any kind of intimacy.
16: Yes, did you do it for a favor?
7: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
9: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
7: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रिया शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की,
7: लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रिया शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
0: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: पर
1: माय फर्स्ट रिएक्शन वाज समर्थ इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली।
2: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी, जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, न ही समर्थ सिंह को, न ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटरनरी में काम करने वाले, तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीती, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जे हॉस्पिटल मुंबई शूट आउट

0: ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
1: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
0: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंस धारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
0: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
0: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ।

0: त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
1: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
2: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
3: पीड़ित परिवार, पीड़ित परिवार कहता है,
2: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
3: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। साहब, सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
2: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
2: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतनी जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
4: सत्यानाश
1: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
2: सर,
1: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
0: बूथ पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
5: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
6: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
0: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
7: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
8: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज समर्थ इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली।
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस की राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीती, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जगजाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी। जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांगी है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के एक कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह, उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है, और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
8: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए
1: इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
7: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
7: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिलाधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
6: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
7: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? कृषा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
8: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
9: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
10: पीड़ित परिवार, पीड़ित परिवार कहता है,
9: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
10: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
9: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
9: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
8: सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
9: सर,
8: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
7: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
11: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
12: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
7: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
13: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
7: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रिशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
0: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज समर्थ इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली है।
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी, जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब सीबीआई इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। ऐसे में वाग देवी पूजा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने कोर्ट के निर्णय के विरोध में काले कपड़ों में नमाज पढ़ी।
5: ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा। हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी यहाँ के भक्तों में साफ नजर आ रही है।
6: पहला शुक्रवार है, 750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहाँ पूजा कर पा रहा है निरंतर।
7: 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहाँ बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
8: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गयी।
5: भोजशाला में सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई, यात्रा निकली और फिर महाआरती हुई।
6: आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद यह मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है।
5: हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी बाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आज पहला जुमा था, ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ी और कोर्ट के फैसले का विरोध किया। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साफ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है, और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में

0: थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
1: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
0: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंस धारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
0: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन, वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस, प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
0: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ।

0: त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास, जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
1: अरे कोई कानून है क्या आपको सब बताए?
2: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं,
3: पीड़ित परिवार कहता है।
2: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
3: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
2: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
2: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
4: सत्यानाश
1: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
0: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
5: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हाइट फोन लगा।
6: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी।
0: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
7: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
0: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: कृष्णा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
8: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज समर्थ इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली है।
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी, जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटरनरी में काम करने वाले, तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती हैं जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी, जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है, और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है, बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है, और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
8: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
7: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंस धारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
8: उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
7: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड सीमित नहीं रखी है। आपराधिक रिकॉर्ड सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
6: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
7: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
9: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
10: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
11: पीड़ित परिवार पूछिए, पीड़ित परिवार से पूछिए, पीड़ित परिवार कहता है
10: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
11: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
10: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
10: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
12: सत्यानाश
9: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
7: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर सिंह पर ₹30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
13: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर देर तक फोन हेडफोन लगा।
7: अभी अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए
13: थी वो आप बताएं, देर देर तक फोन हेडफोन लगा।
14: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
7: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
15: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
7: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: कृष्णा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
0: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्रिशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: माय फर्स्ट रिएक्शन वाज समर्थ, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली।
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिबाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिबाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सिलेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात
3: तो कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं,
0: और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं हुई, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत ली, लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे हैं या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
6: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी। जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांगी है और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और पूरी गैंग वॉर चला।
7: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
6: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य

0: लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
1: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: एक्टर त्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। त्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
1: त्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
3: अरे कोई कानून है क्या आपको सब बताए?
4: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
5: पीड़ित परिवार कहता है,
4: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं।
5: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी

0: स्वागत है सीबीआई जांच का।
1: 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। ट्विशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
0: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं? सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
2: सर,
0: अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
1: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ ट्विशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और ट्विशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि ट्विशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने ट्विशा के घर वालों से क्यों नहीं?
3: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
4: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
1: जब ट्विशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है।
5: I did some stuff with anybody. I said the kind of intimacy.
6: Yes, you can do it for a favor.
1: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
0: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया शायद कोई अध्यक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
1: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
7: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
8: अपनी शादी पर खुशी से चहकती ट्विशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: माय फर्स्ट रिएक्शन वाज समर्थ, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली।
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा।

0: त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
1: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
0: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
2: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
0: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जाँच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
3: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी है, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जाँच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
2: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले, तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है।
0: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती हैं जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी राजनीति। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा ये हैं कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। त्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, रद्द हुआ वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। नीट परीक्षा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जला, एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप, ट्रैक से जाने पर लोग मजबूर। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यूएस का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल डाल मैं पात पात की खबर आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का राजनीतिक भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया 403 सीटों पर लड़ने को तैयार रहो।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सिलेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को ये बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे।